0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपके कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी प्रसन्नता की ओर कि जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, यानी कि शिव पुराण की श्रवण के लिए, जिसके श्रवण मात्र से, पठन मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाता है, सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो फिर क्यों ना फिर ऐसे ग्रंथ की हम पठन श्रवण किया जाए। दोस्तों, आपको शिव पुराण सुनवाने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आज भी डॉक्टर लीना सिन्हा जी को आमंत्रित किया हुआ है और वो हमारे स्टूडियो में ही उपस्थित हैं। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, पिछले एपिसोड में हमारे श्रोताओं को आपने बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनाया था कि किस प्रकार से भगवान शिव ने पार्वती के साथ और अपने सभी गणों और देवताओं के साथ में त्रिपुरासुर को मारने के लिए वो चले गए थे, क्योंकि भगवान तो पशुपतिनाथ हैं, तो वो पशु के दैत्य तो पशु के समान ही है। अब आगे फिर यह कथा कैसे बढ़ती है, उसका विनाश भगवान ने कैसे किया भगवान शिव ने, वह सब हम सुनना चाहते हैं। तो कृपया हमें सुनाइए।
1: हाँ मंजू जी, बड़ा ही लोमहर्षक वर्णन है कि कैसे शिव जी जो है इतनी इतनी सेना लेकर के गए, रथ पर आरूढ़ हुए और उसके बाद रुद्र संहिता के युद्ध खंड का 10वां अध्याय जो शुरू होता है, देखते हैं इसमें क्या वर्णन है। सनत कुमार उवाच, अत संभुर महादेवो रथस्थ सर्व संयुत त्रिपुरम सकलम दग्धुम उद्यतो अभूत सुरदुषाम। शीर्ष स्थानक मास्थाय संधाय च सरोत्तमं सज्जं तत्कार्मुकं कृत्वा प्रत्यालीढ़ं महाद्भुतम्। शिव जी की लीला तो सारी अद्भुत ही है, अद्भुत है, अलौकिक है और पता नहीं क्या क्या है। वो कहते हैं कि सनत कुमार जी की उसके बाद सभी उपकरणों के साथ रथ में विराजमान महादेव शिव जी देवताओं के लिए तैयार हो गए। शत्रुओं के तीनों नगरों को जलाने शीर्ष स्थान में चढ़कर बाण को चढ़ाकर धनुष को ठीक करके आश्चर्यजनक प्रत्यालीढ़ मतलब बाण चलाने का आसन, जिसमें बायां पैर आगे बढ़ाते हैं तथा दायां पैर खींच लेते हैं, तो प्रत्यालीढ़ नामक आसन उन्होंने साधा। दृढ़ मुष्टि से उस धनुष को पकड़कर दृष्टि में दृष्टि को डालकर शिव जी निश्चल होकर 100,000 वर्ष वहां स्थित रहे। बताओ, ये कह रहा है कि 100,000 वर्ष शिव जी वहां स्थित रहे धनुष चलाने की मुद्रा में। उनके अंगूठे पर गणेश जी स्थित होकर प्रति क्षण विघ्न कर रहे थे, जिससे शिव जी का लक्ष्य नगरों में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। तब धनुष बाणधारी मुंजकेश विरूपाक्ष शिव जी ने सुखदायक आकाशवाणी सुनी। क्या सुनी? वो कहते हैं कि भो भो न यावद भगवन अर्चितो असौ विनायक पुराणी जगदीशे सांप्रतम न हनिष्यति एतत् श्रुत्वा तु वचनं गजवक्त्रम अपूजयत भद्रकालीं समायु हुई ततो अंधकनी।

0: निशोधनम, ततो अंधक निशोधनम। कहते हैं कि भगवान गणेश जो है उनके अंगूठे पर बैठ करके विघ्न कर रहे थे, तो अब धनुषधारी धनुषबाणधारी मुंजकेश विरूपाक्ष शिवजी ने सुखदायक आकाशवाणी सुनी। संसार के स्वामी शिवजी, जब तक आप गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे तब तक आप इन नगरों का विनाश नहीं कर सकेंगे। यह सुनकर अंधकासुर के नाशक शिवजी ने भी भद्रकाली को बुलाकर गणेश जी की पूजा की। यथा विधि पूजा करने के बाद गणेश जी के प्रसन्न होने पर भगवान शिव जी ने आकाश में देखा कि तारक दैत्य के पुत्रों ने तीनों नगर आपस में सटे हुए हैं, कुछ ऐसा कह रहे हैं। पर ब्रह्म देवेश सबके उपासना योग्य शिव जी की भी कार्य सिद्धि दूसरे की कृपा से हो, यह बात समझ में नहीं आती है। अब देखिए, शिव ने ही तो वरदान दिया था प्रथम पूज्य का भगवान गणेश को। अब भगवान गणेश जब प्रथम पूज्य हैं और शिव जी चल रहे हैं किसी काम के लिए, तो पहले तो गणेश जी की आराधना तो करनी पड़ेगी, वंदना तो करनी पड़ेगी। अब साधारण मन सोचता है कि गणेश जी तो शिव जी के पुत्र हैं, तो पुत्र की आराधना क्यों, पिता पुत्र की आराधना क्यों करेगा। लेकिन ये साधारण मन की बात है, और गणेश जी के पूजन की बात जो यहाँ बताई गई है, यह चेतना की बात, आत्मा और परमात्मा की बात है। क्योंकि जब भी कोई शिव तक पहुंच जाते हैं, शिवमय हो जाते हैं, तो परब्रह्म परमेश्वर के अंश ही होते हैं, अंश और अंशी का संबंध होता है। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, बने हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को स्वीकार किया है उनके पुत्र के रूप में। पर गणेश जी तो परब्रह्म परमेश्वर हैं ही, सभी हैं परब्रह्म परमेश्वर के। अगर देखा जाए तो भगवान शिव को परब्रह्म परमेश्वर हम कहते हैं, विष्णु भगवान का अगर आप पढ़ेंगी तो उसमें विष्णु भगवान है परमेश्वर, और उसके बाद हम गणेश जी का पढ़ें तो गणेश जी हैं परमेश्वर, आदि शक्ति का पढ़ें तो वो है परमेश्वरी। तो मन थोड़ा सा विचलित होता है कि आखिर सभी परब्रह्म परमेश्वर परमेश्वरी कहे जाते हैं, ये क्या रहस्य क्या है। रहस्य बस इतना है कि जिसने भी आत्म तत्व को गूढ़ तत्व को जान लिया, वो परब्रह्म परमेश्वर ही हो गया, परमेश्वर में मिल गया। जैसे मान लीजिए बूंद है या गंगा है, गंगा सागर में जब मिल जाती है तो क्या बनती है, गंगा सागर। तब वहाँ गंगा को आप सागर में ढूंढ पाएंगे कि कौन है गंगा का जल और कौन है सागर का जल, हम नहीं ढूंढ पा सकते, वो दोनों एकाकार हो जाते हैं। तो उसी तरह जो भी परब्रह्म परमेश्वर की आराधना कर रहा है वो एकाकार हो गया परब्रह्म से। तो सभी परब्रह्म परमेश्वर ही है, बस थोड़ा थोड़ा भिन्नता नाम रूप की भिन्नता हो जाती है। जैसे सोना है, सोने का अगर हम जेवर बनाते हैं तो कोई कर्ण फूल बनता है, कोई हाथ का बनता है कंगन बनता है, और कोई जो है नेकलेस बनता है। तो है तो सोना ही, सुनार के पास जब आप जाएंगी तो सुनार क्या करेगा, सबको गला देगा एक साथ, उसके लिए तो केवल सोना है और सोने का ही वो मूल्य देगा। वो नहीं कि नेकलेस है तो नेकलेस का अलग मूल्य दे रहे हैं, कर्णफूल का अलग मूल्य दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो धातु तो एक ही है, उसी तरह परब्रह्म परमेश्वर धाता सबको धारण करने वाले हैं। तो इसलिए हमें इस भेद बुद्धि को समझना होगा कि वास्तव में भेद में अभेद है। अब आगे चलते हैं कि भगवान शिव ने तब क्या किया कि कार्य सिद्धि के लिए जब आकाशवाणी हुई कि गणेश की पूजा की पूजा करो, तब देखते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं कि वे तो स्वतंत्र पर ब्रह्म सगुण निर्गुण किसी के दृष्टिगोचर न होने वाले स्वामी परमात्मा तथा निरंजन हैं। वे स्वयं पंचदेव स्वरूप हैं, पांचों देवताओं के उपासना योग्य हैं, परम प्रभु हैं, उन्हें किसी की उपासना करने की क्या आवश्यकता नहीं है, वे ही सबकी उपासना के योग्य हैं। तो अब ये मन में भेद बुद्धि आई तो अथवा लीलिया तस्य सर्वम संघटते मुने चरितम देव देवस्य वरदातुम अहेसितु तस्मिन् स्थिते महादेवे पूजयित्वा गणाधिपम पुराणे तत्र कालेन जगमु रेक एकत्वम आसु वे। कहते हैं कि अथवा हे मुनि, देवदेव वरद शिव जी की लीला से सब कुछ होना संभव है। महादेव जी जब गणेश की पूजा कर चुके थे तब उसी समय तीनों नगर एक साथ मिल गए। हे मुनि, तीनों नगरों के एक साथ मिल जाने पर देवताओं तथा महात्माओं के मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई। पहले तो तीनों नगर अलग अलग दिख रहे थे, लेकिन जब गणेश जी की पूजा किया भगवान शिव ने, तो तीनों नगर एक हो गए। तब सभी देवता सिद्धगण महर्षि जय जयकार करते हुए शिव जी की स्तुति करने लगे, क्योंकि शिव ने उस समय ये नहीं देखा ये मेरा बेटा है। उन्होंने ही प्रथम पूज्य कहा था भगवान गणेश को, तो महाकाली के साथ उन्होंने पूजा की भगवान गणेश की। तो अहंकार रहित है परमेश्वर, क्या है अहंकार रहित है, उनके अंदर कोई अहंकार नहीं है, वो हमेशा शुभ कार्य के लिए ही अपना काम करते हैं। कहते हैं कि अथाह हेति तदा ब्रह्मा विष्णुश्च जगदाम्पति समयो अपि समायातो दैत्यानां वध कर्मणः तेषां तारक पुत्राणां त्रिपुराणां महेश्वर देव कार्यं कुरु विभो एकत्वम् अपि चागतम् यावन्न यान्ति देवेश विप्रयोगं पुराणि वै तावद् वानं विमुञ्चश्च त्रिपुरं भस्मसात कुरु। अब देवता गण जो है वो उत्सुक हो रहे हैं और धैर्य भी उनको नहीं हो रहा है कि कब त्रिपुरासुर का अंत होगा। संसार के स्वामी ब्रह्मा विष्णु ने भी कहा, दैत्यों के वध करने का समय आ गया है, हे महेश्वर, हे प्रभु, इस समय तारकासुर के तीनों पुत्रों के नगर एक साथ हो गए हैं, अब आप देवताओं के कार्य को कीजिए। जब तक ये नगर फिर अलग अलग नहीं हो जाते, तब तक आप बाण छोड़कर त्रिपुर को भस्म कर डालिए, क्योंकि वरदान था उसको कि तीनों को एक साथ ही मार रहा, तीनों थे अलग अलग, तो एक साथ तो एक बाण चलाते भी तो नहीं होता, लेकिन अभी एक साथ हो गए तो एक साथ जो है बाण से मारा जा सकता था। तो कहते हैं कि आप बाण छोड़कर त्रिपुर को भस्म कर डालिए। उसके बाद शिव जी ने धनुष पर डोरी चढ़ाई और बाण रखा, पूज्य पाशुपतास्त्र का त्रिपुर दाह के लिए ध्यान किया। उत्तम लीला निपुण महादेव ने उसे किसी कारण से निरादर की दृष्टि से देखा। विरूपाक्ष परम ईशान तीनों पुरों को क्षण भर में भस्म करने में समर्थ है और सज्जनों के रक्षक हैं, ऐसा जानना चाहिए। देवेश शिव अपने देखने मात्र से तीनों लोक को भस्म कर देने में समर्थ हैं, केवल आप हमारे यश की रक्षा करने के लिए बाण का प्रहार करें। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवताओं ने शिव जी की स्तुति की, तब उन्होंने बाण द्वारा त्रिपुर दाह की इच्छा की, क्योंकि इच्छा करना जरूरी था। जिस समय यह वह चिर अभिलषित मुहूर्त आया, अद्भुत धनुष की डोरी को खींचकर उसकी असह्य टंकार की, क्योंकि भगवान तो टंकारते हैं दसों दिशाओं में, जब तक टंकार न गूंजे तब तक पता कहाँ चलता है कि भगवान जग गए हैं। आपने राम का भी देखा होगा कि राम ने भी रावण को मारने से पहले टंकार की थी, तो उसी तरह भगवान शिव ने अपने धनुष से क्या किया, टंकार किया सबसे पहले। और कहते हैं महान असुरों को बुलाकर और अपना नाम सुनकर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश युक्त कठोर बाण को उन्होंने छोड़ा। अब भगवान शिव ने क्या किया, उस बाण को छोड़ दिया। कहते हैं ददाह त्रिपुरस्थाम तान दैत्यान स्त्रीन विमलापह स आशुगो विष्णुमयो वहनी शल्यो महाज्वलम ततः पुराणी दग्धानी चतुर जल जलधि मेखलाम गतानी युग पद भूमिम त्रीणी दग्धानी भस्म सात। कहते हैं कि आग के समान जलते हुए पाप नाशक विष्णु में उस बाण ने त्रिपुर में स्थित उन दैत्यों को जला दिया। चारों समुद्रों तक फैले हुए वे तीनों नगर जलकर भूमि पर राख के रूप में आ गए। शिव जी की उपासना को छोड़ देने के कारण सैकड़ों दैत्य उस बाण की अग्नि से हाहाकार करते हुए जल गए। भाइयों के साथ मरते हुए उस तारकाक्ष ने मरते समय अपने प्रभु भक्त वत्सल शिव जी का स्मरण किया। परम भक्ति से युक्त होकर अनेक बातें कहता हुआ महादेव जी को देखकर मन ही मन उसने कहा। तारकाक्ष भी उन त्रिपुरों में त्रिपुर में से एक था, तारकाक्ष विरूपाक्ष ये सब थे। तो तारकाक्ष क्या कहता है, तारकाक्ष ने कहा भव ज्ञातो असि तुष्टो अति यद असमान सह बंधुवि तेन सत्येन भूयो अपि तदा त्वं प्रदहिष्यसि दुर्लभम लब्धम अस्माभिः यद प्राप्यम सुरासुरैः
1: त्वद भाव भाविता बुद्धि जाते जाते भवत्वेति।
0: वो कहता है कि हे शिव जी, मैंने जान लिया है कि आप हम सभी बंधुओं पर प्रसन्न हैं, फिर इसी प्रकार आप हमें कब जलाएंगे? आप आज हमने आपका यह दर्शन पाया है जो देवताओं तथा असुरों के लिए भी दुर्लभ है, अतः प्रत्येक जन्म में हमारी बुद्धि आपकी ओर ही लगी रहे। हे मुनि, ऐसा कहते हुए वे दानव शिव जी की आज्ञा से उस अग्नि द्वारा जल गए। शिव भक्त थे तो शिव के अंदर उनके प्रति प्रेम तो था ही, और जब मारने लगे तो शिव जी के स्वरूप का उन्होंने दर्शन भी किया, और कहते हैं कि भगवान का साक्षात्कार ये बहुत ही दुर्लभ घटना है, दुर्लभ से भी दुर्लभतम घटना है कि हम भगवान का साक्षात्कार करें। करोड़ों मनुष्य, अभी अरबों मनुष्य हैं, और कितने मनुष्य आए गए, लेकिन भगवान का साक्षात्कार करने वाले भक्त ही हो, ज्ञानी भी होते हैं, लेकिन बहुत तपस्या के बाद ये सब संभव हो पाता है, और भगवान प्रसन्न हो जाए तभी कुछ संभव होता है। भगवान प्रसन्न हुए अर्जुन पर तो उन्होंने अपना विश्व रूप दिखा दिया, लेकिन हम आप ऐसे ही सोचते रहें कि भगवान का विश्व रूप देख लें तो क्या संभव है? नहीं संभव है, तब तक संभव नहीं है जब तक कि हम भगवान की आराधना ना करें, उपासना ना करें, साधना ना करें। लेकिन हमारी उपासना साधना आराधना से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे यह भी संभव नहीं है। भगवान के अंदर इच्छा हो जाएगी कि हाँ इस भक्त को दर्शन दें, तभी वो देंगे। बिना अपनी इच्छा के वे कहीं आते जाते नहीं हैं, चाहे हम लाख पुकारते रहें, लेकिन भगवान तो तभी आएंगे जब उनकी इच्छा होगी।
2: तो लीना जी, ये मैं जहाँ तक समझती हूँ, अगर भक्ति की पराकाष्ठा हो जाए, हमारे देश में भी ऐसे भक्त हुए हैं जिनको साक्षात्कार हुआ है, और ये भक्त ध्रुव प्रहलाद और भी बड़े भक्त हुए हैं, जो तुलसीदास हो गए, तो इस तरह से जो हमारे भक्त हुए हैं वो पूर्णतया जब समर्पित हो जाते हैं ईश्वर के चरणों में, सब कुछ समर्पण, पूरा समर्पण कर देते हैं, बस एक तू ही तू, तू ही तू, वहाँ मैं की कोई गुंजाइश नहीं रहती, तब ईश्वर को अपने भक्त को साक्षात्कार देना ही पड़ता है
1: जी।
2: तो उसके लिए तो पूर्ण समर्पण चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये आपको, आप चाहते हैं कि दर्शन हो जाएगा प्रभु का, जरूर होगा, उसके लिए लेकिन आपको पूर्ण समर्पण करना होगा। वही मुश्किल है, संसार और समाज में रहते हुए पूर्ण समर्पण करना ही बहुत मुश्किल है।
1: हाँ, हम कुछ ना कुछ बचा ही लेते हैं।
2: हाँ,
1: और बचा लेते हैं तो यहीं पर से परमात्मा अलोप हो जाता है,
2: क्योंकि संदेह जी, विकल्प, संकल्प, ये सब जो है हमारे दिमाग में, मन में सब चलते रहते हैं
1: जी,
2: वो निर्मल नहीं हो पाता, और जब तक निर्मल नहीं होगा तब तक तो स्थिरता आएगी ही नहीं। स्थिरता लाने के लिए अपने मन को निर्मल करना पड़ेगा, तो उसके लिए तो लीना जी फिर शिव भक्ति, उनका नाम ही उच्चारण करना
1: जी जी, भक्ति आवश्यक है। भक्ति में कुछ भी हो सकता है, भक्ति में कोई भी असंभव घटना संभव हो सकती है, जैसे प्रहलाद के में असंभव घटना संभव हुई, मीरा ने विषपान किया फिर भी वह जीवित रही, तो ये असंभव घटनाएं थी। तो सारी असंभव घटनाएं संभव हो सकती हैं अगर भक्ति जबरदस्त हो, मतलब कि भगवान के सिवा और कुछ भक्त को याद ही नहीं रहे, जैसे ध्रुव है, हाँ, और बहुत सारे भक्त हैं जिनके विषय में हम कह सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं, कहते हैं तारकाक्ष ने जब उनको कहा कि हम जानते हैं कि आप हम पर प्रसन्न हैं, तो अब इसी तरह से आप हमारी बुद्धि को हर जन्म में लगाए रहिएगा। तो हे व्यास जी, और भी जो बालक वृद्ध दानव वहाँ थे, वे भी शिव जी की आज्ञा से जलकर राख हो गए। वहाँ जो स्त्री पुरुष वाहन आदि थे, वे सब भी उस अग्नि से ऐसे जले जैसे कल्प के अंत में संसार जल जाता है। कुछ उत्तम स्त्रियाँ पतियों के गले में बाहें डाली हुई थीं, कुछ सोई हुई थीं, कुछ पति के सहवास से थकी थीं, कोई अजले जग गए थे, किंतु वे भी मोह से मूर्छित हो गए। उस घोर त्रिपुर दाहक अग्नि से कोई छोटी वस्तु भी ऐसी नहीं थी, भले ही वह स्थावर हो।

0: को ही मिलता है, इसलिए सज्जनों को यथासंभव प्रयत्न करना चाहिए जिससे भक्ति भाव बढ़े। भक्ति भाव तो सब कुछ संभव है, निंदा करने से विनाश होता है, अतः ऐसा कर्म ना करें। फिर कभी त्रिपुर वास संयोग नहीं होना चाहिए, यदि भाग्यवश ऐसा हो जाए तो अति उत्तम है। जो दैत्य बंधु बांधवों के साथ उस समय भी शिव जी की पूजा करते रहे, वे शिव पूजा के प्रभाव से शिव जी के गणाधीश हो गए। यानी शिव जी ने सब पर कृपा और परमात्मा की मुख्यतः कृपा ही होती है। परमात्मा ने कृपा कर दी तो समझिए जीवन सार्थक हो गया। कहते हैं कि अगर उनका एक अंश, उनके चरणों की धूलि का एक अंश भी हमें मिल गया तो वही हमारे जन्म को कृतार्थ कर देता है। हम कृत कृत्य हो जाते हैं अगर हम परमात्मा से मिल लेते हैं, या परमात्मा के स्मरण में आंखों में आंसू आ जाए तो समझिए कि आपने बहुत कुछ पा लिया।
1: तो ये बहुत ही सुंदर प्रसंग लीना जी आपने हमारे श्रोताओं को सुनाया, और अब मैं ये आपसे कहूँगी कि चलते चलते भगवान शिव के बारे में चार पंक्तियाँ अवश्य सुनाइए, ताकि वो हमारे जो श्रोतागण हैं वो प्रतीक्षा करते रहते हैं कि लीना जी चार पंक्तियाँ सुनाकर हमें शिव में ही बना देंगी।
0: कहते हैं सारा संसार तेरी खुशबू है, सारा संसार तेरी खुशबू है, हम उस खुशबू की आरजू हैं, हम उस खुशबू की आरजू हैं, जगत की कृत्रिम खुशबू में खो न जाऊं, बस इतनी सी आपसे गुप्तगू है। जगत की कृत्रिम खुशबू में खो न जाऊं, बस इतनी सी गुप्तगू है।
1: ये तो आपने सच्चे भक्त की इच्छा बता दी है, तो हमें भी कोशिश यही करनी चाहिए, हर एक भक्त को यही प्रयत्न करना चाहिए कि वह संसार में इतना ना रम जाए कि वो ईश्वर को ही भूल जाए। यही इसमें दोस्तों प्रार्थना की गई है। तो लीना जी, हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मंजू जी।
1: दोस्तों, अब मुझे भी इजाज़त दीजिए, क्योंकि अब ये एपिसोड समाप्त करने का समय हो चला है, हम इसको और आगे नहीं बढ़ा सकते। अगले एपिसोड में हम पुनः यहीं पर मिलेंगे, मानव रचना रेडियो स्टेशन 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइफ।
2: रोज रोज रोज रोज रोज

0: क्या है चित चोर?
1: 1 2 3 4
0: क्या है चित चोर?
1: You sing like किशोर but शादी का दे.
0: Oh yes, September 8.
1: Oh, very late.
0: Darling, wait.

लग जा गले ए लग जा गले दुनिया चले छम छम छम छम छम छम छम ए गण हम तुम पे दिल निसार करता है रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है रोज

Radio 107.8 FM पर ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर 1।

0: रेडियो मानव कृष्णा 107.8 एफएम पर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
1: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
0: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
2: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन है और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। मनुष्य शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अजर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं आता। तो इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकती है, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
0: बिल्कुल,
2: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते
0: हैं बिन बुलाए मेहमान।
2: जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में। तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं, उसके मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण हैं। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में लें तो कहा जाता है KP² LHBP अर्थात K फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, P फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर P फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, P फॉर पीस, L फॉर लव, H फॉर हैप्पीनेस, B फॉर ब्लिस और लास्ट P पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
3: खुद के मन में क्या है
2: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
3: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है।
2: जी बिल्कुल, उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो ऑब्वियसली कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
3: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला।
2: तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही, तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती है तब भी हम स्टेबल रहे, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है, जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम।
0: हुँ.
2: फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया। और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का शांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
3: बिल्कुल। और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है, ये किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
1: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मरकर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहाँ मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
3: जी।
1: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग, अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूं तो भी मैं इनकम्प्लीट हूं। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है, उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है। जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा, तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने, पर नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है, अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को, तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकंड बाय सेकंड रिकॉर्ड हो रही है
3: जी।
1: और जब एंड ऑफ द डे, यानी जब मृत्यु आती है, तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहां अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है, और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो, तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं, तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
3: बिल्कुल।
1: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है, तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वही कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे, अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं, और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों। तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है और वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
3: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
2: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिण जन्म बंद विनर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, मना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से माने आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहां कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहां ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाएं आइस फैक्ट्री, मुख में लगाएं शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं। हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित है, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट किया अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया कहाँ खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे, उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी, और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया, तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है, और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
3: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
2: जी
3: आपको बदलना पड़ेगा
2: जी।
3: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली है, और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
2: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम भस्सी माना। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील मन व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना है, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
3: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए रेडियो मानवृष्ण 107.8 FM पर। नमस्कार।
4: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: नमस्कार, रेडियो मानवरत्न नायक 7.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में बहुत सारे आध्यात्मिक प्रसंगों, कथाओं को हम आप तक पहुंचाने की चेष्टा करते हैं और हमेशा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होती हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युवाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी श्रोता, आजकल कार्यक्रम आत्मदर्शन में हम आपको बता रहे हैं बहुत सारे प्रसंगों के बारे में जो महाभारत में समाहित हैं। और पिछले एपिसोड में रागलेखा दासी जी से हमने कथा जानी ऋषि चवन और सुकन्या के बारे में जाना, राजा उशनीर की कथा हमने जानी, किस तरह से राजा उशनीर की परीक्षा ली थी इंद्रदेव ने, ये कथा हमने पिछले एपिसोड में जानी थी। तो आज आगे बढ़ते हैं और रागलेखा दासी जी से जानते हैं कि आज कौन सी कथा वो हमारे श्रोताओं को सुनाने वाली हैं। जी,
1: आज हम अष्टावक्र जी का जन्म और उनके साथ साथ का वृतांत सुनेंगे।
0: जी,
1: तो उद्दालक के पुत्र श्वेत केतु इस पृथ्वी भर में मंत्र शास्त्र में पारंगत समझे जाते थे। निरंतर फल मूलों से संपन्न रहने वाले आश्रम मुनि का है। उद्दालक मुनि का कहो नाम का एक प्रसिद्ध शिष्य था। उसने अपने गुरुदेव की बड़ी सेवा की। उससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत जल्दी सब वेद पढ़ा दिए। अपनी कन्या सुजाता भी उसे ब्याह दी। कुछ काल बीतने के बाद सुजाता गर्भवती हुई। वह गर्भ अग्नि के समान तेजस्वी था। एक दिन कहोर वेद पाठ कर रहे थे, उसी समय वह बोला, पिताजी आप रात भर वेद पाठ करते हैं किंतु ये ठीक ठीक नहीं होता। शिष्य के बीच में सकार आक्षेप करने से पिताजी को बहुत क्रोध आ गया। तब वो गर्भ में है और बोल रहे हैं, तो उन्होंने ये उदरस बालक को श्राप दिया कि तू पेट में से ही ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें किया करता है, इसलिए 8 जगह से टेढ़ा उत्पन्न होगा। जब अष्टावक्र पेट में बढ़ने लगे तो सुजाता को बड़ी पीड़ा हुई। उसने एकांत में अपने धनहीन पति से धन लाने के लिए प्रार्थना की। कहोर धन लाने के लिए राजा जनक के पास गए, किंतु वहाँ वाद करने में कुशल बंदी ने उन्हें शास्त्रार्थ में हरा दिया। शास्त्रार्थ के नियम के अनुसार उन्हें जल में डुबो दिया गया। उद्दालक को जब ये समाचार विदित हुआ तो उन्होंने सुजाता के पास जाकर उसे सब बात सुना दी और कहा कि तू अष्टावक्र से इस विषय में कुछ मत कहना। इसी से उत्पन्न होने के पश्चात अष्टावक्र को उसका कुछ पता न चला। वे उद्दालक को ही अपना पिता समझते थे और उनके पुत्र श्वेत केतु को अपना भाई मानते थे। एक दिन जब अष्टावक्र की आयु 12 वर्ष की थी तो वे उद्दालक की गोद में बैठे थे। उसी समय वहाँ श्वेत केतु आए और अपने पिता की गोदी में से खींच कर कहा, ये गोदी तेरे बाप की नहीं है। श्वेत केतु की इस प्रतिक्रिया से उनके चित्त पर बड़ी चोट लगी और उन्होंने घर जाकर अपनी माता से पूछा कि मेरे पिता कहाँ गए हैं। उसे सुजाता को बड़ी घबराहट हुई। उसने शाप के भय से सब बात बता दी। ये सब रहस्य सुनकर उन्होंने रात्रि के समय श्वेत केतु से मिलकर ये सलाह की, हम दोनों राजा जनक के यज्ञ में चले। ये यज्ञ बड़ा विचित्र सुना जाता है, वहाँ हम ब्राह्मणों के बड़े बड़े शास्त्रार्थ सुनेंगे। ऐसी सलाह करके वे दोनों मामा भांजे राजा जनक के समृद्धि संपन्न यज्ञ के लिए चल दिए। यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचकर जब वे भीतर जाने लगे तो उनसे द्वारपाल ने पूछा, आप लोग को प्रणाम है, हम तो आज्ञा का पालन करने वाले हैं। राजा के आदेश अनुसार हमारा जो निवेदन है उस पर ध्यान दें। इस यज्ञशाला में बालकों को जाने की आज्ञा नहीं है, केवल वृद्ध और विद्वान ब्राह्मण ही उसमें प्रवेश कर सकते हैं। अष्टावक्र ने कहा, द्वारपाल, मनुष्य अधिक वर्षों की उम्र होने से, बाल पक जाने से, धन से अथवा अधिक कुटुंब से बड़ा नहीं माना जाता। ब्राह्मणों में तो वही बड़ा है जो वेदों का वक्ता हो। मैं इस राजसभा में बंदी से मिलना चाहता हूँ, तुम मेरी ओर से ये सूचना महाराज को दे दो। द्वारपाल बोला, अच्छा मैं किसी उपाय से आपको सभा में ले जाने का प्रयत्न करता हूँ, किंतु वहाँ जाकर आपको विद्वानों को योग्य काम करके दिखाना चाहिए। ऐसा कहकर द्वारपाल उन्हें राजा के पास ले गया। वहाँ अष्टावक्र ने कहा, राजन आप जनक वंश में प्रधान स्थान रखते हैं और चक्रवर्ती राजा हैं। मैंने सुना है आपके यहाँ बंदी नाम का कोई विद्वान है, वह ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में परास्त कर देता है और फिर आप ही के आदमियों से उन्हें जल में डलवा देता है। ये बात ब्राह्मणों के मुख से सुनकर मैं अद्वैत धर्म विषय पर उससे शास्त्रार्थ करने आया हूँ। वे बंदी कहाँ है, मैं उससे मिलूंगा। राजा ने कहा, बंदी का प्रभाव बहुत से वेद वेता ब्राह्मण देख चुके हैं, तुम उसकी शक्ति को ना समझकर उसे जीतने की आशा कर रहे हो। पहले कितने ही ब्राह्मण आए किंतु सूर्य के आगे जैसे तारे फीके पड़ जाते हैं, उसी प्रकार सभी उसके सामने हतप्रभ हो गए। उस पर अष्टावक्री ने कहा, मेरे जैसों से पाला नहीं पड़ा। तब राजा ने अष्टावक्री की परीक्षा करने के लिए विचार से कहा, जो पुरुष 30 अवयव 12 अंश 24 पर और 360 अरों वाले पदार्थ को जानता है वही बड़ा विद्वान है। ये सुनकर अष्टावक्र बोले, जिसने पक्ष रूपी 24 पर ऋतु रूपी 6 नाभि मास रूपी 12 अंश और 3 रूपी 360 अरे हैं, वह निरंतर घूमने वाला संवत्सर रूप काल चक्र आपकी रक्षा करे। ऐसा यथार्थ उत्तर सुन के राजा ने ये प्रश्न किए, सोने के समय कौन नेत्र नहीं मूंदता, जल लेने के बाद किसमें गति नहीं होती, हृदय किसमें नहीं है और वेग से कौन भरता है। अष्टावक्र ने कहा, मछली सोने के समय नेत्र नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होने पर चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं है और नदी वेग से भरती है। ये सुनकर राजा ने कहा, आप तो देवताओं के समान प्रभाव वाले हैं, मैं आपको मनुष्य नहीं समझता, आप बालक भी नहीं है, मैं तो आपको वृद्धि मानता हूँ, वाद विवाद करने में आपके समान कोई नहीं है, तो मैं आपको मंडप के द्वार सौंपता हूँ, यही वह बंदी है। तब अष्टावक्र ने बंदी की ओर घूम कर कहा, अपने को अतिवादी मानने वाले बंदी, तुमने हारने वालों को जल में डुबोने का नियम कर रखा है, किंतु मेरे सामने तुम बोल नहीं सकोगे। जैसे प्रलयकालीन अग्नि के निकट नदी का प्रवाह सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे सामने तुम्हारी वाद शक्ति नष्ट हो जाएगी। अब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और मैं तुम्हारी बातों का उत्तर देता हूँ। राजन जब भरी सभा में अष्टावक्र ने क्रोध के साथ गरज कर इस प्रकार ललकारा तो बंदी ने कहा, अष्टावक्र, एक ही अग्नि अनेक प्रकार से प्रकाशित होती है, एक सूर्य सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है, क्षत्रियों का नाश करने वाले देवराज इंद्र एक ही वीर हैं और पितरों के ईश्वर यमराज भी एक ही हैं। अष्टावक्र बोले, इंद्र और अग्नि ये दोनों देवता हैं, नारद और पर्वत ये देव ऋषि भी दो हैं, दो ही अश्विनी कुमार हैं, रथ के पहिये भी दो ही होते हैं, और विधाता ने पति और पत्नी ये सहचर भी दो ही बनाए हैं। पृथ्वियों में त्रयोदशी को उत्तम कहा है, पृथ्वी में 13 दीपों वाली बतलाई गई है। इस प्रकार बंदी ने आधा श्लोक कहकर चुप हो जाने पर अष्टावक्र जी से आधे श्लोक को पूरा करते हुए कहने लगे, अग्नि वायु सूर्य ये 3 देवता 13 दिनों के यज्ञों के व्यापक हैं और वेदों में 13 आदि अक्षरों वाले अति छंद कहे गए हैं। इतना सुनते ही बंदी का मुख नीचा हो गया और वह बड़े विचार में पड़ गया, किंतु अष्टावक्र के मुख से वाणी की झड़ी लगी रही। ये देखकर सभा के ब्राह्मण हर्ष ध्वनि करते हुए अष्टावक्र के पास आकर उनका सम्मान करने लगे।
0: जी श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है, अष्टावक्र जी की कथा जान रहे हैं और किस तरह का उनका जन्म रहा, किस तरह का जीवन बीत रहा है, ये सारी बात हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से। और अभी रागलेखा दासी जी हमें अष्टावक्र जी की कथा सुना रही हैं कि किस तरह से जन्म लेने से पहले से ही उनका जो टोकना था या उनकी जो बातें थी वो पहले से ही बोल पाते थे और किस तरह से उनका नाम अष्टावक्र पड़ा, आगे की कथा भी हम जानते हैं। जी रागलेखा दासी जी आगे बताएं।
1: जी अष्टावक्र ने कहा, राजन ये बंदी शास्त्रार्थ में अनेक विद्वानों ब्राह्मणों को परास्त कर जल में डुबा चुका है, अब इसकी भी तुरंत वही गति होनी चाहिए। बंदी ने कहा, महाराज मैं जलाधीश वरुण का पुत्र हूँ, मेरे पिता के यहाँ आपकी ही तरह 12 वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ हो रहा है, उसी के लिए मैंने जल में डुबाने के बहाने चुने हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वरुण लोग भेज दिया है, वे सब अभी लौट आएंगे। अष्टावक्र जी मेरे पूजनीय हैं, उनकी कृपा से जल में डूबकर मैं भी अपने पिता वरुण देव जी से शीघ्र मिलने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। बंदी ने कहा, राजन वरुण के पुत्र होने से मुझे डूबने का कुछ भी भय नहीं है। अष्टावक्र भी बहुत दिनों से डूबे हुए अपने पिताजी कहोर के भी दर्शन करेंगे। समुद्र में डुबाए हुए सभी ब्राह्मण वरुण देव से सम्मानित होकर जल के बाहर निकल आए और राजा जनक की सभा में पहुंच गए। उनमें से कहोर ने कहा, मनुष्य ऐसे कामों के लिए पुत्रों की कामना करते हैं, जिस काम को मैं नहीं कर सका वही मेरे पुत्र ने करके दिखाया। राजन कभी कभी दुर्बल मनुष्य के भी बलवान और मूर्ख के भी विद्वान पुत्र उत्पन्न हो जाता है। बंदी भी राजा जनक की आज्ञा लेके समुद्र में कूद पड़ा। तदनंतर ब्राह्मणों ने अष्टावक्र जी की पूजा की और अष्टावक्र ने अपने पिताजी की पूजन किया और श्वेतकेतु के सहित वे अपने आश्रम को लौट आए। वहां पहुंचकर कहोर ने अष्टावक्र से कहा, तुम इस रमंगा नदी में प्रवेश करो। बस अष्टावक्र ने जैसे ही उसमें डुबकी लगाई उनके अंग सीधे हो गए और उनके संसर्ग से वह नदी भी पवित्र हो गई। जो पुरुष इस नदी में स्नान करता है वे सब पापों से मुक्त हो जाता है।
0: जी बहुत खूबसूरत।
1: अभी एक प्रसंग करेंगे भीमसेन की हनुमान जी से भेंट और बातचीत।
0: जी
1: अर्जुन से मिलने की इच्छा पांडव लोग उस स्थान पर 6 रात रहे। इतने में ही देवयोग से ईशान कुंड की ओर से बहते हुए वायु से एक सहस्त्र दल कमल उड़ाया। वे बड़ा ही दिव्य और साक्षात सूर्य के समान था। उसकी गंध बड़ी ही अनूठी और मनमोहक थी। पृथ्वी पे गिरते ही उस पर द्रौपदी की दृष्टि पड़ी। उसे देखते ही वह सुगंधित नाम वाले कमल के पास आई और मन में अत्यंत प्रसन्न होकर भीमसेन से कहने लगी, आर्य मैं यह कमल धर्मराज को भेंट करूंगी। यदि आपका मेरे प्रति वास्तव में प्रेम है तो मेरे लिए ऐसे ही बहुत

0: समान गर्जन करते हुए झपट कर उसके भीतर घुस गए। इस वन में महावीर हनुमान जी रहते थे। उन्हें अपने भाई भीमसेन के उधर आने का पता चल गया। उन्होंने सोचा कि क्योंकि वायु पुत्र है हनुमान जी और वायु पुत्र ही भीमसेन है
1: जी, जी।
0: तो भीमसेन के इधर से होकर स्वर्ग में जाना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से संभव है मार्ग में उनका कोई तिरस्कार कर दे या उन्हें शाप दे दे।
1: अच्छा।
0: तो इस रक्षा करने के विचार से उन्होंने केले के बगीचे से जाने वाले सकरे मार्ग को रोक कर लेट गए। जमाई लेकर अपनी पूछ फटकारते थे, उसकी प्रतिध्वनि सब और फैल जाती थी। ये शब्द मतवाले हाथी के गर्जना को भी दबाकर पर्वत पर सब और फैल गए थे। उसे सुनकर भीमसेन के रोए खड़े हो गए और वे कारण के ढूंढने के लिए उस केले के बगीचे में सब और घूमने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्हें उस बगीचे में एक मोटी शिला पर लेटे हुए वानर राज हनुमान दिखाई दिए। महाबली भीमसेन निर्भय होकर उनके पास चले गए। भैया मैं तो रोगी हूँ, यहाँ आनंद से सो रहा हूँ, तुमने मुझे क्यों जगा दिया? हनुमान जी बोले, तुम हो कौन और किस लिए इस स्वर्ग में लेते हो? भीमसेन ने कहा, वानर राज आप कौन है और इस वानर देह में आपने क्यों धारण की है? मैं तो चंद्रवंश के अंतर्गत गुरुवंश से उत्पन्न हुआ हूँ। मैंने माता कुंती के घर से जन्म लिया है और मैं महाराज पांडु का पुत्र हूँ। लोग मुझे वायु पुत्र भी कहते हैं। मेरा नाम भीमसेन है। हनुमान जी बोले, मैं तो बंदर हूँ। तुम जो इस मार्ग से जाना चाहते हो तो मैं इधर होकर नहीं जाने दूंगा। अच्छा तो यही है, तुम यहाँ से लौट जाओ नहीं तो मारे जाओगे। भीमसेन ने कहा, मैं मरूं या बचूं तुमसे तो इस विषय में नहीं पूछ रहा हूँ, तुम जरा उठकर मुझे रास्ता दे दो। हनुमान जी बोले, मैं रोग से पीड़ित हूँ, यदि तुम्हें जाना ही है तो मुझे लांग कर चले जाओ।
1: अच्छा।
0: मैं बल पराक्रम और तेज में उन्हीं के समान हूँ, इसलिए तुम खड़े हो जाओ और मुझे रास्ता दे दो। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें यमपुरी भेज दूंगा। हनुमान जी ने कहा, हे अनग तुम रोष न करो, बुढ़ापे के कारण मुझमें उठने की शक्ति नहीं है, इसलिए कृपा करके मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। भीमसेन अवज्ञा पूर्वक हंसकर अपने बाएं हाथ से हनुमान जी की पूंछ उठाने लगे, किंतु वे उसे तस तमस भी न कर सके। फिर उन्होंने उसे दोनों हाथों से उठाना चाहा, किंतु वे असमर्थ थे। तब उन्होंने लज्जा से मुख नीचा कर लिया और दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम करके उनसे कहा, वानर राज आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने जो कटु वचन कहे उसके लिए क्षमा कर दीजिए। वानर का रूप धारण करने वाले आप कौन हैं? हनुमान जी ने कहा, मैं हनुमान नाम का बंदर हूँ। इस प्रकार मेरी मित्रता सुग्रीव से थी। अयोध्यापुरी में राज्याभिषेक हुआ तो मैंने उनसे ये वर मांगा कि हे शत्रुदमन, जब तक इस भूमंडल पर आपकी पवित्र कथा रहे तब तक मैं जीवित रहूं। भीमसेन सीता जी की कृपा से यहाँ रहते हुए मुझे इच्छा अनुसार दिव्य भोग प्राप्त हो जाते हैं। इस स्थान पर गंधर्व अप्सराएं उनके चरित्र सुना सुना कर मुझे आनंदित करती रहती है। इस मार्ग में देवता लोग रहते हैं, मनुष्य के लिए अगम्य है, इसलिए मैंने इसे रोक लिया था। संभव है इसलिए कोई तुम्हारा तिरस्कार कर देता, तुम्हें श्राप दे देता, इसलिए क्योंकि ये दिव्य मार्ग देवताओं के लिए है, इसमें मनुष्य नहीं जाते। और तुम्हें यहाँ जाने के लिए आए हो, ये सरोवर तो यही है। भीमसेन बोले कि आज मेरे समान कोई बड़ा भागी नहीं है, क्योंकि आज मुझे अपने ज्येष्ठ बंधु के दर्शन हुए हैं। आपने बड़ी कृपा की है, आपके दर्शन से मुझे बड़ा ही सुख मिला है, किंतु मेरी एक इच्छा है वह आपको अवश्य पूरी करनी होगी। समुद्र को लौटते हुए आपने जो अनुपम रूप धारण किया था उसे मैं देखना चाहता हूँ, इससे मुझे संतोष होगा और आपके विष्णुओं पर विश्वास भी हो जाएगा। भीमसेन के इस प्रकार कहने से हनुमान जी ने मुस्कुराकर वह रूप दिखाया जो समुद्र लांघते समय उन्होंने धारण किया था। अपने भाई को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने शरीर को बहुत बड़ा कर दिया और लंबाई चौड़ाई में बहुत अधिक बढ़ गए। उस समय अतुलित कीर्तिमान हनुमान जी ने विशाल विग्रह से दूसरे वृक्षों के सहित वह केला बगीचा आच्छादित हो गया। वह विशाल रूप देख कर बड़े विस्मित हुए भीमसेन और उनके शरीर में रोमांच हो आया। हनुमान जी का वह विग्रह तेज में सूर्य के समान था और सोने का पहाड़ जान पड़ता था। भीमसेन ने आंखें बंद कर ली। मैंने आपके शरीर को महान विस्तार देख लिया, अब आप अपने इस स्वरूप को समेट लीजिए। मेरे मन में तो आज यह बड़ा आश्चर्य है, राम जी को रावण के समय युद्ध करना पड़ा, उस लंका को तो उसके योद्धा और वाहनों सहित आपके ही बाहुबल में सहज ही नष्ट कर सकते थे। रावण तो अपने परिकर के सहित अकेले आपसे ही लड़ने में समर्थ नहीं था। भीमसेन के इस प्रकार कहने पर हनुमान

0: जी बोले, तुम जैसा कहते हो ठीक ही है, ये अदम राक्षस वास्तव में मेरा सामना नहीं कर सकता था। सारे लोगों को कांटे के समान चलाने वाला उस रावण को यदि मैं मार डालता तो राम जी को एक कीर्ति कैसे मिलती। रघुनाथ जी ने सेना के सहित उस राक्षस अदम का वध किया और सीता जी को अपनी पुरी में ले आए। लोगों में उनका सुयश फैल गया। अब तुम जाओ, देखो ये सामने वाला मार्ग सुगंधित वन को जाता है, वहाँ तुम्हें यक्ष और राक्षसों से सुरक्षित कुबेर का बगीचा मिलेगा। स्वयं ही जल्दी से पुष्प चयन मत करना, मनुष्य को तो विशेष रूप से देवताओं का मान करना ही चाहिए
1: जी।
0: फिर अपनी इच्छा से बढ़ाए हुए शरीर को सिकोड़ कर वानरराज हनुमान ने दोनों भुजाओं से भीमसेन को छाती से लगाया। इससे तत्काल ही भीमसेन की सारी थकावट दूर हो गई और वो सब प्रकार से अनुकूलता का अनुभव करने लगे। तो हनुमान जी बोले, तुम्हें मेरे दर्शनों का कुछ फल प्राप्त होना चाहिए, तुम भ्रातृत्व के नाते ही मुझसे कोई वर मांगो। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हस्तिनापुर में जाकर कुछ दुष्टाश्र के पुत्र को मार डालो, ये भी मैं कर सकता हूँ। तुम चाहो तो पत्थरों से इस नगर को नष्ट कर दूं और अभी दुर्योधन को बांधकर तुम्हारे पास ले आऊं। महाबाहु, तुम्हारी जैसी इच्छा हो उसे मैं पूर्ण कर दूं। भाई और सुहर्द होने के नाते मैं तुम्हारा प्रिय करूंगा। जिस समय तुम शक्ति और वाणों से व्याप्त शत्रु के सेना में दुष्ट सिन्नाद करोगे, उसी समय मैं अपने शब्द से तुम्हारी गर्जन को बढ़ा दूंगा और अर्जुन की ध्वजा पर बैठा हुआ ऐसा भीषण गर्जना करूंगा जिससे शत्रुओं के प्राण सूख जाएंगे और तुम उसे सुगमता से मार सकोगे। ऐसा कहकर हनुमान जी ने उसे मार दिखाया और वही अंतर्ध्यान हो गया
1: जी। बहुत सुंदर प्रसंग श्रोताओं, भीमसेन और हनुमान जी की जो भेंट हुई, मुझे कहीं ना कहीं याद आता है कि कभी टीवी सीरियल्स में मैंने ये देखा है। तो जब आप रागली की तस्वीर सुना रही थी तो वो पूरी छवि मेरे सामने आ रही थी। बहुत ही सुंदर ये प्रसंग है दोस्तों कि किस तरह से भीमसेन और हनुमान जी की जो भेंट हुई, बहुत ही सुंदर प्रसंग हमने अभी इस कार्यक्रम के अंतर्गत जाना। आगे और भी प्रसंग हैं, कथाएं हैं जो हम जानते रहेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन अभी वक्त हुआ है आपसे इजाजत लेने का। तो रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
0: हरे कृष्ण
1: जी। तो श्रोताओं, अगले एपिसोड में महाभारत में समाहित और भी कथा प्रसंग रागलेखा दासी जी से हम जानते रहेंगे, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइफ।

गुड मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ अपने साथ और आपके पास। जी हाँ, देखिए सुबह सुबह का टाइम है, शो की करते हैं शुरुआत। और आपको बता दूँ, आज देखिए ये जो प्रोग्राम है ये 2 घंटे का है, क्योंकि अब से ना मैं आपके पास 2 घंटे के लिए आती हूँ और बहुत सारी करती हूँ बातें, यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे। जी हाँ, हर दिन आपके साथ रहती हूँ और इसी के साथ साथ और बहुत सारी होती हैं बातें, चाहे बात करें हेल्थ की, चाहे बात करें फिटनेस की, योगा की, मेडिटेशन की। इसी के साथ साथ आपको बता दूँ कि देखिए हम बात ज़रूर करते हैं यहाँ पर क्विज की भी, और बात होती है स्पोर्ट्स की भी। तो जी हाँ, बहुत सारी बातें लेकर के आपके पास आ जाती हूँ। मॉर्निंग की करते हैं खूबसूरत सी शुरुआत, और आज क्या है कुछ खास वो बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए, ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनोविरचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ आपके पास. और बातें हमारी चल रही हैं तो अभी फिलहाल सेगमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का, वो है दिल धड़कने दो. और इस सेगमेंट में बात होती है आपकी हेल्थ और फिटनेस की. जी हाँ, तो हेल्थ और फिटनेस की होंगी बहुत सारी बातें, आपको बस इसी तरह से जुड़े रहना है और ढेर सारे मैसेज करते रहने हैं. जी हाँ, कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप देखिए यहाँ पर गुड मॉर्निंग भी लिख रहे हैं और प्रोग्राम की देखिए जो अच्छा आपको लगता है ये भी मुझे बता रहे हैं, तो दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद. और इसी के साथ साथ देखिए मैं आपको बताती हूँ हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, क्योंकि हमारा सेगमेंट है दिल धड़कने दो. और दिल धड़कने दो में अभी फिलहाल बात हो रही है इस गर्मी के मौसम की. जी हाँ, देखिए गर्मी का ये जो मौसम है ना, ये अपने साथ कई सारी बीमारियाँ लेकर के आता है. ऐसे में अपने आप को, खुद को ठीक रखना ज़रूरी है. अब देखिए इन दिनों क्या होता है ना, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, एनर्जी कम रहती है और पेट की गड़बड़ी आम हो जाती है. ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं पूरे सीज़न बिना डॉक्टर के आप इसे बिता दें पूरा सीज़न और आपकी इम्यूनिटी भी दमदार बनी रहे, तो सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना होगा. हर सुबह खाली पेट आपको जो है कुछ फ्रूट्स का या कुछ फल का जैसे सेवन जो है वो करना है. अब देखिए क्या होता है ना कि जब आप कुछ अच्छा खाते हैं तो आपकी सेहत बनी रहती है, इम्यूनिटी बनी रहती है, और इम्यूनिटी बनी रहनी ज़रूरी है. तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आपको खानी चाहिए जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छी है, और आपको बता दूँ कि वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली आप मार्केट में जाएंगे तो लोकल फ्रूट है, आपको आसानी से सीजनल फ्रूट आपको मिल जाएंगे. और ऐसा भी नहीं कि आप बाद में कहें कि साक्षी ये तो फ्रूट है ही नहीं, ये तो इतने महंगे हैं. महंगे भी नहीं है और सेहत के लिए भी अच्छे हैं, इसीलिए आप तक ये सारी जानकारी लेकर के आती हूँ. चलिए बताऊँगी इसके बारे में कौन से ये फ्रूट्स हैं, लेकिन फिलहाल ले दी हूँ एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। फिलहाल सेगमेंट दिल धड़कने दो में हम कर रहे हैं ढेर सारी बातें। जी हाँ, सेगमेंट दिल धड़कने दो जो कि आपके लिए लेकर के आती हूँ, जिसमें हम करते हैं आपकी सेहत से जुड़ी बातें, हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी बातें। जी हाँ, अब बात मैं कर रही हूँ कुछ ऐसे सीजनल फूड्स की, जिसे आप खाली पेट लेते हैं तो आप जो है भाई इस गर्मी के मौसम में आपकी सेहत बनी रहेगी। तो अगर आप सुबह सुबह सुबह खाली पेट अगर लेते हैं पपीता, तो भाई सुबह की शुरुआत आपकी काफ़ी अच्छी होगी। समझ लीजिए कि आपका पाचन जो तंत्र है, यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा और इस गर्मी के मौसम के लिए बिल्कुल सही रहेगा। जी हाँ, देखिए पपीते में पाया जाने वाला जो पेपेन एंजाइम होता है, ये ना सिर्फ खाना पचाने में मदद करता है, बल्कि अगर आपको एसिडिटी है या फिर कॉन्स्टिपेशन है या फिर कोई भी अगर देखिए आपको रिलेटेड कोई ब्लोटिंग इश्यूज हो रहे हैं, तो ये सब में राहत दिलाता है। अब बस इसे खाना कैसे है, आपको सुबह एक कटोरी ताज़ा पपीता जो है खाली पेट खा लेना है और बस देखिए कमाल का जादू जो है ये फिर होने लगेगा। इसी के साथ साथ अगर आप गर्मियों में ये जो गर्मियों का राजा फल है ये खाते हैं, तब भी आपको बहुत फायदा होने वाला है। अच्छा, यहाँ मैं बात आम की नहीं कर रही हूँ, राजा फल इसलिए इसको कह रही हूँ क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि फलों का राजा तो वैसे आम है, नो डाउट आम है, लेकिन भाई जिसमें सबसे ज़्यादा पानी आपको मिलता है वो है वाटरमेलन। जी हाँ, यानी कि तरबूज, जिसमें करीबन कुछ 92% तक पानी मिलता है हमारी बॉडी को, और जो शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और गर्मियों में उसे बचाता है, इसके खतरे से हमें बचाता है। लेकिन अगर आप रोज तरबूज खाएंगे तो आपकी बॉडी का जो बैलेंस है, जो टेम्परेचर है, वो बैलेंस में बिल्कुल रहेगा। और इसे बस क्या करना है, सुबह खाली पेट एक कटोरी आपको तरबूज जो है वो खाना है। लेकिन याद रखें, खाली पेट दूध या पानी आप तुरंत बिल्कुल भी ना लें जब आप तरबूज खाते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, क्योंकि पानी की तो देखिए जरूरत भी नहीं होती, तो दूध भी मत लीजिएगा। आपको क्या करना है, बस तरबूज खाना है और बस हो गया। अब इसमें आपको 92% तक पानी जो है ये मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ साथ बात करें अब देखिए फलों के राजा की, जो मैं कह रही थी, और वो है आम। आम जो है इसे फलों का राजा तो कहा ही जाता है, जो गर्मियों में इसका स्वाद जो है देखिए हर एक को पसंद आता है, हर कोई आम खाना पसंद करता है और ये कई सारे गुणों से भरपूर भी है। विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर प्रचुर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं, जो ना सिर्फ इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं बल्कि हमारी बॉडी को एनर्जी देने का भी काम करते हैं। जी हाँ, तो देखिए अगर आपको भी चाहिए ना एनर्जी, आम खाना शुरू कर दीजिए। बस आपको क्या करना है, पका हुआ आम जो है वो लेना है। बस आपको क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे सीमित मात्रा में खाना है, क्योंकि ये शुगर जो है इसमें थोड़ी हाई होती है, इसलिए आपको कम ही खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और देखिए आम में थोड़ी सी गर्मी भी होती है, तो आपकी बॉडी पे जो है देखिए आपको हो सकता है कि कई लोगों को ये समस्या रहती है कि अगर आम ज़्यादा खा लेते हैं तो उनको जो है थोड़े दाने हो जाते हैं या फिर उनको जो है पेट खराब होने की समस्या रहती है। तो बहुत ज़्यादा मत खाइए, कम इसकी जो क्वांटिटी है ना उसमें खाइए, तो आपको नुकसान नहीं होगा, नहीं पहुंचेगा, आपकी बॉडी बिल्कुल दुरुस्त रहेगी। चलिए कुछ और फ्रूट्स के बारे में भी आपको बताऊंगी जो कि खाली पेट आपको ले लेने चाहिए। कौन से हैं फिलहाल बताती हूँ कुछ ही देर में, आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रेस्टोरेंट 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ. फिलहाल चल रहा है हमारा सेगमेंट दिल धड़कने दो. जी हाँ, दिल धड़कने दो मैं आपसे बातें करती हूँ आपकी हेल्थ और फिटनेस की. जी हाँ, और यहाँ पर आपको बता दूँ कुछ फ्रूट्स के बारे में आपको बता रही हूँ. ये जो लोकल सीजनल फ्रूट्स मिलते हैं ना, कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए. और गर्मी में तो ज़रूरी भी है कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो मज़बूत बनी रहे, क्योंकि तो ये बहुत सारी बीमारियाँ ना अपने चपेट में ले लेती है. और अगर आप भी चाहते हैं ना कि ये जो बीमारी है आपको अपने पेट में बिल्कुल भी ना ले, तो उसके लिए आपको अपना ख्याल तो रखना पड़ेगा. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि खाली पेट अगर आप कुछ फ्रूट्स लेते हैं तो आपकी सेहत बनी रहेगी, जैसे कि पपीता, तरबूज, साथ ही साथ बात करें यहाँ पर आम की तो ये भी अच्छा है. लेकिन अब बात आती है दूसरे फ्रूट की. जो हमारा जो है अगला फ्रूट है वो है मेलन. जी हाँ, खरबूजा. खरबूजा भी तरबूज की तरह ही शरीर को ठंडक रखता है, ठंडे में रखता है आपके शरीर को, साथ ही पानी की कमी से बचाने में भी काफ़ी मदद करता है. इसमें पोटाशियम है, फाइबर है, विटामिन सी है, और इसमें जो है आपकी बॉडी को देखिए जो एनर्जी देने वाले कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी ना सिर्फ बॉडी के लिए हेल्पफुल है बल्कि आपकी त्वचा को भी चमकदार बनाते हैं. कुछ ऐसे पोषक तत्व भी हैं. अब इसे खाना कैसे? सुबह नाश्ते से पहले आप एक कटोरी खरबूजा ज़रूर खाएं. अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप सारे फ्रूट्स को एक साथ ना खाएं. एक दिन आपने जो है खरबूजा खाया, एक दिन तरबूज खाया, एक दिन आम खाया सुबह ब्रेकफास्ट में, एक दिन आपने जो है पपीता खाया, तो इस तरीके से आप इंक्लूड कर सकते हैं. अब अगले फ्रूट की बात आती है और वो है हम सभी का फेवरेट सेब. जी हाँ, देखिए सेब जो है इसको अक्सर सर्दियों का फल माना जाता है, लेकिन गर्मियों में भी इसका असर जो है वो शानदार है. इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो गर्मी के मौसम में होने वाली थकान और कमजोरी से बचाता है. और वैसे भी कहते हैं ना, an apple a day keeps doctor away. इसीलिए अगर आपको डॉक्टर से रहना है दूर, अपनी रखनी है इम्यूनिटी मजबूत, तो खाइए ढेर सारा सेब, ढेर सारा एप्पल, ताकि आपकी सेहत बनी रहे. सुबह खाली पेट आप एक ताज़ा सेब ज़रूर खाइए, छिलके समेत खाइए ताकि फाइबर मिले. जो बहुत सारे लोग हैं जो छिलका पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए छिलके के साथ खाने के लिए, तो उससे फाइबर आपको मिलेगा. नहीं तो मर्जी वैसे आपकी है, खा रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसी के साथ साथ बस कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है, जैसे कि फलों को आपको खाली पेट खाने से देखिए उनके पोषक तत्व जो है वो जल्दी और बेहतर तरीके से हमारी बॉडी में एब्जॉर्व होते हैं. तो इसी के साथ आपको पहले कुछ नहीं खाना है, आपको खाली पेट खाना है. इसी के साथ साथ एक ही फल रोज़ आपको खाना है. आपको जो है बारी बारी हर दिन आप जो है अपना फल जो है वो बदलते रहिए, सारे मिक्स मत कीजिए, एक एक करके खाइए. फलों को आप काट कर देर तक बिल्कुल भी ना रखें, ये बहुत ज़रूरी है. ताज़े फल ही डाइट में आप शामिल कीजिए, जो आप हाथ के हाथ उसको काट के खाएं. फल खाने से के तुरंत बाद आपको पानी भी नहीं पीना है, कम से कम 30 मिनट के गैप के बाद ही आपको पीना है पानी, इससे पहले आपको पानी नहीं पीना है. चलिए, ये तो रही हमारी हेल्थ और फिटनेस की बहुत सारी बातें. और इसी के साथ देखिए आप होंगे और भी बहुत सारी बातें, अपने प्रोग्राम तो लेकर आई जाती हूँ, लेकिन अब करते हैं आगे बातें. स्ट्रेच प्लीज हमारा सेगमेंट है, और इस सब सेगमेंट में मैं करती हूँ आपके साथ मेडिटेशन, योगा की बातें. जी हाँ, अब देखिए हमने अपनी सेहत का ख्याल तो रख लिया, हमने ये तो पता कर लिया ना कि किस तरह से आप अपनी फिटनेस को बनाए रखेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपकी फिजिकल बॉडी जो है अच्छी है, बनी हुई है, और आप अच्छे से अपनी फिजिकल बॉडी पे काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी ये भी है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ पर भी काम करें.

उसके लिए जरूरी है कुछ बातों का ख्याल रखना और योगा करना, मेडिटेशन करना। उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है या कौन कौन से ऐसे योगा आसन है जो आपके लिए अच्छे हैं, बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: मेरा मेरा तेरा प्यार।
1: वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। जी हाँ, बातें हमारी चल रही हैं बहुत सारी। अब देखिए, बात करते हैं हमारे अगले सेगमेंट की जो है स्ट्रेच प्लीज। चलिए, इस सेगमेंट में बातें हमारी चलती हैं आपको योगा के बारे में आपको बताती हूँ। देखिए, योगा जो है ये एक शब्द नहीं है, एक जिंदगी का तरीका है। ये सिर्फ बॉडी को ट्विस्ट या स्ट्रेच करना इसमें नहीं होता है, ये अपने मन को, अपनी सांसों को और अपनी सोल को एक रिदम में लाना होता है। जब हम योगा करते हैं, हम सिर्फ हेल्दी नहीं बनते हैं, बल्कि हम खुद को और ज़्यादा अपने करीब लाते हैं, स्ट्रेस से दूर जाते हैं और सुकून के पास चले जाते हैं। योगा का मतलब है जुड़ना, जी हाँ, अपने आप से, अपनी एनर्जी से और इस पूरे यूनिवर्स से, चाहे वो सूर्य नमस्कार हो या फिर अनुलोम विलोम। हर पोस्चर के पीछे एक पर्पस होता है, फिट बॉडी, काम माइंड और पीसफुल सोल। तो बस रोज आप कुछ मिनट अपने निकालिए, अपने जिंदगी के, आप कुछ पूरे दिन के एक आपको कुछ मिनट निकालने हैं और आपका जो है, देखिए ये ध्यान जो है आपको केंद्रित करना है और उसके बाद आपको शुरू करना है अपना योग, क्योंकि योग से अगर आप जुड़ जाते हैं तो बस आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं और आप देखेंगे, देखिए आपकी ज़िंदगी जो है ना, बिल्कुल एक नया मोड़ ले लेगी, एक बैलेंस जो है आ जाएगा, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ इससे बन जाएगी। तो चलिए, योग जो है ये इम्पॉर्टेंट है, योगा इम्पॉर्टेंट है, पोस्चर कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, योगा आसन कितने ज़रूरी है, कौन कौन से योगा आसन करने चाहिए, ये सारी बातें आपके साथ ज़रूर करूँगी। लेकिन फिलहाल अभी लेती हुए छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनवरेज 7.8 एफएम सुन रहे हैं। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, बहुत सारी बातों के साथ मैं आ जाती हूं यहां पर आपके पास। और प्रोग्राम रिचार्ज मॉर्निंग में टाइम चल रहा है हमारे खूबसूरत से सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज का, जिसमें बात करती हूँ योगा के बारे में। जी हाँ, देखिए योगा जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और योगा जो है एक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। अब बात करते हैं हम एक ऐसे योगिक प्रैक्टिस की जिसने ना सिर्फ इंडिया को बल्कि वर्ल्ड हेल्थ मैप पर अपने आप को प्लेस किया है। एक ऐसी योगिक ये प्रैक्टिस है। जी हाँ, ये देखिए ऐसा ज़रूरी है कि आप इसे ज़रूर करें, इससे जो है आपकी एनर्जी जो है ये बरकरार रहती है। और आज मैं बात कर रही हूँ सूर्य नमस्कार यानी कि सन सैल्यूटेशन की। सूर्य नमस्कार एक पूरा बॉडी वर्कआउट है, बिना किसी मशीन के इसे किया जाता है। जी हाँ, किसी चीज की हेल्प की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। 12 स्टेप्स में ये जो योगिक प्रैक्टिस है यानी कि सूर्य नमस्कार जो है ये डिवाइडेड है, और साथ ही ये आसन जो है ये ना सिर्फ आपकी बॉडी को स्ट्रेच करता है बल्कि आपके माइंड ब्रेन साथ ही आपके ब्रेथ को और सोल को भी एक बैलेंस में लाता है। जी हाँ, तो चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे अब किस तरह से इसे किया जाता है, यानी कि इसके कौन कौन से जो है, देखिए इसमें अलग अलग क्योंकि डिवाइडेड है, 12 अलग अलग पोजेज में ये डिवाइडेड है। तो अब बात करते हैं क्योंकि स्टेप्स जो है इसके 12 स्टेप है। पहला स्टेप है प्राणायाम यानी कि प्रेयर पोज। सीधे खड़े हो जाएं आप पहले और दोनों हाथों को जोड़ लें, अपने दोनों हाथ जो आपके चेस्ट के बिल्कुल सामने होने चाहिए। ये आता है पहला स्टेप जो है प्राणायाम आसन। और इसके बाद आता है अगला यानी कि स्टेप जो है वो है हस्ताउत्सानासन, यानी कि सांस लेते हुए दोनों हाथ जो है ऊपर आपको उठाने हैं और पीछे थोड़ा सा आपको बेंड करना है, आपकी जो कमर है वो हल्की सी बेंड होगी। अब आपको अपने हाथों को रेज करना है और पीछे की तरफ आपको बेंड करना है। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप आता है देखिए आपका जो है पादहस्तासन। अब इसमें होता है हैंड टू फुट पोज यानी कि सांस आपको छोड़नी है, आगे झुकना है और हाथ पैरों के पास लेके जानी है। इससे आपकी बॉडी जो है एक अच्छे पोस्चर मेंटेन करती है और धीरे धीरे, मैं ये मानती हूँ कि एकदम से आप जो है बहुत ज़्यादा बेंड नहीं कर पाएंगे, तो धीरे धीरे जिनकी कमर में दर्द रहता है या जिनको कोई भी ऐसी दिक्कत है कमर से जुड़ी हुई या फिर आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी में अभी दिक्कत आ रही है, तो शुरुआत में ये दिक्कत रहती है लेकिन जब आप धीरे धीरे इसे करने लगेंगे

नमस्कार। जी हाँ, इसमें क्या करना है आपको, चेस्ट, चिन और दोनों घुटने जमीन पर आपके 8 पॉइंट टच करते हैं। ये है हमारा अगला आसन। इसके बाद आ जाता है कोबरा पोज यानी कि भुजंगासन। इसके बारे में चलिए आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल अभी लेती हूँ छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ रोजाना। और साथ ही अभी फिलहाल हमारी बात चल रही है सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज में योगासन की, और आपको बता रही हूँ 12 स्टेप जो कि आते हैं सूर्य नमस्कार में। बात कर रहे हैं 7वें स्टेप की जो है भुजंगासन यानी कि कोबरा पोज। सांस लेते हुए आपको चेस्ट ऊपर उठानी है और पहले आपको लेट जाना है, उसके बाद जमीन पे, उसके बाद आपको जो है आपको चेस्ट ऊपर लेके जानी है और हाथ के सपोर्ट से आपको इस तरह से करना है। तो कोबरा पोज जो है ये मेंटेन होता है। इसके बाद आता है माउंटेन पोज यानी कि आपका जो है वो आता है पर्वतासन यानी कि हिप्स ऊपर हील नीचे इन्वर्टेड वी शेप आपको इससे बनानी होती है। जिसके बाद अश्व संचालासन एक बार फिर से हम करते हैं 9वें स्टेप में। लेग आपको लेफ्ट लेग, पहले जो है आपने देखा होगा कि हमने राइट लेग से किया था, अब लेफ्ट लेग की बारी, आगे लेके जाना है और उसके बाद आपका जो राइट लेग है वो पीछे होगा, लेफ्ट आगे होगा। और सेम जैसे कि हमने 4th स्टेप में किया था कि आपको ये फोल्ड करना है, चेस्ट ऊपर की तरफ आपको रखनी है। और ये हमारा हो गया जो नेक्स्ट स्टेप है यानी कि जो अश्व संचालासन है इसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद एक बार फिर से आ जाता है यहाँ पर, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक आसन और वो है पादहस्तनासन। दोनों पैर साथ आपको लेके आने हैं और उसके बाद झुक जाना है। ये आपके पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये आपकी फुल बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। 11वें स्टेप में हम आते हैं हत्सा उत्सानासन पे, और सांस लेते हुए आपको फिर से दोबारा से खड़े होना है और हाथ को ऊपर लेके जाने हैं। जिसके बाद आपके जो फर्स्ट स्टेप है वो एक बार फिर से आता है यानी कि जो प्राणायाम आसन है वो फिर से आता है, फिर से आपको हाथ जोड़ने हैं और यहाँ पर आप बिल्कुल शांत रहेंगे और साथ ही ग्रेटफुल भाव के साथ आपको जो है ये जो पूरा सूर्य नमस्कार है इसे ख़त्म करना है। ये सिर्फ एक, देखिए एक पूरा एक पूरा जो स्टेप से बनता है ना, ये पूरा ये 12 स्टेप के साथ एक सूर्य नमस्कार बनता है। और इसी में अगर आप सिर्फ ये एक आसन कर लेते हैं ना, मानो जैसे आपने पूरे योगासन जो है आपने कर लिए हैं, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है वो ज़रूर मिलेगा। इसके कुछ बहुत ही बेहतरीन अगर मैं आपको बेनिफिट्स बताऊँ तो ये बॉडी का एक कम्प्लीट वर्कआउट है। लेग्स, आर्म्स, बैक, चेस्ट सब जो है इंगेज होता है। इससे आपकी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, पोस्चर और साथ ही कोर स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होती है। सांस के फ्लो के साथ मूवमेंट होता है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है हमारे लंग्स के लिए और हमारे ब्रीदिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। और जिनको बॉडी टोन करनी है ना अपनी, यानी कि टोनिंग आपको करनी है, आपकी स्किन टोन अच्छी होनी चाहिए, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। माइंड को ये शांति और क्लैरिटी देता है, स्ट्रेस से दूर करता है और एनर्जी देता है भरपूर मात्रा में। आपके डाइजेशन को बूस्ट करता है, स्ट्रेंथ को आपको बढ़ाता है और इम्यूनिटी देता है। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात यह है कि रोज़ाना अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपका दिन पॉजिटिव रहता है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद हम करेंगे और भी बहुत सारी बातें, क्योंकि अब टाइम जो है ये हो चला है अगले सेगमेंट का। कौन सा है अगला सेगमेंट बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कमाल के गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।
1: चिमारू विंटेज के सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ हर दिन, यानी कि डेली आपके साथ 2 घंटे यहाँ रहती हूँ, बहुत सारी करती हूँ बातें। फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं क्योंकि अब हमारे अगले सेगमेंट का टाइम है। सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद साक्षी। जी हाँ, पावर प्ले विद आरजे साक्षी में हम करते हैं बहुत सारी बातें स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई, बहुत सारी स्पोर्ट्स अपडेट आपके पास लेकर के जरूर आती हूँ। अच्छा, अब एक आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही खास जानकारी आप तक पहुँचाने वाली हूँ। जी हाँ, बात मैं कर रही हूँ एक बहुत ही कमाल के मूवमेंट के बारे में, और ये एक नहीं बल्कि 2 है। सबसे पहले आता है खेलो इंडिया, और इसी के साथ साथ दूसरा है फिट इंडिया मूवमेंट। देखिए, नए भारत का ये स्पोर्टी अंदाज है, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं बल्कि एक विजन है जिससे हमारा देश एक फिट, एक्टिव और स्पोर्ट्स ओरिएंटेड सोसाइटी की तरफ बढ़ रहा है। बात करें खेलो इंडिया प्रोग्राम की, ये लॉन्च हुआ था योर 2018 में। इनिशिएट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। आजकल सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, स्पोर्ट्स भी एक प्रॉमिसिंग करियर बन चुका है, पर कई टैलेंटेड बच्चे सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज, कोचिंग या अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। इसी गैप को ब्रिज करने के लिए सरकार ने खेलो इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया। जी हाँ, खेलो इंडिया का मेन गोल है ग्रास रूट्स लेवल पर स्पोर्ट्स टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, ट्रेन करना और स्पोर्ट उनको जो है खेलने के लिए सपोर्ट करना। अब होता यह है कि स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक ये स्कीम इंश्योर करती है कि हर एक यंग एथलीट को एक प्लेटफॉर्म मिले जहां वो अपना टैलेंट दिखा सके। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि एनुअल स्पोर्ट्स डे भी किए जाते हैं, तो एनुअल खेलो इंडिया गेम्स स्कूल और यूनिवर्सिटी लेवल का नेशनल गेम्स इनको कहा गया है। इनका ये गेम्स होते हैं जहां देश भर के टैलेंटेड प्लेयर्स कम्पीट करने आते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की जाए तो सिलेक्टेड एथलीट्स को कुछ 5 लाख रुपए पर ईयर तक दिए जाते हैं एज अ स्कॉलरशिप उनको मिलते हैं, और या फिर हो सकता है कि 8 साल तक उनको ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और इक्विपमेंट्स के लिए भी दिया जाता है। जिन बच्चों में टैलेंट है वो देखिए, टैलेंट जो है कभी छुपता नहीं है, और सरकार इसीलिए ये मूवमेंट को लेके आई है ताकि जो बच्चे टैलेंटेड है वो पीछे ना रहे, हमारा देश आगे बढ़ता रहे। बात करें देखिए यहाँ पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो छोटी सिटीज और टाउन में मॉडर्न स्टेडियम और ट्रेनिंग सेंटर डेवलप किए जा रहे हैं और ज्यादा। इनफैक्ट सर्टिफाइड कोचेस, टैलेंटेड जो स्काउटिंग है और साथ ही परफॉर्मेंस एनालिसिस जैसे फीचर्स से एथलीट्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाता है। ये मूवमेंट सिर्फ मेडल जीतने तक लिमिटेड नहीं है, ये एक माइंडसेट क्रिएट करता है जिसमें हर बच्चा स्पोर्ट्स को सीरियसली जरूर लेता है। तो अगर आप में भी है ये बात तो आप भी जुड़ जाइए इस मूवमेंट के साथ। चलिए, फिलहाल आज हमने जाना है कि ये जो खेलो इंडिया मूवमेंट है ये क्या है, लेकिन इसके साथ साथ एक और मूवमेंट जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है फिट इंडिया मूवमेंट। इसमें क्या है, ये कब लॉन्च हुआ और इसे किस तरह से जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, और क्यों देना चाहिए और क्यों जरूरी है इसके साथ जुड़ना, चलिए बात करेंगे इस पे। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बातें हमारी चल रही हैं और आपको बता रही हूँ एक बहुत ही खास जानकारी आप तक पहुँचा रही हूँ। अच्छा, हम बात करें हमारे सेगमेंट पावर प्ले विद आरजे साक्षी के, इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में। अब जी हाँ, खेलो इंडिया मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से सरकार जो है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट जो है, वो हेल्प कर रही है स्टूडेंट्स की, ना सिर्फ स्कूल लेवल के बल्कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक के, कि उनका जो हिडन टैलेंट है वो हिडन ना रहे बल्कि देश के लिए वो देखिए आगे बढ़ते रहे, कोई भी चीज़ की कमी ना हो इस गैप को पूरा करने के लिए, कि उनको सही कोचिंग मिले, सही इक्विपमेंट मिले, सही जगह खेलने के लिए, ताकि वो जो है अपने टैलेंट को और ज़्यादा उभार सके और ज़्यादा जो है वो अच्छे से सीख सके। इसीलिए खेलो जो है मूवमेंट जो है वो लेकर आई। इसी के साथ साथ एक और मूवमेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, और वो है फिट इंडिया मूवमेंट। जी हाँ, फिट इंडिया मूवमेंट जो है ये 29 अगस्त 2019 यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन इसे लॉन्च किया गया, और ये इनिशिएट किया था हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज के देखिए जो फास्ट बेस्ड लाइफस्टाइल है, इसमें फिटनेस एक लग्जरी नहीं, नेसेसिटी बन चुकी है, और इसी थॉट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया फिट इंडिया मूवमेंट। इनफैक्ट देखिए, इस मूवमेंट के लिए पीएम मोदी ने खुद कहा था कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। फिट इंडिया का मकसद है हर भारतीय को हेल्थ और वेलनेस के प्रति अवेयर बनाना, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर कोई ऑफिस गोइंग या कोई रिटायर अगर हो चुके हैं। क्योंकि अक्सर होता है ना कि भाई हम ये सोचते हैं कि खेल कूद वाली बात है तो सिर्फ बच्चों को ही करना चाहिए, हम बच्चों को आगे कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। चाहे आप ऑफिस जाते हैं, चाहे आप घर में हैं, चाहे जो आप हाउसवाइफ हैं, होम मेकर हैं, या फिर आप रिटायर हो चुके हैं, हर किसी को फिटनेस जो है ये ज़रूरी है उन्हीं के लिए, और ये नेसेसिटी हमारी, कोई ये जो है लग्जरी नहीं है, ये हमारी ज़रूरत जो है अब बन चुकी है। अब बात करें इस मूवमेंट के गोल की, तो देखिए फिजिकल फिटनेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, रोज़ाना एक्सरसाइज, योगा, साइकिलिंग और वॉकिंग जैसी डेली हैबिट्स को इंकरेज करना, मेंटल वेलनेस के प्रति थोड़ा सा और सजग होना यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन और हेल्दी रूटीन प्रमोट किए जाते हैं इसी मूवमेंट के अंदर। इनफैक्ट स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिस और मिनिस्ट्रीज सभी को फिट इंडिया सर्टिफाइड जो है बनाया जा रहा है, जहां रेगुलर फिटनेस एक्टिविटीज कंपलसरी कर दी गई हैं। फिट इंडिया मोबाइल ऐप और फिटनेस स्कोर ट्रैकर जैसे टूल्स भी जो है वो लोगों को डिजिटली एक्टिव बनाए रखते हैं। आज हर स्कूल में फिटनेस वीक्स और हर ऑफिस में वेलनेस ब्रेक और साथ ही हर मोहल्ले में मॉर्निंग वॉक क्लब शुरू हो गए हैं। फिट इंडिया अब एक मूवमेंट से ज्यादा एक लाइफस्टाइल जो है ये बन चुका है। जब हर गली में फुटबॉल घूमेगा, जब हर बच्चा योगा करेगा, जब हर स्कूल में एक खिलाड़ी पैदा होगा, तभी तो इंडिया ट्रूली बनेगा फिट भी और हिट भी। चलिए, इसी के साथ ये तो बात रही हमारे आज के सेगमेंट में। देखिए स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं, और ये दोनों ही चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना, इस मूवमेंट के बारे में पता होना स्पोर्ट्स के बारे में। और क्योंकि देखिए यही जो स्पोर्ट्स है ना, पहले कहा जाता था खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन आजकल ये दोनों ही ज़रूरी है। यानी कि अगर आप खेल कूद करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, अपने फोकस उस पर भी रखते हैं, तो दोनों ही चीज़ें हमारे लिए अच्छे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जो अगर अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं तो यही एक करियर ऑप्शन है, बल्कि अब करियर ऑप्शन आपका स्पोर्ट्स में भी है। और इसीलिए सरकार जो है ऐसे कुछ मूवमेंट्स लेकर के आ रही है आपके पास, ताकि आप फिट भी रहे और हिट भी। चलिए इसी के साथ लेती हूँ अब एक छोटा सा ब्रेक, आगे और भी होंगी बहुत सारी बातें, एक बहुत ही खास सेगमेंट जो कि आपके लिए लेकर के आ जाती हूँ, और सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद। तो चलिए जल्दी से अपने मोबाइल फोन्स रखिए तैयार, क्योंकि मैं पूछने वाली हूँ आपसे सवाल, कुछ सवालों के जवाब आप देंगे, और उसके बाद आपको बताने वाली हूँ कि क्या ट्रिक है इसमें, यानी कि कैसे सवाल होने वाले हैं और इससे क्या फायदा आपको मिलने वाला है। बात करेंगे इस पर, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। जी हाँ, बातें हमारी चल रही हैं और अभी बात करें हमारे अगले सेगमेंट की, जो कि है बहुत ही ज्यादा कमाल का। जी हाँ, बात कर रही हूँ हमारे अगले सेगमेंट कौन बनेगा सेहतमंद की। और इस सेगमेंट में आपसे पूछती हूँ कुछ सवाल और आपको दे रही है कुछ जवाब। और जी हाँ, जिसके सवालों के जवाब सही रहे और पूरे महीने आप कंसिस्टेंट होके जवाब देते हैं और सही जवाब देते हैं, तो देखिए मैं आपको बुलाने वाली हूँ रेडियो मानव रचना और आपको मौका मिलेगा यहाँ रह के मेरे साथ लाइव बातचीत करने का और सभी आरजे से मिलने का भी। चलिए इसी के साथ साथ यहाँ पर आज का क्या है पहला सवाल ये आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले भाई रेडी होने का भी वक्त देना होगा, बिल्कुल देना होगा, क्योंकि आपके मैसेजेस आ जाते हैं कि साक्षी पहले बता तो दो। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अब शुरू होने वाला है हमारे सेगमेंट का पहला सवाल आने वाला है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, feel live।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। और देखिए, अब मैं आपके साथ रहती हूँ 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना, और होती हैं हमारी बहुत सारी बातें। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि मैं ना अब ये सेगमेंट्स लेकर आती हूँ आपके लिए। जी हाँ, हमारे पहले सेगमेंट में हम बात करते हैं दिल धड़कने दो, ये हमारा पहला सेगमेंट है जिसमें हम बात करते हैं हेल्थ और फिटनेस की। और उसके बाद आता है स्ट्रेच प्लीज सेगमेंट, जिसमें हम बात करते हैं योगा की, मेडिटेशन की। और फिर आ जाता है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की। और इसी के साथ साथ आ जाता है हमारा आखिरी, जो कि है कौन बनेगा सेहतमंद। और इसमें हम बात करते हैं इंटरेस्टिंग क्विज, आपसे सवाल जो है वो आपसे पूछती हूँ मैं, और जवाब आपको देने होते हैं फटाफट। और जो देगा सही जवाब हर महीने कंसिस्टेंट रोके और बिल्कुल सही जवाब देगा, उसको मिलेगा मौका यहाँ मेरे साथ लाइव बातचीत करने का, रेडियो मानव रचना आने का, और साथ ही सभी आरजे से मिलने का भी। इसी के साथ साथ फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं, पहला सवाल आपसे पूछती हूँ, और बड़ा ही वैसे तो आसान सा सवाल है, लेकिन ज़रा ध्यान से सुनिएगा आप और इसका जवाब जो है वो दीजिएगा, क्योंकि सवालों के जवाब ना बहुत ही आसान है और आप आसानी से दे भी देंगे। पहेली है बड़ी आसान सी, और पहेली है रंग नहीं स्वाद नहीं फिर भी सबसे जरूरी मैं, ना रहूं तो प्यास तड़पाती है, शरीर का 70% हिस्सा हूं मैं, बताओ कौन हूं मैं। चलिए, ये है आपकी पहेली और इसका देना है आपको जवाब, और जल्दी से झटपट से दीजिए जवाब, क्योंकि आपके जवाबों का इंतजार मुझे है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, बड़ी आसान सी आज मैंने पहेली पूछी है, आपको फटाफट से जवाब देना है। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। इसी के साथ एक बार फिर से पहेली मैं दोहरा देती हूँ, रंग नहीं स्वाद नहीं फिर भी सबसे जरूरी मैं, ना रहूं तो प्यास तड़पाती है, शरीर का 70% हिस्सा हूं मैं, बताओ कौन हूं मैं। तो जल्दी से झटपट से इसका जवाब देंगे आप, और उसके बाद आपको बताने वाली हूं क्यों है ये इतना जरूरी। चलिए बात करेंगे इस पे, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में करते हैं हम बहुत सारी बातें. फिलहाल बात करें हमारे सेगमेंट कौन बनेगा सेहतमंद में. एक बहुत ही खास पहेली मैंने आपसे पूछी है, बड़ी आसान सी पहेली, मतलब इस पहेली में ना जवाब है. अच्छा मैं आपको बता दूँ कि एक बार पहेली मैं दोहरा देती हूँ और उसके बाद आप देखिए जल्दी जल्दी जो जवाब आया ना, जिसको सबसे पहले जवाब आया वो भी आपको जरूर बताऊंगी. पहेली है, रंग नहीं स्वाद नहीं फिर भी सबसे जरूरी मैं, ना रहूं तो प्यास तड़पाती है, शरीर का 70% हिस्सा हूं मैं, बताओ कौन हूं मैं. तो देखिए इसका जो जवाब है ना इसी पहेली के अंदर है. भाई देखिए प्यास जो है ये बहुत ज्यादा हमें लगती है गर्मी के इस मौसम में, और आपको भी ये पहेली सुन के तो लगी गई होगी. जी हाँ, बॉडी का यानी कि हमारे शरीर का 70% पानी जो है ना यही हमारी बॉडी में होता है. जवाब है पानी जो कि है इसका सही जवाब. और जिस जिसने मुझे जवाब दिए हैं, देखिए पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आप मुझे फटाफट से जवाब भेजते हैं. अब देखिए किसी ने कुछ लिखा है तो किसी ने कुछ लिखा है. किसी ने लिख के दिया है कि हमारी बॉडी में 70% खून होता है, तो किसी ने लिख के दिया है कि पानी होता है. तो वही जिस जिसने पानी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है. और साथ ही साथ जो सबसे पहला जवाब जिसने मुझे दिया है वो और कोई नहीं, हमारी लिसनर है. जी हाँ, जिनका नाम है मोनिका जी. मोनिका जी आपका जवाब बिल्कुल सही है, सटीक है और बहुत तेजी से आपने दिया है जवाब. देखिए बहुत जल्दी जल्दी आपको अपनी उंगलियां जो है ये चलानी होगी ताकि आप फटाफट से मेरा सवालों का जो है मेरे जवाब आप दे सके, पहेली का जवाब दे सके. तो चलिए कौन बनेगा सेहतमंद में, जो हमने पहला सवाल पूछा उसका जवाब दिया हमारी लिसनर मोनिका जी ने. चलिए एक और आपसे पहेली पूछने वाली हूँ और आपको बता दूँ, देखिए पानी की हम बात करें, पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी सेहत के लिए. और आपको बता दूँ हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी है इस गर्मी के मौसम में, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है. और ऐसे में अगर आप सेहतमंद रहेंगे ना तो देखिए आप ही को फ़ायदा है इससे, और पानी पीते रहना है. और ज़रूरी नहीं है कि देखिए आप ना सिर्फ लिक्विड डाइट जो है ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पानी पीते रहे, सिर्फ पानी ही पानी आपको पीना है. नारियल पानी भी पी सकते हैं आप, जूस कोई पी सकते हैं. लिक्विड डाइट इंपॉर्टेंट होती है अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए, लेकिन जो पानी काम करता है ना वो और कोई नहीं करता. ऐसा होता है ना कि हमें जब प्यास लगती है तो हमारी जो प्यास है सिर्फ और सिर्फ पानी ही बुझा सकते हैं. आप कितना भी कोई सॉफ्ट ड्रिंक ले लीजिए, आप कोई भी जूस ले लीजिए, लेकिन जो पानी से हमें सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है. पानी की ज़रूरत सभी को होती है, पानी ज़रूरी भी है. चलिए इसी के साथ अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर रहती हूँ आपके पास 9 बजे तक रोजाना, यानी कि अब हफ्ते के 7 दिन आपके साथ रहती हूँ मैं 7 से 9 बजे तक। बहुत सारी हो रही हमारी बातें। सेगमेंट कौन बनेगा सेहतमंद में, मैं आपसे पूछ रही हूँ कुछ पहेलियों के जवाब। और देखिए, आप सही सही जवाब तो दे रहे हैं। अब अगली पहेली का वक्त हो गया है और यहाँ पर अगली हमारी पहेली है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सुबह सुबह आ जाऊं तो दिन भर ऊर्जा लाऊं, फिटनेस से मेरा नाता, बताओ क्या हूं मैं कहलाता। ये है ये पहेली और फटाफट से आपको इसका जवाब जो है वो देना है। और आपको बता दूं, मैं एक बार फिर से पहेली दोहरा देती हूं ताकि आपको ये ना लगे कि साक्षी ने पहेली तो बताई लेकिन क्या बताई, हमें याद क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि एकदम से हम भूल जाते हैं ना, कभी एकदम से हम याद करते हैं अरे क्या था, फिर एकदम से भूल जाते हैं। चलिए एक बार फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए। सुबह सुबह आ जाऊं तो दिन भर ऊर्जा लाऊं, सुबह सुबह आ जाऊं तो दिन भर ऊर्जा लाऊं, फिटनेस से है मेरा नाता, बताओ क्या हूं मैं कहलाता। अब आपको इस पहेली का देना है जवाब। मैं कर रही हूँ आपके जवाबों का इंतजार, फटाफट से दीजिए जवाब और अभी फिलहाल कहीं मत जाइए। और नंबर एक बार बता देती हूँ आपको फिर से, 8010781078। इस नंबर पे आपको देने हैं जवाब। जो सबसे पहले सटीक जवाब देते हैं, देखते कौन है वो लोग। आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

खूबसूरत कहानी जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना आपके साथ रहती हूँ। और आपको बता दूँ आपके लिए कमाल के प्यारे प्यारे सेगमेंट्स भी लेकर के आती हूँ और उसमें हम करते हैं बहुत सारी बातें। फिलहाल सेगमेंट चल रहा है हमारा कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें हम बात कर रहे हैं एक पहेली जो है मैंने आपसे पूछी है, इसका जवाब जिसने सही दिया सटीक दिया और रोजाना जो जवाब देगा 1 महीने तक रेगुलर रहकर कंसिस्टेंट रहकर उसको मौका मिलेगा हमारे रेडियो स्टेशन यानी कि रेडियो मानव रचना 107.8 FM आने का और लाइव बातचीत करने का और हमारे सभी आरजे से भी मिलने का। तो चलिए आप दीजिए पहेली का जवाब। एक बार फिर से पहेली जो है मैं दोहरा देती हूँ। सुबह सुबह आ जाऊं तो दिन भर ऊर्जा लाऊं, फिटनेस से है मेरा नाता, बताओ क्या हूं मैं कहलाता। जी हाँ, इसका जवाब आपको देना था और इसका सबसे पहले जो जवाब दिया है हमारे लिसनर बबलू जी ने जवाब दिया है। जी हाँ, बहुत सारे जवाब यहाँ पर मेरे पास आए हैं लेकिन जो सबसे पहले सटीक सही जवाब आया है वो आया है हमारे लिसनर बबलू जी का, जिन्होंने लिखा है कि ये जो है इसका नाम है व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज। बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है और ज़रूरी है एक्सरसाइज करना। ये हमेशा मैं आपसे कहती हूँ एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। ये इनफैक्ट आपकी एक अच्छी हैबिट है, अगर आप इसे रोजाना करते हैं आपकी लाइफस्टाइल जो है ये बदल जाती है। चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज मैं जिनके साथ चलने वाली हूं वो हैं धीरज कुमार चौबे, जो कि मेंबर ट्रस्टी हैं गोकुटीर सेवा समिति फरीदाबाद। ये खास कार्यक्रम है और इस खास कार्यक्रम में मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ जिन्हें मैं कहती हूँ अनसंग हीरोज ऑफ द सोसाइटी। अनसंग हीरोज इसलिए क्योंकि ये हीरोज हैं, लेकिन इनकी जो कहानी है वो कोई भी नहीं गा रहा है, और इसीलिए ये बहुत खूबसूरत मानवता का काम कर रहे हैं और उसकी एक्नॉलेजमेंट काफी जरूरी है। सो आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि गौ कुटीर सेवा समिति फरीदाबाद किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से पूरी टीम हमारे पूरे फरीदाबाद शहर में अलग अलग एरियाज में फंक्शन कर रही है और ये क्या करते हैं। लेकिन इन सारी चीजों के लिए हम सबसे पहले स्वागत करेंगे धीरज कुमार चौबे जी का रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
1: थैंक यू सो मच मैम।
0: धीरज, आप मेंबर ट्रस्टी हैं गौ कुटीर सेवा समिति फरीदाबाद के। मुझे बताइए गौ कुटीर सेवा समिति फरीदाबाद की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि जब कभी भी किसी एनजीओ की शुरुआत की बात होती है तो हमेशा हमने देखा है कि उसके पीछे कोई एक कहानी जरूर होती है कि क्या चीज ऐसी आपके दिल को छुई कि आपको लगा कि आइंदा से मैं इस चीज में काम करूंगा, या मैं इस समाज के इस कुरीति को कम करूंगा, दूर करूंगा, या मैं समाज के इस वर्ग के लिए काम करूंगा।
1: सबसे पहले तो इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आपका सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि एज ए डॉग लवर जब मैं किसी संस्था के पास जाता था स्ट्रे डॉग को ट्रीट कराने के लिए, क्योंकि जिन डॉग्स को मैं फीड कराता था और उन्हें कभी बीमार हुए तो मैं लेके जाता था
0: जी,
1: तो मैं संस्थाओं में देखता था कि जो मिडिल क्लास लोअर क्लास के लोग हैं
0: जी,
1: जो डॉग्स को जैसे तैसे करके लेकर आए अपने कन्वेन से
0: जी,
1: उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कंटिन्यू हफ्ते 10 दिन। उन सबसे बड़ी जो समस्या आती थी मिडिल क्लास लोअर क्लास लोगों के लिए वो बोर्डिंग की आती थी, क्योंकि वो नॉन अफोर्डेबल थे
0: जी,
1: और संस्थाएं उनको एक्सेप्ट करने में, उनको रखने में कहीं ना कहीं वो इंटरेस्टेड नहीं थे
0: जी।
1: और मेरे सामने में कई ऐसे एनिमल्स डेथ कर गए जो डॉग लवर्स को मैं बड़ा उदास देखता था, वो रो करके भी जाते थे
0: जी।
1: तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना हम इसके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट बोर्डिंग शुरू करें
0: जी,
1: जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट 100% निःशुल्क बोर्डिंग हो, 100% उनको फ्री फूड मिले, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस सर्विसेज मिले। इसके लिए हमने कुछ डॉग लवर से कांटेक्ट किया और
0: जी,
1: कुछ महिलाओं ने तैयार हुई जो जेन्युइन डॉग लवर हैं
0: जी,
1: जो हमारी संस्था के जो ट्रस्टी हैं डॉक्टर रेखा जेटली
0: जी,
1: वो एमरल्ड कन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल हैं
0: जी।
1: उनका और बाकी सभी मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, उन लोगों ने इस शुरुआती में उसमें अपना योगदान दिया, साथ दिया, फिर हम साथ मिलकर एक संस्था बनाए जिसका नाम है गौ कुटीर सेवा समिति फरीदाबाद।
0: और धीरे जिसकी शुरुआत कौन से साल में हुई?
1: इसकी शुरुआत 2024 में हुई है
0: जी
1: जी। तो उसके बाद से कंटिन्यूस हम फ्री ऑफ कॉस्ट बोर्डिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट फूड और फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं
0: जी,
1: जो हमारा महीने का 72-110 के बीच में जो घायल बीमार डॉग्स, जो बोर्डिंग, जो नॉन अफोर्डेबल डॉग लवर्स हैं
0: जी,
1: उनके लिए हम फ्री बोर्डिंग प्रोवाइड कराते हैं फ्री में। अगर मान लीजिए 10 दिन तक अगर कोई बीमार है डॉग्स
0: जी,
1: उसको अगर कंटिन्यू डॉक्टर के यहाँ ले जाना है, तो हमने 2-3 फरीदाबाद के पेट डॉग डॉक्टर हैं उनसे हमने टाई अप किया है कि जेन्युइन रेट पे, कई सारी दवाइयाँ बहुत महंगी आती हैं, दवाइयाँ हम खरीद के आपको देंगे, अगर आपका 500 रुपये वन टाइम विजिट पे जो चार्जेस है वो 200 रुपये हमसे लीजिए
0: जी,
1: दवाइयाँ हम खरीद के लाएंगे सस्ते पे अच्छी क्वालिटी के, और आप उसको दीजिए, ट्रीट कीजिए। तो सारे डॉक्टर तो नहीं, कुछ डॉक्टर एग्री हुए
0: पहल में आपके साथ
1: जुड़े और वो मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। वो आज भी कभी हमसे इरिटेट नहीं हुए, कभी हमसे चिड़चिड़े नहीं होते, कभी पैसों के लिए नहीं वो क्या जब वो किया, और आज वो निरंतर साथ दे रहे हैं अपने प्रोफेशन के साथ साथ, वो एक इंसानियत दिखाते हैं। मैं अगर आप चाहें तो मैं उनका नाम ले सकता हूँ, डॉक्टर सुनील पेडिक्योर क्लिनिक, और एक है कैपिटल वेस्ट डॉक्टर राहुल पांडे
0: जी,
1: इन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है अगर आज मेरी संस्था इतना अच्छा काम कर रही है, या फिर हम फ्री ऑफ कॉस्ट बोर्डिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट फूड, फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस और फ्री ऑफ कम से कम पैसों में ट्रीटमेंट अगर हम करा पा रहे हैं, तो इन दो डॉक्टरों का बहुत योगदान है।
0: देखिए दोस्तों, मैं अगर बात करूँ गौ कुटीर सेवा समिति फरीदाबाद की, सो इसके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोचा कि जब कभी भी हम किसी भी एनिमल के रेस्क्यू की बात करते हैं, मान लीजिए कि आप सड़क पर खड़े हैं और आपने देखा कि आपकी गली का कोई एक कुत्ता है जो कि शायद बीमार है, या कोई ऐसा जानवर है जिसे कोई परेशानी है, अब आपकी ममता जागी, आपको महसूस हुआ, आपको लगा कि मैं इंसान हूँ, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अब मदद करने में अगर आपको कोई कहे कि जी मैं पहले आने का आपसे 2-4-5 हज़ार रुपया लूँगा और फिर उसे ठीक करने का आपको पैसा देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक भावना जागेगी कि भाई इतना पैसा मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान कैसे दे सकता हूँ, या मैं अगर गरीब तबके का हूँ तो मैं कैसे दे सकता हूँ। सो क्या किसी भी संस्था के पास बिना पैसे दिए किसी भी प्रकार की मदद करने का प्रोविजन नहीं है? यही सोच धीरज कुमार चौबे जी को बहुत महसूस हुई और उन्होंने इस खास गौ कुटीर सेवा समिति फरीदाबाद का गठन किया। सो ये तो कहानी थी कि ये गठन कैसे हुआ, लेकिन अब पूरे फरीदाबाद में इतने सारे डॉग्स हैं और इन डॉग्स को वो कैसे प्रमोट कर रहे हैं, कैसे ये बोर्डिंग की फैसिलिटी दे पा रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लेने वाले हैं छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, आपको सुनाने वाली हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सा गाना। आप जुड़े रहना रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं धीरज कुमार चौबे जी के साथ, जो कि मेंबर ट्रस्टी हैं गौकुटी सेवा समिति फरीदाबाद के। वैसे मुझे कहना चाहिए कि होलसोल रख रखाव का काम तो धीरज जी करते हैं, क्योंकि हर शायद एनिमल से ये प्यार बहुत करते हैं। अगर मैं पशु रक्षण की बात करूं धीरज, तो एक लंबे समय से आप ये काम कर रहे हैं, 2024 से तो आपने फॉर्मली एक एनजीओ बनाकर और इस तरीके का काम शुरू किया, लेकिन पशु रक्षण का काम एक लंबे समय से आप कर रहे हैं, और किस तरीके से कर रहे हैं मैं ये जानना चाहूंगी।
1: देखिए, जो मेरा रख रखाव है, जो तरीका है, अभी बहुत हाईटेक तरीका तो नहीं है, बट एक सिंपल है। जैसे कोई डॉग एक्सीडेंट हुआ, उसकी कमर टूट गई या उसका पैर टूट गया, उसका हाईटेक रख रखाव तो हो नहीं सकता है। सड़क से तो बेहतर है कि उसको हम सर्जरी कराएं या पट्टी कराएं, फिर उसको एक अच्छी केयर दें, टाइम से खाना दें, टाइम से दवाइयां दें, जब तक वो रिकवर नहीं होता। क्योंकि जल्दी इसलिए भी होती है कि जल्दी से ठीक करके वापस उसके लोकेशन पे छोड़ा जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी तो उनके साथ के डॉग्स ही उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि अगर कोई डॉग्स को 2-3 महीने आपने अपने शेल्टर में रख लिया, आपकी कमियों की वजह से आपने टाइम से दवाई नहीं दिया, टाइम से देख रेख नहीं किया, या फिर उसकी पट्टी सर्जरी सही से नहीं हुई
0: जी,
1: तो उनके साथ वाले डॉग्स ही उनको फिर नेग्लेक्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते
0: जी।
1: तो वहाँ हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो जाता है कि फिर अब इस डॉग को परमानेंट शेल्टर रखा जाए, और शेल्टर में जो बीमार घायल डॉग्स आते हैं उनसे इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो अभी जैसे भी हम रख रखाव जो है वो सिंपल है और बहुत अच्छा है, जितना बेहतर कर सकता हूँ मैं उतना मैं बेहतर किया हुआ है
0: जी। सो देखिए भाई, अगर आपके पास कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप कहीं पर भी जा रहे हैं या आप कहीं पर रहते हैं फरीदाबाद शहर में, और ऐसे इस हमारे शहर में कई बार ऐसा होता है, इनफैक्ट मेरे साथ तो ये इतनी बार ऐसा होता है कि लोग मुझे फ़ोन करके अक्सर ये कहते हैं कि मैम यहाँ पर एक इस तरीके की पशु है या कोई डॉग है, इसे रेस्क्यू करवाना है, और मैं ऐसी शायद एक दिन में 4 या 5 कॉल्स ज़रूर लेती हूँ। इट्स वेरी ऑब्वियस, बट होता क्या है कि लोग ये जानकारी लेना चाहते हैं कि हम ऐसे में क्या करें। सो क्या करें का जवाब ये होता है कि हमारे पास अलग अलग किस्म के डॉग शेल्टर्स हैं, जो हमारे पूरे फरीदाबाद शहर में अलग अलग एनजीओस के साथ रजिस्टर्ड हैं और वो ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन बहुत से एनजीओस के साथ ऑपरेट करने वाले डॉग शेल्टर्स जो हैं, इन शेल्टर्स या बोर्डिंग हाउसेस के एक चार्ज होता है, एक मिनिमम पैसा आपको देना पड़ता है। बट अगर आप एक फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा में जुड़ना चाहते हैं, सो आप और कुछ नहीं, गौकुटीर सेवा समिति फरीदाबाद के साथ जुड़ सकते हैं, और आप किसी भी प्रकार के डॉग को अगर रेफर करना चाहते हैं या रेस्क्यू करवाना चाहते हैं, सो कुछ समय के लिए वो वहां पर रह सकता है। सो ये प्रोविजन है कि किस प्रकार से गौकुटीर सेवा समिति फरीदाबाद फंक्शन करती है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, एक बेहतरीन सा गाना और वापस लौट कर यहीं आना। फील गुड, फील लाइक।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं धीरज कुमार चौबे जी के साथ, जो कि मेंबर ट्रस्टी हैं गोखुटीर सेवा समिति फरीदाबाद के। धीरज, अब अगला सवाल आपसे ये कि हमारा रेडियो जो है ये दिल्ली NCR में सुना जाता है, तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि वो कहाँ कहाँ से डॉग्स को रेस्क्यू करवा सकते हैं। सो क्या आप पूरे फरीदाबाद में ये काम करते हैं, और अगर हाँ तो प्रोसीजर क्या होता है? क्या कोई आपको फोन करे? अगर फोन करे उसके बाद वो क्या दे आपको लोकेशन डिटेल्स, किस प्रकार से कैसे रेस्क्यू करते हैं, कैसे वापस पहुंचाते हैं, और कोई मिनिमम चार्जेस नहीं है तो ये ऑपरेशन होता कैसे है?
1: जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये मुझे लगता है ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये आम जनता का जो डॉग लवर हैं, जो नहीं भी हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है संस्थाओं की, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारी संस्था जो है वो नीम का विलेज के पास है
0: जी,
1: नीम का तिगांव मास्टर रोड पे है
0: जी,
1: सेक्टर 72 पड़ेगा। हम बदरपुर से लेकर बल्लभगढ़ तक हमारा एरिया है
0: जी।
1: हम फ्री होते हैं, कहीं से भी कॉल आए
0: जी
1: हम उसको रेस्क्यू करते ही करते हैं
0: जी।
1: आपको एक चीज़ और मैं बीच में समझाना चाहूँगा, आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर जो डॉग लवर हैं वो अफोर्डेबल हैं, और जो अफोर्डेबल डॉग लवर्स हैं वो प्राइवेट, वो दिखाते भी प्राइवेट हैं, और प्राइवेट पेड बोर्डिंग में, डे बोर्डिंग में वो रखरखाव भी करते हैं
0: जी।
1: ज़्यादातर संस्थाएँ जो हैं वो ये करती हैं कि सभी, जैसे एक मिडिल क्लास लोअर क्लास कोई अगर है, मान लीजिए कोई ऑफिस जा रहा है और एक जेन्युइन डॉग लवर है, इंसानियत के नाते वो कई संस्थाओं को कॉल किया रुक करके, एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार है डॉग्स, तो संस्थाएं नकार देती हैं। इसका रीज़न ये है कि संस्थाओं के पास लिमिटेड स्पेस है
0: जी,
1: और चुनिंदा लोगों को आप एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ ही लोगों के अगर रेफरेंस से या सोर्सेज से अगर वहाँ उनके तक बात पहुँचती है
0: जी,
1: तो वो अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, अदरवाइज नहीं
0: जी।
1: तो मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि हमारी जो संस्था है वो हमारे पास बिल्कुल नॉन अफोर्डेबल लोग
0: जी
1: आते हैं। इसमें फरीदाबाद की कई सारी संस्थाएं हैं जिनके पास वो ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। जब वोडिंग की बात आती है तो लोग मेरा नंबर देते हैं, और मैं वेरी हैप्पी कि वो लोग मुझे इस लायक समझते हैं। और कई बार उन संस्थाओं में सर्जरी होती है, और जब तक वो ठीक होते हैं वो हमारे फ्री, जो रिकवरी का टाइम है उनका हमारे शेल्टर पे होता है
0: जी।
1: तो ज़्यादातर हमारे पास जो कॉल्स आते हैं वो नॉन अफोर्डेबल लोगों के आते हैं, इसलिए मैं उनका कॉल सबसे पहले प्रेफर करता हूँ, मैं उनका कॉल पहले लेता हूँ
0: जी।
1: क्योंकि ज़्यादातर जो डॉग लवर हैं फरीदाबाद ही नहीं पूरे इंडिया में, वो लोग पेट जो डे बोर्डिंग है वहीं पे प्रेफर करते हैं।
0: ओब्वियसली
1: जी।
0: सो अगर देखिए आपका पेट है तो आपको किसी संस्था के पास जाने की जरूरत नहीं है,
1: नहीं, मैं
0: क्योंकि वो जो संस्था है वो तो स्ट्रीट डॉग्स के लिए काम कर रही है। अब मैं अगर स्ट्रीट डॉग की बात करती हूँ, और आप बात कर रहे हैं कि हम जब स्ट्रीट डॉग को उठाते हैं, सो उसका धीरज प्रोसीजर क्या होता है? मान लीजिए आपने, आपको किसी ने कॉल किया
1: जी,
0: सो कॉल करने के बाद कितने समय में आप उस डॉग को रेस्क्यू करवा लेते हैं, और फिर कितने दिन लगते हैं, और फिर क्या डॉग को आप वापस उसी के हैबिटेट पर छोड़ते हैं?
1: जी मैम, अगर हमें कोई कॉल करता है तो सबसे पहले हम उनसे लोकेशन और एक वीडियो मांगते हैं, वीडियो नहीं है तो फोटो। रीज़न, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग कुछ ऐसे भी डॉग लवर नहीं है, बट उनको लगता है कि यार ये डॉग बड़ा भौंक रहा है, बड़ा काट रहा है, तो फिर इसलिए भी कॉल कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले लोकेशन और एक वीडियो चाहिए होता है, ताकि हम देख भी पाते हैं कि अगर हम इमरजेंसी है, काफ़ी इमरजेंसी है, तो फटाफट क्विकली निकल जाए। अगर मान लीजिए तो किसी को मैगट्स बोंड है और वो डॉग वहीं पर रहता है, हम पूरा पता कर लेते हैं कि अगर डॉग वहीं का है, वहीं रहता है, तो हम एक घंटे बाद में भी, अब जैसे मैं किसी डॉक्टर के यहाँ ट्रीट करा रहा हूँ, किसी का कॉल आया कि काफ़ी मैगट्स बोंड वाला एक डॉग है जी, ये कहीं से आ गया है, तो ऐसे केसेस में फिर हम लोकेशन लेते ही, हम वीडियो भेजे ना भेजे करंट लोकेशन मंगाते हैं, और प्रयास करते हैं जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। और ऐसे जो डॉग्स हैं, कुछ बीमारियां हैं, अब जैसे मैगट्स बोंड है, अगर छोटा मैगट्स बोंड है 15 दिन में वो हील हो जाता है, अगर आप अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ दे रहे हैं, टाइमली दवाइयाँ दे रहे हैं, तो वो 10 से 15 दिन में रिकवर हो जाता है। अगर वही कोई फ्रैक्चर है, सपोज कीजिए उसकी सर्जरी हुई है, तो 1 मंथ लग जाता है। अगर किसी डॉग को माइनर फ्रैक्चर है, अगर हमें पट्टी प्लास्टर या फाइबर कास्ट प्लास्टर अगर हमने कराया है, तो वो मुश्किल से 20 दिन में रिकवर हो जाता है। तो हमें भी, जो मैं पहले ही बताया आपको कि जल्दी होती है कि रिकवर होते ही इनको वापस जगह पे छोड़ें
0: जी।
1: मेरा एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी समय लग गया मैं भी गलतियों से सीखा
0: जी,
1: कि जब भी हम स्ट्रे डॉग उठाते हैं हम डॉग को फ्रेश फूड देते हैं। डॉग्स जब बाहर, स्ट्रे डॉग जब बाहर खाता है, कई बार वो इन्फेक्टेड चीज़ें खाता है, तो उसकी डिवर्मिंग ऑटोमेटिक हो जाती है
0: जी।
1: ठीक है, जब हम डॉग्स को उठा के ले जाके एक लंबे समय तक रखते हैं, 10 दिन 15 दिन 1 महीने, तो डॉग्स को हम डीवर्मिंग नहीं कराते हैं टाइम से
0: जी।
1: कई बार डॉग बड़ा कमज़ोर हो जाता था, तो मेरी डॉक्टर से शिकायत होती थी कि सर मैं क्या करूँ, इतना अच्छा खाना दे रहा हूँ, इतनी अच्छी मतलब अच्छे क्वालिटी का खाना दे रहा हूँ, अच्छा खाना प्रोवाइड करा रहा हूँ, विटामिन प्रोटीन सब इनको मिल रहा है, दवाइयाँ भी अच्छी मिल रही हैं। फिर तो बड़े एक डॉक्टर समझाए हमें कि आप इनकी डीवर्मिंग टाइम से करो, जैसे आपके आते हैं इनकी डीवर्मिंग टाइम से करो। तो कई बार ऐसे भी होता है कि संस्थाओं में हमने भेज दिया
0: जी,
1: उसकी अच्छे से केयर नहीं हो पाई, क्योंकि स्ट्रे डॉग के लिए चाहे कोई भी संस्था हो, जो संस्थाएं दावा करती हैं वो एक्चुअल में होता नहीं है धरातल पे
0: जी।
1: एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, धरातल पे जैसे आप फरीदाबाद में रहती हैं, हर संस्थाएं एक दावा करती है कि मेरे पास 24 घंटा ओपीडी सर्विसेज हैं
0: जी,
1: लेकिन सच्चाई यह है कि 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद अगर कोई कुत्ता एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार है, अगर आप खुद से ही हिम्मत करके अपनी गाड़ी में लेकर गए किसी संस्था के यहाँ, तो सच्चाई यह है कि उनके पास एक वेल ट्रेंड पैरावेट भी नहीं होता
0: जी।
1: ये बिल्कुल सच्चाई है, मैं कागजी बात नहीं, मैं धरातल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो बेजुबान है
0: जी।
1: वो आपसे आकर के नहीं बताएंगे कि देखो हमारे बारे में ये दावा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं
0: जी।
1: तो ऐसे में मैं फिर से उन डॉक्टरों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो 2 बजे रात को भी हमारे लिए उठ के आ जाते हैं वो
0: जी।
1: उनको पता है मैं, और ऐसा नहीं कि मैं उनको कुछ ज़्यादा पैसे दे देता हूँ, कई बार पैसे देता भी नहीं हूँ कि डॉक्टर साहब अभी लेके नहीं आया, नहीं आया, और वो अपनी इंसानियत के नाते वो आते भी हैं, उनको ट्रीट भी करते हैं। मेरा मानना है अगर महीने में अगर 10 भी ऐसे डॉग का हमने जान बचा लिया, तो मेरे संस्था खोलने का या संस्था चलाने मेरा सार्थक हो गया।
0: सो भाई देखिए, अगर आप इस पूरी बातों को सुन रहे हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो पूरी प्रोसेस है ना, ये एक पूरी प्रोसेस है तो मेटिक्यूलस, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कितनी इमरजेंसी है, साथ के साथ कहाँ पहुँचना है, क्या उसके लिए हमारे पास वेट और साथ के साथ रेस्क्यू करने वाले लोग और व्हीकल अवेलेबल है या नहीं, और ये सारी चीज़ें अगर हो तो उसके बाद पहुँचने का समय। सो कई बार आपने देखा होगा कि लोग ये कहते हैं हमने संस्था में कॉल किया लेकिन वो समय पर आए नहीं। सो ये भी कुछ परेशानियां हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस हैं आई एम श्योर जो कि अक्सर ये फेस करते होंगे। पूछूंगी उसके बारे में, लेकिन उससे पहले लेंगे हम एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आज मानवता की राह पर हम चल रहे हैं धीरज कुमार चौबे जी के साथ, जो मेंबर ट्रस्टी हैं गोकुटीर सेवा समिति फरीदाबाद से। धीरज, अब एक बड़ा अहम सवाल हमारे, अगर हम पूरे फरीदाबाद शहर में ही देखें तो मैं ये देखूंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पशुओं से प्यार है। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई नफरत है, उनकी गली में अगर कोई कुत्ता है या डॉग है तो वो उसको आते जाते कोशिश करेंगे कि कभी खाना दे दें। कई बार तो बहुत सारे लोग हैं जो बिस्किट्स भी खिलाते हैं, दूध भी पिलाते हैं, चावल ब्रेड सुबह शाम का अरेंजमेंट करते हैं। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहती हूँ कि जब कभी भी हम इन पेट्स को रखने की या इनके रख रखाव की बात करते हैं तो अपने आप में ये बड़ा कठिन होता है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि भाई ये संस्था का काम है, क्योंकि इसके लिए आपने एक जिम्मेदारी लिया, आपने एक संस्था चलाई है। सो क्या एक आम नागरिक भी इसमें कुछ मदद कर सकता है, और अगर हाँ तो कैसे, क्या भूमिका निभा सकता है एक आम नागरिक?
1: जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मैं एक चीज बताऊं कि आजकल डॉग का जो समस्या है वो एक्चुअली समस्या है नहीं, हमें थोड़ा सा अगर हम समझदारी दिखाएं तो वो समस्या हम उसी जगह खत्म कर सकते हैं।
0: जी,
1: जैसे मान लीजिए किसी सोसाइटी में डॉग्स हैं, RWA बार एसोसिएशन की गाइडलाइंस है।
0: जी,
1: RWA बार एसोसिएशन की गाइडलाइंस है कि इन साइड सोसाइटी जितने भी डॉग्स हैं उनको टाइम से वैक्सीनेट कराना, उनके लिए हर 100 से 125 मीटर पे एक फीडिंग पॉइंट्स निर्धारित करना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो ऑफिसर्स हैं उनके उनके निगरानी में उनके साथ एक उसको वहाँ पे फीडिंग पॉइंट्स निर्धारित करना, ताकि कोई भी रेसिडेंट खाना उनको दे सके।
0: जी,
1: इससे ये होगा कि जो फीडर हैं कहीं भी फीड करा देते हैं, कोई अपने घर के बाहर फीड करा देता है, ये ना हो। क्योंकि कई बार जब एज ए डॉग लवर मैं भी अगर अपने घर के सामने खाना खिला रहा हूँ तो कुछ डॉग अटेंडेंसी दिखाने के चक्कर में बेशक वो बाइट करे ना करे पर बाइट करने के लिए भागता है
0: जी
1: पीछे, ये सच्चाई है। अब समझना ये पड़ेगा कि इस चीज़ को लेकर के RWA के जो मेंबर्स हैं वो नॉलेज ही नहीं है उन्हें, और अगर नॉलेज है तो करना नहीं चाहते, वो उनके इंटरनल पॉलिटिक्स का कारण है। दूसरी बात, अगर हम एज ए डॉग लवर, एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हम किसी डॉग्स का हेल्प करना चाहते हैं तो संस्था हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिट्स गवर्नमेंट की तरफ से टेंडर दिया जाता है जिसको ABC यूनिट्स बोलते हैं, नसबंदी सेंटर, स्टेलाइजेशन सेंटर। तो एक प्रोसेस है उसका छोटा सा कि आप MCF में कॉल करें, वो आपको कॉल फॉरवर्ड करेंगे यहाँ, या अगर आप कोई RW दे रहा है तो एक आपको लिखित में देना पड़ेगा डिटेल्स कि इतने डॉग्स हमारे हैं, फीडर के साथ मिल करके उसको उठा करके नसबंदी करवा दिया जाए ताकि पॉपुलेशन ना बढ़े। और जब डॉग की सर्जरी हो जाती है तो उनका एग्रेशन कम हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि सोसाइटियों में या कहीं भी कोई डिलीवरी बॉय आ रहा है, 4-6 कुत्ते लग गए पीछे, कई बार बाइट भी कर लिया, कई बार वो गिर भी जाते हैं, कई बार बड़ी हादसाएँ भी हुई हैं। बजाय इसके सॉल्यूशन के हम लड़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और माफ़ कीजिएगा कुछ लोग मेरे बात से नाराज़ होंगे, कुछ डॉग्स लवर जो हैं वो सेल्फ एजुकेट नहीं है।
0: जी,
1: उनको ऐसा लगता है कि हम कहीं गए गाली का जो बदला है वो गाली से निकल जाएगा, किसी ने डॉग्स को हिट किया है तो हम भी उसको फिजिकली असॉल्ट कर दें, हिट कर दें तो जस्टिस मिल गया। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। आप जब काफ़ी डीपली जाएंगी तो देखेंगी कि अगर किसी को आप जा करके कोई डॉग किसी के घर के में बच्चे को डॉग बाइट कर लिया, आप जाकर उसको समझाने के बजाय, उसको ये चीज़ें बताने के बजाय, एज ए संस्था, एज ए डॉग लवर, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, ये मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी है, एक इंसानियत के नाते भी, एक संस्था चलाने के नाते भी, कि हम उन्हें चीज़ समझाएँ कि इस किसी न किसी कमी की वजह से काटा है, हो सकता है कि आपके बच्चे उसे छेड़े हों या ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज के डेट में लोगों के पास पेशेंस ही नहीं है, और इसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल का कैमरा।
0: जी,
1: क्योंकि कैमरा ऑन होते ही लोग अपना आपा खो देते हैं, उनको ये समझ ही नहीं है कि भाई हम क्या बोल रहे हैं, हमारे सामने कितने उम्र के लोग खड़े हैं। ठीक है, देखो अगर कोई एक कुत्ते को हिट करेगा वापस तो हम नहीं ला सकते ना, पर बजाय उसको समझाने के, बजाय उसके समस्या के समाधान के, हम अगर वहाँ लड़ाई कर लें तो जरा इमेजिन कीजिए कि वहाँ अगर 25 लोग या 50 लोग हों तो वो तो एक हेटर बन गए ना। लेकिन वैसे ही अगर आप जा करके आप अगर उनको समझाते हैं, वो चीज़ बताते हैं, और एज ए संस्था के संचालक आप पूरे फरीदाबाद में, मैं आपके तो पूरे दिल्ली NCR में सुना जाता है, मेरे पास 28 ऐसे डॉग थे, अभी 14 डॉग मेरे पास हैं जो सोसाइटियों के डॉग्स हैं, जो डॉग सच में वो काटते हैं,
0: वाकई
1: दौड़ते हैं, और वो कई बच्चों को काट चुके हैं। मैं प्रूफ उनसे लेता हूं पहले, और उन बच्चे को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने संस्था में 1 महीने 2 महीने रखता हूं। और मैं ट्रेंड कैसे कराता हूं भावना जी, आपको बड़ी हैरानी होगी, मेरी 3 बेटियां हैं, जो मेरी बड़ी बेटी है 7 साल की है, मैं उन 3 बच्चों से फीड करवाता हूं उसे
0: जी।
1: और मैं इतना फ्रेंडली करके भेजता हूं कि अगली बार मैं जाऊं तो जिसने मेरे को भेजा है ना, वो ये ना बोले कि इसे रिलोकेट कर दो, बल्कि उसे देखे और खुशी खुशी एक्सेप्ट करे। तो होता क्या है कि जब आप कुछ अच्छी पहल नहीं करोगे आप, तो जो डॉग हेटर हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। और आज के डेट में सबसे बड़ा कारण है डॉग लवर का ये इस तरह की हरकतें।
0: जी
1: जी।
0: सो दोस्तों देखिए भाई, एक तरफ तो मैं कहती हूँ कि कठिन क्यों है इन सबको संभालना, अपने आप में देखिए बहुत सारे चैलेंज होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो एक और बड़ी समस्या है, और वो समस्या है कि आजकल 2 पार्टियां बढ़ गई हैं, एक पार्टी है डॉग लवर्स की और दूसरी पार्टी हो गई है डॉग हेटर्स की। अब हेटर्स के बिल्कुल जायज बात है भाई, उनके परिवार के सदस्यों को या उनके परिवार के बच्चों को या किसी को भी अगर कोई खुदा ना खासा डॉग काट लेता है तो उनका नाराज होना जायज है। और जिस तरीके से हम बहुत सारी आजकल इंसिडेंट्स देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, बहुत सारे कुत्ते मिलकर उन पर अटैक कर देते हैं, सो ऐसी वीडियोज देखकर ऑटोमेटिकली बिल्कुल वाजिब है कि आपको भी ऐसा महसूस हो। लेकिन इस सब के पीछे फिर वही बात कि हम कारण जानने की कोशिश नहीं करते हैं। सो शायद कई बार ऐसा जरूरी है कि आम नागरिक के रूप में हमें बेसिक प्रॉब्लम के पीछे की जानकारी लेना जरूरी है और सॉल्यूशन निकालना जरूरी है, ना कि सिर्फ 2 कैटेगरीज में बट के झगड़ा करना। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं धीरज कुमार चौबे जी के साथ, जो कि मेंबर ट्रस्टी हैं गौ कुटीर सेवा समिति फरीदाबाद के। धीरज जी, आप मुझे ये बताइए, आपने जब से इस एनजीओ का गठन किया और जब से आप बहुत सारे डॉग्स को इस तरीके से प्यार करते आए हैं, ट्रीट करते आए हैं, चैलेंज क्या आता है, क्या लगता है, क्या परेशानी है, क्या आपको लगता है कि लोगों में अवेयरनेस की कमी है, लगता है एक्सेप्टेंस की कमी है, या आपको ऐसा लगता है कि अब आज का जो समाज है उसमें हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉग्स को प्यार भी कर रहे हैं, जानवरों को प्यार भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी हैं। अब आप देखिए ना, सड़क पर आप जा रहे हैं, आप बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और सडनली अगर आपकी गाड़ी के सामने से कोई एक डॉग निकल कर आता है और कहीं क्रॉस करता है, तो आपको स्वाभाविक है आपको नाराजगी होगी, आप ब्रेक लगाएंगे। कई बार आपकी गाड़ी में आपको ऐसा भी होता है कि आप पीछे वाली गाड़ी आकर आपसे टकरा जाती है। सो बहुत सारी चीजें हैं
1: जी। मुझे लगता है अब तक का ये सबसे अच्छा सवाल है
0: जी।
1: देखिए, चैलेंजेस कुछ नहीं आती हैं
0: जी।
1: एक तो सबसे बड़ा है, आजकल लोगों में पेशेंस नहीं है,
0: और
1: किसी भी समस्या का जो समाधान है
0: जी,
1: वो अगर आप सरल तरीके से करने चलें तो बहुत आसान है
0: जी।
1: मैं आपको बताऊं, पूरे फरीदाबाद में आप शायद पता है नहीं, मुझे नहीं पता, डॉग से की 3 बीमारियां जो हैं वो बहुत खतरनाक हैं, जिसमें 2 बीमारियां, एक तो इंसानों के लिए जानलेवा है जिसको हम रेबीज बोलते हैं
0: जी,
1: जो रेबीज वाले डॉग हैं वो इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उनका सलाइवा से लेकर के। किसी भी संस्था के पास 10x10 के एक कमरे तक नहीं है, क्योंकि रेबीज हुआ तो मरना ही मरना है, लाइलाज बीमारी है, कोई इलाज ही नहीं है उसका। तो हर संस्था को चाहिए कि एक हम कमरा ऐसा बना के रखें कि कहीं भी रेबीज का डॉग हो, उसको इमीजिएटली उठा करके उसको आइसोलेट किया जाए, ताकि इंसान और कुत्तों के साथ साथ इंसानों को भी हार्म न पहुंचे। दूसरा, कभी भी हम डॉग्स के लिए जाते हैं कहीं किसी भी तरह की हेल्प करने, तो डॉग लवर से मेरी व्यक्तिगत उनसे रिक्वेस्ट यही है कि अपने एग्रेशन को कम करके जाएं, सद्बुद्धि का प्रयोग करें, अपने शब्दों पर कंट्रोल रखें, क्योंकि गाली का समाधान गाली नहीं हो सकता,
0: ठीक है।
1: और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है जो हेटर की संख्या बढ़ती जा रही है, और जो एबीसी प्रोग्राम है उसमें गवर्नमेंट ने जो टेंडर देता है और जो भी प्राइवेट संस्थाएं लेती हैं
0: जी,
1: वो अपना काम ठीक से नहीं करती हैं। हर 5-3 साल पे टेंडर बदल जाता है, नए लोग आ जाते हैं, लेकिन प्रोग्राम वैसे का वैसे ही रहता है, 500 किया, 5000 बताया, दिखाया। तो उनका भी, उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि आपके पास डॉक्टर्स हैं, पूरी टीम है, आपके पास हर वो सुविधाएं हैं, आपके पास CSR है, प्राइवेट बड़े अच्छे अच्छे डोनर्स हैं, आपको अपनी इंसानियत जिंदा रखनी चाहिए और उसी को दिखाते हुए कम से कम अच्छा काम करना चाहिए, ताकि एक शहर में आप मिसाल बन सके। ये मेरा उन सभी संस्थाओं से रिक्वेस्ट है जो अभी हैं और जिन्हें आगे भी टेंडर मिलने वाला है, अगर वो आपके माध्यम से ये मेरी बात सुने, तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनसे ये आग्रह करूँगा कि इस प्रोग्राम को आप ईमानदारी से कीजिए। मुझे लगता है 50% पूरे फरीदाबाद की समस्या यहीं पे समाधान है।
0: धीरज जी, वाकई सही कहा आपने, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी हैं, और अगर हम सॉल्यूशंस पर काम करें तो डेफिनेटली हम ये अचीव कर सकते हैं कि ये जितनी प्रॉब्लम्स हमको सड़कों पर नजर आती हैं ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। जुड़े रहिए।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर हम चल रहे हैं धीरज कुमार चौबे जी के साथ, जो मेंबर ट्रस्टी हैं गौ कुटीर सेवा समिति फरीदाबाद से। धीरज जी, तहे दिल से धन्यवाद कि आज आप स्टूडियो में आए, हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, थैंक यू सो मच। जाते जाते मैं यही आपसे, आपके माध्यम से फरीदाबाद वालों के लिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कहीं भी आप बीमार घायल ऐसा कोई जानवर देखते हैं, कुत्ता बिल्ली बंदर, कई बार शॉर्ट सर्किट भी लग जाता है बंदरों को, तो मेरे यहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल बोर्डिंग है
0: जी।
1: आप रेस्क्यू करा सकते हैं। आप अगर अफोर्डेबल है, अपने आपका कोई डॉक्टर है, आप वहाँ ट्रीट कराकर भी, हमारे यहाँ फ्री में रखाव है, खाना उनका है, लाना ले जाना है, कोई चार्ज ना आज तक हमने किसी से किया है, ना मांगा है, ना परमात्मा करेगी आगे हम मांगे किसी से
0: जी।
1: मेरी यही सेवा है। और अभी एक हमने नया प्रोग्राम शुरू किया है टेको वेदांता ग्रुप से
0: जी,
1: जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टरलाइजेशन का। अगर आपके गलियों में, आपके सोसाइटीज़ में डॉग हैं तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, हेल्प कीजिए उनको रेस्क्यू कराने में। हम फ्री ऑफ कॉस्ट स्टरलाइज कराकर वापस ठीक होने के बाद आपके यहाँ लोकेशन पे छोड़ देंगे।
0: क्या बात है। सो भाई देखिए दोस्तों, अगर आपको आज तक लगता था कि कौन सी ऐसी संस्था है जो आपकी गली के जितने भी डॉग्स हैं उन्हें स्टरलाइज कर देगी, समय पर अगर मान लीजिए कि उन्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम है सो उन्हें ठीक करके वापस आपके ही लोकेशन पर छोड़ देगी, तो अब आपके पास एक ऐसी संस्था है जो ये सारा काम करती है, और वो है गौ कुटीर सेवा समिति फरीदाबाद। धीरज जी से आज बहुत सारी बात हुई, तहे दिल से धन्यवाद धीरज जी, आज आप आए और आपने अपनी इतनी बेहतरीन बातें और जानकारी गौ कुटीर सेवा समिति के बारे में हमसे साझा की।
1: थैंक यू सो मच मैम।
0: दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आपसे इजाजत लेते हुए वादा कर देती हूँ अगले हफ्ते मैं होंगे आपके साथ, और मानवता की राह पर हम चलेंगे एक और ऐसी ही मानवता भरे काम करने वाली संस्था के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड फील लाइव।
2: मैं जिंदगी

0: Hi, this is Benny Dayal. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM.
1: Hello friends and welcome to Radio Manav Rachna 107.8 FM. मैं हूँ आरजे भावना. Radio Manav Rachna 107.8 FM पर ये जो सुहानी सी शाम होती है ना, ये शाम वक्त होता है we यानी women empowerment का. आप सभी को पता है कि लंबे समय से आरजे भावना आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आती है और इसमें आपको ऐसी महिलाओं से मिलवाती है जो सशक्त हैं, जो सशक्तिकरण फैला रही हैं और जिन्हें मैं ये कहती हूँ सशक्तिकरण का अथक एग्जाम्पल. आज इस कड़ी में हम जिनसे मिलने वाले हैं वो ना सिर्फ एक सीजन्ड प्रोफेशनल है लेकिन एक ऐसी महिला है जो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है. क्योंकि हम आज के जमाने में ऐसे लोग ढूंढते हैं जिन्हें हम कहते हैं बैलेंस्ड, जो पुरानी पीढ़ी को साथ लेकर चल रहे हों और इस पीढ़ी में जीते हुए आने वाली पीढ़ी को गाइडेंस दे रहे हों. तृप्ति सिंह जी इसका अथक एग्जाम्पल है. तृप्ति सिंह जी फाउंडर हैं गठजोड़ की, साथ के साथ एक बहुत ही जानी मानी टेडेक स्पीकर हैं, इवेंट क्यूरेटर हैं और इनका एक बहुत ही खास ग्रुप है. और मुझे नहीं पता अगर आप इस ग्रुप के अंदर एक हिस्सा रखते हैं या आप इस ग्रुप का हिस्सा हैं. ग्रुप है फाउंडर ऑफ गुड़गांव पेरेंट्स फॉर बेटर एजुकेशन. भाई ये एक फेसबुक का ग्रुप है लेकिन बहुत ही फेमस ग्रुप है. सो अलग अलग किस्म की चीजें ये करती हैं लेकिन इनकी एक खास खूबी है कि ये पास्ट और फ्यूचर को प्रेजेंट में बड़ी खूबसूरती से लेकर चल रही हैं. तृप्ति जी आपका स्वागत है रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में.
2: थैंक यू सो मच भावना एंड थैंक यू टू ऑल द लिसनर्स. एंड भावना आपने मुझे समय दिया आपके इस शो में हिस्सा बनने के लिए एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट.
1: तृप्ति जी इस कार्यक्रम का नाम है वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट और वी से मेरा हमेशा से मतलब होता है महिलाएं एक साथ आ जाएं एज वी. सो मैं हर महिला से एक सवाल पूछती हूँ और वो सवाल होता है कि उनके नजरिए में महिला सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट क्या है. सो क्या कहेंगे आप?
2: मेरे हिसाब से जब आपके शब्दों को इम्पोर्टेंस मिलती है, सपोज आप एक कमरे में हैं और आप ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे आपके शब्दों को सुनने के लिए लोग वेट करें, उसको महत्व दें और उसको वैल्यू करें कि आप बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसका मतलब होगा, वो वुमेन एम्पावरमेंट है मेरे लिए. देखिए सब आजकल कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, वो जरूरी भी है बट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट के साथ साथ में आप जब बोल रहे हैं तो आपकी उसकी भी वैल्यू होनी चाहिए, आपके शब्दों की वैल्यू होनी चाहिए. मेरे लिए वो शब्द अगर वैल्यूबल है तो आप एम्पावर्ड हैं.
1: वाकई देखिए महिला सशक्तिकरण की जो डेफिनेशन है ना वो हर महिला के लिए बिल्कुल अलग है. सो शायद जैसे तृप्ति जी ने कहा किसी के लिए ये पैसा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है किसी के लिए ये शायद सिर्फ फ्रीडम है बट बहुत सारे लोगों के लिए इसकी डेफिनेशन अलग मायने रखती है. सो आप क्या सोचती हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में मुझे जरूर बता सकती हैं 8010781078 पर. फिलहाल वक्त है एक प्यारे से गाने का. आप जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ यानी रेडियो 107.8 FM के साथ. फील गुड फील लाइव.

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत सी कड़ी में। आज हम बात कर रहे हैं तृप्ति सिंह जी से, जो फाउंडर हैं गठजोड़ की, टेडेक स्पीकर हैं, इवेंट क्यूरेटर हैं, फाउंडर हैं गुड़गांव पेरेंट्स फॉर बेटर एजुकेशन ग्रुप की। तृप्ति जी, अब अगला सवाल, आज के जमाने की मैं अगर बात करूं तो महिलाएं काफी बदल रही हैं, और धीरे धीरे अगर हम देखें तो हम ये देख रहे हैं कि महिलाओं के प्रति लोगों का माइंडसेट थोड़ा थोड़ा तो बदल रहा है, पर अगर मैं बात करूं इसके कंप्लीट बदलाव की, सो महिलाओं को अगर सशक्तिकरण पाना है समाज में तो उसके लिए क्या एक ऐसी चीज है जो उन्हें बदलने की जरूरत है?
1: देखो, जैसे एक इंग्लिश में कहावत है ना, द चेंज बिगिंस फ्रॉम होम। अगर हम घर में अपने महिलाओं की वैल्यू करना शुरू करेंगे और घर में अपने घर की बहन बेटियों को, बहुओं को ऐसा मौका देंगे कि एक रोल जो होता है ना, रोल प्ले जैसे करते हैं, उनको वो जिम्मेदारी देंगे और भरोसा रखेंगे कि वो जिम्मेदारी निभा सकती है, वो विश्वास, तो उनको वो कॉन्फिडेंस घर से ही आना शुरू होगा। ठीक है, बाहर आउटर वर्ल्ड में वो तभी चीजें फेस कर पाएंगी जब घर पे हम उनमें इतना कॉन्फिडेंस लेके और उनको ये महत्व जो है उनकी लाइफ का उनको समझाएं। तो आई एम श्योर whenever they'll face the outer world, they'll position themselves in a manner के वो चीजें कर सकती है, वो कॉन्फिडेंस है कि वो दुनिया को भी एक अलग तरह से फेस कर सकती है। तो कॉन्फिडेंस तो घर से देना ही शुरू करना पड़ेगा, और बदलाव जैसे मैंने बोला घर से ही शुरू होता है। चाहे आप अपने आप से शुरू करेंगे तभी आप आसपास के लोगों को बदलाव में लाना शुरू कर सकते हैं।
0: वाकई दोस्तों, मतलब अगर हम चाहते हैं कि एक सशक्त समाज हो, हम चाहते हैं कि सशक्तिकरण हर महिला का अधिकार बने, तो उसके लिए शायद शुरुआत हमारे घर से हो रही है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण के इस खूबसूरत से कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं तृप्ति सिंह जी से। तृप्ति जी जो कि फाउंडर हैं गठजोड़ की, एक टेडेक्स स्पीकर हैं, की इवेंट क्यूरेटर हैं, फाउंडर हैं गुड़गांव पेरेंट्स फॉर बेटर एजुकेशन ग्रुप की। तृप्ति जी, अब अगला बड़ा अहम सवाल और वो आपके गठजोड़ से है। आज भी आप अगर देखा जाए तो पूरे समाज को अपने कल्चर्स ट्रेडिशंस की बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश भी कर रही हैं और कुछ ऐसे रिवाज हैं जिन्हें आप संजोने की कोशिश कर रही हैं। सो किस प्रकार करी हैं ये काम?
1: मुझे ऐसा लगता है कि जो रीति रिवाज हमको हमारे पूर्वजों ने दिए, हमारे माँ बाप ने, उनको उनके पेरेंट्स ने दिए, सो वी आर जस्ट द कस्टोडियन ऑफ दोज रिचुअल्स। ठीक है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमें मिला है उनको एज सेव करके हम नेक्स्ट जनरेशन को दें। अगर हम उसको नेक्स्ट जनरेशन को नहीं देंगे तो हम अपना रोल ढंग से नहीं प्ले कर रहे हैं। चाहे छोटे से छोटा रिचुअल हो, चाहे आपके घर का कोई मेंबर घर से बाहर जा रहा हो कोई शुभ काम के लिए, तो उनको गुड़ और दही का एक निवाला देना जाने से पहले, सिंपल सा एग्जांपल है, चाहे वो हो, चाहे कोई बड़ा काम आप शुरू कर रहे हैं तो गणेश जी की पूजा करनी हो या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनकी पूजा करनी हो। और ये हर फैमिली का, हर कम्युनिटी के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। तो जैसे शादी ब्याह के कोई रिचुअल्स हैं तो हर रिचुअल के पीछे जो कहानी होती है, अगर हम उस कहानी को जान सकें, उसको शेयर कर सकें दूसरी जनरेशन के साथ में, आने वाली पीढ़ी के साथ में, तो उनको समझ में आएगा कि इस रिचुअल का मतलब क्यों है और ये क्यों किया जाता है। ऐसे ही तो कोई रिचुअल नहीं आ गया है, हर रिचुअल के पीछे कहानी है। तो उसको जब तक हम साझा नहीं करेंगे आने वाली पीढ़ी के साथ में, वो कैसे सीखेंगे? क्योंकि देखिए, टीवी से, डॉक्यूमेंट्री से, वो अपनी अपना कल्चर सिखा रहे हैं, टीवी डॉक्यूमेंट्री अगर हम बात करें तो। बट आपके खुद के परिवार की जो हिस्ट्री है और हर कम्युनिटी का जो रिचुअल है, जब तक हम नई पीढ़ी को नहीं सिखाएंगे, हम शायद उनको किसी ना किसी चीज से वंचित रख रहे हैं, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। बहुत जरूरी है आपको अपना कल्चर अपने बच्चों के साथ में साझा करना।
0: वाकई ये बात तो मैं हमेशा मानती हूँ, एंड इनफैक्ट आई ऑलवेज एंडोर्स ऑल्सो कि ना, अगर हम अपनी सोसाइटी को और हमारे ही रिवाजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो समाज के जो फ्रेम है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उन्हें तो हम अपने बच्चों को सिखा देते हैं, लेकिन जो हमारे रिवाज हैं, हमारे रिचुअल्स हैं, हमारे ट्रेडिशंस हैं, उनको कहीं सिखाने में हम पीछे रह जाते हैं। इसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं। एक अहम कारण मुझे ऐसा लगता है, भागती हुई जिंदगी, जहां पर कि किसी के पास भी ठहर कर पलट कर शायद इतना समय ही नहीं है कि वो इन सारी चीजों को महसूस कर सकें और आने वाली पीढ़ी को समझा सकें।
1: Yes. आपने पूछा कि आप इसमें कैसे साझा कर रहे हैं
0: जी।
1: तो मैंने छोटे छोटे रिचुअल्स को लिखना शुरू किया
0: जी।
1: अपने अकाउंट पे उसको डिटेल में शेयर करना शुरू किया। लिखने से पहले अब जैसे हर, अगर आप स्टेट की बात करें, हर स्टेट में हम लोगों के, जैसे अगर मैं स्पेशली राजस्थान की बात करूं तो एक कहावत है कि हर 30 कोस में बोली भी बदलती है, रीति रिवाज भी बदलता है और कहीं कहीं पहनावा भी बदलता है। तो रिवाज बदलते हैं हर 30 कोस में। सो बिफोर राइटिंग एनी रिचुअल आई स्पीक टू मल्टीपल लेडीज, ओल्ड लेडीज, टू अंडरस्टैंड कि उनकी जगह में ये रिचुअल है कि नहीं, और अगर है तो इसको कैसे आप थोड़ा सा बदलाव लाके और करते हैं। सो बिफोर राइटिंग आई टेक देयर नोट्स, सबके नोट्स इकट्ठे करके देन आई राइट द बेस्ट इजिएस्ट वे सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड। एंड उसका बहुत अच्छा फीडबैक मिला हमने जब जब उसको साझा किया है, और लोगों ने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया है। और मुझे खुशी होती है कि ये सिर्फ राजस्थान के लोग नहीं, राजस्थान के बाहर के लोग भी उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि हमारे यहाँ पे भी ये हम फॉलो करते हैं, ऐसा होता है। और बहुत बड़े लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ होता है पर हमें इसके पीछे का मतलब नहीं पता। तो जैसे मैंने बोला, हर रिचुअल के पीछे मतलब छिपा होता है, अगर उस मतलब को हम नहीं साझा करेंगे तो हमारे रिवाज विलुप्त होते जाएंगे।
0: तो भाई, इन विलुप्त होते हुए समाज के रिवाजों को अगर आप संजोना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक नहीं, बहुत सारी तृप्ति सिंह की ज़रूरत है, जो समाज में इन रिवाजों को ज़िंदा रखें, आने वाली पीढ़ी को समझाएं, और साथ के साथ हर घर में हमें ज़रूरत है कि हम इन रिवाजों को भूलें नहीं। मॉडर्न और ग्लोबल दोनों ही आउटलुक बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अपने रिवाजों का या अपने ट्रेडिशंस का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। छुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, वापस लौट कर आऊंगी, करेंगे ढेर सारी बातें। बहुत ही खास आज हमारी गेस्ट हैं तृप्ति सिंह जी के साथ, बट आप जुड़े रहेंगे अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की रिवाजों की, पर चलिए भाई अब तृप्ति सिंह जी से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये खुद एक सशक्त महिला है, बट हम सब महिलाएं जिंदगी में कोई ना कोई एक सशक्तिकरण भरा एक ऐसा डिसीजन जरूर लेती हैं। सो तृप्ति जी, अगर मैं आपकी सशक्तिकरण की जर्नी के बारे में बात करूं, सो क्या आप जिंदगी में पलट कर एक बार देखना चाहें और याद करना चाहें कोई एक ऐसा डिसीजन जो आपने लिया, आपको महसूस हुआ दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, लेकिन उसके बाद आपने कभी रिग्रेट नहीं किया, उसे लेकर खुशी हुई?
1: भावना, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए वर्क करती हूँ, आई कम फ्रॉम राजपूत कम्युनिटी, और उसको करते हुए मेरे को 1.5 दशक से भी ज्यादा हो गया है। और मैंने बहुत 1.5 दशक में मैंने ऑलमोस्ट 10 ईयर्स एंड प्लस आई डिडंट चार्ज अ सिंगल पेनी फॉर माई वर्क। ठीक है, बहुत दिमाग में जब होता है कि जब आप अपने समय का खुद वैल्यू नहीं करोगे तो लोग आपके समय की वैल्यू नहीं करेंगे। तो मैंने ये डिसाइड किया कि इवन इफ आई चार्ज अ लिटिल पेनी टू मेक पीपल अंडरस्टैंड टाइम इज मनी एंड टाइम इज वैल्यूबल। ठीक है, जिस दिन मैंने ये शुरू किया मुझे खुद के मन में एक संतुष्टि हुई कि चाहे मैं 5 मिनट अपने काम के लिए किसी के साथ में साझा कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आप हर 5 मिनट के चार्ज करते हो, बट एक एग्जांपल है कि व्हेन यू इन्वेस्ट योर टाइम इन समथिंग एंड इफ यू आर चार्जिंग दैट, यू विल नॉट ओनली वैल्यू योर टाइम, द अदर पर्सन विल वैल्यू योर टाइम मोर एंड विल नॉट टेक यू फॉर ग्रांटेड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वैल्यू योर टाइम एंड प्रायोरिटाइज योर टाइम, बिकॉज आप जो काम कर रहे हैं यू आर मेकिंग श्योर कि आपका घर भी आप देख रहे हैं, अपने बच्चे भी देख रहे हैं, आप अपना बाकी काम को भी संभाल रहे हैं, बट इसके साथ साथ में आप अपने आप को उस पोजिशन पे रख रहे हैं कि नोबडी टेक्स यू फॉर ग्रांटेड, नोबडी टेक्स योर टाइम फॉर ग्रांटेड। एंड आई हैव नो रिग्रेट द डे आई started saying that I will charge for my work because I've done enough of social work. That doesn't mean I don't do it for free anymore. I do. But at the same time, I put myself in a position that now if you need my help, you need to pay for my time.
0: Wow! मतलब ये तो वाकई एक बड़ा सशक्तिकरण भरा डिसीजन था, वेयर आई एम श्योर यू मस्ट बी फीलिंग वेरी सैटिस्फाइड नाउ कि लोग न सिर्फ आपके समय की लेकिन अब हर किसी के समय की वैल्यू करने लग जाएंगे।
1: बिल्कुल, और उसमें क्या गिल्ट भी नहीं है
0: जी,
1: क्योंकि बहुत बार सामने वाले को गिल्ट होता है कि वी आर टेकिंग योर टाइम एंड हेल्प एंड यू आर नॉट चार्जिंग, एंड आई यूज्ड टू से कि नहीं, आई डोंट वांट टू चार्ज फॉर माय वर्क एंड इट्स ओके, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन आई सॉ दैट पीपल हैव started misusing my time, so मुझे कहीं ना कहीं guilt होता था कि नहीं I can do better, चाहे वो काम 10 जगहों की जगह सिर्फ 5 जनों के लिए मैं करूं, but they should also feel comfortable taking my time, you know, and if they are paying, they have the excess of my time, जो चाहे limited हो, they have the excess, so it's a win-win situation for both, you know, so I felt happy after deciding that and God has been kind for that.
0: सो भाई, ये तो तृप्ति सिंह जी हैं जो ये कहती हैं कि अगर आप समय की कीमत को नहीं समझेंगे तो लोग और समय दोनों ही आपकी कीमत को नहीं समझेंगे, और मुझे ऐसा लगता है ये एक बड़ा ही सही मैसेज है जो मुझे लगता है आज के समाज में बहुत जरूरी है। छुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक ले रही हूँ, वापस लौट कर आऊंगी आपके पास। टिल देन फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। आई नो ये जो सैटरडे की शाम है ना, ये बड़ी खास होती है। आप लोग अपने चाय कॉफी लेकर रेडी हो जाते हैं कि आज एक सशक्तिकरण की कहानी सुनने को मिलेगी। आई एम श्योर कितने सारे मैसेजेस आप डिराइव करते हैं। कई बार तो ऐसा लगता होगा कि आप अपनी ही जिंदगी की कहानी सुन रहे हैं। कई बार बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है और कई बार सुकून मिलता है कि हम ना सही, कोई और महिला है जो वो सपने पूरे कर रही है जो शायद आप करना चाहते हैं, है ना। सो अगर आपकी भी ऐसी कहानी है तो मुझे जरूर बता सकते हैं 8010781078 पर। फिलहाल आज के इस खास एपिसोड में बहुत ही खास गेस्ट है मेरी तृप्ति सिंह जी। ये फाउंडर है गठजोड़ की,

0: साथ अपनी वर्किंग जिंदगी है, फास्ट लाइफ है, बहुत सारी चीजें हैं, इन सबको भी बैलेंस करें।
1: सुभावना, जहाँ रिचुअल्स की बात होती है, सिर्फ महिलाएं नहीं, घर के बच्चों को, बॉय एंड गर्ल दोनों को जरूरी है अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट रोल पेरेंट्स का एंड ग्रैंड पेरेंट्स का है कि अपने घर के रिचुअल्स घर के लड़का और लड़की दोनों को इक्वली सिखाएं, कि हर त्योहार का, हर ओकेशन का जो रिचुअल है, दोनों को इक्वली आना चाहिए और इक्वली समझना चाहिए कि इसके पीछे क्या मतलब है। क्योंकि जब उनकी शादियां होगी, उनके स्पाउसेस होंगे, तो वो दोनों अपने स्पाउसेस को बता सकेंगे कि हमारी फैमिली में ऐसे होता है और ऐसे हम उसको, अब सपोज किसी का और स्पाउस साथ में जुड़ता है तो वो बता सकता है कि दोनों जने अपने अपने रिचुअल शेयर कर सकते हैं। पर अगर वो नहीं साझा करेंगे हम घर के बेटा और बेटी दोनों को, तो वो रिचुअल आगे कैसे बढ़ेगा। तो मदर एंड फादर बोथ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि जब आप रिचुअल कर रहे हैं तो बच्चों को साथ में जोड़ें और उनको रिचुअल कराने का हिस्सा बनाएं। सिंपल लॉजिक है, सिंपल एक्ट है कि जब आप पूजा कर रहे हैं तो जिस तरह से आप पूजा कर रहे हैं उनको भी साथ साथ में पूजा की विधि समझाएं कि ये विधि है, इसको ऐसे करते हैं। उसके अलावा जैसे अगर राखी का आप त्योहार बना रहे हैं तो राखी सिर्फ राखी बांधना नहीं है, राखी बांधने के साथ साथ में वो क्यों बांधी जाती है, उसके पीछे की कहानी क्या है, बहुत सुंदर सी स्टोरीज होती है, उनको साझा करें। और जैसे मैंने बोला कि हर रिचुअल के पीछे बहुत सुंदर कहानियां हैं, जो फोक टेल्स हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, वो फोक टेल्स उनके लिए भी एक कहते ना, एक खजाना होगा। जब आप आज अपने बच्चों के साथ शेयर करोगे, उनके लिए एक खजाना होगा आगे अपने बच्चों के साथ शेयर करने के लिए कि ये हमने सीखा है, ये हम तुमको आगे दे रहे हैं ताकि इसको तुम संजो के रखो। तो ये जरूरी है कि बच्चों को हर रिचुअल का पार्ट बनाए, लड़का लड़की दोनों को, ताकि वो उसको बढ़ा सके रिचुअल को आगे और उसको सेलिब्रेट कर सके एक फेस्टिवल की तरह। फेस्टिवल जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ फेस्टिवल के लिए वेट करें। काफी बार रिचुअल्स कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप फेस्टिवल बना के आप एक गेट टुगेदर कर सकते हो, तो वो सिखाना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है।
0: भाई वाकई, चाहे हमारे त्योहार हो या हमारे रिवाज, इन सबको थोड़ा सा समय निकालकर आने वाली पीढ़ी के लिए पहले सीखना और फिर सिखाना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैं ना बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो ये कहते हैं हमें तो खुद ही नहीं पता है कि हमारे रिवाज क्या हैं, तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएंगे। सो इसके लिए जरूरी ये है कि जब आपके घर में रीति रिवाज किए जा रहे हैं, निभाए जा रहे हैं, मनाए जा रहे हैं, सो हम उनमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लें। मोबाइल फोन में घुसकर बाहर की जिंदगी को देखने से ज्यादा जरूरी ये होगा कि हम उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लें, जिससे हम अपनी संस्कृति पे गर्व कर सकें और हमें ये पता हो कि हमारी संस्कृति ऐसी क्यों है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत सी कड़ी। और उतनी ही खूबसूरत तृप्ति सिंह जी आज हमारे साथ हैं, जो कि फाउंडर हैं गठजोड की, टेडेक्स स्पीकर हैं, इवेंट क्यूरेटर हैं, फाउंडर हैं गुड़गांव पेरेंट्स फॉर बेटर एजुकेशन ग्रुप की। तृप्ति जी, ढेर सारी बातें की आपसे, लेकिन अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। लेकिन जाने से पहले क्या खास संदेश आप देकर जाना चाहेंगी हमारे सभी लिसनर्स को?
1: स्पेशली फॉर गर्ल्स, बिलीव इन योरसेल्फ, बिकॉज आपको खुद को नहीं पता है कि आप कितने यूनिक हैं और कितना कुछ आप बदल सकते हैं इस दुनिया में। पर वो बदलाव आपसे आएगा। बदलाव का मतलब ये नहीं है कि आप एक मिस एडवेंचर पे जाएं, बट उसका मतलब ये है कि आप जो सीख रही हैं वो आसपास में साझा करें, आसपास में हैप्पीनेस फैलाएं और देखें कितनी खुशियां होती है, ना सिर्फ आपकी लाइफ में बट आसपास में बहुत से सुंदर चेंज आएंगे।
0: तो भाई, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा बदलना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगी इस मैसेज को थोड़ा सीरियसली लीजिएगा, इसे अप्लाई करिएगा अपने जीवन में और आप खुद ही देखेंगी कि लाइफ हैज़ चेंज्ड। और ये क्या छोटे छोटे बदलाव ना, एक बहुत बड़े बदलाव, एक बहुत बड़े समाज के बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। बट ये शुरुआत होनी चाहिए हमारे अपने जीवन से और हमारे अपने घरों से। तहे दिल से धन्यवाद तृप्ति जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके और हमारे लिसनर्स बहुत ही खुश हैं जो आपने उनसे इतनी बेहतरीन जानकारी साझा की।
1: थैंक यू सो मच भावना, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू सच वंडरफुल पीपल।
0: दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आपसे इजाजत लेते हुए मैं आपसे वादा कर देती हूँ अगले हफ्ते मेरी और आपकी होगी मुलाकात। लेकिन तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। आरजे भावना को दीजिए इजाजत। फील गुड।

पुरस्कार चंदनगढ़। दिन में आज भी कितना हसीन दिखाई दे रहा है, हर तरफ बहार ही बहार छाई हुई है।

0: Gagan Narang and you're listening to Radio Manarachana 107.8. Feel good, feel light.
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आपको तो पता ही है मानवता की राह पर एक खास कार्यक्रम, जिसमें हर हफ्ते मैं आपको ऐसे शख्स से मिलवाती हूँ जो मानवता की राह पर चल रहे होते हैं, जिनमें आज भी इंसानियत जिंदा है। एक तरफ हम सब ये कहते हैं कि आज के जमाने में इंसानियत खत्म हो गई और इंसान इंसान न होकर मशीन बन गया है, सेल्फिश हो गया है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंसानियत को जिंदा रखे हुए हैं और अपनी इस दुनिया से और साथ के साथ अपने इस खूबसूरत से जेस्चर से बहुत सारे लोगों का जीवन बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम जिनसे बात करने वाले हैं उनका नाम है कविता वैद्य गुप्ता। कविता गुप्ता जी को-फाउंडर हैं विन ओवर कैंसर की। इसी के साथ साथ ये इन्वेंटर हैं इंडिजीनियस कॉटन फैब्रिक बेस्ड ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस की, और इसी के साथ साथ देखा जाए तो ये टेडेक्स स्पीकर भी हैं। ढेर सारे अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं। और महिलाओं की मैं बात करूं, वेमेन ऑफ इंडिया अवार्ड 2016 इन्हें मिला है, इंडियन वेमेन अचीवमेंट अवार्ड 2017, नारी चेतना अवार्ड 2018 और अवार्ड बाई वेमेन इकोनॉमिक फोरम 2019। जिस तरीके का काम ये कर रही हैं, मुझे पता है आने वाले समय में जो सवाल मैं पूछूंगी, जो कहानी आप सुनेंगे, आपकी आंखें नम जरूर होने वाली हैं। लेकिन ये कहानी इतनी जरूरी है कि आप तक जरूर पहुंचे, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जो शायद हम सबको पता होनी चाहिए। सो आज मानवता की राह पर मैं चलने वाली हूँ कविता वैद्य गुप्ता जी के साथ, और उसके लिए मैं करूंगी इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
2: थैंक यू भावना, थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन।
1: कविता जी, सबसे पहला सवाल, विन ओवर कैंसर, यानी डेफिनेटली आपका जो एनजीओ है ये कैंसर के लिए काम करता है, मुझे बताइए इसका ओरिजिन और इसके ओरिजिन के पीछे का कारण क्या रहा?
2: इसके ओरिजिन के पीछे मेरे हस्बैंड थे सीए अरुण गुप्ता, और ये उनका ही इनिशिएटिव था। जब उन्हें खुद कैंसर डायग्नोज हुआ
1: जी,
2: तब उन्होंने और कैंसर पेशेंट से बात करनी शुरू करी, और उन्होंने देखा कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कॉमन है कैंसर पेशेंट्स में। तो उन्होंने एक जज्बा दिखाया कि नहीं, मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं काम करना है, मुझे और पेशेंट्स की भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और इस एनजीओ का जन्म मैं कहूँगी एक हॉस्पिटल रूम से हुआ, जहाँ पे उनको खुद कीमो लग रही थी, और वहीं से हमने ये काम करना स्टार्ट करा। सबसे पहले हमने देखा कि क्या कॉमन प्रॉब्लम्स आ रही हैं कैंसर पेशेंट्स को, हम उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं, हम किस तरह से कैंसर के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं। तो इस एनजीओ की जो शुरुआत है वो 2015 में हुई, और जिस समय मेरे हस्बैंड अपने, जिसे कह सकते हैं, वर्स्ट कीमोज ले रहे थे उस टाइम पर
1: जी।
2: जब लोग अपना जज्बा छोड़ देते हैं, उस टाइम पे ना सिर्फ हमने अपना जज्बा संभाला, हमने प्रेरणा दी और कैंसर पेशेंट्स को भी उससे लड़ने के लिए।
1: देखिए भाई, दिल को छूने वाली कहानी। जैसे अगर आप देखें, अक्सर लोगों को अगर किसी भी जटिल या फिर ऐसी बीमारी होती है जिसे हम जानलेवा कहते हैं, ऐसी बीमारी होने पर लोग ये नहीं सोचते हैं कि चलिए मैं औरों की जान बचा लूं, हर इंसान ये सोचता है चलिए अपनी पीड़ा कम कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर मानवता कूट कूट कर भरी होती है, और शायद कुछ ऐसे ही, मुझे ऐसा लगता है कि खास लेजेंडरी अरुण जी रहे जिन्होंने शुरुआत की विन ओवर कैंसर की। यानी खुद तो एक बहुत ही जटिल लड़ाई वो लड़ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाने की कोशिश की, और उनके इस सपने को आगे लेकर जा रही है ना सिर्फ उनकी पत्नी कविता गुप्ता जी, लेकिन साथ के साथ उनकी दो बड़ी प्यारी बच्चियां भी। कविता जी, ये तो मैंने लोगों को बताया कि आप अलग किस्म की ब्रेस्ट प्रोथेसिस और ब्रास बनाती हैं उन सभी महिलाओं के लिए जिन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हो चुकी होती है और उनके ब्रेस्ट का रिमूवल हो चुका होता है। अब मुझे बताइए कि आप कैंसर पेशेंट्स की मदद कैसे करती हैं?
2: सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो मैंने प्रोस्थेसिस इजाद किया, इसके पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है।
1: जी।
2: जब मेरे हस्बैंड के कीमोस चल रहे थे 2016 में, उस टाइम पर उनका इलाज कर रहे थे डॉक्टर सुमन
1: जी।
2: एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि मैम, आप लोग एनजीओ चला रहे हो तो आप मेरे ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स जो हैं, जो गरीब तबके से हैं, उनको ये प्रोस्थेटिक ब्रा सर्जरी के बाद नहीं मिलता है पहनने के लिए, क्योंकि ये किसी भी पैनल में नहीं आता है, ये कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं करती है और वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आप प्लीज़ इनको कहीं से डोनेट करवाइए। तो वो मैंने उस टाइम पर मुझे खुद नहीं पता था कि प्रोस्थेटिक ब्रा क्या होती है। पहले मैंने इंटरनेट की मदद से खुद समझा कि ये क्या होती है, इसकी क्या ज़रूरत है। फिर मैंने उस समय, क्योंकि हमारा इसमें कोई भी नॉलेज नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने एक और एनजीओ से वो ब्रा एक पेशेंट को दिलवाई, जो कि डॉक्टर साहब ने उसको बहुत नकारा, मुझे गुस्सा किया कि मैम ये फोम की बनी हुई है और ये पेशेंट्स को और ज़्यादा नुकसान करेगा, हीट होगी, बैक्टीरिया पनपेगा, स्वेट होगा, फ़ायदा करने की बजाय नुकसान देगा। साथ में उन्होंने मुझे समझाया कि ये सिर्फ हम सोचते हैं कि औरतों के लिए कॉस्मेटिक यूज़ है, कि सिर्फ उनको लगे ना कि हमारी एक ब्रेस्ट नहीं है दूसरी, एक कॉस्मेटिक बाहरी सुंदरता के लिए, जबकि इसका एक मेडिकल यूज भी है। इसके अंदर थोड़ा वेट होना चाहिए, जिससे कि जो बॉडी में हमारे दोनों तरफ भगवान ने वेट इक्वल दिया है, जब हम एक लेडी की ब्रेस्ट रिमूव कर देते हैं तो बॉडी की एक तरफ से उसका थोड़ा वेट भी हट जाता है। तो इस वजह से लॉन्ग रन में जाके उसको लेडी को कंधे में दर्द रहने लग जाएगा, उसके कमर में दर्द रहने लगेगा धीरे धीरे, और बहुत केसेस में लॉन्ग टर्म में स्पाइन तक टेढ़ी होने लग जाती है। तो इसके ये इसका मेडिकल यूज है और ये जरूरी है पेशेंट्स को पहननी। तब मैंने ये सब चीज़ समझ के मैंने उनसे प्रश्न किया कि सर फिर हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ के। तो उन्होंने बोला आप खुद सोच लो, आप खाली बैठे रहते हो यहाँ हॉस्पिटल में सारा दिन। और वो चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं छू गई। और सबसे पहले मैंने जो ओपीडी में और ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स आते थे जो हॉस्पिटल में एडमिट, मैंने उनसे बात करनी शुरू करी, तो पता चला कि इस चीज़ की नीड इतनी ज़्यादा है कि एक लेडी के लिए अपनी ब्रेस्ट का खोना और ज़्यादा शॉकिंग होता है कैंसर से डायग्नोज होने के।
1: बाप रे,
2: कहती हैं कि कैंसर से तो मुझे पता है मैं ठीक हो जाऊंगी, डॉक्टर ठीक कर देंगे, पर मेरी ब्रेस्ट तो नहीं वापस आएगी, मैं कभी सुंदर तो नहीं लगूंगी।
1: ओह माय गॉड,
2: तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं छू गई। मैंने कहा क्या कर सकती हूँ, क्या सोच सकती हूँ। मुझे दिमाग में आया कि इंडिया में हम कॉटन फैब्रिक यूज करते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि कॉटन अपने आप में एंटी माइक्रोबल होता है, तो क्यों ना मैं उससे कुछ करूँ। और बस वहीं से वो शुरुआत हुई। और मैं कुछ प्रोटोटाइप बनाती थी घर पे कॉटन फैब्रिक्स को यूज़ करके, फिर डॉक्टर सुमंत को दिखाती, फिर वो मुझे फीडबैक देते थे कि इसमें अब आप सॉफ्टनेस लेकर आओ, इसमें इस तरह से यूज़ हो। तो 6-8 महीने में मेरा प्रोडक्ट तैयार हो गया और दिसंबर 2016 से हमने ये प्रोस्थेटिक ब्रा जो है सबसे पहले एम्स में फ्री बांटनी स्टार्ट करी
1: जी।
2: और तब से आज तक हम 10,000 पेशेंट्स को ये बांट चुके हैं, कितनी सारी महिलाओं को। और हम हर साल एक फीडबैक लेते हैं जिसमें पता चलता है कि कितनी खुश हैं वो औरतें ये पाकर, कितनों ने घर से बाहर जाना शुरू कर दिया, कईयों ने अपनी नौकरी वापस ज्वाइन कर ली है
1: जी।
2: इसकी वजह से बहुत सारी लेडीज ऐसी थी कि जिन्होंने मतलब उनको शर्म आती थी अपने बेटे अपने और रिलेटिव्स के सामने जाने में, वो अब बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही हैं सब तरह। तो ये देख के एक बहुत दिल को राहत मिलती है, एक बहुत ज़्यादा, कि हाँ एक मैंने कुछ ऐसा इजाद किया जो आज हज़ारों हज़ारों महिलाओं को मदद कर रहा है।
1: वाकई देखिए, एक तरफ तो मेडिकल ट्रीटमेंट जो ढेर सारे ऑन्कोलॉजिस्ट करते ही हैं, लेकिन अगर हम इमोशनल सपोर्ट की बात करें या उस चीज़ की बात करें जो शायद एक महिला की पहचान होती है, उनके स्तन, और अगर वो स्तन ही रिमूव कर दिया जाए तो ना वो तरीके से कपड़े पहन सकती हैं, क्योंकि क्या सारी कैंसर की जितनी भी पेशेंट्स हैं उन महिलाओं के लिए अलग कपड़े डिज़ाइन किए जाएंगे। और ये एक बहुत चैलेंजिंग कंडीशन है जहाँ आप अपने जीवन के काफ़ी साल स्तन के साथ होते हैं और सडनली वो रिमूव कर दिया जाता है, तो आप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन उन्हें वो कॉन्फिडेंस वापस देने की कोशिश कर रही हैं कविता गुप्ता जी। सो अब बात करते हैं कविता जी, आपकी इस पूरी टीम की। एक तरफ तो आपको ये ख्याल आए कि चलिए भाई महिलाओं के लिए स्तन बहुत जरूरी है और उनके लिए ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस लिया जाए, और उसी के साथ साथ उनके लिए इस प्रकार की ब्रास बनाई जाए जिससे कि वो उन्हें पहन सके। बट ये काम बिल्कुल आसान नहीं होगा। घर पर 6 महीने में आपने जब एक प्रोडक्ट डेवलप किया तो उसको इतने सारे लोगों के लिए डेवलप करना बड़ा मुश्किल हुआ होगा। सो कैसे शुरुआत की, कैसे है आपकी टीम और कैसे कर पाती हैं ये काम?
2: मेरी टीम में आज मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरी टीम में 99% लेडीज हैं
1: जी.
2: उसमें से मोस्टली अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से है. एक रूरल हरियाणा के गांव में हमने अपनी वर्कशॉप लगाई है जहाँ पर 5 से ज्यादा लेडीज आज की डेट में काम करती हैं. ये ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस बनाती हैं वहाँ पर
1: जी.
2: और उनके अंदर भी मैं चेंज देख रही हूँ. पिछले 5 साल में कितना सशक्त हुई है वो, अपने ही फैमिली में अपने बच्चों को और अच्छी एजुकेशन दे पा रही हैं, अपनी फैमिली को और अच्छे से सपोर्ट कर पा रही हैं. साथ में हमारी जो बैक ऑफिस टीम है उसके अंदर 2 ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स हैं जिन्होंने हमारे से ही ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस लिया और फिर उन्होंने रुचि दिखाई कि मैम हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आप हमें काम दीजिए. तो उनमें से 2 जो अब वो आज खुद उस स्थिति से ऊपर आकर और अब वो खुद और पेशेंट्स की काउंसलिंग करती हैं साथ में. तो ये सब चेंजेस देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है. मतलब रियल हैप्पीनेस जो है ना वो हैप्पीनेस इज इन गिविंग एंड एम्पावरिंग अदर वुमेन.
1: एक्चुअली भाई देखिए कहीं ना कहीं मैं ये डेफिनेटली मानती हूँ कि जब आप कोई भी अच्छा कदम उठाते हैं और कोई भी अच्छा या नेक काम करने की राह पर चलते हैं तो आपको बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स मिलते हैं. लेकिन वो जो डगर होती है ना वो डगर होती बड़ी मुश्किल भरी है और उन चैलेंजेस को फेस करना आसान नहीं होता है. लेकिन हिम्मत अगर आपके अंदर है तो आप उस हिम्मत के साथ उस डगर को पार कर जाते हैं. भाई कैंसर के लिए बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं लेकिन जिस तरीके से कैंसर फैल रहा है मुझे ऐसा लगता है शायद जितनी संस्थाएं खुली हैं उतनी भी कम हैं. सबसे पहली परेशानी ये है कि आज भी लैक ऑफ अवेयरनेस है कैंसर को लेकर. लोगों को पता ही नहीं है जो रोजमर्रा की गलतियां वो कर रही हैं उन रोजमर्रा की गलती से वो एक दिन कैंसर का शिकार हो सकते हैं. सो एक तरफ तो ये जरूरी है कि ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे. तो आप लोग कैंसर पेशेंट्स को अवेयरनेस भी देते हैं और साथ के साथ उनके लिए बहुत तरीके की मदद भी करने की कोशिश करते हैं. कैसे करती हैं ये सब आप?
2: कैंसर अवेयरनेस देखिए कैंसर पेशेंट से ज्यादा पूरी सोसाइटी में होनी बहुत जरूरी है. सबसे पहले तो एक मिथ मिटाना जरूरी है कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है
1: जी.
2: उससे पहले एक मिथ ये है कि कैंसर एक बीमारी नहीं है
1: जी.
2: कैंसर 250 से ज्यादा तरीके की बीमारियां हैं जिसका डॉक्टर इलाज करता है एक तरीके से. और उसको हम एक ग्रुप ऑफ डिजीज बोल सकते हैं जो एक से तरीके की जो सेल की मेगलिनेंसी से
1: जी.
2: होती है वो कैंसर कहलाया जाता है ठीक. पर जब हम देखते हैं तो कैंसर के प्रकार बहुत होते हैं. जैसे अगर हम मोटा मोटी देखें तो ब्लड कैंसर हो गया
1: जी.
2: सॉलिड ट्यूमर्स वाला हो गया जिसे हम कार्सिनोमास बोलते हैं और मसल वाला हो गया जिसको हम सार्कोमास बोलते हैं
1: जी.
2: तो ये तो जब अगर कोई भी किसी को मान लीजिए आज कैंसर होता है तो वो अपनी तुलना किसी और कैंसर पेशेंट से ना करे क्योंकि आपका कैंसर उसके कैंसर से अलग हो सकता है.
1: yes.
2: जैसे मेरी स्पेशलिटी मैं कहूंगी ब्रेस्ट कैंसर में
1: जी.
2: तो मैं ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को भी यही समझाती हूँ कि आपकी और उनकी जर्नी सेम हो सकती है पर सेम दवाई आपको क्या रिएक्ट करेगी और दूसरे को क्या रिएक्ट करेगी वो अलग हो सकता है क्योंकि आपका जेनेटिक स्ट्रक्चर आपकी बॉडी अलग है और उनकी बॉडी अलग है
1: जी.
2: तो हमें ये अवेयरनेस फैलानी बहुत जरूरी है कि सारे कैंसर पेशेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं.
1: यस
2: बहुत आज कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो बहुत नई नई तकनीकें ईजाद हो गई हैं और लाइलाज बीमारी ये नहीं रही है. तो कैंसर इज डेथ ये वाली मिथ सोसाइटी से निकालनी बहुत जरूरी है
1: जी.
2: साथ में एक कैंसर अवेयरनेस जो कि गवर्नमेंट भी कर रही है टोबैको सिगरेट के पैकेट्स पे दिखा के वो तो है ही है. साथ में अपने लाइफस्टाइल को हम सुधार के भी कैंसर से बच सकते हैं
1: जी.
2: जो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल आजकल हम जी रहे हैं अपने खान पान को सुधार के हम कैंसर से जी सकते हैं. दूसरा मैं एक क्योंकि ये अक्टूबर है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है तो ये अवेयरनेस सिर्फ इस मंथ तक नहीं सीमित रहनी चाहिए. मैं बहुत सारे अवेयरनेस टॉक्स लेती हूँ बहुत सारे वर्कशॉप्स लेती हूँ जहाँ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सिखाया जाता है
1: जी.
2: और मैं सबको यही बोलती हूँ कि ये अक्टूबर में ना कराएं आप पूरे साल कराएं प्लीज.
1: बिल्कुल.
2: क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक इस तरीके का कैंसर है जो शुरुआती लक्षणों में हम पकड़ सकते हैं और अगर शुरुआती लक्षणों में हमने इसे पकड़ लिया तो उससे जान बचाई जा सकती है ब्रेस्ट बचाई जा सकती
1: yes.
2: है. उससे जो है आपका इलाज बहुत आसान हो सकता है
1: जी.
2: आज के अगर हम सिनेरियो देखें तो इंडिया में हर 8 में से 1 विमेन हाई रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर।
1: यस।
2: तो एक सिर्फ पूरे महीने में आपको एक मिनट देना है अपने आप को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने में, जिससे आप ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षणों को पकड़ सकते हैं और डॉक्टर के पास जाके एक बार कंफर्म कर सकते हैं कि मेरे को ये लक्षण आ रहा है, प्लीज आप चेक करो कहीं मुझे ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं हुआ।
1: Yes.
2: और 90% टाइम वो जो गांठ है या कोई लक्षण है वो आपके हार्मोनल चेंजेस से भी हो सकते हैं
1: जी।
2: पर वो जो 10% चांस है हमें वो नहीं छोड़ना है।
1: Yes.
2: क्योंकि इतने सारे आज मैं हजारों ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर चुकी हूँ और जो एक चीज कॉमनली निकल के आती है वो यही निकल के आती है कि ट्रॉमा ऑफ लूजिंग द ब्रेस्ट वॉज मोर देन ऑफ ट्रॉमा बींग डायग्नोस्ड विद कैंसर। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी लेडी इस ट्रॉमा से गुजरे, उसके लिए उसको अपने आप को पूरे महीने में सिर्फ एक मिनट देना है।
1: दोस्तों जब कभी भी हम अवेयरनेस की बात करते हैं ना, तो बीमारी को लेकर हमारी एक ही सोच होती है कि ये हमें नहीं होगी, ये तो किसी और को होगी। और जब कभी भी हम ये सोचते हैं ना, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बीमारी कभी भी दस्तक देकर तो नहीं आती है और ना ही वो पिक एंड चूज कर रही है। कहीं ना कहीं आपको भी देखना है कि जिस प्रकार से पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हम ऐसी लाइफस्टाइल्स जी रहे हैं जो शायद हेक्टिक जरूर कहलाती है, लेकिन डिजीज के मायने में ये लाइफस्टाइल जो है ये बहुत घातक है। और हम एक लंबे अरसे तक इस लाइफस्टाइल को तब तक अपनाए रखते हैं जब तक हमें किसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता है। सो जरूरी है कि वक्त रहते एक्शन जरूर लें। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा मेमोग्राफी कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, महिलाएं झिझक के कारण नहीं जाती हैं। सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपकी सोसाइटी में, आपकी मार्केट्स में, आपके घर के आसपास या आपके ऑफिशियल एरिया में कहीं पर भी अगर इस प्रकार के कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं तो मात्र 10 मिनट का टाइम लगेगा, आप जाइए और अपना चेकअप जरूर कराइए और निश्चिंत हो जाइए। कविता जी, अब एक अहम सवाल, जब कभी भी हम कैंसर पेशेंट की बात करते हैं, देखिए वो कैंसर पेशेंट तो एक अलग ही लड़ाई लड़ रहा होता है, लेकिन उसके साथ का जो परिवार होता है उसका जो शायद कहना चाहिए मेंटल हेल्थ का बैलेंस है वो बिगड़ चुका होता है। आप तो इस जंग को लड़ चुकी हैं और अब इतना धैर्य आप में है कि आप बहुतों को इस जंग से लड़ने की हिम्मत दे रही हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनके पेरेंट्स को कैंसर हो जाता है, या फिर कहना चाहिए ऐसी पत्नियां या पति जिनकी पत्नियों को कैंसर हो जाता है, उनके लिए लाइफ डगमगा सी जाती है। किस प्रकार से उन्हें इस प्रकार की अवेयरनेस दी जाए या उन्हें आप कैसे मैनेज करती हैं कि उन्हें यह समझाया जाए कि कैंसर के इलाज के दौरान एक पेशेंट को किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है?
2: देखिए बहुत अच्छा सवाल है। एक हम बहुत अच्छी लाइन कहते हैं कि कैंसर डजंट हैपन टू अ पर्सन, इट हैपन्स टू द फैमिली।
1: यस।
2: ये पूरी फैमिली को मिलके से लड़ना चाहिए। जब मेरे हस्बैंड को कैंसर हुआ तो एक शॉकिंग न्यूज़ थी,
1: बिल्कुल,
2: और दोनों बेटियां बहुत छोटी थी उस टाइम, उन तक इस न्यूज़ को पहुंचाना और ज़्यादा मुश्किल था।
1: यस।
2: बट हमने बैठ के उनसे बात करी, उन्हें सब कुछ बताया कि बेटा ऐसा ऐसा है, पर उसके साथ मेरे हस्बैंड ने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई कि बेटा जो हो गया वो हो गया, हम ये लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जो हमारी नॉर्मल लाइफ है वो वैसे ही जारी रहनी चाहिए
1: जी,
2: उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तुम जिस तरह से स्कूल कॉलेज जाते हो वैसे जाओ, जैसे फ्रेंड्स के साथ जाते हो वैसे जाओ, जिस तरह से तुमने उस दौरान, हम मेरे दो कजन्स की शादी थी, बच्चों ने वो अच्छे से इंजॉय करी, तो उस चीज का जो इम्पैक्ट था वो मेरे हस्बैंड पे भी बहुत अच्छे से आया। उनको कहीं भी इस गिल्ट में हमने आने नहीं दिया कि आपकी वजह से हमारी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई।
1: यस। Yes.
2: तो ये तो हो गया कि हम पेशेंट को किस तरह से, फिर केयर गिवर जो होता है, मैं कहती हूँ वो दोहरी लड़ाई लड़ता है
1: एक्चुअली।
2: पेशेंट फिजिकली कैंसर से लड़ रहा है तो जो केयर गिवर है वो भी उतना ही इमोशनली और मेंटली उस लड़ाई से लड़ रहा है, साथ में उसको अब और भी काम देखने हैं।
1: Yes.
2: जो आपका पार्टनर या वो भी, और अगर मान लीजिए वो पेशेंट आपका बच्चा है तो माँ बाप के लिए वो और भी मुश्किल हो जाती है लड़ाई
1: जी।
2: तो उस समय सिर्फ खाली, आजकल हम एक काम करते हैं, एक नए डॉक्टर्स उभर के हैं साइको ऑनकोलॉजिस्ट
1: जी,
2: तो वो ना सिर्फ पेशेंट्स की काउंसलिंग करते हैं वो केयर गिवर्स की भी काउंसलिंग करते हैं। हम जो अपने सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स करते हैं जहाँ पे हम पेशेंट्स को आपस में मिलवाते हैं, वहाँ हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने मेन जो आपका जो प्राइमरी केयर गिवर है उसको भी साथ में लेकर आइए, क्योंकि जब लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, एक जैसे लोग बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक उनको बहुत राहत मिलती है कि ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, कोई और भी है इसमें जो ऐसी लड़ाई लड़ रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी टिप्स शेयर होती हैं आपस में जो जिसे कहते हैं ना नॉलेज का आदान प्रदान होना, और वो नॉलेज आपकी एकेडमिक नॉलेज नहीं होती, वो एक इमोशनल नॉलेज होती है
1: एक्चुअली।
2: और तो इसलिए ये सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स बहुत जरूरी हैं फॉर द इमोशनल हेल्थ ऑफ केयर गिवर्स एंड द पेशेंट्स एज वेल बोथ।
1: दोस्तों, जब कभी भी मैं किसी भी ऐसी बीमारी की बात करती हूँ ना जिससे आपको जान गंवाने का डर बना रहता है, सो एक चीज हमेशा होती है कि आसपास के लोगों को ना जिस दिन वो बीमारी डायग्नोज की जाती है उस दिन से एक अजीब सा डर और खौफ मन में समा जाता है, और वो खौफ होता है न जाने कितना समय है। एंड बिलीव यू मी, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका कैंसर डिटेक्ट ही तब होता है जब वो थर्ड स्टेज पर होता है या फोर्थ स्टेज पर होता है, और तब उसके बाद जब डॉक्टर्स ये कहते हैं कि बहुत कम समय बचा है, काश आप पहले आते तो ये ठीक हो पाते, तो तब ऐसा लगता है कि काश हमने इसे जल्दी डायग्नोस करवा लिया होता। लेकिन अर्ली डायग्नोस तभी पॉसिबल है जब आप अपने रेगुलर चेकअप्स करवाएं, जो हमारे भारत में या मुझे कहना चाहिए कि हमारे समाज में बहुत ही अनकॉमन चीज है। हम बहुत बड़ी अमाउंट को बाकी सारी चीजों पर खर्च कर देते हैं, लेकिन अपने हेल्थ चेकअप्स पर हम उन पैसों को कभी खर्च नहीं करते हैं, ये सोचते हुए कि ये जो चेकअप्स हैं ये व्यर्थ का कॉस्ट है। सो कैंसर जैसी बीमारी से बहुत अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट होने से आप बड़ी आसानी से बड़ा ही नॉर्मल जीवन जी सकते हैं और आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, लेकिन आपके पास ये अवेयरनेस या ये नॉलेज होनी चाहिए। कविता जी, अब बात करते हैं फाइनेंसिस की। एनजीओ तो चलते हैं, काम भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है कि जब आप खुद स्ट्रगल कर रही हैं, अब तो आपकी लाइवलीहुड भी आपके ऊपर है, दो बेटियों की जिम्मेदारी आप पर है, और उसके बाद बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को आप सपोर्ट करवा रही हैं, चाहे फिर वो ब्लड कैंसर के पेशेंट्स हैं, और बहुत सारी महिलाओं को आप इस प्रकार की जो प्रोस्थेसिस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे पा रही हैं। सो कैसे मैनेज करती हैं आप ये?
2: देखिए, इसके अंदर सबसे जो कहूँगी कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा है वो CSR का है
1: जी।
2: बहुत सारी कंपनी हमें अपने CSR इनिशिएटिव के अंडर सपोर्ट कर रही हैं, साथ में बहुत सारी फंडिंग, इंडिविजुअल फंडिंग जिसको हम बोलते हैं
1: जी।
2: बहुत सारी फैमिली मेंबर्स मेरे ऐसे हैं जो रेगुलर डोनेट करते हैं, फ्रेंड्स हैं ऐसे जो रेगुलर डोनेट करते हैं, और कुछ फंड रेजिंग प्रोग्राम्स हम किस तरह से चलाते हैं। पर हाँ, मैं ये कहूँगी कैंसर NGO होने के नाते हमेशा एक फंड क्रंच बना रहता है, क्योंकि फंडिंग आती है उसी समय चली जाती है, क्योंकि कैंसर का इलाज थोड़ा महंगा है
1: जी,
2: आप कह सकते हैं। तो पर हाँ, भगवान की दया से बना हुआ है, आज हमें 5 साल हो गए, और हर साल हम जितने पेशेंट्स को ये ब्रास बांट पाते हैं वो नंबर बढ़ता ही जा रहा है। पहले हम सिर्फ दिल्ली NCR में बांट रहे थे, आज हम टाटा मेमोरियल बॉम्बे में भी बांट रहे हैं, CMC वेल्लोर में भी बांट रहे हैं। तो इस तरह से वर्ड ऑफ माउथ से ये चीज़ें बढ़ रही हैं, और फंडिंग भी बस उतनी ही चाहिए ही भी होगी आगे। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगी, अगर कोई डोनेट करना चाहता है हमें तो हमारी वेबसाइट पे जाके डोनेट कर सकता है।
1: दोस्तों वाकई, मतलब देखिए, जब कभी भी मैं किसी भी NGO से पूछती हूँ कि आप नेकी का काम करने तो चले हैं, लेकिन नेकी आप अपने घर से ही कितने दिनों तक कर सकते हैं, जो अपने आप में एक चैलेंज है, लेकिन डेफिनेटली इसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, और वो लोग हम बन सकते हैं। कविता जी, आप मुझे बताइए, मान लीजिए कि कोई आपके साथ वॉलंटियर करना चाहता है, बहुत सारी महिलाएं आपको सुन रही हैं, कोई आपके साथ एसोसिएट होना चाहता है, और साथ के साथ मान लीजिए कि कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो क्या तीनों प्रोविजंस में वो आपके साथ जुड़ सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे?
2: हाँ, आप अगर किसी कैंसर पेशेंट्स की मदद करना चाहते हैं, और मदद सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होती
1: जी,
2: आप अपना समय भी देख के आप टाइम डोनेट कर सकते हैं अपना, उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.winovercancer.net, उस पर जाके एक वॉलेंटियर फॉर्म है, आप वो भर सकते हैं, या फिर आप हमें डायरेक्टली मेल कर सकते हैं winovercancer.net@gmail.com पे। और अगर आप हमारे को कोई फाइनेंशियल डोनेशन देना चाहते हैं तो उसका लिंक भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के ऊपर www.winovercancer.net पे। तो जो डोनेशन होती है वो सिर्फ फाइनेंशियल डोनेशन नहीं होती, टाइम डोनेट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना फाइनेंशियल डोनेशन।
1: जिस प्रकार से हम महिलाओं की अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, साथ के साथ समाज के अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो क्या इस प्रकार के अवेयरनेस कैंपेन्स भी आप चलाती हैं और क्या इसमें भी लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं?
2: हाँ जी, मैं बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं हम, जिसमें कैंसर, जनरल कैंसर अवेयरनेस टॉक्स होती हैं, या फिर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस टॉक्स होती हैं, और वर्कशॉप्स होती हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए, जो आज के समय में हर महिला को आना चाहिए। वो चाहे तो अपने ग्रुप में, अपने कॉरपोरेट में, अपनी सोसाइटी में इस तरीके की वर्कशॉप हेल्ड करवा के, इस तरीके की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवा के भी हम, मैं तो कहूँगी हमारी मदद कर सकते हैं, अपनी मदद के साथ साथ हमारी मदद कर सकते हैं कि हम अपने इस मिशन में आगे बढ़ें कि हर महिला को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली लक्षण पता होने चाहिए।
1: जी, सो दोस्तों वाकई हम सब इनकी मदद कर सकते हैं, और मैं आप सभी से पर्सनल अपील करूंगी कि ये मदद का हाथ आगे बढ़ाइए। विन ओवर कैंसर एक बहुत ही खास फाउंडेशन है, एक बहुत ही खास संस्था है, जो न सिर्फ कैंसर पेशेंट्स की मदद कर रही है, लेकिन बहुत सारी ब्रेस्ट कैंसर की महिलाओं को इस प्रकार का जीवन दान दे रही है, जो जीवन दान उन्हें हमेशा चाहिए। दवाइयों से वो अपने कैंसर को तो जीत पाती हैं, लेकिन एक बार उनका ब्रेस्ट चला जाता है तो एक अजीब किस्म का जिंदगी में खालीपन आ जाता है, उनकी पर्सनालिटी में खालीपन आ जाता है, जिसको भरने की कोशिश कर रही हैं कविता गुप्ता जी। और देखिए भाई, मैं हमेशा ये कहती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने दुख से ऊपर उठकर लोगों के दुख को समझें, जो कविता जी ने बखूबी समझाए। कविता जी, आज इस प्लेटफॉर्म से मैं चाहती हूँ जिस चीज को शायद आप हर रोज अपने अवेयरनेस सेशन में या लोगों को बताने की कोशिश करती हैं, कुछ बेसिक मिथ्स जो महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर को लेकर रखती हैं, क्या आप उन्हें आज इस प्लेटफॉर्म से बस्ट करना चाहेंगी और उन्हें डूज और डोंट्स बताना चाहेंगी?
2: देखिए, सबसे पहले मैं तो आपको कहूंगी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे मिल रही है, उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर करिए किसी भी ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ, ठीक है? तो एक बहुत बड़ा मिथ जो फैल रहा है वो है कि ब्लैक ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, जो बिल्कुल गलत है। अंडरवायर ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, जो बिल्कुल गलत है। आपको बहुत सारी लेडीज को गांठ पता चल जाती है, पर वो उसको चेक नहीं कराती ये सोच के कि इसमें दर्द नहीं है। 90% टाइम्स जो कैंसर की गांठ होती है उसमें दर्द नहीं होता है। तो ये सोच के किसी भी लंप को, किसी गांठ को नजरअंदाज ना करें कि उसके अंदर दर्द तो हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं। फिर एक और जो बहुत बड़ा मिथ है वो ये है कि हम किसी प्रकार की बायोप्सी या FNAC, जो एक टेस्ट होता है, नीडल वाला जो टेस्ट होता है, वो करवाएंगे तो हमारा कैंसर फैल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, कैंसर इस तरह से नहीं फैलता है। अगर वो फैला होगा तो वो पहले से ही फैल चुका होगा आपके। तो इस तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती हैं सोशल मीडिया के थ्रू, उसको प्लीज एक बार किसी डॉक्टर के साथ डिस्कस कर ले कि भाई हमने ये कहीं पे पढ़ा है या सुना है, तो ये सही है कि नहीं है। डीओज लगाने से कैंसर हो जाता है। फिर एक बहुत बड़ा मिथ आजकल चल रहा है कि चीनी खाने से कैंसर हो जाता है। चीनी खाने से तो बहुत सारी बीमारी हो जाती है, क्योंकि हम ओबीज हो जाते हैं। तो चीनी कोई कैंसर पेशेंट्स का खाना नहीं है, चीनी कि कैंसर सेल को उसके ऊपर ही फीड करना है, ऐसा नहीं है। कैंसर सेल तो अपने आप ही बढ़ते हैं। तो प्लीज ये ना सोचे कि चीनी बंद कर देंगे तो हमें कैंसर नहीं होगा। चीनी का और कैंसर का, चीनी और ओबेसिटी का डायरेक्ट है नाता, पर चीनी और कैंसर का डायरेक्ट कोई नाता नहीं है। तो इस तरीके के बहुत सारे मिथ्स हैं जो चल रहे हैं, तो उनको बस्ट एक डॉक्टर ही कर सकता है, मैं तो कहूंगी।
1: वाकई, और मुझे ऐसा लगता है कि कविता जी, जब आप इन सेशंस को लेने जाती होंगी अवेयरनेस, आपको बड़ा कई बार आश्चर्य होता होगा कि लोग न जाने किन चीजों पर विश्वास कर लेते हैं, और डॉक्टर्स बेचारे जो इतनी अच्छी सलाह आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनकी बात ही नहीं सुनते हैं। तो बहुत सारी मिथ्स हैं। देखिए वाकई महिलाओं को तो मैं जरूर कहूंगी, रात भर अगर आप ब्रा पहनकर सो रहे हैं तो आपको कैंसर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसी प्रकार अंडरवायर ब्रास अगर आप पहन रहे हैं या फिर काले रंग की ब्रा पहन रहे हैं, देखिए हर चीज का सिर्फ एक डायरेक्ट नाता नहीं है। हाँ, अगर आप हर रोज काला पहन रहे हैं, आप सन से एक्सपोज्ड हैं, सो उसके दूसरे कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे। सो जानकारी सही लीजिए, और जरूरी है कि डॉक्टरी सलाह लेते रहे। तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी कविता जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। जाते जाते क्या खास संदेश आप देकर जाना चाहेंगे इन सभी लिसनर्स को?
2: एक खास संदेश मैं देना चाहूंगी कि एक लाइन बहुत फेमस है कि जॉय ऑफ गिविंग
1: जी,
2: और मैं कहती हूँ कि इट्स द पावर ऑफ गिविंग। मैंने जब ये काम स्टार्ट करा वो शायद मेरी लाइफ का वर्स्ट पीरियड था
1: जी।
2: मेरे हस्बैंड कैंसर से जूझ रहे थे, उनका कैंसर का बहुत रिग्रेस ट्रीटमेंट चल रहा था जिससे कि वो काफी बीमार रहते थे, और उस टाइम पे मैंने ये काम शुरू करा। और जब मैं एक एक पैकेट प्रोस्थेटिक ब्रा का, जिसको हम डिग्निटी पैक बोलते हैं
1: जी,
2: मैं खुद एम्स जाती थी उस टाइम पर और बांटती थी, और जब मैं एक एक पैकेट अपने हाथ से देती थी तो मुझे एक पावर महसूस होती थी। वो पावर क्यों महसूस होती थी कि मैं हर समय ये सोचती थी कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ। मेरे पास फाइनेंसेस हैं हस्बैंड का इलाज कराने के लिए, मेरे पास नॉलेज है कि उनका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। जो यहाँ पर आ रही हैं ये लेडीज, इनको कोई नॉलेज नहीं है, इनके पास इस तरीके के कोई भी साधन नहीं है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आराम से इलाज करा। तो वो चीजें देख के मुझे खुद अपनी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए एक अलग शक्ति मिलती थी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आई ऑलवेज फाइंड द पावर इन गिविंग। तो हमारी अपनी प्रॉब्लम्स लाइफ, आज के में कोई ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो अपनी प्रॉब्लम से ऊपर होके अगर हम किसी एक जने की भी मदद करके आप देखिए कभी, तो आपको जो वो पावर महसूस होगी ना अपनी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, वो भगवान एक अलग ही शक्ति देता है।
1: डेफिनेटली मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको भगवान दुख दे रहा है ना, तो उसको बर्दाश्त करने की शक्ति और उस शक्ति से ऊपर उठकर कुछ नेकी का काम करने की राह जरूर दिखाता है। और आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे ट्रॉमेटिक टाइम से गुजरे हैं, लेकिन जब वो उस टाइम से बाहर निकल कर आए हैं तो वो इतिहास क्रिएट कर चुके होते हैं। और कुछ ऐसा ही खूबसूरत सा काम कविता वैद्य गुप्ता जी कर रही हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन को देंगे, और मैं तो इस पूरे समाज की तरफ से आपको धन्यवाद कहूंगी कि आप इतना बेहतरीन काम कर रही हैं। और मेरी पर्सनल अपील सभी से कि भाई इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप हाथ जोड़कर जरूर काम करें। तहे दिल से धन्यवाद कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए।
2: थैंक यू भावना जी, थैंक यू।
1: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। मुझे यानी आरजे भावना को दीजिए इजाजत। फील गुड, फील लाइव।

रेडियो मानवृष्णा 107.8 एफएम पर मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के पास में। मैं हूँ प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ, और ये मेरी लाइफ में आप सभी का स्वागत है, जहाँ मैं होती हूँ आपके पास 1 बजे से 3 बजे तक, जहाँ गाने आपको सुनाती हूँ और होती है ढेर सारी बातें। और आज बातों के साथ साथ मैं सिर्फ अकेले ही आपसे बात नहीं करने वाली हूँ, बल्कि एक ऐसी शख्सियत मेरे शो में आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ होने वाली है, स्टूडियो में होने वाली है, जिनसे आपको भी बहुत कुछ सीखने जानने सुनने को मिलेगा। ये कौन है इनके बारे में मैं जरूर बताऊंगी। चलिए पहले नाम बता देती हूँ आपको, इनका नाम है डॉक्टर शेफाली गुप्ता, लेकिन इनकी बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ थोड़ी सी देर में, क्योंकि अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहले ही जैसे हम शुरुआत करते हैं तो एक गाना सुनाती हूँ, वो गाना होता है मेरी पसंद का। तो आज भी मेरी पसंद के गाने से इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, और साथ के साथ आप अपनी पसंद सुनना चाहते हैं या कोई आप मैसेज शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ में, या कोई गाना किसी को आप डेडिकेट करना चाहते हैं, कोई दूर बैठा है उसको आप गाना सुनाना चाहते हैं, अपने दिल की बातें उन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो नंबर है हमारा 8010781078। तो चलिए एंजॉय करते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना। मैं हूं प्रियंका आपके साथ, रेडियो मानवृष्णा 107.8 एफएम पर।

0: ये गाना आपने सुना रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. मैं हूँ प्रांका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. और आज स्टूडियो में हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता और ये एक एजुकेशनिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्टूडेंट काउंसलर हैं. साथ के साथ इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में PhD की है और कई नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में ये यूथ को मोटिवेट कर चुकी हैं और समाज और युवाओं के लिए लगातार काम कर रही हैं. और इनका बहुत बहुत स्वागत. और ये तो सिर्फ चंद चीजें मैंने आपको बताई हैं, अभी तो बहुत कुछ इनसे जानना बाकी है. इनसे हम जानेंगे ढेर सारी बातें, हम इनकी लाइफ से जुड़े जो यू नो ऐसे कुछ ऐसे मुश्किल भरे पल रहे हम सब की जिंदगी में होते हैं, लेकिन ये कैसे उनको पार करके आज इस मुकाम पर पहुंची है हम इनसे जानेंगे. सबसे पहले मैम स्वागत करते हैं आपका इस प्रोग्राम में.
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका. सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार. मैं
0: जी
1: बहुत खुश नसीब हूँ कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया आने का और श्रोताओं से बात करने का मौका दिया. उन सबसे मैंने बहुत सीखा है और आगे भी सीखती रहूंगी. यही मेरा एक एम है समाज के लिए कुछ
0: जी. समाज में जब कुछ कर दिखाने की बात आती है बहुत सारे लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोग इस पे डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पर जाकर के कुछ काम करने की चीज वो बात आती है ना, तब बहुत सारे लोग तो सिर्फ ये सोचकर बैठ जाते हैं कि कौन ही हमारा साथ देगा या इससे क्या ही बदलाव होने वाला है या इतने सारे लोग हैं हम क्या ही कर पाएंगे. ये सोच ही कई बार ना हमें जो हम अच्छा कर सकते हैं उसको हमें पीछे कर देती है. लेकिन ये चीज़ शेफाली जी ने नहीं सोची, आज इसीलिए इस प्रोग्राम में हमारे साथ में हैं. शेफाली जी अब तक का सफ़र आपका कैसा रहा यह तो मैं ज़रूर जानूंगी, लेकिन यहाँ तक आप पहुँची इसके लिए एक सोच जरूरी होती है. वो सोच डेवलप जो होती है ना वो बचपन से होती है, आई गेस आपके केस में भी ऐसे ही हुआ होगा. तो अपने बारे में बताइए, अपनी जो आपकी जो जर्नी रही है अभी तक की, कैसे आपने कैसे अपना मुकाम शुरू किया, बताइए इसके बारे में.
1: मैं एक ही चीज में बिलीव करती हूँ कि जिंदगी खूबसूरत है, बस जीने की जरूरत है.
0: करेक्ट.
1: इसी के सहारे मैं आगे बताना चाहूंगी कि मैं एक सैन्य अधिकारी की पत्नी हूँ, शिक्षा विशेषज्ञ, स्टूडेंट काउंसलर, रिलेशनशिप काउंसलर, और इसके साथ साथ मैं एक ईयर टू ईयर NGO जिसके साथ मैं 6-7 साल से जुड़ी हुई हूँ, मेंटल हेल्थ पर काम करते हैं. और मैं ब्यूटी पेजिंग ग्रूमर, मीडिया पर्सनैलिटी, एक क्षितिज इंडियन आइकोनिक पोएट की संस्था है उसमें मैं ज्यूरी रही हूँ फॉर लास्ट 7 ईयर्स
0: जी.
1: एंड आर्यन टॉक्स की ज्यूरी रही हूँ. ईयर टू ईयर में आपको बताया रिलेशनशिप काउंसलर हूँ. एवीएम में टीचर्स ट्रेनर क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ पहले. TRM में कंटेंट राइटर हूँ. मैं अपने आज के समाज को प्रेरित करने के लिए वहाँ कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ. ULB में स्टूडेंट काउंसलर हूँ जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं. इसके साथ साथ मैं ग्लोबल पब्लिक स्पीकर हूँ. मैंने अपने बहुत सारे लेक्चर्स ऑनलाइन ऑफलाइन लिए हैं, दुबई, कैलगरी, कैनेडा और बहुत सारे अलग अलग तरह की जगह से यूनिवर्सिटीज मेरे साथ जुड़ी हुई हैं. सो आजकल के दौर में नए जमाने के स्टूडेंट या आप कह सकते हैं जैन जी के साथ जुड़े मुझे बहुत पसंद है. वो मुझे एक सोल सेटिस्फेक्शन मिलता है उनसे बात करके, नई चीजें सीखने मिलती हैं और एक तरह से उनको मार्गदर्शन देने का काम मैं हमेशा करती आई हूँ. इसके साथ साथ क्योंकि मैंने PhD किया है पॉलिटिकल साइंस में, मेरा टॉपिक मीडिया से रिलेटेड था, इसीलिए मीडिया मेरे लिए बहुत दिल के करीब है, मेरा पैशन है. सो मैंने रेडियो द्वारिका में काम किया है, NewsX में थोड़े दिन काम किया है, वेयर आई वॉज करेक्टिंग द कंटेंट्स एंड ऑल. सो इस तरह मेरी जर्नी की शुरुआत में इंस्पिरेशन मुझे पेरेंट्स मेरे 21-22 ईयर्स तक तो साथ थे ही, उसके बाद भी उन्होंने कभी भी हम दो सिस्टर्स हैं उनको ये नहीं फील होने दिया कि हम गर्ल्स हैं. आजकल बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने उस टाइम में हम सबको इतना एजुकेट किया कि आज हम दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं और हम इस समाज में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं. फिर मेरे हस्बैंड क्योंकि आर्मी में हैं, जगह जगह पोस्टिंग रही है हमारी, तो हमारे साथ जितनी सीनियर लेडीज थे, जितने हमारे साथ फ्रेंड सर्कल बना, हमारी फ्रेटर्निटी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, जहां हम हाई और लोज ऑफ लाइफ साथ में शेयर करते हैं. सो उनसे हमने बहुत सीखा, सीखते सीखते बच्चे हुए, बच्चे बड़े हो गए, अपनी अपनी जगह चले गए, फिर बच्चों ने हमें सिखाया, बच्चों ने मुझे सिखाया आज के टाइम में सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या होता है.
0: Correct.
1: कैसे हम लर्निंग को अपडेट कर सकते हैं. हमारी लर्निंग उस टाइम की है जहां हम लिखा करते थे, आजकल लैपटॉप आ गया है, आपका इतनी सारी चीजें आ गई हैं,

0: आपको सोशल मीडिया में एवरीडे अपलोड करने के लिए कुछ चाहिए होता है. तो इतना ज्यादा प्लेथोरा ऑफ कंटेंट है कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है, कितना सेफ रहना है एआई के जमाने में, इतने फ्रॉड्स होते हैं. ये सब चीजें मैंने अपने दोनों बच्चों से सीखी. आज भी दोनों मेरे को यही बोलते हैं, मम्मी यू हैव गिवन योर लाइफ टू अस, नाउ इट इज योर टाइम टू फ्लरिश एंड गिव बैक टू द सोसाइटी. सो मेरी पूरी फैमिली मेरे पीछे साथ में खड़ी है. जो हूँ आज मैं वो उनकी वजह से, माई सिस्टर, माई पेरेंट्स, हस्बैंड, माई चिल्ड्रन, ऑल आर एट द बैक ऑफ मी.
1: तो बिल्कुल इतना सब कुछ आपने बताया, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप रिलेशनशिप कोच भी हैं और बहुत सारी चीजें, आप एनजीओ भी चला रही हैं, फिर आप एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हैं, मतलब इतना सब कुछ कि मैं किसी एक चीज से तो आपको नहीं आपको कुछ कह पाऊंगी. हाँ ये जरूर कहूंगी कि मल्टीटास्किंग लेडी से हम बात कर रहे हैं जिन्होंने हर क्षेत्र में अपने जो है हाथ आजमाए हुए हैं और अभी भी काम कर रही हैं. कभी जब आप पीछे मुड़कर खुद को देखती हैं और जब आप ये देखती हैं कि मैंने कितना सब कुछ कर लिया है, एक ये ख्याल तो मन में आता ही होगा, तो क्या थॉट आता है पहला आपके दिमाग में?
0: सबसे पहले तो मैं बताऊंगी इसका श्रेय पूरा मेरी आर्मी फ्रेटर्निटी को जाता है. जब आप आर्मी में होते हैं, आपके हस्बैंड आगे पोस्ट होती है, तो आप अपने आप खुद बच्चे मैनेज करते हैं, घर मैनेजमेंट होता है, तो हाफ ऑफ द मैनेजमेंट हमें इवेंट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, देन वी ट्रैवल अलोन, वी डू एवरीथिंग अलोन. ये एक जो पावर आर्मी ने मुझे दी है, उसमें मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि जितने भी काम हम मल्टीटास्किंग के आज कर पाए हैं, इट वॉज द ग्रूमिंग डन बाय दैट. सो आई ओ माई मल्टीटास्किंग एबिलिटी and many more things to my army fraternity. My thanks to my juniors and seniors. I learned a lot from them. बहुत कुछ सीखने मिला मुझे उनसे. और दूसरा उन्होंने मुझे ये बताया, क्योंकि हम बहुत सारे स्टेज शोज करते हैं, हम कंपेयर करते हैं. I have already done almost more than 2000 स्टेज शोज. I have compared a lot, more than 4000, 5000 shows there. So एक अंदर जो आत्मविश्वास होता है, मैंने एनसीसीसी सर्टिफिकेट किया था, उसमें था मेरे में आत्मविश्वास, पर मैरिज के बाद कभी बच्चे हो जाते हैं, आप अपने में इतना बिजी हो जाते हैं कि आर्मी ने वो कॉन्फिडेंस दिया मेरे को आगे बढ़ने के लिए कि मैं अपने ऊपर खुद सबसे पहले भरोसा करूं. सो आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आज तक मैं अब खुद को पहली प्रायोरिटी देती हूँ. माई सेल्फ केयर इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी इन माई लाइफ, देन एनीथिंग एल्स कम्स इन माई लाइफ, इवन फॉर द फैमिली ऑल्सो. जब मैं अपनी केयर कर पाऊंगी तभी मैं फैमिली की केयर कर सकती हूँ.
1: करेक्ट, बहुत सही बात आपने बोली कि जब मैं अपना ध्यान रख पाऊंगी, जब मैं स्ट्रांग रह पाऊंगी तभी मैं दूसरों का ध्यान रख सकती हूँ. और ये एक बहुत ऐसी गहरी सच्चाई है जो हम सब जानते भी हैं, वाकिफ है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम अपने आप को ताक पर रखते हैं दूसरों की वजह से. इस पर हम बात करेंगे क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे मैं कहूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सुननी चाहिए. मैम से जरूर बात करेंगे. डॉक्टर शेफाली गुप्ता हमारे साथ में इस प्रोग्राम में. प्रोग्राम का नाम है ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांगाम के साथ.

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो मानव वैष्णव 107.8 FM पर. मैं हूं प्रांक आपके साथ और प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ मेरे बिल्कुल सामने स्टूडियो में बैठे हैं डॉक्टर शेफाली गुप्ता, जिनसे आज हम बहुत सारी बात कर रहे हैं. ये काफ़ी प्रेरणादायक शख्सियत हैं जिन्होंने अपने शिक्षा से, अपने अनुभव से काफ़ी कुछ अचीव किया है. तो इनसे हम बात कर रहे हैं. अभी जैसे आपने कहा कि जब तक आप स्ट्रांग नहीं रहेंगे तब तक आप कहीं ना कहीं, ये सच्चाई भी है कि खुद को स्ट्रांग रखना ज़रूरी है. फैमिली को तभी हम टेक केयर कर पाएंगे, तभी हम अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगे, हम खुद के लिए अच्छा कर पाएंगे, राइट. आज की जो महिलाएं हैं वो इतना ज़्यादा बिजी हैं कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाती हैं, परिवार को देखने में, अपने करियर को बनाने में इतना डूब जाती हैं कि अपने ऊपर वो ध्यान ही नहीं रहता. और कहीं ना कहीं फिर जब एक एज आती है, जब हम उस चीज़ को अनुभव करने का, जब वो एक्सपीरियंस करने का जब वो पल आता है ना, तब हम अपने हेल्थ को लेकर परेशान होते हैं, अपने आप को लेकर परेशान होते हैं. आप क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी महिलाओं को?
1: आपने बिल्कुल सही कहा. आज के दौर में हम आर्टिफिशियल दुनिया में इतना आगे भाग जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि एक इतने खूबसूरत इंसान हम थे. आप सोचो जब हमारा बचपन था कितना सुंदर होता था, किसी चीज की फिक्र नहीं थी, बेफिक्र रहते थे हम. आज के टाइम में बच्चों का बचपन भी धीरे धीरे छिनता जा रहा है, बाहर गेम्स कोई नहीं खेलने जा रहा है. अब थोड़ा सा कॉन्शियसनेस आई है लोगों में, समाज में, पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा. और जहां तक आज की नारी की बात करते हैं, आज की नारी मल्टीटास्किंग जैसे आपने बोला वो करते हैं, लेकिन मैं जो सोचती हूँ, आपको अपनी बॉडी को ऐसे ट्रीट करना है जैसे आप अपनी बॉडी के ऊपर होमवर्क कर रहे हैं. जब हम क्लास में जाते हैं, हम कुछ सुनते हैं, फिर हम होमवर्क करते हैं घर आकर, ऐसे ही हमारी बॉडी एक हमारा पार्ट है जिसको हमें लुक आफ्टर करना है. वो बेबी की तरह है, उसके लिए हमें बहुत सारा होमवर्क करना होता है. आप मॉर्निंग में मेडिटेशन करिए, ग्रेटिट्यूड रखिए, योगा करना चाहते हैं योगा करिए, निकालिए अपने लिए टाइम. ब्यूटीफुल सुंदर वर्ल्ड है, कितनी सुंदर दुनिया है वहां सुबह की. ऑक्सीजन मिलती है सीधा. अपनी बॉडी के लिए जो सुबह काम कर सकते हैं आप, एक घंटा नहीं, एक घंटा शुरुआत होती है, 5 मिनट से तो करिए. स्टार्ट विद 5 मिनट्स, 10 मिनट्स बढ़ाइए, नेक्स्ट वीक 20 मिनट्स बढ़ाइए. कुछ चंद लम्हे उस इंसान को दीजिए जिसको सुबह उठ के आप शीशे में देखते हैं और वो आप हैं. लुक एट द मिरर एंड से यस दिस इज मी, टुडे इज गोइंग टू बी माय डे. आज मैं जो चाहती हूँ वो मैं लेकर आऊंगी. शाहरुख खान ने भी बोला है ना, किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि सारी कायनात उसे मिलाने में आपका साथ देती है. तो यही अगर आप अपनी बॉडी के लिए केयर करना सीखेंगे, सेल्फ लव सीखेंगे. और शायद मैंने प्रियंका बताया था आपको, आजकल बटरफ्लाई हग बहुत चल रहा है. दैट इज यू पुट योर राइट हैंड ऑन योर लेफ्ट शोल्डर, पुट योर लेफ्ट हैंड ऑन योर राइट शोल्डर एंड से दिस इज मी, आई लव यू, आई लव माई सेल्फ. सो ये जो बटरफ्लाई हग है ये एक मैजिकल हग होता है. आप शीशे में उस इंसान को जिसको आप 24 आवर्स चलाते हैं किसी दुनिया में बाहर की, उसमें थोड़ा सा टाइम देके देखिए, देखिए ये मैजिक दिखेगा आपको. दिखना शुरू विद इन सेकेंड शुरू हो जाते हैं, बिकॉज ये अफर्मेशंस हैं. इनको
0: सच्चे दिल से करना है,
1: सच्चे दिल से करना है. अफर्मेशंस होते हैं ना, दिस इज मी, आई द डे इज बाउंड टू बी माई डे टूडे एंड इट विल हैपन. यू आर गिविंग द यूनिवर्स ऑल दीज, यू नो, ऑरा, योर ऑरा इज क्रिएटिंग अ वाइब्रेशन इन द यूनिवर्स. तो आपकी चीजें अच्छी होंगी.
0: बिल्कुल,
1: सोच पे निर्भर करता है. मैं कहती हूँ आजकल की जितनी नारियां हैं उनको यही बोलती हूँ कि आपके पास वो पावर है, आपके पास व्हाट्सएप है, आप उसमें डीपी लगाते हैं. मैं उसको बोलती हूँ डिस्प्ले पॉजिटिविटी. आप क्यों पॉजिटिव सोच नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं. आपका आधा 50% काम उस पॉजिटिव सोच रखने से खत्म हो जाएगा. अगर आप सोचते हैं आज मुझे ये करना है, तो आपका आधा काम तो हो गया, उसके बाद तो आपको थोड़ा सा काम ज्यादा आगे करना है. तो सभी नारियों से मेरी यही एक मेरा कहना है कि आप सबसे पहले अपनी इस खूबसूरत इंसान को जिसको आप शीशे में देखते हैं उसे टाइम दीजिए, उसको ठीक रखिए, स्वस्थ रखिए और खुश रखिए.
0: बिल्कुल,
1: तो आप अंदर से मन खुश होगा तो आप बाहर से भी स्वस्थ रहेंगे
0: जी. तो जादू की झप्पी बहुत जरूरी है, ये मैम भी कह रही हैं. तो अपने आप को पहले जादू की झप्पी देना शुरू कीजिए और अपने लिए अच्छा कहना, अच्छा सोचना शुरू कीजिए. और ये ना मैं बहुत मानती हूँ कि अगर मान लीजिए किसी के साथ में कोई झगड़ा हो गया या कोई ऐसी बात हो गई है ना, और उसके बाद दिमाग में वही चीजें चलती रहती है और आप जैसा फिर सोचते हो ना वैसा ही आप रिएक्ट करने लगते हो, आप के जो एक्शंस है ना वो भी बिल्कुल वैसे हो जाते हैं जो आप सोच रहे होते हैं। अगर आप अग्रेसिव कुछ सोच रहे हैं तो वो अग्रेसिव जो एक्शंस हैं वो दिखाई देते हैं। तो इसीलिए इसके उलट आप सोचिए, आपको हमेशा अपने मन में प्यार रखना है, अच्छापन रखना है, अच्छा हर इंसान होता है, लेकिन उस चीज को बस अब आपको उस शैडो से निकल करके सामने लाना है, फिर आप देखिएगा आपकी पर्सनालिटी, आपने खुद भी कभी यकीन नहीं किया होगा, और ये खुद मैम कह रही हैं और इतना एक्सपीरियंस, अभी हम और बहुत सारी बातें हम मैम से जानेंगे, साथ के साथ मैं सुना रही हूँ गाना, तो इस वाली बात पे मुझे एक गाना याद आ रहा है, मैं आपको सुनाती हूँ, बहुत मोटिवेट करेगा आपको ये गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रांका आपके साथ।

गाने जो मैं आपको सुना रही हूँ आपको कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा। नंबर है हमारा 8010781078 रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। मैं हूँ प्रांका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और हमारे साथ में है डॉक्टर शेफ

0: मिताली गुप्ता जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, स्टूडेंट काउंसलर हैं। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी किया हुआ है और कई नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में यूथ को मोटिवेट करती हैं। इसी के साथ ही ये रिलेशनशिप कोच हैं और बहुत सारी चीज़ें जो लगता है जो ये कर रही हैं उनसे अभी जानना बहुत कुछ बाकी है। लेकिन पहली चीज़ जो सबसे पहले मेरे दिमाग में, जैसे कि आपने कहा कि आप आर्मी ऑफिसर की वाइफ हैं और कहीं ना एक ये सवाल सबके जहन में रहता है कि मुश्किल होता होगा ना, ऐसे कि एक डर रहता है हमेशा, राइट? एक मन में हमेशा डर बना रहता है, साथ में बच्चों को भी टेक केयर करना है, घर भी देखना है, तो कैसे मैनेज, मतलब सबसे पहले तो सल्यूट है आपको, कैसे आप मैनेज कर पाती हैं इतना सब कुछ और कैसे उस डर से आप बाहर निकल पाती
1: हैं? कहते हैं खुदा ने शायद हम लोगों को चुना है इतने सारे लोगों में जो स्ट्रांग लेडीज हैं कि हम इस डर से ऊपर निकल सकते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें आर्मी ऑफिसर्स की पत्नी के लिए चुना है शायद, क्योंकि हमारा जो डर है वही हमारी ताकत है।
0: करेक्ट।
1: हम लोग साथ में रहते हैं, हमारे यूनिट है, ब्रिगेड है या कोई भी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है आर्मी में, वो सब इतना साथ में एक दूसरे के साथ रहते हैं कि हमें लगता ही नहीं हम अकेले हैं या डर हमें कभी साथ लेगा। जैसे हम सिस्टर्स आपस में एक घर की तरह रहते हैं, फैमिली की तरह रहते हैं, वैसे ही हमारे साथ हमारे सुख दुख में हम सब एक दूसरे के साथ एक फैमिली की तरह काम करते हैं, तो कभी अकेलापन नहीं लगता है। इट्स अ बिगर लार्जर ब्यूटिफुल फैमिली विच वी कैरी विद अस, सो डर का तो सवाल ही नहीं उठता है। और दूसरा, डर हमें इसलिए भी नहीं लगता है क्योंकि हमारे हस्बैंड एक देश के लिए कुछ कर रहे हैं और वो एक बहुत गर्व की बात है। आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में जो जो इंसिडेंट्स हुई हैं वो हमारे लिए बहुत गर्व से सर ऊंचा करने वाली बात है, देश के गौरव के लिए, राष्ट्र के गौरव के लिए, गरिमा के लिए। और मैं बहुत ज्यादा अपने आप को गौरवान्वित फील करती हूँ ये कहते हुए कि बाकी सब चीजों से ऊपर जो मेरी आज पहचान है वो यही है कि मैं आर्मी ऑफिसर की पत्नी पहले हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत सम्मान का विषय है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, कहीं ना कहीं सपोर्ट, कहीं ना कहीं वो केयर, वो प्यार, वो भी कहीं की आगे बढ़ने में सपोर्ट देती है। वही एक सपोर्ट और होता है जो हमारे लाइफ सिस्टम होते हैं, हमारे जो अपने परिवार वाले होते हैं, आप इसे जो भी नाम दे सकते हैं, मुझे बताना अगर आपने कोई नाम दिया हुआ है अपने किसी लव्ड वन का। लेकिन इनका सपोर्ट ना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप कुछ कर रहे हैं लाइफ में, और जितना आपने अचीव किया है इसमें अपनों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो क्या क्या कहना चाहेंगे
1: कि बिल्कुल सही कहा। हाँ,
0: जी,
1: इस सपोर्ट के बिना तो कोई आगे नहीं बढ़ता है।
0: बिल्कुल,
1: मेरे फादर हमेशा कहते हैं हमारे पास कुछ सर्कल्स होते हैं, हमारा जो इनर सर्कल है उसमें सिर्फ हम है, इट्स मी आई, जिसके ऊपर सारे लोग टिके हुए हैं। सेकंड सर्कल में आपके हस्बैंड और बच्चे आते हैं जो आपकी फैमिली बनते हैं, उनका भी आपके ऊपर बहुत सारी निर्भरता रहती है, उनको मेंटली सपोर्ट करना है, फिजिकली सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली सपोर्ट करना है बच्चों को आपको, तो हस्बैंड और वाइफ मिलकर ये चीजें आगे प्लान करते हैं। अब बच्चों का साथ हमेशा रहता है, वो हमेशा बच्चे रहेंगे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, सो ये सपोर्ट हमारे सेकंड सर्कल का है। थर्ड सर्कल में हमारे आते हैं हस्बैंड के पेरेंट्स और गर्ल के पेरेंट्स, सो इन चारों भी हमारे ऊपर डिपेंड है क्योंकि हम ये इनको सपोर्ट करते हैं, मेंटली भी लुक आफ्टर करना होता है उनका, उनकी आज की जरूरतें पूरी करनी होती हैं। और तो आजकल मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स और सब है जो अपने आप में खुद ही इतने इंडिपेंडेंट हैं कि वो कर लेते हैं, और कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो केयर के लिए भी हमें मिल जाती हैं। उसके बाद फिर हमारा आउटर सर्किल आता है जहां हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमारी जिंदगी हैं। आजकल की दुनिया में फ्रेंड्स होना और फ्रेंडशिप खत्म होना मैंने बहुत यंग बच्चों में देखा है। आप लोग फ्रेंडशिप को सिर्फ वहां तक देखते हैं जहां आप एंजॉयमेंट देखते हैं, आप वहां तक फ्रेंडशिप को देखते हैं जहां आप ये चाहते हैं कि अच्छा आज हम यहाँ चलेंगे, आज हम यहाँ खाना खाएंगे, आज हम मूवी साथ में देखेंगे, पर फ्रेंडशिप इससे ऊपर है। ये फ्रेंडशिप आपकी जो बनती है आपके इस सर्किल में, ये आपके फैमिली बन जाती है। कुछ टाइम के बाद आपका फैमिली फ्रेंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फ्रेंड्स फैमिली में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप देखिएगा 50 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ लाइन ही फ्रेंड्स होते हैं। वो लुक फॉरवर्ड करते हैं आज सुबह आज कहाँ जाएंगे, आज हमारी किटी पार्टी, स्पेशली लेडीज का, इवन जेंट्स का भी स्टैग पार्टीज होती है। सो उनके लिए फ्रेंड्स उनकी जान है, हम लोगों के लिए जिनसे हम सीखते हैं, साथ में ग्रो करते हैं, साथ में सुख दुख को आपस में करते हैं। तो कहा कहा भी ये गया है, एवरी मोमेंट हैज लव इन इट, एवरी आवर हैज हैप्पीनेस इन इट, इफ यू लूज इट इट बिकम्स मेमोरी एंड इफ यू लिव इट इट बिकम्स लाइफ एंड आवर लाइफ इज आवर फ्रेंड्स. सो ये सारी सर्कल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. इसके बाद हमारा मिला के जो बनता है दैट इज हमारा राष्ट्र निर्माण, जहां हम अपनी फैमिली के साथ अपनी सोसाइटी को क्या दे सकते हैं.
0: बिल्कुल.
1: हमने जितना सीखा बचपन से आज तक, क्या हम उसका 1% भी अपनी सोसाइटी में गिव बैक कर पाए हैं? आप अपने अंदर झांक कर देखिएगा. कई बार होता है हम डोनेशन के लिए जाते हैं, कहीं ओल्ड एज होम में जाते हैं, किसी एनजीओ में काम करते हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं. बहुत सारे ऐसे विकलांग लोग हैं, स्पेशल नीड्स के हैं, जिनसे हम बातें करते हैं, कैंसर पेशेंट्स के साथ बातें करते हैं. इतनी सारी चीजें अगर हम करते हैं, ये आपके दिल को सुकून देती हैं. ये सारी चीजें आपके लिए, खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए हैं, जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं कि हमें इतना कैपेबल आज समाज ने बनाया है कि हम उसका बहुत आभारी है कि हम उसको वापस भी ये करेंगे. दुनिया बहुत छोटी है, छोटी सी जिंदगी है, इसी में हमारी जिंदगी एक अच्छे ग्रेटिट्यूड के साथ निकल जाती है. सो मैं हमेशा एक मेरा बहुत मंत्र है मेरा प्रियंका, वो शेयर करती हूँ श्रोताओं के साथ, आपके साथ. मैं अपना GPS खुद लेकर चलती हूँ. आप मोबाइल उठाते हैं, आप GPS लगाते हैं, मेरा GPS मेरे साथ रहता है. जी इज फॉर ग्रेटिट्यूड, पी इज फॉर पॉजिटिविटी एंड एस इज फॉर स्ट्रेंथ, नो योर स्ट्रेंथ. बहुत सारे बच्चे हैं जो भूल जाते हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि वो कंपटीशन में आ जाते हैं.
0: जी, जी, जी.
1: पर उनको अगर अपनी स्ट्रेंथ आज पता चल जाए, आज लाइनें खुली हुई हैं बच्चों के लिए करियर में. आप म्यूजिक में अच्छे हैं, ड्रम बजाने में अच्छे हैं. आप पहले टाइम में होता था डॉक्टर, इंजीनियर और IAS और यही सब चलता था. आज तो लाइन्स ही लाइन्स हैं, जहां आप जाएंगे वहां जा सकते हैं. सो आई कैरी माई GPS विद माई सेल्फ एंड आई रिक्वेस्ट आपके सारे श्रोताओं से, अपने GPS को अपनी एक कीवर्ड बना लीजिए और दुनिया देखिए कितनी सुंदर खूबसूरत हो जाएगी.
0: वाओ, अगर थॉट चेंज हो जाए तो सब कुछ हम ही है. ये थॉट ना बहुत कम लोगों के अंदर होता है, लेकिन जिनके अंदर होता है ना, उनके बात करने का तरीका, उनका उनकी प्रेजेंस ही बहुत स्ट्रांग होती है. ये आप भी कर सकते हैं अगर आप अपने लिए, जिस तरीके से मैम कह रही हैं कि अच्छे वर्ड्स जो हैं वो हमेशा, और ये हर कोई डिजर्व करता है. हम जो हैं या जिस भी पोजीशन पे हैं, हम सब अच्छा डिजर्व करते हैं, राइट. आप जो भी कर रहे हैं आप उसको प्रेज करें, राइट. और कभी भी ग्रैटिट्यूड मत भूलिए, उसको हमेशा रखिए. तो ये छोटी सी चीज़ जो समझ लेता है वो अपने आप को स्ट्रांग बना लेता है. रेडियो वाला वैष्णव 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरे लाइफ, और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ.

0: इस गाने को आपने सुना रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. मैं हूँ ब्रागा और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ, और हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता. शेफाली, बहुत सारी बातें हम आपसे कर रहे हैं. अच्छा, कभी एक ऐसा पल आया जो कि मुझे लगता है कि हर किसी के लाइफ में ना कभी ये आता है कि वो चार लोग क्या कहेंगे. तो ये वाली चीजें ना सभी की लाइफ में होती है ना, कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता ही है. और आई एम श्योर, मुझे पता है आपके पास भी होती है ना, कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता ही है. और आई एम श्योर, मुझे पता है आपके पास भी एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा ही. तो बताइए कि आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है इंटरेस्टिंग.
1: बिल्कुल इंटरेस्टिंग तो कई बार हुआ है
0: जी,
1: पर अब मुझे उन लोगों पे बहुत दया आती है, तरस आता है कि कैसी सोच है.
0: और यहाँ पता मैं क्या कहती हूँ, यहाँ मैं कहती हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता.
1: बिल्कुल. मैं अपनी फेवरेट हूँ करीना कपूर.
0: यस यस, जॉबी मेट का वो डायलॉग.
1: हाँ जी. सो कुछ लोगों की सोच वहाँ वहीं तक सीमित होती है.
0: करेक्ट.
1: और मैंने अपनी आउटर लेयर इतनी स्ट्रांग की हुई है कि मुझे उनकी सोच से फर्क नहीं पड़ा. कुछ सोच थी, पहले मैं स्पोर्ट्स में थी, एनसीसी में थी, उसके बाद आर्मी ऑफिसर से मैरिज हुई, फिर मैंने पढ़ाई की, फिर जैसे जैसे मुझे सक्सेस धीरे धीरे मिलती गई, बहुत काम किया है. आई हैव डन ऑन फील्ड्स, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत काम किया है मैंने, और अभी भी मैं करती रही हूँ. पर कुछ लोग हैं जिनको ये लगता है कि ये कैसे आगे बढ़ गए, इनमें तो शायद ये खूबी थी ही नहीं, क्योंकि उनकी सोच ही वहीं तक है. सो आने वाले टाइम में, पिछला टाइम, अभी का टाइम, अब ये नहीं मैटर करता मेरे लिए, बिल्कुल नहीं मैटर करता है, क्योंकि वो उनका ब्रॉटअप है, उनकी सोच है, और वो वहीं तक है. मैं कहां से कहां पहुंच गई, बट वो वहीं की वहीं है. सो दैट वे आई डोंट इवन कंपेयर विद एनीबडी इन दिस वर्ल्ड. मैं कर रही हूँ, मेरा सोल सेटिस्फेक्शन है, मेरा अपना जिंदगी है, और मैं अपनी तरह से अपनी जिंदगी को डील करती हूँ.
0: अगर कोई फेस कर रहा है अभी एक करंट और हमारा प्रोग्राम सुन रहा है, बड़ा परेशान के चार लोगों ने दिखते नहीं है लेकिन परेशान कर रखा है, और वो उभर ही नहीं पा रहे इस चीज से, और इस वक्त वो हमें सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे?
1: ऑलवेज रिमेम्बर, आई एम द बेस्ट.
0: यस,
1: नोबडी इज बेस्ट देन यू. यू नो, हमें जब मैं डिबेट में पार्टिसिपेट करती थी स्कूल टाइम में, मुझे याद है मेरे फादर बोलते थे आप शीशे में देखकर अपनी प्रैक्टिस करो. तो मैं हमेशा शीशे में देख के वर्बेटम पूरा प्रैक्टिस करती थी. आई ऑलवेज यूज टू स्टूड फर्स्ट देयर. सो मैं एक ही चीज उनकी याद रखती हूँ, बोलते हैं जब आप अपना काम कर रहे होते हो तो ये सोचो दूसरे को किसी को कुछ नहीं आता. बस. सो आई एम द बेस्ट. रिमेम्बर दिस थिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट. जिस तरह से आपको एक यूनिक इंसान भगवान ने बनाया है, कि हमारे तो फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मैच होते आपस में. सो हाउ कैन वी से कि चार लोग क्या कहेंगे, सोचना ही नहीं है. हमारे फिंगरप्रिंट यूनिक है, मीन्स हम यूनिक है, हमसे आगे कोई नहीं है दुनिया में. सो ऑलवेज रिमेम्बर, हम एक ब्यूटीफुल सोल है, बहुत सुंदर है, और बहुत अच्छा काम दुनिया के लिए करके जाएंगे, कुछ नाम कमा के जाएंगे, कुछ यादें छोड़ कर जाएंगे.
0: आप रिलेशनशिप काउंसलर भी हैं, रिलेशनशिप की जब बात आती है आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है इसको लेकर?
1: कुछ बच्चों से मेरी बात हुई है जो यूनिवर्सिटी लेवल पर है, हमने एक सर्वे भी किया था इस बारे में. सो रिलेशनशिप को लोग आजकल सीरियसली नहीं ले रहे हैं. उनके मन में है कि एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से ज्यादा है. बोथ हस्बैंड वाइफ आर वर्किंग, सो दे आर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम ईच अदर. अगर आप जिंदगी को हल्का फुल्का ले लेते हैं तो क्या चला जाएगा? इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ टुगेदर. एंड हमने देखा होगा हमारे पुराने टाइम में लोग ये सब सोचते ही नहीं थे. किसी ने कुछ कह दिया, दूसरे बार में सॉरी बोल दिया, बात आगे चली गई. अभी वो थोड़ा सा भी अगर कोई बोलते हैं सॉरी तो ब्रेकअप हो जाता है, फिर उनको स्ट्रेस हो जाता है, उनको डिप्रेशन हो जाता है. सो हमारे, मेरे हिसाब से तो डिप्रेशन कुछ नहीं है, स्ट्रेस कुछ नहीं है, होता है, साइंटिफिकली इट इज प्रेजेंट, बट ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे ले रहे हैं, कितना डीपली आप अपने अंदर उसको ले रहे हैं, और उसकी भी टेक्निक्स हैं. सो मैं ये बोलूंगी रिलेशनशिप के लिए आपको बहुत स्ट्रांग देना पड़ेगा. एक दूसरे को रेस्पेक्ट दीजिए. आपने शायद, मेरे ख्याल से शाहरुख खान का एक इंटरव्यू मैंने देखा.

0: था उसमें था कि कभी भी वो अपनी फ्रेंड से भी तू करके बात नहीं करते हैं. इवन काजोल इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ हिम, बट वो कभी भी तू करके बात नहीं करते, हमेशा आप करके बात करते हैं. या शाम को यार आ जाओ, शाम को चाय पीते हैं, उन्होंने कभी यार नहीं बोला. ये ऑलवेज इज आज शाम को टाइम है तो आ जाना, साथ में बैठते हैं. यूज अ रेस्पेक्टेबल लैंग्वेज विद ईच अदर, एक दूसरे को आप सम्मान देंगे तो ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप होती है. जहां आप एक दूसरे को कभी भी लाइटली नहीं लेते हैं. एक लड़की है जिसने अपनी जिंदगी पूरा टाइम पेरेंट्स के पास दी है, उसके बाद वो आपके पास आई है. एक बॉय है जिसने पूरा टाइम अपने पेरेंट्स का साथ दिया है, वो आपके साथ रहने के लिए आया है. सो ये दोनों का एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप साथ में है. इस बीच में ये नहीं आना चाहिए कि आपके पेरेंट्स ने किया, मेरे पेरेंट्स ने किया, मेरे घर में ऐसा हुआ, आपके घर में हुआ. दोनों का ब्रॉटअप अलग है, दोनों का स्टडी मटेरियल अलग है, जहाँ आप पढ़े हैं हो सकता है साथ में पढ़े हो. सो एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना आजकल के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है. आपकी टंग से क्या बाहर जा रहा है या इन अ वे हेल्दी के लिए अंदर क्या जा रहा है, दोनों चीजों का डिसिप्लिन इज वेरी इम्पोर्टेंट. आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि आज मेरे पार्टनर को ये नहीं आता. आपने उसको जज किया, जजमेंट खत्म कर दीजिए. जहाँ जजमेंट खत्म हो गया वहीं आपको ले गए, तो बहुत सुंदर इंसान है. और जिससे आपने मैरिज किया वो कैसे गलत हो सकता है. हमारे यहाँ डिवोर्स वर्ड नहीं होता काउंसलिंग में, रिलेशनशिप में. हम चीजों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ते हैं. थोड़ा उन्होंने कम्प्रोमाइज किया, थोड़ा इधर से कम्प्रोमाइज हुआ, थोड़ा वो हैप्पी हो गए, थोड़ा हम हैप्पी हो गए. ऐसे करते करते लाइफ कब में निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा. क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है जो शायद सारे रिश्तों से ऊपर है.
1: करेक्ट करेक्ट.
0: सही. तो मेरे हिसाब से आपको पहले रिलेशनशिप में एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है.

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो माने वर्षा 107.8 एफएम पर। मैं हूं प्रियंका और हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता। डॉक्टर शेफाली, हेल्दी रिलेशनशिप को अगर रन करना है तो उसकी की क्या है?
1: हेल्दी रिलेशनशिप की एक बहुत अच्छी की है कि खुश रहिए, क्योंकि आजकल की जिंदगी में सबसे एक्सपेंसिव चीज खुशी है।
0: करेक्ट,
1: जिसका कोई मोल नहीं है। और आपके पास तो भगवान ने फ्री में स्माइल दी है। कुछ भी कोई बोलता है, छोटी सी स्माइल देके प्यार से बात कर लो,
0: करेक्ट,
1: चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। छोटी छोटी चीजों को बड़ा बनाना खत्म कर दीजिए, चीजें आपको लगेगा बहुत सिंपल हो गई है। किसी ने आपको हर्ट कर दिया तो जस्ट ब्लेस देम, एक दूसरे को छोटी छोटी चीजों में। आज मैंने देखा था, आई थिंक दो दिन पहले किसी एक कपल के बीच में लड़ाई हुई, इतना गुस्सा आ गया, इतना एंगर हो गया उसमें कि उन्होंने उसको थप्पड़ी मार दिया, तो वायलेंस हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया। सो इतनी सारी चीजें बहुत एक्सट्रीम स्टेप पर क्यों जाने दें हम इन चीजों को? जब हम दोनों की लाइफ है तो हम दोनों अपनी लाइफ को कैसे जिएंगे ये हमारे हाथ में है, है ना? सो आप छोटी छोटी खुशियों को बांटिए। आज नहीं मन हो रहा उसका खाना बनाने का, कोई नहीं, बाहर से खा लीजिए, बाहर चली जाइए। आज नहीं आपको हो रहा कि कुछ तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है हस्बैंड का मूड हो अकेले थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का, तो गिव हिम सम स्पेस। ऐसी आपका मन है तो गिव हर सम स्पेस, यू नो, इट्स अ वाइस वर्सा। आपको स्पेस देनी है, आपको रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, ईगो साइड में रखनी है। आजकल हम सभी, आपने देखा है, सभी वर्किंग वुमेन है, वर्किंग मैन है, सो ये जो ईगो आ जाती है ना 30 इयर्स के बाद, ईगो से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इन सबको साइड में रख के अच्छी जिंदगी बिताइए, एंड दिस इज द की।
0: करेक्ट। एक चीज मैं भी इसमें ऐड करना चाहूंगी कि बहुत जरूरी है एक दूसरे को स्पेस देना, राइट? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मन करता है कि आप अकेले बैठो, बहुत सारे सवाल जो हम अकेले में ही उसका सोल्यूशन ले सकते हैं, लेकिन ये चीज ना समझ में नहीं आती है आज के टाइम पर। और एक चीज जो मुझे लगता है अगर रिलेशनशिप में ये हो जाए तो एक बेहतर रिलेशन चलेगा, वो ये है कि जो अच्छी चीज़ है ना हमेशा उस पर ध्यान दें। हम क्या करते हैं, बुरी चीज़ें हम याद रखते हैं, जहन में अपने रखते हैं, इसके बाद जब थोड़ा सा भी झगड़ा होता है तो वो सारी बुरी चीज़ें फिर वो सामने आती हैं।
1: प्रियंका, ये साइंटिफिकली ह्यूमन नेचर है।
0: यस,
1: इट्स अ ह्यूमन नेचर, नॉट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ओनली। ये हम कहीं भी देखेंगे तो हमारा नजर सबसे पहले उस पर ही जाती है कि नेगेटिव क्या है। सपोज समबडी इज वेरी वेल ड्रेस्ड, सो आप कॉम्प्लीमेंट करते करते ही आपको पता चल जाएगा इसमें क्या कमी है।
0: राइट,
1: तो ये एक ह्यूमन नेचर है जिसको अगर आप अवॉइड करेंगे तो इट कैन बी वेरी ब्यूटीफुल।
0: बिल्कुल, और इसे बिल्कुल चेंज किया जा सकता है, लाइफ बहुत अलग कहें कि 360 के एंगल पे चेंज हो जाएगी अच्छे वे में। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूं प्रियंका, आपके साथ हर प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो माने वैष्णव 107.8 एफएम पर. मैं हूं प्रियंका और हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता. डॉक्टर शेफाली, आपने नेशनल इंटरनेशनल कई सारे सेमिनार्स अटेंड किए हैं, आप स्पीकर रही हैं, है ना. तो आप आज का जो यूथ है, आप उनको क्या कहना चाहेंगी और क्या आप अपने सेमिनार्स में यूथ को बताती हैं, क्या उनको आगे के लिए करना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगी जो इस वक्त लोग आपको सुन रहे हैं उनके लिए.
1: हमने सब जगह ये सुना भी है, पढ़ा भी है और ये सच है कि आज का यूथ देश का निर्माण करता है, देश का भविष्य बनाता है. हमारे हर सेक्टर में जहाँ जहाँ आज यूथ है, कुछ कॉलेजेस में है, कुछ वर्क कर रहे हैं, कुछ परेशान हैं, कुछ बटरफ्लाई एग्जीक्यूटिव्स हैं, अलग अलग ओहदे पर हैं, बहुत सारा कुछ अच्छा भी काम कर रहे हैं. सो मैं यूथ से यही कहना चाहती हूँ, सबसे पहले बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर खुद के ऊपर विश्वास रखिए. और मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, उसमें से हंस के जाना आर्ट ऑफ लाइफ है, ये हम सभी जानते हैं. इस पर अमल करिए. ईच मॉर्निंग वी आर बॉर्न अगेन. पिछला कल क्या था उससे सीख कर हमें आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है. कंसिस्टेंसी होनी चाहिए डेवलपमेंट में, हमेशा लर्निंग कभी खत्म नहीं होती. आप कहीं भी किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं. इवन आप अगर रोड पर भी जा रहे हैं, कुछ ऐसे इंसान होंगे जो आपको एकदम अट्रैक्ट करते हैं, कुछ ऐसे इंसान होंगे जो आपको लगता है ये तो ठीक ही नहीं है. सो हर जगह से आपकी लर्निंग होती है, हर जगह से. आप अपने पर विश्वास रखें, कीप लर्निंग, बी कंसिस्टेंस एंड प्लीज अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिए. इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं मेंटल हेल्थ पर. माइंडफुलनेस है, ग्रेटिट्यूड है, योगा है, मेडिटेशन है, और बहुत सारी अलग तरह की कलाएं हैं, पेंटिंग है, गो इन द गार्डन. आजकल तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हो गई है हैदराबाद जैसी जगह में, जहाँ आपको एक प्लेस अलॉट कर दी जाती है, वहां पर आप जाकर मेडिटेट करके वापस आ सकते हैं. ये ऑफिसेज में भी उन्होंने शुरू कर दिया है, छोटा सा जंगल टाइप बना दिया, वहां पर आप एक राउंड लेकर भी वापस आ सकते हैं. तो इस तरह की स्पेसेस हमारे यहाँ अवेलेबल हो गई है बिग सिटीज में. इसी तरह आप अपने आप को रिजुविनेट कर सकते हैं, पर रुकना नहीं है, चलते जाना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है. जहां आप रुक गए वहां आपको लगेगा अब बस हो गया.
0: करेक्ट.
1: तो यहां से निकलना हमारे हाथ में है, ये पावर सिर्फ हमारे हाथ में है, अपने आप को खुद को मोटिवेट रखने की.
0: और सिर्फ यूथ के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए, मतलब जब तक आप जिंदा हैं, आप सांस ले रहे हैं, तब तक आप लर्निंग जारी रखिए, क्योंकि एक बहुत जरूरी है ह्यूमन के लिए, राइट. तो बातें बहुत सारी हैं और आपका कोई सवाल है, कोई मैसेज आप करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं मैम से, तो नंबर है हमारा 8010781078.

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो माने वरिष्ठ 107.8 एफएम पर. मैं हूं प्रियंका और हमारे साथ में है डॉक्टर शेफाली गुप्ता. आपने एनजीओ के बारे में भी बात की कि आप एनजीओ से जुड़ी हैं, तो ये एनजीओ क्या करता है और इसके बारे में कुछ बताइए.
1: मैं काफ़ी सारी एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ. एक एनजीओ है ए टू ईयर जिसमें वो सिर्फ मेंटल हेल्थ पर काम करते हैं.
0: ओके.
1: लोगों से सुनते हैं, लोगों को आजकल लिसनर्स चाहिए तो लोग उनसे अपनी प्रॉब्लम को जस्ट डिस्कस करते हैं. कोई जजमेंट नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं, कुछ नहीं. दे जस्ट गिव देयर टाइम.
0: और ये कोई भी जाकर कर सकता है.
1: देन दे गिव अ प्लेटफॉर्म टू अ पर्सन कि आप आइए, अपनी शर्म को साइड में रखकर आप ओपन अप होइए, बी कॉन्फिडेंट एंड बी अ पार्ट ऑफ इट. सो इट्स ईयर टू हियर. एंड देयर इज अनदर ऑर्गेनाइजेशन विच इज कार्या केयर. वहां पर मैंने एक बहुत अच्छे इंसिडेंट में आप सबसे श्रोताओं से आपसे सबसे शेयर करना चाहूंगी. आगरा में इनका एक अवार्ड फंक्शन था. सो ये मेरे कजिन का है, मेरे हस्बैंड के कजिन है, उन्होंने किया है. बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ हम एक पुअर बच्चों को एजुकेट भी करते हैं, पूरी दुनिया दिखाते हैं. सो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. सो वहाँ उन्होंने मेरे को बोला कि आप जाइए उधर और जाकर आप अवार्ड फंक्शन में एज अ चीफ गेस्ट रहिएगा. सो मैंने उसको अटेंड किया. इतना मुझे सुकून मिला वहाँ जाकर क्योंकि वो सारे बच्चे ऑलमोस्ट उस टाइम में वो 150 से ज्यादा बच्चे थे उनको ताज में बैठाया. ताज होटल में आगरा.
0: nice.
1: उनको वही प्रोग्राम, उन्हीं से प्रोग्राम भी कराया. उनको एज अ सेलिब्रिटी फील कराया. खाना खिलाना, उनको रूम्स दिखाना, उनको ताज के अंदर की सारी चीजें विजिट कराना. मुझे इतना अच्छा लगा. उसमें से एक बच्चा था जो मे बी शायद 18 इयर्स का था. वो उसने मुझे बोला कि मैं यहाँ इस ताज के सामने दूसरी साइड बैठकर मैं भीख मांगा करता था. लेकिन मुझे किसी ने इस एनजीओ के बारे में बताया, यहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया. आज मुझे ताज के अंदर आके लग रहा है कि मैंने सपना जो देखा वो पूरा होता हुआ लग रहा है. अब मैं कुछ बनूंगा आगे और मैं यहाँ आऊंगा बनने के बाद अपने बलबूते पर. तो मतलब उन्होंने उन 150 बच्चों को सपने दिखाए.
0: Nice.
1: कि आप अच्छा पढ़िए, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दीजिए, अच्छी जिंदगी को जीजिए. उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मजदूरों के बच्चे थे, बहुत सारे थे जो स्लम एरिया से आए हुए थे कुछ. सो आगरा में सीमित थे वो सारे. मुझे बहुत अच्छा लगा उन बच्चों से बात करके. एक ऐसा इनिशिएटिव जो शायद हमें करते रहना चाहिए. एक और यहाँ पर एक है जो ब्लाइंड लोगों के लिए काम करते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. सो अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम करने में आपको सोल सेटिस्फेक्शन मिलता है.
0: अच्छा, एक के सोचने वाली स्थिति भी है कि किसी टाइम पर लोग बातें किया करते थे, सुना करते थे, लेकिन आज के टाइम पर कितनी कमी हो गई है कि हमें अपनी बात शेयर करने के लिए कोई हमें सुने, उसके लिए हमें जाना पड़ रहा है. जबकि एक टाइम पर लोग आसपास होते थे, अपने अपने परिवार वाले, दोस्त, पड़ोसी, सभी जो मिलकर एक
1: इसमें प्रियंका न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई ना.
0: बिल्कुल.
1: उसकी वजह से भी बहुत फर्क पड़ता है.
0: यस यस यस. तो ये एक चीज. लेकिन हाँ, कभी कोई आपके आसपास ऐसा हो जो हमेशा चुप रहता है और ज्यादा बात नहीं करता है, कभी भी उससे कुछ ऐसी बात ना कहिएगा क्योंकि बहुत कुछ मन के अंदर होता है. और कभी बैठ करके सिर्फ उसकी बात सुनिएगा. ऐसे भी हम कहते हैं ना कि हम कैसे हेल्प करें, आप ऐसे भी मदद कर सकते हैं. बहुत अच्छी चीज़ जो बहुत बढ़िया होगी उसके लिए भी और आपके लिए भी. रेडियो माने वैष्णव 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांक आपके साथ.

0: क्या
1: फिर कोई बावर मोहब्बत की

0: सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। मैं हूं प्रांका आपके साथ और इस वक्त काफ़ी सारी बातें हम डॉक्टर शेफाली गुप्ता से कर चुके हैं और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारे साथ में हैं ये और ये जो हैं ये एजुकेशनिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्टूडेंट काउंसलर हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नेशनल इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में यूथ को मोटिवेट करते हैं। आप सोचिए कि कितना सारा एक्सपीरियंस इनके पास में है और उसी एक्सपीरियंस से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे जान रहे हैं कि अपने आप को कैसे बढ़ाना है। और जब भी हम ये चीज़ सोचते हैं ना कि हमें अपने आप को किस तरह से आगे लेकर जाना है, समाज में कैसे अपने आप को वो दर्जा देना है, इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आते हैं ना। तो आप क्या कहेंगी जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, यूथ हैं या जो भी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए?
1: बहुत सारे श्रोताओं को मैं यही एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस तो लाइफ में आएंगे पर उनसे भागना नहीं है, एक तो उनका सामना करना है, दूसरा उन चैलेंजेस को ब्रेक करिए। अगर आप एक ही बार में वो चैलेंज फेस करते हैं तो आपको लगता है ओ माय गॉड ये तो बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, इसे कैसे पार हो पाएंगे, लेकिन उस चैलेंज को अगर आप छोटे छोटे पीसेस में लेते जाएंगे तो आपका चैलेंज नीचे नीचे ही सुधरता जाएगा। अगर आप उसको ओवरलोड करने के लिए छोड़ देंगे तो बहुत बड़ा हीप बन जाता है उसका।
0: करेक्ट।
1: तो आप हमेशा ब्रेक करिए, अपने दिन को प्लान करिए। अगर चैलेंज आता है आपके पास कि चलो आज हमें ये चैलेंज आया, इसको किस समय पूरा करना है, तो आपका माइंड उसमें उलझ गया, उसका सॉल्यूशन तो नहीं निकलेगा इतनी जल्दी क्योंकि आप चैलेंज का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, वो तो नहीं निकलना है, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। पर अगर आप उसके बारे में ओवर थिंकिंग करेंगे तो वो चैलेंज और बड़ा हो जाएगा। इसको सबसे पहले छोटे छोटे उसमें ब्रेक करिए, पार्ट्स में एक एक करके उन पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक प्लान बनाइए, एक डिसिप्लिनरी प्लान बनाइए कि हाँ इस टाइम से इस टाइम तक ये करेंगे, इस टाइम से इस टाइम तक ये करेंगे। उस बीच में थोड़ा सा अपने लिए एंटरटेनमेंट का भी टाइम रखिए जिससे आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, एंड देन अगेन कम ऑन टू दैट चैलेंज। ये हर फील्ड में होता है, कोई ऐसी फील्ड दुनिया में बनी ही नहीं है जो चैलेंज के बिना प्रोग्रेस नहीं हो।
0: करेक्ट।
1: आप आज प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसमें भी एक चैलेंज है, सीईओ बैठकर कहीं मीटिंग दे रहा है वो भी एक चैलेंज है, पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम कब आ जाए, आप एज अ मीडिया पर्सनैलिटी है आपका कौन सा टेक्निकल ग्लिच आ जाए, यू नेवर नो।
0: बिल्कुल।
1: सो इस तरह से हर फील्ड के चैलेंजेस हैं, उनका सामना बहुत हिम्मत के साथ करना है और उसका सॉल्यूशन निकालना है, चैलेंजेस को प्रॉब्लम नहीं समझना है, उसके सॉल्यूशन के साथ उसको देखना है। प्रॉब्लम देखेंगे तो वो बड़ा लगेगा। इस तरह से आप उसको ब्रेक कर करके प्लान बना के सॉल्व कर सकते हैं। और अगर जहां आप नहीं कर पाते हैं वहां अपने सीनियर्स की मदद लीजिए। बिल्कुल। अगर आपके लाइफ में हर तरह से हमारे पास काउंसलर्स हैं, रिलेशनशिप काउंसलर, स्टूडेंट काउंसलर हैं, और भी आगे आप जाना चाहते हैं, आपके हो सकता है बॉस बहुत अच्छे हो, आपके फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा हो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, पूरा समाज आपकी हेल्प के लिए खड़ा है, आप अकेले नहीं है। चैलेंजेस में अकेला मत समझिए अपने आप को, आपके सराउंडिंग, आपका समाज, सब आपके साथ है।
0: जी, तो ढेर सारी बातें आज हमने डॉक्टर शेफाली गुप्ता से की। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ जुड़ी।
1: थैंक यू।
0: चलते चलते सभी लोगों का
1: प्लेजर एंड ऑनर टू बी हियर। थैंक यू।
0: तो जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, आप चलते चलते आपका क्या मैसेज होगा उन सबके लिए?
1: आई ऑलवेज से कैरी योर जीपीएस ऑलवेज विद यू, ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिविटी एंड नो योर स्ट्रेंथ, वर्क ऑन इट। सो कैरी योर जीपीएस एंड डिस्प्ले पॉजिटिविटी इन दिस वर्ल्ड। Care of yourself.
0: जी.
1: Your self-care is very important.
0: जी.
1: And we lead a happy life. This life is beautiful. बहुत खूबसूरत जिंदगी है. जितना happiness के साथ आप जिएंगे, उतना ही इस जिंदगी को आप बहुत कुछ देकर जाएंगे.
0: जी. इस प्यारे से मैसेज के साथ में चलिए, मेरे चलने का भी वक्त हो गया है, तो मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाकी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो मानव वैष्णव 107.8 FM। दीजिए इजाजत, बाय।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, आज जिस कवि के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, उनका नाम है डॉक्टर कुंवर बेचैन। उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे, बहुत सारी कविताएं लिखी और बहुत सारी गजलों को भी उन्होंने जन्म दिया। उनके बहुत सारे शागिर्द हैं। उन्हीं में से एक उनके शागिर्द हैं जो कहते हैं कि हम कुंवर बेचैन के चेले हैं, जिन्होंने कविता का और जीवन का जा भी सिखाया था, ऐसा कहना था उनके शागिर्द का। लेकिन दोस्तों, शागिर्द का और भी बहुत कुछ कहना था डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में। वो सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, आदाब।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में। और जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि उनके वैसे तो बहुत सारे शागिर्द हैं, उन्हीं में से एक शागिर्द हैं जिनका कहना है कि हम कुंवर बेचैन के चेले हैं जिन्होंने कविता काका और जीवन का जा भी सिखाया। तो इस तरह का प्रभाव पड़ता था कुंवर बेचैन के शागिर्दों पर। दोस्तों, डॉक्टर कुंवर बेचैन की अगर हम बात करें तो उनका जन्म 1 जुलाई 1942 को उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के उमरी गांव में हुआ था। वो गोपाल दास नीरज के बाद मंच पर सराहे जाने वाले कवियों में सबसे आगे माने जाते हैं। कुंवर बेचैन ने आधुनिक गजल को समकालीन जामा पहनाते हुए आम आदमी के दैनिक जीवन से जोड़ा है। उन्होंने गजल की संरचना समझाने वाली एक अति महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका नाम है गजल का व्याकरण, उस पुस्तक को लिखा है। अगर कभी आपका इत्तेफाक हो तो आप इस पुस्तक को जरूर खरीदिएगा और पढ़िएगा, जिसका नाम है गजल का व्याकरण। बहुत सारी गजलें इन्होंने लिखी हैं और गजल लिखने का जो तरीका है उस तरीके को इन्होंने बड़ी खूबसूरती से लोगों को समझाने का प्रयास भी किया है। इसके अलावा गीत भी बहुत सारे लिखे और कविताएं भी लिखी हैं। तो आज डॉक्टर कुंवर बेचैन की कविताओं का जिक्र होगा, उनकी गजलों की बात होगी और बात होगी उनके गीतों की भी, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात उस समय की है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। तब कविता लिखने का एक जुनून हुआ करता था मेरे अंदर। मेरा परिचय तब किसी के मार्फत मुरादनगर के हिसाली गांव निवासी सुकवि श्री दया शंकर अश्क से हुआ था। बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि गाजियाबाद

में तो सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन रहते हैं। पता पूछकर मैं बेचैन जी के घर नेहरू नगर पहुंचा। वो घर पर ही मिल गए, उनसे मुलाकात हुई। उनसे मिलकर ये महसूस ही नहीं हुआ कि उनसे मेरी पहली मुलाकात है। मुझ में कविता लिखने के साथ उसे सुनाने का भी शौक था। मेरे निवेदन पर बेचैन जी ने मेरी कविता सुनी। कविता में तो कोई बात कविता जैसी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरा हौसला बहुत बढ़ाया। उन्होंने मेरी कविता की बहुत तारीफ की और मुझे बहुत सारी दुआओं से भी नवाजा था। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो उनके साथ बैठकर के उनके शागिर्द ने की थी। वो सारी बातें फहीम आपको बताएगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

0: हम घर से पाला पड़ा, पास आने ना दे हो दूर जाने।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, डॉक्टर कुंवर बेचैन ने मुझे पहली बात जो बताई थी वो ये थी कि प्रकृति में या घर में बाहर अंदर जो भी वस्तुएं हैं उनको जिंदगी से जोड़ो, फिर कविता में उसे ढाल दो। मैं उनकी बात से इतना प्रभावित हुआ कि उनसे मिलने गाहे बगाहे उनके घर जाने लगा। इस बीच मैं लाल क्वार्टर मोहल्ले में रहता था, वहां मैंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर स्वर स्वामिनी तरुण समिति बना डाली। सभी ने तय किया कि लाल क्वार्टर मोहल्ले में एक कवि सम्मेलन करवाएंगे और इस सिलसिले में अश्क जी से बात भी हो गई। उनके मार्फत ओश के सुप्रसिद्ध कवि वेद प्रकाश सुमन जी से मिलना हुआ। कवि सम्मेलन की बात बनी, तय हुआ कि कुंवर बेचैन जी का इस कवि सम्मेलन में अभिनंदन करेंगे। अब दोस्तों, कुंवर बेचैन के शागिर्दों ने उनको कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया, और अगर किया तो क्या वो आए? आए, फिर क्या हुआ? ये सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में बात हो रही है और बात हो रही है उनके एक ऐसे शागिर्द के बारे में कि जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। उसी शागिर्द का कहना है कि मेरा बचपन का दोस्त और सहपाठी कवि चरण शंकर प्रसून और मैं बेचैन जी के घर पहुंचे, उनसे आग्रह किया, वो मान गए। हमने कहा कि इस मोहल्ले में हम एक कवि सम्मेलन करा रहे हैं, उसमें आएंगे तो हम सबको अच्छा लगेगा, और वो हमारी बात को मान भी गए। मोहल्ले में घर घर जाकर हमने चंदा इकट्ठा किया और कवि सम्मेलन करवा डाला, बेचैन जी का अभिनंदन किया, जैसा भी किया अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया। वेद प्रकाश सुमन जी ने संचालन करके कवि सम्मेलन में 4 चांद लगा दिए। 2 दिन के बाद मैं फिर बेचैन जी से मिला। बात बात में मैंने कहा कि समिति की ओर से एक स्मारिका निकालनी है, अपनी कोई कविता दे दीजिए, इसे हम कवर पेज पर प्रकाशित करेंगे। बेचैन जी ने हमें जो कविता दी वो माँ शारदे पर लिखा छंद था। वो कुछ यूं था, नित ज्ञान गुमान के आंगन में कुछ भोर रहे कुछ सांझ रहे, मुस्कान की गोद भरी ही रहे पर पीर भी मेरी ना बांझ रहे, मन में कुछ और रहे ना रहे मन मानव का मन मांझ रहे, वरदान दे माँ मन मंदिर में बजती नवगीत की सांझ रहे, मन मंदिर में बजती नवगीत की सांझ रहे। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात चल रही थी डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में, उनके शागिर्दों के बारे में, कवि सम्मेलन के बारे में जहां उनको आमंत्रित किया था, और उसके बाद उनसे उनकी एक कविता ली गई थी जिसको छपवाने की बात हुई थी, और वो कविता उन्होंने सुनाई भी थी। उस कविता को सुनकर उनका शागिर्द कहता है कि मेरे मुंह से निकल गया कि हम इसे 3 महीने में प्रकाशित कर देंगे। उस समय पद्म भूषण गीत ऋषि गोपाल दास नीरज, राजेंद्र राजन और उर्मिलेश जी ने डाक से अपनी रचनाएं हमें भेजी। हमने भी साहस करके पैसे जुटाए और एक स्मारिका प्रकाशित कर ही थी। 3 महीने के बाद मैं बेचैन जी के पास स्मारिका लेकर गया। उनके घर के गेट पर बाहर ही खड़ा था। बाहर बेचैन जी आए, दरवाजा खोला, मैंने स्मारिका उनके हाथ पर रख दी। ये देखकर वो इतना खुश हुए कि मेरा हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गए। अपनी पत्नी यानी हमारी मम्मी जी, उन्हें मैं मम्मी जी बुलाता था, उनके पास ले जाकर मेरी ओर इशारा करते हुए बोले, ये होती है सच्ची लगन, जो कहा वो किया। उन्होंने मुझे खूब खूब आशीर्वाद दिए। इसके बाद तो उनसे मिलने का सिलसिला ही चल निकला। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वो सारी बातें आपके साथ में साझा करता रहूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फहीम के साथ यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है कुंवर बेचैन के बारे में और उनके शागिर्द के बारे में। उनके शागिर्द आगे बताते हैं कि कुंवर बेचैन जी अब मेरे काव्य गुरु ही नहीं, मेरे मार्गदर्शक पिता भी बन चुके थे। मैं उन्हें गुरुजी कहकर बुलाने लगा। जो भी कविता मैं उनके पास लिखकर के ले जाता, वो उसमें थोड़ा बहुत संशोधन जरूर कर दिया करते थे। मेरे जैसे दो तीन और भी कविता लिखने वाले उनके पास आया करते थे, जैसे अनिल असीम, नित्यानंद तुषार, गोविंद गुलशन, पवन खत्री, अमिताभ मासूम, इस तरह के बहुत सारे लोग आते थे उनसे सीखने के लिए। गुरुजी ने हम सबको कहा कि भाई देखिए, ऐसा है, तुम सब अलग अलग दिनों में आते हो, मेरे भी कभी सम्मेलन होते रहते हैं, मैं बाहर भी रहता हूँ, इसलिए एक दिन कोई ऐसा हो जिसमें सब अपनी अपनी कविताएं लेकर आए। तय हुआ कि गुरुवार की शाम सब आया करेंगे। अब दोस्तों, गुरुवार का दिन तय हो गया। अब इस दिन कौन कौन गुरुजी से शिक्षा लेने आता था, कौन कौन अपनी कविताएं लेकर के आता था, वो सारी बातें आपके साथ होंगी, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात चल रही थी कुंवर बेचैन जी के शागिर्दों के बारे में कि बहुत सारे शागिर्द उनसे सीखना चाहते थे। अब कुंवर बेचैन जी के पास इतना समय था नहीं कि अलग अलग दिनों में लोगों को सिखा सकें, तो उनका कहना था कि भाई कोई एक दिन ऐसा मुकर्रर कर लो कि जो मैं आप सबको एक साथ सिखा सकूं। तो दिन तय हुआ गुरुवार का। बस फिर क्या था, गुरुजी के ड्राइंग रूम में हम गुरुवार को तय समय पर पहुंचने लगे। शर्त थी कि सब अपनी अपनी नई कविताएं लेकर आएंगे, उसी पर चर्चा हुआ करेगी। पहले गुरुवार आने वाले कवियों की संख्या 3-4 ही थी, लेकिन धीरे धीरे संख्या 4 से 6, 6 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और फिर 35 से 36 तक पहुंच गई। वो दौर हमारा गोल्डन पीरियड था। उस दौरान हमने कविता की बहुत सारी जो बारीकियां होती हैं वो अपने गुरुजी से सीखी, और किसी के द्वारा कविता में कमी बता देने का हम लोग बुरा भी नहीं माना करते थे। बड़ी स्वस्थ आलोचना हुआ करती थी, क्या गीत, क्या गजल, क्या मुक्तक, क्या छंद, सभी विधाओं की व्याकरणिक जानकारियां हमें होने लगी थी। तो दोस्तों, ये तो थी कुंवर बेचैन के शागिर्दों की बातें, लेकिन उनकी बातों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। आज ये पहला एपिसोड है, दूसरे एपिसोड में आपसे बहुत सारी बातें करूंगा डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में और उनके शागिर्दों के बारे में। फिलहाल आपसे इजाजत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानव रचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।

0: मैं किसान हूं, चैन से कहां सोता हूं।
1: देखिए किसान भाइयों, मैं अच्छी तरह से जानता हूं आप जो अपनी फसल उगाते हैं उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब आपकी फसल तैयार हो जाती है और जब वो काट ली जाती है उसके बाद बारी आती है उसके भंडारण की। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप अपनी किसी भी फसल का भंडारण करें तो कुछ बातें हैं उनका ध्यान जरूर रखें। वैसे तो आप अपनी फसलों को जब भी भंडारण करते हैं तो अपने अपने तरीके से करते हैं। फसल की कटाई के बाद उसका भंडारण वाकई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। फसल का स्टॉक नमी वाली जगहों पर बिल्कुल ना रखें, क्योंकि नमी की वजह से फसल में दीमक लग सकती है या दूसरे जो बैक्टीरिया जैसे रोगों के लगने की संभावनाएं हो जाती हैं। फसल का स्टॉक अगर आप बोरों में करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नीचे फर्श पर लकड़ी के तख्ते जरूर बिछाएं। तख्ते ना हो तो चटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसलिए जरूरी है ताकि आपकी जो फसल है ना, आपकी फसल एकदम सुरक्षित रहे। और भी बातें हैं आज मैं आपसे करूंगा कि आप अपनी फसल को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरह से अपनी फसल का भंडारण कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम सलाम।

0: मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई, किसान का बेटा हूँ ये गर्व से कहता हूँ।
1: किसान भाइयों, आज आपसे बात हो रही है फसल के भंडारण की, यानी कटाई के बाद फसल का भंडारण कैसे किया जाए। तो जो बातें आपके साथ में साझा करूंगा उनको जरा ध्यान से सुनना। भाई देखिए, फसल की कटाई के बाद आप लोगों के द्वारा कुछ फसल को बीज के लिए और कुछ फसल को अपने उपयोग के लिए स्टोर कर लिया जाता है। किसान भाइयों, आपके द्वारा जो फसल अपने लिए रखी जाती है उसका भंडारण वो ड्रम या अन्य किसी बंद मुंह वाले कंटेनर में किया जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर उसका उपभोग किया जा सके। लेकिन फसल का भंडारण करते समय बरती जाने वाली कुछ सावधानियां भी हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना है। जैसे बीज के लिए जो भंडारण किया जाता है उसमें कीटनाशक का उपयोग किया जाता है, ताकि उसे आगे की बुवाई के लिए सुरक्षित रखा जा सके। ज्यादातर किसानों द्वारा फसल का भंडारण जूट के थैलों में या फिर बोरियों में किया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी जरूरी बातें हैं आपके भंडारण से संबंधित, वो सारी बातें करूंगा। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। किसान भाइयों, आज बात हो रही है फसल के भंडारण के बारे में। भंडारण से पहले फसल को सूरज की रोशनी में सुखाना बहुत जरूरी होता है। फसल की कटाई का जो काम है ना, वो ज्यादातर मशीनों के जरिए किया जाता है, जिसकी वजह से फसल में नमी होती है। अगर इसी तरह से फसल का भंडारण किसान भाइयों के द्वारा किया जाता है तो फसल के खराब होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसीलिए फसल की कटाई के बाद कुछ दिनों के लिए फसल को सूरज की रोशनी में सूखने दें, ताकि उसमें नमी ना रहे, और इसी के साथ साथ अनाज को अच्छे से साफ भी कर लेना चाहिए। होता क्या है, फसल की कटाई के वक्त बहुत सारे जो दाने होते हैं ना, वो टूट जाते हैं, या उसमें धूल मिट्टी हो सकती है, और जो कुछ तिनके हैं जिनकी जरूरत नहीं है, वो तिनके भी आ जाते हैं, जो कि फसल की रौनक को कम कर देते हैं। फसल को स्टोर करने से पहले उसकी अच्छे से सफाई जरूर करनी चाहिए, ताकि फसल को फफूंद जैसी समस्याओं से बचाया जा सके, क्योंकि इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, जब भी फसल को लगती हैं, आपकी फसल बर्बाद हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों, इन सारी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। करेंगे कुछ और भी बातें करेंगे, जैसे फसल का स्टॉक कैसे करना चाहिए, इन सारी बातों को आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। किसान भाइयों, बात हो रही है आज फसल के भंडारण के बारे में। आपकी फसल पककर के तैयार

तैयार हो जाती है और जब उसकी कटाई हो जाती है फिर बात आती है कि इस फसल को हम कहां पर स्टोर करें। तो इसके लिए कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं, वही बातें आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं। कभी भी जो फसल का भंडारण है ना, पुराने और पहले से इस्तेमाल किए गए बोरों में बिल्कुल ना करें। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, फसल के खराब होने की और उनमें और भी ज्यादा रोग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर किसान भाइयों द्वारा पुराने बोरों का उपयोग किया जा रहा है तो उन्हें अच्छे से धो लेना चाहिए ताकि फसल में कोई भी रोग ना लग पाए। और इस बात का भी ध्यान रखें, स्टॉक की गई फसल के बोरों को दीवार से बिल्कुल सटाकर ना रखें। किसान भाइयों, आप लोगों के जरिए फसल का भंडारण जिन बोरों में किया जाता है ना, उन्हें दीवार से सटाकर रखने से आपकी फसल में नमी आ सकती है, क्योंकि बारिश के मौसम में दीवारों पर सीलन या नमी बहुत जल्दी आ जाती है, जिसकी वजह से फसल पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। अब इसके बाद फसल को कीटों से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी सुन लीजिए। नीम के पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी स्टॉक की गई फसल में घुन जैसे कीट लग जाते हैं जो फसल को अंदर से खोखला कर देते हैं। इन कीटों से बचने के लिए नीम से बने पाउडर का इस्तेमाल भी किसानों के द्वारा किया जा सकता है, जिससे स्टॉक की गई फसल को सुरक्षित रखा जा सके। तो इस तरह से किसान भाइयों, आप अपनी फसल को बेहतर तरीके से रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं इन बातों का ख्याल रख करके। करूँगा कुछ और भी जरूरी बातें हैं आपकी फसल के स्टोर के बारे में, वो सारी बातें बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: दोस्तों एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की।
1: किसान भाइयों, बात हो रही है भंडारण के बारे में, और जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, फसल का स्टॉक बोरों में किया जाता है। तो नीचे फर्श पर लकड़ी के तख्ते बिछा दें या फिर चटाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि फसल सुरक्षित रह सके। और वो जो आपकी जगह है जहां पर आप भंडारण करेंगे, उस जगह को हम कह सकते हैं भंडार गृह। भंडार गृह को मेलाथियान के घोल से अच्छे से धो लेना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखना है, फसल का भंडारण करते समय ये बात जरूर ध्यान रखें, फसल को साफ जगह पर ही स्टोर करें। और जो आपका भंडार गृह है वो जितना साफ होगा उतनी ही आपकी फसल सुरक्षित होगी, इसलिए सफाई का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसके अलावा किसान भाइयों, फसल का स्टॉक करना बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। फसलों को सुरक्षित भंडारण के लिए बहुत सी वैज्ञानिक तकनीकें अपनाई जाती हैं। इन तकनीकों की वजह से फसल में जो फफूंद लग जाती है, इस फफूंद से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। लेकिन कभी कभी लोगों को भंडारण की पूरी तरह से जानकारी ना होने की वजह से आधी से ज्यादा फसल का नुकसान हो जाता है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आपका किसी भी तरह का नुकसान हो किसान भाइयों, इसीलिए हर बार मैं आपसे जो बात करता हूँ आपके फायदे की करता हूँ। वैसे तो आपको बातें मालूम है, लेकिन समय बदला है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जो शायद आप तक नहीं पहुँच पाई हैं, वो सारी बातें आप तक पहुँचाता हूँ जिससे कि आपकी फसल बेहतर से बेहतर हो सके और आपको फायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं अन्नदाता।

दोस्तों छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की। किसान भाइयों, भंडारण के बारे में बहुत सारी बातें आपसे मैंने की हैं, लेकिन साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, खास तौर से ये बताना चाहता हूं कि फसल को जितना हो सके नमी से दूर रखना, कीड़ों से दूर रखना, चूहों से दूर रखना। फसल में अगर ज्यादा नमी होती है ना, तो ये सूक्ष्म जीवों के विकास को बढ़ावा देती है। इसी वजह से भंडारण करना बहुत जरूरी बताया जाता है, ताकि फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। फसलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भंडारण किया जाता है। छोटे किसानों की बात करें तो छोटे किसानों के द्वारा सिर्फ अपने उपभोग के लिए फसल का उत्पादन किया जाता है, लेकिन बड़े पैमाने पर फसल का उत्पादन भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए भंडारण किया जाता है। फसलों का भंडारण ज्यादातर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए भी किया जाता है, जैसे बाढ़ आना, सूखा पड़ना। इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उस समय में ये भंडारण हमारे बहुत काम आता है। फसलों के भंडारण के लिए सही स्थान की व्यवस्था होनी चाहिए। भंडारण करते समय ये ध्यान रहे, फसल में नमी बिल्कुल ना हो। नमी की वजह से पूरी फसल खराब हो सकती है। मैं बार बार आपको नमी के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि नमी आपकी फसल के लिए एक तरह से जहर है। आपसे कुछ और भी बातें करूंगा, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: देखिए किसान भाइयों, बहुत सारी बातें आपसे कर ली हैं भंडारण के बारे में, और भंडारण का काम इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए कुछ बातें होती हैं ज़रूरी, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब भाई आपको सावधानी बरतनी है, जितनी सावधानी बरतेंगे आपकी फसल जो आप स्टोर करना चाहते हैं, जिसका भंडारण करना चाहते हैं, वो लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी, और जब भी आपको लगे कि इस फसल का हमें उपयोग करना है तो आप उपयोग कर सकते हैं, और बिना किसी खराबी के, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी रोग के, बिना किसी कीट के, यानी कि आपकी सावधानी से आपकी फसल बिल्कुल सुरक्षित रहेगी और आपको इसका दाम भी अच्छा मिलेगा। दाम अच्छा मिलेगा तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आएगी। अब इसी मुस्कान के साथ आपका दोस्त फहीम आपसे आज्ञा चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलते चलते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम सलाम।

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है।
1: तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के संग लेक वादा,
0: अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।
2: Well, hello, good afternoon, namaskar, sat sri akal, ram ram, jai mata di, assalam alaikum dosto, main hoon RJ Sagar, aaj hum lekar ke show Voice of Youth. Show bahut special hai, uski bahut sari wajah bhi hai ki yahan par ye show बहुत सारी चीजें आपको सिखाता है। आई मीन हर बार हमारे साथ यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो अपनी लाइफ के ओवरऑल एक्सपीरियंस से कुछ कुछ स्किल्स हम लोगों तक पहुंचाते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे से कलाकार मौजूद हैं। यदिन सेतिया नाम है इनका, मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, बहुत प्यारे इंसान, बहुत ही प्यार के कलाकार, एक अभिनेता है, फोटोग्राफर है एंड इसके अलावा काफी सारी चीजें करते रहते हैं, वॉइस ओवर्स भी करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस थिएटर किया है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। आज प्राइमरली हम लोग जो फोकस करेंगे दैट वी गोना टॉक अबाउट कंटेंट क्रिएशन, हाउ यू कैन लर्न इट, हाउ टू मेक योर वीडियोस, हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट, हाउ टू अपलोड इट, व्हाट आर द थिंग्स दैट ऑल यू नीड टू नो और यू कैन से जस्ट जॉट इट डाउन जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट कंटेंट क्रिएशन। सो टुडेज शो इज गोना बी रियली स्पेशल फॉर ऑल ऑफ अस। ऑन दिस नोट वी विल स्टार्ट द शो और यहां पर सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे यतिन सेतिया का। यतिन, स्वागत है हमारे शो में।
3: इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोस बनाता हूँ, ऑलमोस्ट 100 के मेरे इंस्टा पे हो चुके हैं फैमिली, और उसमें मैं बेसिकली फनी, रिलेटेबल, कभी कभी इमोशनल वीडियोस डालता हूँ। और मुझे मिमिक्री करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मिमिक्री आती है, मैं कम से कम 10 वॉइस प्लस आवाजें मैं निकाल सकता हूँ। और इससे पहले मैं एज अ फोटोग्राफर वर्क करता था, क्रिएटर सिनेरियोज बनाता था, मैं उनके शूट करता था, और अब मैं खुद कैमरा के आगे आ चुका हूँ। तो मेरी जर्नी कैमरा से पीछे से लेके आगे तक की मेरी जर्नी रही है और अभी आगे बहुत चलेगी। तो ये है यतिन यार।
2: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सी यात्रा यहाँ पर रही है एंड ये हम सब लोग देख पा रहे हैं। 100 के से ज्यादा इनकी फैमिली है यहाँ पर एंड प्योरली हार्डवर्क है उनका और जो उन्होंने अर्न किया यहाँ पर। एक सवाल यहाँ पर उठता है कि व्हाट ट्रिगर्ड यू और व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट योर कंटेंट जर्नी? क्या ऐसा था जिससे आपको ट्रिगर किया और आपको लगा कि नहीं यार मेरे को ये करना चाहिए?
3: ये कीड़ा मुझे स्कूल टाइम से था, तो मुझे काफी स्कूल टाइम से ऐसे एक्ट करने का शौक, अच्छा मतलब ऐसे एक्ट करना मुझे अच्छा लगता था। मैं स्कूल टाइम में मिमिक्री करता था अपने टीचर्स की और अपने आसपास लोगों की, तो वहां से मुझे था कीड़ा। बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं कभी इसको प्रोफेशनली करूंगा, मैं तब मजे में कर रहा था। बट धीरे धीरे धीरे धीरे जब मैं ऐसे लोगों से मिलता गया जो ये इस कंटेंट में कर रहे हैं, मैं एज अ प्रोफेशनली उनसे मिला था कि मैं शूट करता हूँ और वो ये चीजें वीडियोस क्रिएट करते हैं, वो काफी फेमस क्रिएटर हैं, और उनके साथ मैं ये करता गया। फिर वहां से जब मैं शूट उनका करने लगा, धीरे धीरे धीरे उनको देख के मेरा वो कीड़ा जो दबा हुआ था, जो मेरे अंदर जो चाह थी वो बाहर आने लगी। तो मैंने उनको देख देख के अपना शुरू करा कंटेंट बनाना। मैं मिमिक्री अपना करता था, मिमिक्री वॉइस निकालता था, वो उसको मैंने थोड़ा और सीरियसली लेना शुरू करा। फिर मैं यूट्यूब वगैरह पे देखता था वॉइस एक्सरसाइज, और ये हमारे बीच में जो अभी हमसे जो इंटरव्यू ले रहे हैं सागर जी, इनसे पूछता था मैं वॉइस के बारे में, इनको बहुत नॉलेज है, ये बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो इन्होंने अपनी वॉइस पे बहुत अच्छा काम किया है, तो ये एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए। तो मैं इनसे पूछता था सागर जी से कि कैसे करना है, क्या करना है, तो एक्सरसाइज पे अपना ध्यान देता, वॉइस एक्सरसाइज पे। फिर धीरे धीरे धीरे धीरे करके करते करते इंस्टा पे मैंने फाइनली मुझे जो जिनका मैं शूट करता था, ऋषभ भैया और पूरी टीम, ऋषभ भैया ने मुझे मोटिवेट किया कि तू कर सकता है, तेरे में पोटेंशियल है, टैलेंट भी है, तुझे ट्राई करना चाहिए। तो उनके कहने पे मैंने फिर वीडियोस बनाना शुरू करा। इनिशियली तो बहुत ऐसे ही वीडियो

0: बनाता था, बट धीरे धीरे धीरे इम्प्रूव करता गया करता गया करता करता गया और सबके साथ से मैं सीखता गया और अब अच्छा कर रहा हूँ ऐसा मुझे ऑडियंस बोलती है, प्यार देती है, व्यूज आते हैं, कमेंट्स आते हैं। तो ये जर्नी थी कि एक स्कूल का कीड़ा जग गया, फिर यहाँ पे अच्छे क्रिएटर्स को देख के मेरा भी मन करा कि हाँ करना है, तो वहां से मैंने फिर शुरू किया।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसका प्रमाण ये भी है कि आज आप रेडियो पर लाइव हैं, लोग आपको सुन पा रहे हैं, तो वो उस चीज का प्रमाण है कि आप अच्छा कर पा रहे हैं। डेफिनेटली अपने आप में ये चीजों को सीखना एक हुनर होता है सीखने का भी, तो हर इंसान में ये चीज जो है होनी चाहिए कि आपको सीखना आना चाहिए चीजों को उठाना कैसे है। हमारे आसपास एलिमेंट मौजूद होते हैं। इसी नोट पर दोस्तों लेंगे म्यूजिकल ब्रेक। यहाँ पर अभी तक हमने यतिन से बात करेंगे, डोमेन के बारे में जाना है, आइए इसको थोड़ा सा टेक्निकल लेकर के जाएंगे आगे, कंटेंट के बारे में बात करेंगे, बट ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, आई एम आरजे सागर, राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू रेडियो मधुबन 107.8 एफएम।

0: मैं जल हूं, मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं केवल पृथ्वी ग्रह पर ही हूं, तभी यहां जीवन संभव है। और अगर मैं नहीं रहा तो यहां पर भी जीवन असंभव हो जाएगा।
1: तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं ना, तो आज ही खुद से करें एक वादा, जल बचाएंगे और पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाएंगे। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश।
0: समय की तुम सुनो आहट, पानी का ना छाए संकट।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Welcome back. I just hope you are loving the vibes of this show. You are loving the vibe of this musical break. And अगर आपके पास कोई feedback है मेरे लिए अतिन के लिए कोई भी चीज़ है जो आपके ज़हन में है और हम तक पहुँचानी है do make sure 8010781078 इस नंबर तक आप पहुँचा चुके हों. फिलहाल अपने show को आगे बढ़ाएंगे. अतिन मेरा next question आपसे रहेगा content creation के बारे में. When you think about a content, a piece of content, तो उसको कैसे आप सोचते हो and what is the process? क्या जाता है उसके पीछे?
1: प्रोसेस यही है कि जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि मैं रिलेटेबिलिटी पे कंटेंट बनाता हूँ और उसको फिर बाद में फनी करने का ट्राई करते हैं. तो वो जो रिलेटेबिलिटी आती है जो हमारे आसपास चीजें हो रही हैं, जो मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ या कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ, तो मेरी एक बचपन से ही मतलब आदत थी, मैं ऑब्जर्व बहुत ज्यादा करता हूँ. तो छोटी छोटी चीजें मुझे ऑब्जर्व करने की आदत है. तो मैं वही अगर मैं कहीं भी जा रहा हूँ, किसी के साथ जा रहा हूँ, कुछ भी हो रहा है, अगर कोई जो क्रैक हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है कि मुझे कंटेंट बनाना है. तो वो ऑटोमेटिकली मैं ग्रैब कर लेता हूँ कि हाँ यार, इस टॉपिक पे बनाया जा सकता है, ये टॉपिक शायद अभी कवर नहीं हुआ, इस टॉपिक को पे कुछ और अच्छे से इसको लिख के करा जा सकता है. तो पहले तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन से मुझे रहता है कि मैं ऑब्जर्व करूँ, और फिर उसके बाद मैं राइटिंग के लिए बैठता हूँ. राइटिंग के लिए मैं मेरा दिमाग से या तो रात को चलता है या फिर मैं जब गाड़ी चला रहा होता हूँ, ड्राइव कर रहा होता हूँ, तब मेरा दिमाग चलता है. तो ये दो टाइम पे मेरा दिमाग चलता है. फिर मैं उसके वॉइस नोट्स बनाता हूँ सबसे पहले रफ, कि इसमें इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें इस तरीके से कर सकते हैं. फिर मैं उसको आराम से रात में बैठ के प्रॉपर लिखता हूँ कि ये डायलॉग्स होने चाहिए, ये सब होना चाहिए. तो फिर उसके बाद जाके मैं उसको शूट करता हूँ, और फिर शूट करने के बाद एडिट मैं साथ साथ ही उसी टाइम मैं मूवमेंट पे कर लेता हूँ, सो दैट कि कुछ अगर दिक्कत होती है तो मैं फटाफट भी कुछ शॉट लेना हो तो वो कर लेता हूँ. और कभी कभी ऐसा होता है कि इम्प्रॉम्प्ट शूट्स भी हो जाते हैं. कभी कभी जैसे हम बैठे हुए हैं, जैमिंग कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, कुछ आइडिया आया और फटाफट उसको शूट कर लिया और वन टेक मतलब बना के कुछ भी, जैसे कि वो गैबल करके फटाफट उसको ऑन मोमेंट और उस टाइम पे शूट कर लिया. कभी कभी वो रेयर ऐसे केसेस होते हैं, बट हाँ इस तरीके से लेकिन मैं करता हूँ कि पहले मैं अपना स्क्रिप्टिंग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं शूट करता हूँ. और मतलब अगर आपको सच में इंटरेस्ट है, अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको नहीं आता, आप मतलब आप 1% जानते हो, 2% जानते हो, नॉलेज आपकी बहुत कम है, अगर कुछ भी नहीं आता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके अंदर एक जिद है कि मुझे करना है और सीखना है, तो आप शुरू करो. सबसे पहले सबसे पहला काम ही है, सबसे मुश्किल काम है शुरू करना. अगर आपने शुरू कर लिया ना, उसके बाद धीरे धीरे चीजें आपके रास्ते आराम से खुलते जाएंगे, आप कर लोगे. सबसे पहले जीवाइए, 0 to 1 जाना बहुत मुश्किल होता है, 1 to 10 जाना थोड़ा सा इजी हो जाता है, और 10 to 100 की जर्नी बहुत आराम से हो जाती है. तो सबसे पहला मुश्किल काम है स्टार्ट करना, शुरू करना. आप कैमरा लेके, आप कुछ नहीं, अगर आपको लग रहा है तो आप कुछ नहीं, आप नॉर्मली वीडियो कैमरा ऑन करके आप अपना बोलना शुरू करो. आप अपने आपको देखो कि क्या बोल रहे हो, कैसे, क्या कॉन्फिडेंस लेके आओ. और ये है सबसे पहले, आप अपना ही मतलब कैमरे के आगे बोलना शुरू करो, और धीरे धीरे धीरे करके हो जाएगा. सबसे मेन चीज है शुरू करना. और शुरू कैसे करना, आपको खुद ही, अगर जिद है, दिल है, तो आप कर सकते हो.
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. और प्रोसेस क्या हो सकता है अपार्ट फ्रॉम जीर? अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल बात करूँ कि एक बिगिनर के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, कि क्या क्या चीजें हैं जिसमें फॉल करती हैं?
1: यही है कि टेक्निकल अगर आए तो आपके पास नॉर्मली एक अच्छा कैमरा होना चाहिए. जरूरी नहीं आपके पास सबसे महंगा कैमरा हो, फोन कैमरा, बेसिक फोन कैमरा आईफोन के अच्छे आते हैं जो बेस स्टार्ट हो जाते हैं वहां से, नहीं तो एंड्रॉयड के भी कुछ आज के एंड्रॉयड बहुत अच्छे चल रहे हैं आजकल एंड्रॉयड. तो आप वीडियो, बेसिकली वीडियो क्वालिटी अच्छी हो, आप पॉसिबल हो सके माइक भी, बहुत बेसिक से शुरू हो जाते हैं, माइक भी रखो, क्योंकि ऑडियो वीडियो क्वालिटी मैटर करती है कंटेंट क्रिएशन में. वो जितनी अच्छी होगी लोग उतना अच्छा देख पाएंगे, उतना अच्छा समझ पाएंगे. तो ये दो चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ऑडियो और वीडियो क्वालिटी सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए. उसके बाद आपकी राइटिंग के ऊपर आती है, धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे आपको उस पे काम करना चाहिए. मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक कपल था, उन्होंने मिस्टर बीस्ट से ये बात पूछी थी कि हमें ग्रो करना है, हमें चैनल को अच्छा बनाना है, अपनी वीडियोज को बेहतर बनाना है, तो क्या करें. तो मिस्टर बीस्ट ने ये एडवाइस दिया था कि आप 100 वीडियोस बनाओ और डेली आप एक वीडियो जब बनाओगे तो आपको जो भी कमी है अपनी पिछली वीडियो में वो आप नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट करोगे। तो आपको भी ऐसा ही करना है, आप वीडियो शुरू करो और 100 वीडियोस का एक टारगेट बनाओ और आप नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाओगे तो पिछली वीडियो से एक कमी आपको इम्प्रूव करनी है, आपको सुधारना है। ऐसे करते करते उस कपल ने 1 मिलियन कर लिए थे 100 वीडियोस में।
0: बहुत सुंदर,
1: कुछ भी नहीं था, सबसे मेन चीज थी कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए।
0: यही दोस्तों ये प्रोसेस होता है, मतलब लाइफ में हर चीज का प्रोसेस यही होता है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग द फर्स्ट मोस्ट रिजर्व्ड एरिया इज द बिगिनिंग पॉइंट। वंस यू स्टार्ट डूइंग इट सो आप खुल जाते हो थोड़ा सा एंड उसके बाद फिर आपको ये सिर्फ देखते रहना कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। जैसे यतन ने बताया कि आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस, अपने प्रीवियस वर्क को देख करके आपको इम्प्रूव करना है, जो गलतियां पहले हुई हैं वो अगले में ना हो। मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट इट, राइट। दिस नॉट लेकर चलेंगे अपने शो को आगे दोस्तों, और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। कुछ और चीजें हैं, कुछ और सवाल है मेरे जहन में जो हम पूछेंगे, बट ये हमारे शो का लास्ट फेज होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस कॉन्टेक्स्ट तो आप मुझे 8010781078 इस नंबर पर जरूर बताइएगा।

0: वंस अगेन आई एम होपिंग आपको गाने अच्छे लगे। वंस अगेन आई एम होपिंग ये बातचीत आपको पसंद आ रही है। यतिन बहुत ही खूबसूरत कलाकार हमारे शहर फरीदाबाद के, हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं और बहुत प्यारी प्यारी बातें हमें बता रहे हैं और ईमानदारी से हमें जवाब दे रहे हैं कि आप जेन्युइनली कैसे ग्रो कर सकते हो। अभी तक हमने बात करी यतिन के डोमेन के बारे में, हमने बात करी कॉन्टेंट क्रिएशन के बारे में, हमने बात करी प्रोसेस कैसे होता है, हमने ये भी बात करी है कि एक बिगिनर को अगर स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत लोगों के दिमाग में एक अवहम होता है कि कॉन्टेंट क्रिएशन में पैसा कैसे होता है नहीं होता है। थोड़ा सा फाइनेंशियल पार्ट के ऊपर बात करते हैं। ये दिन बहुत सारे लोगों को कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट तो करना है लेकिन दे आर नॉट श्योर अबाउट इट कि पैसा होता है नहीं होता है, दाल चावल का जुगाड़ कैसे होता है। आप हमें थोड़ा सा गाइड करिए कि पैसे की व्यवस्था कैसे की जाती है व्हाइल परस्यूइंग द कंटेंट क्रिएशन जर्नी।
1: इसमें पैसा होता है, अच्छा होता है, और लेकिन ये है कि वो एक समय बाद आता है। जैसे कि हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम फर्स्ट डे से उसमें से रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। अगर कंटेंट क्रिएशन में भी इस तरीके से अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, अपनी चीजें इन्वेस्ट करेंगे, अपना टैलेंट इन्वेस्ट करेंगे, अपनी स्किल्स इन्वेस्ट करेंगे, तो ये नहीं है कि आपको पहले दिन से ही रिजल्ट मिलना शुरू होगा। आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। किसी को 3 महीने लग जाएंगे, किसी को 3 साल भी लग जाते हैं। तो इट ये ऐसा जरूरी नहीं है, ये एक बिजनेस की तरह है कि आप इसको कितना आप जितना पानी डालेंगे उतने पौधा उगेगा, उतना ज्यादा पौधा बड़ा होगा। तो ये भी वैसा ही है, इसके अंदर पैसा अच्छा है। लेकिन हाँ, एक बार जब पौधा उग गया, जब पेड़ उग जाएगा तो उसमें से फल निकलेंगे ही, और मीठे मीठे फल निकलेंगे जितना आप पानी डालेंगे। तो पैसा अच्छा है, बढ़िया है। शुरू शुरू में बहुत दिक्कतें भी होंगी लेकिन जब आना शुरू होगा तो अच्छा होगा। इसमें बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, अलग अलग जगह है, प्लेटफॉर्म्स हैं। आप सेम वीडियो एक बना के 4 प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं। 3 प्लेटफॉर्म इसमें से आपको मॉनेटरी फायदा देती है और जो चौथा इंस्टाग्राम है वो आपको ब्रांड्स के थ्रू फायदा देता है। आपकी फेस वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपके पास ब्रांड्स आएंगे, ब्रांड्स आपसे काम कराएंगे। इंस्टाग्राम पे इस तरीके से काम होता है और बाकी प्लेटफॉर्म पे भी ब्रांड्स आ सकते हैं उस, लेकिन साथ साथ आपका बेस जो पैसिव इनकम रहेगी वो इस तरीके से रहेगी। आप डालेंगे शॉर्ट्स फॉर्म को, डालेंगे स्नैपचैट पे, डालेंगे यूट्यूब पे, डालेंगे फेसबुक पे, डालेंगे। तो ये 3 प्लेटफॉर्म आपको पे करता है, मोनेटाइजेशन होता है पूरा, सारी चीजें प्रोसेस होती हैं, उसके बाद इसमें आपको पैसा मिलता है। लेकिन उसका भी प्रोसीजर है, एक आपको अचीव करना होता है, वो एक टारगेट होता है इनका, पॉलिसी होती है प्लेटफॉर्म की, वो आप क्रॉस करते हैं उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज होता है और उसके बाद ही होता है। तो ये चीज है कि हाँ, आप करते रहोगे, वही वही बात है कि जितना पानी, जितनी मेहनत डालोगे आप अपने काम में, जितना अच्छी तरह आप अपने आप को स्किल्स इंप्रूव करोगे और अपना टैलेंट को बढ़ाते जाओगे, आप अपने फॉलोअर्स बढ़ाते जाओगे, आपका अर्निंग उस हिसाब से बढ़ती जाएगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उमदा बात उमदा। और यदि आपने, अगर मैं आपकी बात करूं तो अभी आपका चैनल जो है अच्छा हुआ है, अभी आप अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, आपको ब्रांड्स भी आ रहे होंगे, पैसा वैसे आ रहा होगा। बट इफ आई टॉक अबाउट द बिगिनिंग पार्ट, जब आपने शुरू किया था तो जाहिर सी बात है डे वन पे आपके पास पैसा नहीं होगा। उस फेज में जब आपके पास ब्रांड नहीं आ रहे हैं, जब तक आपने ग्रो नहीं किया, आप ग्रोइंग फेज में हो, कैसे अपने आपको सस्टेन किया जाता है, कैसे दाल चावल का जुगाड़ किया जाता है, या आपने कैसे किया?
1: मैं अपना बताता हूँ मैंने कैसे किया। मेरा फोटोग्राफी बिजनेस था, मैं उसमें बहुत अच्छा कमा रहा था, तो मैंने इतनी सेविंग्स कर ली थी कि मुझे था कि मैं 1 साल तक का बिना कमाए मैं अपने लिए खर्च कर सकता हूँ। तो मैंने उतना सेव कर लिया था और इसी वजह से मैं वो कर पाया। बट आप इसको इनिशियली, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो साथ साथ आप कमाते कमाते आप ये करते रहें कि कुछ, मतलब अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं तो ये साथ में पैरेलली करते रहें। मेन स्ट्रीम इनिशियली बना रहे हैं तो आप, या तो आप घर से, आपका बहुत सपोर्ट होना चाहिए, बहुत पैसा होना चाहिए, तभी आप ये काम कर पाएंगे। वरना ये है कि इसमें ये काम आपको इतना निचोड़ देगा कि आपको लगेगा कि पैसा भी नहीं, और ये सब वो आपको डिमोटिवेट करेगा। तो आपको पहले ही बैकअप लेके चलना पड़ेगा, आइदर आपके पास जॉब होनी चाहिए या कुछ सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, अच्छा बेसिक हो, आप अपने खर्चे निकाल पाओ। इनिशियली आपको ये सब तक ध्यान देना पड़ेगा, या फिर आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मुझे कम में सेटल करना है इनिशियली, या तो आप उस चीज के लिए माइंड सेट कर लो।
0: Alright, we are concluding the show here. यदि कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने आप पूछ पाए हो और आप कहना चाहते हो तो please feel free.
1: बस यही कहूंगा कि सबसे मुश्किल स्टेप होता है शुरू करना, सबसे हार्ड स्टेप होता है, किसी चीज का शुरू करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। आप ये सोचते रहोगे मैंने करना है, सोचते रह जाओगे तो रह ही जाओगे। तो अगर आपको जेन्युइनली आपको कुछ करना है, कोई भी काम करना है, नॉट कंटेंट क्रिएशन, तो शुरू करें, खड़े हुए अभी और वेट मत करें किसी चीज का।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर हमने यदन से बात करी है, यदन एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इनकी प्रोफाइल को, यदन यार नाम से इनकी प्रोफाइल है इंस्टाग्राम के ऊपर, 100 के से ज्यादा इनके फॉलोअर्स हैं एंड सच अ लवली गाय, सच अ ब्यूटीफुल सोल, ब्यूटीफुल पर्सनालिटी। आप जाके एक बार चेक जरूर करिएगा इनका काम। और यहाँ तक हमने बात करी है यदन से, यदन ने हमें बहुत अच्छे शब्दों में एक गाइड के तौर पर समझाया है कि कॉन्टेंट क्रिएशन एग्जैक्टली दुनिया कैसी होती है, कैसे स्टार्ट करना होता है, काम कैसे करना होता है, पैसा कैसे आता है, कैसे अपना सस्टेन करना होता है। तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा यदन मैं आपका। थैंक यू सो मच मैन। Thank you so much.

0: चलिया।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, आज जिस कवि के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, उनका नाम है डॉक्टर कुंवर बेचैन। उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे, बहुत सारी कविताएं लिखी और बहुत सारी गजलों को भी उन्होंने जन्म दिया। उनके बहुत सारे शागिर्द हैं। उन्हीं में से एक उनके शागिर्द हैं जो कहते हैं कि हम कुंवर बेचैन के चेले हैं, जिन्होंने कविता का और जीवन का जा भी सिखाया था, ऐसा कहना था उनके शागिर्द का। लेकिन दोस्तों, शागिर्द का और भी बहुत कुछ कहना था डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में। वो सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, आदाब।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, आज बात हो रही है डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में। और जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि उनके वैसे तो बहुत सारे शागिर्द हैं, उन्हीं में से एक शागिर्द हैं जिनका कहना है कि हम कुंवर बेचैन के चेले हैं जिन्होंने कविता काका और जीवन का जा भी सिखाया। तो इस तरह का प्रभाव पड़ता था कुंवर बेचैन के शागिर्दों पर। दोस्तों, डॉक्टर कुंवर बेचैन की अगर हम बात करें तो उनका जन्म 1 जुलाई 1942 को उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के उमरी गांव में हुआ था। वो गोपाल दास नीरज के बाद मंच पर सराहे जाने वाले कवियों में सबसे आगे माने जाते हैं। कुंवर बेचैन ने आधुनिक गजल को समकालीन जामा पहनाते हुए आम आदमी के दैनिक जीवन से जोड़ा है। उन्होंने गजल की संरचना समझाने वाली एक अति महत्वपूर्ण पुस्तक जिसका नाम है गजल का व्याकरण, उस पुस्तक को लिखा है। अगर कभी आपका इत्तेफाक हो तो आप इस पुस्तक को जरूर खरीदिएगा और पढ़िएगा, जिसका नाम है गजल का व्याकरण। बहुत सारी गजलें इन्होंने लिखी हैं और गजल लिखने का जो तरीका है उस तरीके को इन्होंने बड़ी खूबसूरती से लोगों को समझाने का प्रयास भी किया है। इसके अलावा गीत भी बहुत सारे लिखे और कविताएं भी लिखी हैं। तो आज डॉक्टर कुंवर बेचैन की कविताओं का जिक्र होगा, उनकी गजलों की बात होगी और बात होगी उनके गीतों की भी, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात उस समय की है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। तब कविता लिखने का

एक जुनून हुआ करता था मेरे अंदर। मेरा परिचय तब किसी के मार्फत मुरादनगर के हिसाली गांव निवासी सुकवि श्री दयाशंकर अश्क से हुआ था। बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि गाजियाबाद में तो सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुंवर बेचैन रहते हैं। पता पूछकर मैं बेचैन जी के घर नेहरू नगर पहुंचा। वो घर पर ही मिल गए, उनसे मुलाकात हुई। उनसे मिलकर ये महसूस ही नहीं हुआ कि उनसे मेरी पहली मुलाकात है। मुझमें कविता लिखने के साथ उसे सुनाने का भी शौक था। मेरे निवेदन पर बेचैन जी ने मेरी कविता सुनी। कविता में तो कोई बात कविता जैसी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरा हौसला बहुत बढ़ाया। उन्होंने मेरी कविता की बहुत तारीफ की और मुझे बहुत सारी दुआओं से भी नवाजा था। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो उनके साथ बैठ कर के उनके शागिर्द ने की थी। वो सारी बातें फहीम आपको बताएगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, डॉक्टर कुंवर बेचैन ने मुझे पहली बात जो बताई थी वो ये थी कि प्रकृति में या घर में बाहर अंदर जो भी वस्तुएं हैं उनको जिंदगी से जोड़ो, फिर कविता में उसे ढाल दो। मैं उनकी बात से इतना प्रभावित हुआ कि उनसे मिलने गाहे बगाहे उनके घर जाने लगा। इस बीच मैं लाल क्वार्टर मोहल्ले में रहता था, वहां मैंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर स्वर स्वामिनी तरुण समिति बना डाली। सभी ने तय किया कि लाल क्वार्टर मोहल्ले में एक कवि सम्मेलन करवाएंगे और इस सिलसिले में अश्क जी से बात भी हो गई। उनके मार्फत ओश के सुप्रसिद्ध कवि वेद प्रकाश सुमन जी से मिलना हुआ। कवि सम्मेलन की बात बनी, तय हुआ कि कुंवर बेचैन जी का इस कवि सम्मेलन में अभिनंदन करेंगे। अब दोस्तों, कुंवर बेचैन के शागिर्दों ने उनको कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया, और अगर किया तो क्या वो आए? आए, फिर क्या हुआ? ये सारी बातें आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में बात हो रही है और बात हो रही है उनके एक ऐसे शागिर्द के बारे में कि जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। उसी शागिर्द का कहना है कि मेरा बचपन का दोस्त और सहपाठी कवि चरण शंकर प्रसून और मैं बेचैन जी के घर पहुंचे, उनसे आग्रह किया, वो मान गए। हमने कहा कि इस मोहल्ले में हम एक कवि सम्मेलन करा रहे हैं, उसमें आएंगे तो हम सबको अच्छा लगेगा, और वो हमारी बात को मान भी गए। मोहल्ले में घर घर जाकर हमने चंदा इकट्ठा किया और कवि सम्मेलन करवा डाला। बेचैन जी का अभिनंदन किया, जैसा भी किया अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया। वेद प्रकाश सुमन जी ने संचालन करके कवि सम्मेलन में 4 चांद लगा दिए। 2 दिन के बाद मैं फिर बेचैन जी से मिला। बात बात में मैंने कहा कि समिति की ओर से एक स्मारिका निकालनी है, अपनी कोई कविता दे दीजिए, इसे हम कवर पेज पर प्रकाशित करेंगे। बेचैन जी ने हमें जो कविता दी वो माँ शारदे पर लिखा छंद था। वो कुछ यूं था, नित ज्ञान गुमान के आंगन में कुछ भोर रहे कुछ सांझ रहे, मुस्कान की गोद भरी ही रहे पर पीर भी मेरी ना बांझ रहे, मन में कुछ और रहे ना रहे मन मानव का मन मांझ रहे, वरदान दे माँ मन मंदिर में बजती नवगीत की सांझ रहे, मन मंदिर में बजती नवगीत की सांझ रहे। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात चल रही थी डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में, उनके शागिर्दों के बारे में, कवि सम्मेलन के बारे में जहां उनको आमंत्रित किया था, और उसके बाद उनसे उनकी एक कविता ली गई थी जिसको छपवाने की बात हुई थी, और वो कविता उन्होंने सुनाई भी थी। उस कविता को सुनकर उनका शागिर्द कहता है कि मेरे मुंह से निकल गया कि हम इसे 3 महीने में प्रकाशित कर देंगे। उस समय पद्म भूषण गीत ऋषि गोपाल दास नीरज, राजेंद्र राजन और उर्मिलेश जी ने डाक से अपनी रचनाएं हमें भेजी। हमने भी साहस करके पैसे जुटाए और एक स्मारिका प्रकाशित कर ही दी। 3 महीने के बाद मैं बेचैन जी के पास स्मारिका लेकर गया। उनके घर के गेट पर बाहर ही खड़ा था। बाहर बेचैन जी आए, दरवाजा खोला, मैंने स्मारिका उनके हाथ पर रख दी। ये देखकर वो इतना खुश हुए कि मेरा हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गए। अपनी पत्नी यानी हमारी मम्मी जी, उन्हें मैं मम्मी जी बुलाता था, उनके पास ले जाकर मेरी ओर इशारा करते हुए बोले, ये होती है सच्ची लगन, जो कहा वो किया। उन्होंने मुझे खूब खूब आशीर्वाद दिए। इसके बाद तो उनसे मिलने का सिलसिला ही चल निकला। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वो सारी बातें आपके साथ में साझा करता रहूंगा।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है कुंवर बेचैन के बारे में और उनके शागिर्द के बारे में। उनके शागिर्द आगे बताते हैं कि कुंवर बेचैन जी अब मेरे काव्य गुरु ही नहीं, मेरे मार्गदर्शक पिता भी बन चुके थे। मैं उन्हें गुरुजी कहकर बुलाने लगा। जो भी कविता मैं उनके पास लिखकर के ले जाता, वो उसमें थोड़ा बहुत संशोधन जरूर कर दिया करते थे। मेरे जैसे दो तीन और भी कविता लिखने वाले उनके पास आया करते थे, जैसे अनिल असीम, नित्यानंद तुषार, गोविंद गुलशन, पवन खत्री, अमिताभ मासूम, इस तरह के बहुत सारे लोग आते थे उनसे सीखने के लिए। गुरुजी ने हम सबको कहा कि भाई देखिए, ऐसा है, तुम सब अलग अलग दिनों में आते हो, मेरे भी कवि सम्मेलन होते रहते हैं, मैं बाहर भी रहता हूँ, इसलिए एक दिन कोई ऐसा हो जिसमें सब अपनी अपनी कविताएं लेकर आए। तय हुआ कि गुरुवार की शाम सब आया करेंगे। अब दोस्तों, गुरुवार का दिन तय हो गया। अब इस दिन कौन कौन गुरुजी से शिक्षा लेने आता था, कौन कौन अपनी कविताएं लेकर के आता था, वो सारी बातें आपके साथ होंगी, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: क्या करे।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात चल रही थी कुंवर बेचैन जी के शागिर्दों के बारे में कि बहुत सारे शागिर्द उनसे सीखना चाहते थे। अब कुंवर बेचैन जी के पास इतना समय था नहीं कि अलग अलग दिनों में लोगों को सिखा सकें। तो उनका कहना था कि भाई कोई एक दिन ऐसा मुकर्रर कर लो कि जो मैं आप सबको एक साथ सिखा सकूं। तो दिन तय हुआ गुरुवार का। बस फिर क्या था, गुरुजी के ड्राइंग रूम में हम गुरुवार को तय समय पर पहुंचने लगे। शर्त थी कि सब अपनी अपनी नई कविताएं लेकर आएंगे, उसी पर चर्चा हुआ करेगी। पहले गुरुवार आने वाले कवियों की संख्या 3-4 ही थी, लेकिन धीरे धीरे संख्या 4 से 6, 6 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और फिर 35 से 36 तक पहुंच गई। वो दौर हमारा गोल्डन पीरियड था। उस दौरान हमने कविता की बहुत सारी जो बारीकियां होती हैं वो अपने गुरुजी से सीखी, और किसी के द्वारा कविता में कमी बता देने का हम लोग बुरा भी नहीं माना करते थे। बड़ी स्वस्थ आलोचना हुआ करती थी, क्या गीत, क्या गजल, क्या मुक्तक, क्या छंद, सभी विधाओं की व्याकरणिक जानकारियां हमें होने लगी थी। तो दोस्तों, ये तो थी कुंवर बेचैन के शागिर्दों की बातें, लेकिन उनकी बातों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। आज ये पहला एपिसोड है। दूसरे एपिसोड में आपसे बहुत सारी बातें करूंगा डॉक्टर कुंवर बेचैन के बारे में और उनके शागिर्दों के बारे में। फिलहाल आपसे इजाजत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर आपका दोस्त फहीम लेकर आपका कार्यक्रम अन्नदाता। और देखिए दोस्तों, अन्नदाता में हमेशा आपसे मैं किसी न किसी फसल के बारे में बात करता हूं, और कोई ना कोई मेहमान भी होते हैं जो आपको नई नई जानकारियां देते हैं। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर KL गुर्जर, ज्वाइंट डायरेक्टर प्लांट पैथोलॉजी, सेंट्रल इंसेक्टसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी यानी कि CIB&RC, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, फरीदाबाद। सर, सबसे पहले रेडियो मानव रचना 107.8 FM की तरफ से और सभी सुनने वालों की तरफ से आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं।
1: धन्यवाद, सुनने वालों को भी नमस्कार
0: जी। और दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे रबी के मौसम की सब्जियों के बारे में
1: जी।
0: अब रबी के मौसम की सब्जियों के बारे में क्या क्या जानकारियाँ हैं वो सारी जानकारियाँ देंगे आज के हमारे मेहमान डॉक्टर KL गुर्जर। लेकिन सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं एक गाना, उसके बाद आते हैं आज के मेहमान डॉक्टर KL गुर्जर के साथ। सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम सलाम।

0: मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई, किसान का बेटा हूँ, ये गर्व से कहता हूँ। दोस्तों, आप सुन रहे हैं फहीम के साथ अन्नदाता, और अन्नदाता में आज के मेहमान हैं डॉक्टर के एल गुर्जर। बात हो रही है रबी के मौसम की सब्जियों के बारे में। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपसे यही सवाल है कि रबी के मौसम की कौन कौन सी सब्जियां होती हैं?
1: जी, रबी की, जैसा आपने पूछा कि रबी के मौसम की सब्जियों के बारे में, तो रबी में की मौसम में जो रबी की फसल में जो सब्जियां लगाते हैं उनमें प्रमुख है जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी और गाजर, मटर, मूली, पालक, मेथी, ये इस तरह की जो सब्जियां सीजनल वेजिटेबल्स जो रबी के मौसम में आती हैं, ये सब सब्जियां। इसके अलावा भी और भी सब्जियां हैं, जो आलू है और टमाटर है जो कि रबी में भी लगता है, बाकी और मौसम में भी लगाते हैं साल भर। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो साल भर लगती हैं, कुछ होती हैं जो सीजन के अनुसार लगती हैं। तो ये प्रमुख सब्जियां हैं। इसके अलावा भी कई तरह की और सब्जियां हैं जिसे जिन्हें हम जो है रबी के मौसम में भी उगा सकते हैं और साल भर भी उगा सकते हैं, जो पॉली हाउस के अंदर या आर्टिफिशियल जो कंट्रोल कंडीशन के अंदर जो है साल भर सब्जियों को उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन अगर मौसम के अनुसार देखा जाए तो यही प्रमुख सब्जियां हैं जैसे आपने बताया।
0: जी, तो दोस्तों, रबी के मौसम की कौन कौन सी सब्जियां हैं उनका जिक्र तो हो गया है, लेकिन डॉक्टर साहब सवाल तो और भी हैं जो मैं आपसे करूंगा, साथ साथ अपने सुनने वालों को गाने भी सुनाते रहेंगे। तो चलिए फिलहाल एक गाना सुनते हैं, उसके बाद आते हैं आज के मेहमान डॉक्टर के एल गुर्जर के साथ। सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सुनते रहिए अन्नदाता फहीम के साथ।

0: दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज रबी के मौसम की सब्जियों के बारे में, आपने बताया भी था कि इस मौसम की कौन कौन सी सब्जियां होती हैं। अगला सवाल मेरा ये है कि ज्यादा उत्पादन हमें मिल पाए या ज्यादा उत्पादन हमारे किसान भाइयों को मिल पाए इस मौसम की सब्जियों से, तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
1: जी, ज्यादा उत्पादन के लिए हमें सब्जियों के उत्पादन के लिए जो इसकी पूरी प्रक्रिया है उत्पादन की, उसमें जो उन्हें कैसे ज़्यादा उत्पादन लें और सुरक्षित उत्पादन लें, उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सब्जियों को हम खेत में लगाते हैं तो कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें के लिए नर्सरी बनानी पड़ती है उनको, तो पहले नर्सरी का जो बनाते हैं, नर्सरी में पौध तैयार करते हैं, जैसे फूल गोभी है, पत्ता गोभी, इनकी पौध तैयार करते हैं, टमाटर है, बैंगन है, मिर्ची है, तो इन सब की क्या पौध तैयार करनी होती है, नर्सरी जिसको बोलते हैं। तो नर्सरी तैयार करने के लिए नर्सरी की जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसको क्योंकि हम बीज लगाते हैं नर्सरी में और उससे फिर पौध बनती है, तो उसको शुरू से ही उसमें रोग नहीं आए, तो इसलिए उसमें उसकी जो सॉइल है, मिट्टी है, उसमें हमको जो बायोपेस्टिसाइड है, ऑर्गेनिक जिसको बोलते हैं बायोपेस्टिसाइड, जैसे कि ट्राइकोडर्मा हरजेनम है, ट्राइकोडर्मा विरिडी है, तो इस तरह की जो बायोपेस्टिसाइड है वो उसमें गोबर की खाद के साथ मिलाना चाहिए, और गोबर की खाद जो ट्राइकोडर्मा से उपचारित है वो उस नर्सरी की सॉइल में मिक्स करनी चाहिए, उसके बाद उसमें बीज लगाना चाहिए ताकि उसमें जो बीज जनित जो रोग होते हैं शुरुआत की अवस्था में वो रोग उसमें नहीं आए नर्सरी में, और अच्छी पौध तैयार हो, स्वस्थ पौध तैयार हो, उसके बाद फिर उसको लगा करके जब पौध तैयार हो जाती है ट्रांसप्लांटिंग के लिए, तो उस समय खेत में लगाना चाहिए। अब खेत में जब लगाते हैं तो उसे हमें यह ध्यान रखना चाहिए, प्लांट टू प्लांट, रोड टू रोड जो दूरी होती है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, और उसके लिए जो आवश्यक खाद की जरूरत होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, वो खाद की संतुलित मात्रा जैसे डीएपी के रूप में या दूसरे खाद के रूप में, सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में, उसे हमें पहले एप्लीकेशन करना चाहिए, बेसल डोज जिसको बोलते हैं, वो खेत में डालनी चाहिए, और साथ में गोबर की खाद भी डालनी चाहिए, और गोबर की खाद जैसे हमने कहा कि गोबर की खाद को ट्राइकोडर्मा उपचारित रहेगी तो वो सबसे अच्छी रहेगी, और वो उसको कार्बनिक जो कार्बन की मात्रा है सॉइल के अंदर उसको भी बनाए रखेगी, और उससे सॉइल की जो स्ट्रक्चर है, जो सॉइल की जो संरचना है वो भी अच्छी रहेगी, और उसमें जब हम पौध लगाते हैं तो पौध लगाने के बाद वो उसकी बढ़वार अच्छी होगी। तो ये सब चीज़ें हैं, इनके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए। और रही बात उनमें रोग और कीट की, तो जैसे फसल बढ़ती है तो बहुत सारे कीट और रोग का प्रकोप होता है। हाँ, तो ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए हमें जो उसके लिए आवश्यक जो खाद होती है, उर्वरक की मात्रा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, वो संतुलित मात्रा में जो आवश्यक हैं वो हमें उसमें देनी चाहिए, ताकि उसके लिए जो आवश्यक ग्रोथ है, उसकी जो बढ़वार है और उसमें जो उत्पादन है वो हमें मिल सके। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो रोग और कीट और रोग बीमारियां आती उसके लिए आवश्यक जो भी दवाई है, जो रासायनिक दवाई है या जैविक दवाई है, उनका छिड़काव करके समय पर और उसकी निगरानी रख करके, ताकि उसमें उसका रोग का और कीट का प्रकोप ज़्यादा नहीं हो और हमें उसका अच्छा उत्पादन प्राप्त हो, ये हम चीज़ें सब चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए।
0: जी, रोग और कीट प्रबंधन का आपने अभी जिक्र किया है, लेकिन इसके जवाब को मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताइएगा। अभी तो आपने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है कि इस मौसम की जो सब्जियां हैं, रबी के मौसम की जो सब्जियां हैं, उनका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हासिल किया जा सकता है। रोग और कीट प्रबंधन की बात करेंगे, फिलहाल सुनेंगे एक गीत, तो उसके बाद आएंगे आज के मेहमान डॉक्टर के एल गुर्जर के साथ। सुनते रहिए अन्नदाता फहीम के साथ।
2: मिलो न

0: दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है। दोस्तों, आज है मेरे साथ आज के मेहमान डॉक्टर KL गुर्जर। बात हो रही है रबी के मौसम की सब्जियों के बारे में। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था रबी के मौसम की कौन कौन सी सब्जियां होती हैं और ज्यादा उत्पादन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया था। लेकिन आप जानते ही हैं कि सब्जी कोई भी हो, फसल कोई भी हो, उसमें रोग जरूर लग जाता है, और अगर रोग का सही से उपचार ना किया जाए, हमारी फसल, हमारा पैसा, हमारी मेहनत सब बर्बाद हो जाती है। बहुत सारे कीट भी लग जाते हैं फसलों में, तो ये जो रोग हैं इनका उपचार कैसे करें और जो कीट हैं उनकी रोकथाम कैसे करें, इसका प्रबंधन क्या है?
1: जी, सब्जियों के अंदर जो कीट एवं रोग लगते हैं उनके बेहतर प्रबंधन के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन सी रोग हैं और कौन कौन से कीट हैं। तो जैसे बात करते हैं कि रोग के बारे में, तो शुरुआती अवस्था से जो डैम्पिंग ऑफ जो एक रोग है, जो कि उसकी शुरुआती अवस्था में जब आप पौध लगाते हैं उसी अवस्था से आने लग जाता है, आद्र गलन जिसको बोलते हैं, आद्र गलन रोग है। उसके बाद जब फसल थोड़ी और बड़ी होती है तो उसमें जो है जड़ गलन की का रोग एक होता है, आद्र गलन होता है, जड़ गलन होता है। उसके बाद में विल्ट एक रोग होता है, तो आद्र गलन हो गया, जड़ गलन हो गया और विल्ट हो गया। तो ये जो रोग हैं ये आपके सॉइल है, जो मिट्टी है
0: जी,
1: उससे पैदा होते हैं। मतलब इनके जो रोगाणु हैं वो मिट्टी में रहते हैं।
0: ओके,
1: तो मिट्टी में रहते हैं इसलिए ये बीज जनित और मृदा जनित जो बीमारियां होती हैं इन बीमारियों को हम मृदा जनित और बीज जनित बीमारियां कहते हैं, क्योंकि इन बीमारियों का जो सोर्स होता है मिट्टी ही होती है, क्योंकि मिट्टी में रोगाणु होते हैं और वो साल दर साल इसमें बने रहते हैं। जैसे किसी खेत में आप सब्जी लगाते हैं हर साल और उसमें आप देखते हैं कि एकदम से सब्जी की फसल गल जाती है, नष्ट हो जाती है, और कहते हैं कि हमने दवाई भी डाली लेकिन वो सब्जी उसमें पनपी नहीं और वो हमारे पैदावार नहीं दी। उसका कारण यही है कि जैसे एक रोगाणु है, जैसे कि मलानी जो विल्ट है उसका रोगाणु होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फंगस। तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम जो फंगस है उस सॉइल के अंदर है और आप हर साल सब्जी लगाते हैं तो उसमें जड़ गलन की, और दूसरा होता है राइजोक्टोनिया, ये दोनों फंगस हैं, फफूंद जनित बीमारियां हैं जो कि, और ये जो डैम्पिंग ऑफ है ये पीथियम से होती है, तो ये भी फंगस से होती है। तो ये जो फंगस वाली जो बीमारियां हैं, फफूंद जनित बीमारियां हैं, अगर इनको हम साल दर साल सब्जी लगाते रहेंगे और इसको बीज उपचार या मिट्टी उपचार नहीं किया तो वो फिर बीमारी आएगी उसमें।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जब हम इसको लगाते हैं तो इनके प्रबंधन के लिए सबसे अच्छा जो सुरक्षित उपाय है वो है ट्राइकोडर्मा हर्जियनम, ट्राइकोडर्मा विरिडी और स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। ये जो हैं ये भी फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं, बट ये लाभदायक हैं और ये जो रोगाणु जनित जो फंगस हैं उसको नियंत्रित करते हैं। तो अगर इनका प्रयोग सोइल में हम मिट्टी में डाल देंगे बुआई के समय तो फिर ये बीमारियां उनको कंट्रोल कर लेंगे नेचुरली और उनको हमें किसी दवाई की, रासायनिक दवा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सब्जी, क्योंकि हमें सब्जी उत्पादन के लिए स्वच्छ उत्पादन करना है कि उसमें कम रासायनिक कीटनाशक और फफूंदनाशक और जहरीले जो रासायनिक है उनका कम प्रयोग करें, तो सबसे बेस्ट इन बीमारियों के प्रबंधन के लिए हमें इनका प्रयोग करना चाहिए, जो कि हमें आप बीज उपचारित कर सकते हैं सोइल के अंदर प्रति हेक्टर आप 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ या प्रति हेक्टर 5 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से आप ये जो बायोपेस्टिसाइड है जैसे हमने बताया ट्राइकोडर्मा वगैरह वो मिक्स करके और FYM के साथ, गोबर की खाद के साथ, और उसमें डाल करके मिट्टी में और फिर उसकी पौध लगाएंगे तो आपको इन बीमारियों से मतलब आप निश्चिंत रहेंगे कि बीमारियाँ नहीं लगेंगी इन सब्जियों में। अब आती है बात कीटों की, तो जैसे सब्जी बड़ी होती है तो इनके पत्ते होते हैं, उनके रस चूसने वाले कीट होते हैं, सूक्ष्म कीट जिसको बोलते हैं, उसको जैसिड बोलते हैं, एफिड बोलते हैं, सफ़ेद मक्खी बोलते हैं। तो ये इनका प्रकोप होता है। तो इनके प्रकोप के लिए हमें क्या करना है कि उनको मारना नहीं है, उनको प्रबंधन करना है। तो प्रबंधन करने के लिए हमें क्या करना है कि ऐसा रासायनिक या ऐसी दवा छिड़कनी चाहिए ताकि वो उनसे जो कीट है रस चूसने वाले उन वो कम लगें या उससे दूर भागें। तो उसके लिए हमें नीम जो इंसेक्टिसाइड है और नीम का जो तेल से बना हुआ इंसेक्टिसाइड है या नीम जिसको एजेडिरेक्टिन भी बोलते हैं फॉर्मुलेशन आता है उसका स्प्रे करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए ताकि जो रस चूसने वाले कीट हैं वो उस पे एंटीफिडेंट का काम करते हैं। मतलब उसको जब पंक्चर करते हैं पत्ती के ऊपर तो वो इसके अंदर जो एजेडिरेक्टिन होता है नीम के अंदर तो वो उनको एंटी खाने नहीं देता है और उसको दूर भगाता है।
0: ये जो नीम आपने बताया है ये आसानी से मिल जाता है?
1: हाँ, इसका जो जो इसकी जो एजेडिरेक्टिन जो मैं बोल रहा हूँ एजेडिरेक्टिन का एक बोतल मिलती है और वो उसका रेडीमेड नीम का जो है दवा है बनी हुई मिलती है, उसको हम स्प्रे कर सकते हैं। जो डोज है उसकी जो मात्रा है वो एक लीटर के में हिसाब से 5 ml से लेके 10 ml तक आप लेकर के घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो ये रस चूसने वाले जो हैं उनका प्रबंधन होता है। अगर ज़्यादा मात्रा में बढ़ते हैं तो फिर हमें दूसरी दवाएं जैसे कि और दवाएं हैं जो कि अप्रूव्ड दवाइयां हैं रासायनिक जिसको कीटनाशक बोलते हैं जो कि हमारे CIBRC से अप्रूव्ड होती हैं और जो दवा विक्रेता के यहाँ मिलती हैं उसको भी हम जैसे ज़्यादा प्रकोप हो जाता है तब वो दवा हमें डालनी चाहिए। लेकिन उस दवा में को डालने के लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो निर्धारित मात्रा है उसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। और दूसरा ध्यान ये रखना है कि हम जब सब्जियां तोड़ते हैं तो उसका प्री हार्वेस्ट इंटरवल जिसको बोलते हैं दवा छिड़कने के 6 दिन बाद 3 दिन बाद ही उसको तोड़ के बाजार में ले जाएं या प्रयोग करें तो उसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो जहर है, जहरीला मात्रा होती है।
0: अच्छा।
1: तो उसको हम तुरंत छिड़क करके तुरंत अगर खाएंगे तो उसमें थोड़ा उसकी मात्रा रह सकती है। तो इसलिए हमें सब्जियों के अंदर जो दवा छिड़कते हैं तो उसमें विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि मंडी में तभी ले जाएं तब वो 2 या 3 दिन या 5 दिन जो भी उसका इंटरवल है लास्ट स्प्रे के बाद में उस समय उसको तोड़ें, हार्वेस्ट करें और फिर उसको लेकर जाएं।
0: जी जी। तो दोस्तों आपने सुना हमारी जो सब्जियां होती हैं या हमारी जो भी खेती होती है उसमें जो रोग लग जाते हैं, जो कीट लग जाते हैं उनका प्रबंधन आपको कैसे करना है आपको हर तरीके से समझाया है। जो तकनीकी तरीका है समझाने का डॉक्टर साहब का वो बहुत अच्छा है और मेरे ख्याल से आपने समझा भी होगा। तो इसलिए कोई भी बीमारी हो आपकी खेती में, आपकी चाहे फसल छोटी ही क्यों ना हो, उसका आप ध्यान रखेंगे रोगों का या कीटों का तो आपकी फसल बेहतर से बेहतर हो सकती है। बात चल रही है रवि के मौसम की सब्जियों के बारे में। तो और भी कुछ बातें हैं, कुछ और भी सवाल हैं आज के मेहमान डॉक्टर KL गुर्जर से करते रहेंगे। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: दोस्तों, एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ अन्नदाता, और आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर KL गुर्जर। बात हो रही है रबी के मौसम की सब्जियों के बारे में। डॉक्टर साहब, देखिए, हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, यहाँ तक कि जो रोग हमारी सब्जियों में लग जाते हैं, कीट लग जाते हैं, उसका प्रबंधन क्या होना चाहिए, आपने ये तो बता दिया है। अब हर किसान ये चाहता है कि जो खेती वो करे, जो सब्जियां वो उगाए, उसके अच्छे उसको दाम मिल जाए, तो उचित दाम कैसे हासिल किए जा सकते हैं?
1: आपने उचित दाम के बारे में पूछा, तो उचित दाम के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि हमें उचित दाम मिले, तो उसके लिए हम जो सब्जियां लगाते हैं उसका जो मंडी में जो सब्जियां आती हैं उसका जो सीजन होता है, मौसम होता है, उसको हम ये ध्यान रखें कि जैसे रबी सीजन की सब्जियां सब्जी में इसमें मंडी में जब आती हैं तो उस समय अगर उसको लगाने का जो समय है वो उस समय से पहले अगर थोड़ा लगा दें तो उसका दाम हमें अच्छा मिलता है, क्योंकि हाँ क्योंकि एक निश्चित समय में बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाता है पर्टिकुलर महीने में, पर्टिकुलर पीरियड में, तो उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। हाँ, और ये रेट होते हैं डिमांड और सप्लाई के आधार पर, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो भी फसल हम लगाएं तो वो मंडी में पहले अगर इस मौसम में के शुरुआत में ही अगर वो पहुंच जाती हैं तो उसका दाम हमें ज़्यादा मिलता है। तो उसके लिए हमें ऐसा टाइम डिसाइड करना चाहिए कि हम जो पौध तैयार करते हैं, जब खेत में लगाते हैं और जब मंडी में जाती है तो उस समय तक उसकी उपलब्धता है वो हमें मिल प्राप्त हो जाए, और हम उसको पहले मंडी में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से जो पहले लेके जाते हैं तो उनके दाम ज़्यादा मिलते हैं, और फिर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसकी सप्लाई हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है, तो उसके दाम घट जाते हैं। जैसे कि टमाटर के केस में हम देखते हैं, उसमें हमें ये देखते हैं कि जब टमाटर की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो किसान जो है मंडी में भी नहीं ले जाता और खेत में ही छोड़ देता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं निकल रही है, इतना रेट घट जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जैसे कि कोल्ड स्टोरेज जो हैं, जगह जगह पर सरकार की योजनाएं भी हैं कि वो जो ज़्यादा सब्जी उत्पादन हो जाती है तो उसको हम कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं, और कोल्ड स्टोरेज के अलावा जो है प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। जैसे टमाटर की जो सब्जी है उसका प्रोसेसिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा है, जैसे टमाटर की चटनी है, टमाटर जैम है, टमाटर के वो अन्य उत्पादन हैं जो उत्पाद हैं उसे हम प्रोसेस करके और फिर उसको मतलब उसमें सेल कर सकते हैं, तो उसके लिए हमको जो इसका प्रोसेसिंग फूड जो इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री है उससे भी हमको अनुदान भी मिलता है, और इसको स्मॉल स्केल पर भी अगर आप अपने गांव में या अपने एरिया में लगाना चाहते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो वो भी आप उसको लगा सकते हैं, ताकि जिस एरिया में आपका जैसे पर्टिकुलर सब्जी जैसे कि टमाटर बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है तो उस टमाटर बेस्ड जो एग्रो बेस्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है तो उसको आप लगा सकते हैं, तो वो सारा आपका एक्सेस जो प्रोडक्शन होता है, अधिक उत्पादन होता है जो कि मंडी में सप्लाई में उस समय आपको रेट नहीं मिलता है, तो उस समय उसे आप जो है प्रोसेसिंग करके और प्रोसेस प्रोडक्ट बना करके बेच सकते हैं और उससे आप ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो इस तरह से आप कोल्ड स्टोरेज, आलू बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आलू का रेट भी उस समय कम रहता है मंडी में, तो उसे आप जो है कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं और फिर बाद में उसको सेल करके बाद में और उसका रेट ले सकते हैं। तो इस तरह से जो भी ज़्यादा उत्पादन होता है एक पर्टिकुलर सीजन में तो उसे हम तुरंत मंडी में अगर उसका रेट नहीं मिल रहा है तो हमें इन इनका उपयोग करना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज का और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का, तो इस तरह से आप दाम ले सकते हैं।
0: जी, तो देखिए किसान भाइयों, जो मैंने प्रश्न पूछा था आज के मेहमान से वो बहुत ज़रूरी था और अहम था। आप भी ये सोचते होंगे कि भाई हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका उचित दाम हमको मिल जाए, और वो दाम आपको कैसे मिल सकता है, वो सारी बातें आपको बताई हैं दोस्तों आज मेरे साथ आज के मेहमान हैं डॉक्टर KL गुर्जर जी, जो बात कर रहे हैं रबी के मौसम की सब्जियों के बारे में। रबी के मौसम की सब्जियां कौन सी होती हैं, उसका उत्पादन ज़्यादा कैसे लिया जा सकता है, बीमारियों को कैसे भगाया जा सकता है, कीटों की रोकथाम कैसे की जाती है, उचित दाम कैसे हासिल किए जा सकते हैं, ये सारी बातें आपने बताई हैं। लेकिन अब वक्त जाने का है, तो जाते जाते डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ आपकी तरफ से हमारे सभी किसान भाइयों को क्या पैगाम है, क्या संदेश है?
1: जी, मेरा किसान भाइयों को यही संदेश है कि आप जो सब्जी उत्पादन करते हैं वो आप उसका ज़्यादा अधिक उत्पादन लें और उसमें आपको मुनाफा अधिक हो। और जो आप सब्जी उत्पादन करते हैं ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि उसे संतुलित इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रैक्टिस है वो अपना करके उसको पैदावार करें। और अंधाधुंध जो पेस्टिसाइड का स्प्रे होता है सब्जियों के अंदर, उसे केवल उन पर निर्भर नहीं रहें और अंधाधुंध जो जुडिशियस यूज़ करें उसका, पेस्टिसाइड का अगर ज़रूरत होती है तो उस समय लास्ट रिसोर्स के रूप में पेस्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। उससे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मैंने जो पहले तरीके बताए आपको, ट्राइकोडर्मा और बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइज़र, इनका उपयोग करें और कार्बनिक खाद, गोबरी खाद, कंपोस्ट वगैरह, इनका भी प्रयोग खेती में करें। और इंटीग्रेटेड एक बैलेंस जिसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या एक जो पद्धति है उसका प्रयोग करके सब्जी का उत्पादन करें। और अगर पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं सब्जी में और इंसेक्टिसाइड का या फंजीसाइड का, तो उस समय ये ध्यान रखें कि हर एक दवा के ऊपर एक लेबल और लीफलेट आता है, उसमें लिखा रहता है कि इसकी कितनी मात्रा प्रति लीटर में घोल बना करके स्प्रे करें। तो वो स्प्रे करने के बाद में उसमें PHI भी लिखा है, प्री हार्वेस्ट इंटरवेल जिसको बोलते हैं, कि कितने अवधि के बाद उसका तो को उसको हार्वेस्ट करना चाहिए, तोड़ना चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आप जो है, क्योंकि पेस्टिसाइड जहर होते हैं और सब्जियों में हम उसका सीधा मतलब कंज्यूम करते हैं, तो कंज्यूमर्स को उससे ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका प्रभाव नहीं हो जहर का। और आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसका प्रयोग जो है करें, तो उस समय इस लास्ट छिड़काव के बाद ही उसको तोड़ें, थोड़ा इंटरवेल के बाद में, और फिर मंडी में लाएं, तुरंत उसका छिड़काव करके तुरंत उसको उपभोग के लिए मंडी में नहीं लाएं। और उनकी मात्रा का बैलेंस जो यूज, जो डोज दिया गया, अप्रूव्ड पेस्टिसाइड स्प्रे करें। कोई अगर डीलर या कोई आपको कहता है कि ये दवा छिड़कें, ये दवा अच्छा काम करेगी, वो नहीं, आप खुद जाने कि इसमें क्या समस्या है, कौन सा रोग है, कौन सा कीट है, उसको हम पहचाने कैसे। उसके लिए हमारा एक मोबाइल का ऐप भी है जिसको NPSS के नाम से, उसको किसान भाई खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पर, स्मार्टफोन पे, और उसमें आपकी जो फसल के अंदर जो समस्या है उसकी फ़ोटो लेकर के आप उस पर सेंड करेंगे ऐप पे, तो आपको कौन सी दवा कितनी मात्रा में डालनी चाहिए वो भी जानकारी मिल जाएगी। और कितनी मात्रा, वो सब चीज़ों का आजकल जो पद्धति है खेती है वो बहुत ही डिजिटल और आधुनिक खेती हो गई है, तो इनका प्रयोग करके और आप उत्पादन लें सब्जियों का, और फिर ही उसमें जो निर्धारित मात्रा है दवा की वही डालें, और ये इसको आप जो सुरक्षित खेती करें सब्जियों की, यही मेरा संदेश है।
0: तो किसान भाइयों, ये संदेश था हमारे आज के मेहमान डॉक्टर KL गुर्जर की तरफ से आप सबके लिए। उन बातों को आप अमल में लाएंगे तो आपकी कोई भी सब्जी हो, कोई भी फसल हो, वो फसल आपकी अच्छी होगी और आपको उसका दाम अच्छा ही मिलेगा। डॉक्टर साहब आप आए, इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
1: धन्यवाद।
0: और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आप सबसे इजाजत चाहता हूँ, अगली बार किसी नए मेहमान के साथ, किसी नई बात के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई का ध्यान रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूंगा, और जाते जाते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम सलाम।

0: Well, hello, good afternoon, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आज हम लेकर के शो वॉइस ऑफ यूथ जो बहुत स्पेशल है। उसकी बहुत सारी वजह भी है कि यहाँ पर ये शो बहुत सारी चीजें आपको सिखाता है। हर बार हमारे साथ यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो अपनी लाइफ के ओवरऑल एक्सपीरियंस से कुछ कुछ स्किल्स हम लोगों तक पहुंचाते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे से कलाकार मौजूद हैं। यदिन सेतिया नाम है इनका, मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, बहुत प्यारे इंसान, बहुत ही प्यार के कलाकार, एक अभिनेता है, फोटोग्राफर है, एंड इसके अलावा काफी सारी चीजें करते रहते हैं, वॉइस ओवर्स भी करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस थिएटर किया है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। आज प्राइमरली हम लोग जो फोकस करेंगे दैट वी गोना टॉक अबाउट कंटेंट क्रिएशन, हाउ यू कैन लर्न इट, हाउ टू मेक योर वीडियोस, हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट, हाउ टू अपलोड इट, व्हाट आर द थिंग्स दैट ऑल यू नीड टू यू नो और यू कैन से जस्ट जॉट इट डाउन जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट कंटेंट क्रिएशन। सो टुडेज शो इज गोना बी रियली स्पेशल फॉर ऑल ऑफ अस। ऑन दिस नोट वी विल स्टार्ट द शो और यहां पर सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे यतिन सेतिया का। यतिन, स्वागत है हमारे शो में।
1: थैंक यू
0: सो मच सागर जी। सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा आपके क्या क्या चीजें आपके डोमेन में फॉल करती है।
1: जी मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं और इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोस बनाता हूं। ऑलमोस्ट 100 के मेरे इंस्टा पे हो चुके हैं फैमिली, और उसमें मैं बेसिकली फनी, रिलेटेबल, कभी कभी इमोशनल वीडियोस डालता हूँ। और मुझे मिमिक्री करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मिमिक्री आती है। मैं कम से कम 10 वॉइस प्लस आवाजें मैं निकाल सकता हूँ। और इससे पहले मैं एज अ फोटोग्राफर वर्क करता था, क्रिएटर्स के लिए रील्स बनाता था, मैं उनके शूट करता था, और अब मैं खुद कैमरा के आगे आ चुका हूँ। तो मेरी जर्नी कैमरा से पीछे से लेके आगे तक की मेरी जर्नी रही है और अभी आगे बहुत चलेगी। तो ये है यतिन यार।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सी यात्रा यहाँ पर रही है, एंड ये हम सब लोग देख पा रहे हैं। 100 के से ज्यादा इनकी फैमिली है यहाँ पर, एंड प्योरली हार्डवर्क है उनका और जो उन्होंने रन किया यहाँ पर। एक सवाल यहाँ पर उठता है कि व्हाट ट्रिगर्ड यू और व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट योर कंटेंट जर्नी? क्या ऐसा था जिससे आपको ट्रिगर किया और आपको लगा कि नहीं यार मेरे को ये करना चाहिए?
1: ये कीड़ा मुझे स्कूल टाइम से था, तो मुझे काफी स्कूल टाइम से ऐसे एक्ट करने का शौक, अच्छा मतलब ऐसे एक्ट करना मुझे अच्छा लगता था। मैं स्कूल टाइम में मिमिक्री करता था अपने टीचर्स की और अपने आसपास लोगों की, तो वहां से मुझे था कीड़ा। बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं कभी इसको प्रोफेशनली करूंगा, मैं तब मजे में कर रहा था। बट धीरे धीरे धीरे धीरे जब मैं ऐसे लोगों से मिलता गया जो ये इस कंटेंट में कर रहे हैं, मैं एज अ प्रोफेशनली उनसे मिला था कि मैं शूट करता हूँ और वो ये चीजें वीडियोस क्रिएट करते हैं, वो काफी फेमस क्रिएटर हैं, और उनके साथ मैं करता गया। फिर वहां से जब मैं शूट उनका करने लगा, धीरे धीरे धीरे उनको देख के मेरा वो कीड़ा जो दबा हुआ था, जो मेरे अंदर जो चाह थी वो बाहर आने लगी। तो मैंने उनको देख देख के अपना शुरू करा कंटेंट बनाना। मैं मिमिक्री अपना करता था, मिमिक्री वॉइस निकालता था, वो उसको मैंने थोड़ा और सीरियसली लेना शुरू करा। फिर मैं यूट्यूब वगैरह पे देखता था वॉइस एक्सरसाइज, और ये हमारे बीच में जो अभी हमसे जो इंटरव्यू ले रहे हैं सागर जी, इनसे पूछता था मैं वॉइस के बारे में, इनको बहुत नॉलेज है, ये बहुत अच्छे एक्टर है, तो इन्होंने अपनी वॉइस पर बहुत अच्छा काम किया है, तो ये एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए। तो मैं इनसे पूछता था सागर जी से कि कैसे करना है, क्या करना है, तो एक्सरसाइज पे अपना ध्यान देता, वॉइस एक्सरसाइज पे। फिर धीरे धीरे धीरे धीरे करके करते करते इंस्टा पे मैंने फाइनली मुझे जो जिनका मैं शूट करता था, ऋषभ भैया और पूरी टीम, ऋषभ भैया ने मुझे मोटिवेट किया कि तू कर सकता है, तेरे में पोटेंशियल है, टैलेंट भी है, तुझे ट्राई करना चाहिए। तो उनके कहने पे मैंने फिर वीडियोस बनाना शुरू करा। इनिशियली तो बहुत ऐसे ही वीडियोस बनाता था, बट धीरे धीरे धीरे इम्प्रूव करता गया, करता गया और सबके साथ से मैं सीखता गया, और अब अच्छा कर रहा हूँ ऐसा मुझे ऑडियंस बोलती है, प्यार देती है, व्यूज आते हैं, कमेंट्स आते हैं। तो ये जर्नी थी कि एक स्कूल का कीड़ा जग गया, फिर यहाँ पे अच्छे क्रिएटर्स को देख के मेरा भी मन करा कि हाँ करना है, तो वहां से मैंने शुरू किया।
0: बहुत सुंदर नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसका प्रमाण ये भी है कि आज आप रेडियो पर लाइव हैं, लोग आपको सुन पा रहे हैं, तो वो उस चीज का प्रमाण है कि आप अच्छा कर पा रहे हैं। डेफिनेटली अपने आप में ये चीजों को सीखना एक हुनर होता है सीखने का भी, तो हर इंसान में ये चीज जो है होनी चाहिए कि आपको सीखना आना चाहिए चीजों को उठाना कैसे है। हमारे आसपास एलिमेंट मौजूद होते हैं, इसी नोट पर दोस्तों लेंगे म्यूजिकल ब्रेक। यहाँ पर अभी तक हमने यतिन से बात करी, इनके डोमेन के बारे में जाना है। आइए इसको थोड़ा सा टेक्निकल लेकर के जाएंगे, आगे कंटेंट के बारे में बात करेंगे, बट ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, आई एम आरजे सागर, राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू रेडियो मधुबन 107.8 एफएम।

0: चल हूं, मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं केवल पृथ्वी ग्रह पर ही हूं, तभी यहां जीवन संभव है। और अगर मैं नहीं रहा तो यहां पर भी जीवन असंभव हो जाएगा।
1: तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं ना, तो आज ही खुद से करें एक वादा, जल बचाएंगे और पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाएंगे। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश।
0: समय की तुम सुनो आहट, पानी का ना छाए संकट।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Welcome back. I just hope you are loving the vibes of this show. You are loving the vibe of this musical break. And अगर आपके पास कोई feedback है मेरे लिए अतिन के लिए कोई भी चीज़ है जो आपके ज़हन में है और हम तक पहुँचानी है do make sure 8010781078 इस नंबर तक आप पहुँचा चुके हो. फिलहाल अपने show को आगे बढ़ाएंगे. अतिन मेरा next question आपसे रहेगा content creation के बारे में. When you think about a content, a piece of content, तो उसको कैसे आप सोचते हो and what is the process? क्या जाता है उसके पीछे?
1: प्रोसेस यही है कि जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि मैं रिलेटेबिलिटी पे कंटेंट बनाता हूँ और उसको फिर बाद में फनी करने का ट्राई करते हैं. तो वो जो रिलेटेबिलिटी आती है जो हमारे आसपास चीजें हो रही हैं, जो मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ या कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ, तो मेरी एक बचपन से ही मतलब आदत थी, मैं ऑब्जर्व बहुत ज्यादा करता हूँ. तो छोटी छोटी चीजें मुझे ऑब्जर्व करने की आदत है. तो मैं वही अगर मैं कहीं भी जा रहा हूँ, किसी के साथ जा रहा हूँ, कुछ भी हो रहा है, अगर कोई जो क्रैक हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है कि मुझे कंटेंट बनाना है. तो वो ऑटोमेटिकली मैं ग्रैब कर लेता हूँ कि हाँ यार, इस टॉपिक पे बनाया जा सकता है, ये टॉपिक शायद अभी कवर नहीं हुआ, इस टॉपिक को पे कुछ और अच्छे से इसको लिख के करा जा सकता है. तो पहले तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन से मुझे रहता है कि मैं ऑब्जर्व करूँ, और फिर उसके बाद मैं राइटिंग के लिए बैठता हूँ. राइटिंग के लिए मैं मेरा दिमाग से या तो रात को चलता है या फिर मैं जब गाड़ी चला रहा होता हूँ, ड्राइव कर रहा होता हूँ, तब मेरा दिमाग चलता है. तो ये दो टाइम पे मेरा दिमाग चलता है. फिर मैं उसके वॉइस नोट्स बनाता हूँ सबसे पहले रफ, कि इसमें इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें इस तरीके से कर सकते हैं. फिर मैं उसको आराम से रात में बैठ के प्रॉपर लिखता हूँ कि ये डायलॉग्स होने चाहिए, ये सब होना चाहिए. तो फिर उसके बाद जाके मैं उसको शूट करता हूँ, और फिर शूट करने के बाद एडिट मैं साथ साथ ही उसी टाइम मोमेंट पे कर लेता हूँ, सो दैट कि कुछ अगर दिक्कत होती है तो मैं फटाफट भी कुछ शॉट लेना होता है वो कर लेता हूँ. और कभी कभी ऐसा होता है कि इम्प्रॉम्प्ट शूट्स भी हो जाते हैं कभी कभी, जैसे हम बैठे हुए हैं, जैमिंग कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, कुछ आइडिया आया और फटाफट उसको शूट कर लिया और वन टेक मतलब बना के कुछ भी, जैसे कि वो गैबल करके फटाफट उसको ऑन मोमेंट और उस टाइम पे शूट कर लिया. कभी कभी वो रेयर ऐसे केसेस होते हैं, बट हाँ इस तरीके से लेकिन मैं करता हूँ कि पहले मैं अपना स्क्रिप्टिंग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं शूट करता हूँ. और मतलब अगर आपको सच में इंटरेस्ट है, अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको नहीं आता, आप मतलब आप 1% जानते हो, 2% जानते हो, नॉलेज आपकी बहुत कम है, अगर कुछ भी नहीं आता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके अंदर एक जिद है कि मुझे करना है और सीखना है, तो आप शुरू करो. सबसे पहले सबसे पहला काम ही है, सबसे मुश्किल काम है शुरू करना. अगर आपने शुरू कर लिया ना, उसके बाद धीरे धीरे चीजें आपके रास्ते आराम से खुलते जाएंगे, आप कर लोगे. सबसे पहले जीवाइए, 0 to 1 जाना बहुत मुश्किल होता है, 1 to 10 जाना थोड़ा सा इजी हो जाता है, और 10 to 100 की जर्नी बहुत आराम से हो जाती है. तो सबसे पहला मुश्किल काम है स्टार्ट करना, शुरू करना. आप कैमरा लेके, आप कुछ नहीं, अगर आपको लग रहा है तो आप कुछ नहीं, आप नॉर्मली वीडियो कैमरा ऑन करके आप अपना बोलना शुरू करो. आप अपने आपको देखो कि क्या बोल रहे हो, कैसे, क्या कॉन्फिडेंस लेके आओ. और ये है सबसे पहले, आप अपना ही मतलब कैमरे के आगे बोलना शुरू करो, और धीरे धीरे धीरे करके हो जाएगा. सबसे मेन चीज है शुरू करना. और शुरू कैसे करना, आपको खुद ही, अगर जिद है, दिल है, तो आप कर सकते हो.
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. और प्रोसेस क्या हो सकता है अपार्ट फ्रॉम जीड? अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल बात करूँ कि एक बिगिनर के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, कि क्या क्या चीजें हैं जिसमें फॉल करती हैं?
1: यही है कि टेक्निकल अगर आए तो आपके पास नॉर्मली एक अच्छा कैमरा होना चाहिए. जरूरी नहीं आपके पास सबसे महंगा कैमरा हो, फोन कैमरा, बेसिक फोन कैमरा आईफोन के अच्छे आते हैं जो बेस स्टार्ट हो जाते हैं वहां से, नहीं तो एंड्रॉयड के भी कुछ आज के एंड्रॉयड बहुत अच्छे चल रहे हैं आजकल एंड्रॉयड. तो आप वीडियो, बेसिकली वीडियो क्वालिटी अच्छी हो, आप पॉसिबल हो सके माइक भी, बहुत बेसिक से शुरू हो जाते हैं, माइक भी रखो, क्योंकि ऑडियो वीडियो क्वालिटी मैटर करती है कंटेंट क्रिएशन में. वो जितनी अच्छी होगी लोग उतना अच्छा देख पाएंगे, उतना अच्छा समझ पाएंगे. तो ये दो चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ऑडियो और वीडियो क्वालिटी सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए. उसके बाद आपकी राइटिंग के ऊपर आती है, धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे आपको उस पे काम करना चाहिए. मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक कपल था, उन्होंने मिस्टर बीस्ट से ये बात पूछी थी कि हमें ग्रो करना है, हमें चैनल को अच्छा बनाना है, अपनी वीडियोज को बेहतर बनाना है, तो क्या करें. तो मिस्टर बीस्ट ने ये एडवाइस दिया था कि आप 100 वीडियोस बनाओ और डेली आप एक वीडियो जब बनाओगे तो आपको जो भी कमी है अपनी पिछली वीडियो में वो आप नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट करोगे। तो आपको भी ऐसा ही करना है, आप वीडियो शुरू करो और 100 वीडियोस का एक टारगेट बनाओ और आप नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाओगे तो पिछली वीडियो से एक कमी आपको इम्प्रूव करनी है, आपको सुधारना है। ऐसे करते करते उस कपल ने 1 मिलियन कर लिए थे 100 वीडियोस में।
0: बहुत सुंदर।
1: कुछ भी नहीं था, सबसे मेन चीज थी कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए।
0: यही दोस्तों ये प्रोसेस होता है, मतलब लाइफ में हर चीज का प्रोसेस यही होता है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग द फर्स्ट मोस्ट रिजर्व्ड एरिया इज द बिगिनिंग पॉइंट। वंस यू स्टार्ट डूइंग इट सो आप खुल जाते हो थोड़ा सा एंड उसके बाद फिर आपको ये सिर्फ देखते रहना कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। जैसे अतन ने बताया कि आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस, अपने प्रीवियस वर्क को देख करके आपको इम्प्रूव करना है, जो गलतियां पहले हुई हैं वो अगले में ना हो। बहुत ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट इट, राइट। ऑन दिस नोट लेकर चलेंगे अपने शो को आगे दोस्तों, और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। कुछ और चीजें हैं, कुछ और सवाल है मेरे जहन में जो हम पूछेंगे, बढ़िया। हमारे शो का लास्ट फेज होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस कॉन्टेक्स्ट तो आप मुझे 8010781078 इस नंबर पर जरूर बताइएगा।

0: Once again, I'm hoping ये बातचीत आपको पसंद आ रही है। यतिन बहुत ही खूबसूरत कलाकार हमारे शहर फरीदाबाद के हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं और बहुत प्यारी प्यारी बातें हमें बता रहे हैं और ईमानदारी से हमें जवाब दे रहे हैं कि आप जेन्युइनली कैसे ग्रो कर सकते हो। अभी तक हमने बात करी यतिन के डोमेन के बारे में, हमने बात करी कॉन्टेंट क्रिएशन के बारे में, हमने बात करी प्रोसेस कैसे होता है, हमने ये भी बात करी है कि एक बिगिनर को अगर स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत लोगों के दिमाग में एक अवेम होता है कि कॉन्टेंट क्रिएशन में पैसा कैसे होता है नहीं होता है। थोड़ा सा फाइनेंशियल पार्ट के ऊपर बात करते हैं। ये दिन बहुत सारे लोगों को कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट तो करना है लेकिन दे आर नॉट श्योर अबाउट इट कि पैसा होता है नहीं होता है, दाल चावल का जुगाड़ कैसे होता है। आप हमें थोड़ा सा गाइड करिए कि पैसे की व्यवस्था कैसे की जाती है वाइल परस्यूइंग द कंटेंट क्रिएशन जर्नी।
1: इसमें पैसा होता है, अच्छा होता है, और लेकिन ये है कि वो एक समय बाद आता है। जैसे कि हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम फर्स्ट डे से उसमें से रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। अगर कंटेंट क्रिएशन में भी इस तरीके से अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, अपनी चीजें इन्वेस्ट करेंगे, अपना टैलेंट इन्वेस्ट करेंगे, अपनी स्किल्स इन्वेस्ट करेंगे, तो ये नहीं है कि आपको पहले दिन से ही रिजल्ट मिलना शुरू होगा। आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। किसी को 3 महीने लग जाएंगे, किसी को 3 साल भी लग जाते हैं। तो इट ये ऐसा जरूरी नहीं है, ये एक बिजनेस की तरह है कि आप इसको कितना आप जितना पानी डालेंगे उतने पौधा उगेगा, उतना ज्यादा पौधा बड़ा होगा। तो ये भी वैसा ही है, इसके अंदर पैसा अच्छा है। लेकिन हाँ, एक बार जब पौधा उग गया, जब पेड़ उग जाएगा तो उसमें से फल निकलेंगे ही, और मीठे मीठे फल निकलेंगे जितना आप पानी डालेंगे। तो पैसा अच्छा है, बढ़िया है। शुरू शुरू में बहुत दिक्कतें भी होंगी लेकिन जब आना शुरू होगा तो अच्छा होगा। इसमें बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, अलग अलग जगह हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं। आप सेम वीडियो एक बना के 4 प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं। 3 प्लेटफॉर्म इसमें से आपको मॉनेटरी फायदा देती है और जो चौथा इंस्टाग्राम है वो आपको ब्रांड्स के थ्रू फायदा देता है। आपकी फेस वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपके पास ब्रांड्स आएंगे, ब्रांड्स आपसे काम कराएंगे। इंस्टाग्राम पे इस तरीके से काम होता है और बाकी प्लेटफॉर्म पे भी ब्रांड्स आ सकते हैं उस, लेकिन साथ साथ आपका बेस जो पैसिव इनकम रहेगी वो इस तरीके से रहेगी। आप डालेंगे शॉर्ट्स फॉर्म को डालेंगे, स्नैपचैट पे डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, तो ये 3 प्लेटफॉर्म आपको पे करता है। मोनेटाइजेशन होता है पूरा, सारी चीजें प्रोसेस होती हैं, उसके बाद इसमें आपको पैसा मिलता है। लेकिन उसका भी प्रोसीजर है, एक आपको अचीव करना होता है, वो एक टारगेट होता है इनका, पॉलिसी होती है प्लेटफॉर्म की, वो आप क्रॉस करते हैं उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज होता है और उसके बाद ही होता है। तो ये चीज है कि हाँ, आप करते रहोगे, वही वही बात है कि जितना पानी जितनी मेहनत डालोगे आप अपने काम में, जितना अच्छी तरह आप अपने आपको स्किल्स इंप्रूव करोगे और अपना टैलेंट को बढ़ाते जाओगे, आप अपने फॉलोअर्स बढ़ाते जाओगे, आपका अर्निंग उस हिसाब से बढ़ती जाएगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। और यदि आपने, अगर मैं आपकी बात करूं तो अभी आपका चैनल जो है अच्छा हुआ है, अभी आप अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, आपको ब्रांड्स भी आ रहे होंगे, पैसा वैसे आ रहा होगा। बट इफ आई टॉक अबाउट द बिगिनिंग पार्ट, जब आपने शुरू किया था तो जाहिर सी बात है डे 1 पे आपके पास पैसा नहीं होगा। उस फेज में जब आपके पास ब्रांड नहीं आ रहे हैं, जब तक आपने ग्रो नहीं किया, आप ग्रोइंग फेज में हो, कैसे अपने आपको सस्टेन किया जाता है, कैसे दाल चावल का जुगाड़ किया जाता है, या आपने कैसे किया?
1: मैं अपना बताता हूँ मैंने कैसे किया। मेरा फोटोग्राफी बिजनेस था, मैं उसमें बहुत अच्छा कमा रहा था, तो मैंने इतनी सेविंग्स कर ली थी कि मुझे था कि मैं 1 साल तक का बिना कमाए मैं अपने लिए खर्च कर सकता हूँ, तो मैंने उतना सेव कर लिया था और इसी वजह से मैं वो कर पाया। बट आप इसको इनिशियली तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो साथ साथ आप कमाते कमाते आप ये करते रहें कि कुछ, मतलब अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं तो इस साथ में पैरेलली करते रहें। मेन स्ट्रीम इनिशियली बना रहे हैं तो आप, या तो आप घर से, आपका बहुत सपोर्ट होना चाहिए, बहुत पैसा होना चाहिए, तभी आप ये काम कर पाएंगे। वरना ये है कि इसमें ये काम आपको इतना निचोड़ देगा कि आपको लगेगा कि पैसा भी नहीं, और ये सब वो आपको डिमोटिवेट करेगा। तो आपको पहले ही बैकअप लेके चलना पड़ेगा, आइदर आपके पास जॉब होनी चाहिए या कुछ सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, अच्छा बेसिक हो, आप अपने खर्चे निकाल पाओ। इनिशियली आपको ये सब तक ध्यान देना पड़ेगा, या फिर आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मुझे कम में सेटल करना है इनिशियली, या तो आप उस चीज के लिए माइंड सेट कर लो।
0: All right, we are concluding the show here. यदि कोई ऐसी चीज़ है जो मैं आप पूछ पाए हो और आप कहना चाहते हो तो प्लीज फील फ्री।
1: बस यही कहूंगा कि सबसे मुश्किल स्टेप होता है शुरू करना, सबसे हार्ड स्टेप होता है, किसी चीज का शुरुआत शुरू करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। आप ये सोचते रहोगे मैंने करना है करना है करना है, सोचते रह जाओगे तो रह ही जाओगे। तो अगर आपको जेन्युइनली आपको कुछ करना है, कोई भी काम करना है, नॉट कंटेंट क्रिएशन, तो शुरू करें, खड़े हुए अभी और वेट मत करें किसी चीज का।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर हमने यतिन से बात करी है, यतिन एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इनकी प्रोफाइल को, यतिन यार नाम से इनकी प्रोफाइल है इंस्टाग्राम के ऊपर, 100K से ज्यादा इनके फॉलोअर्स हैं एंड सच अ लवली गाय, सच अ ब्यूटीफुल सोल, ब्यूटीफुल पर्सनालिटी। आप जाके एक बार चेक जरूर करिएगा इनका काम। और यहाँ तक हमने बात करी है यतिन से, यतिन ने हमें बहुत अच्छे शब्दों में एक गाइड के तौर पर समझाया है कि कंटेंट क्रिएशन एग्जैक्टली दुनिया कैसी होती है, कैसे स्टार्ट करना होता है, काम कैसे करना होता है, पैसा कैसे आता है, कैसे अपना सस्टेन करना होता है। तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा यतिन मैं आपका। थैंक यू सो मच मैन।
1: थैंक यू सो मच।
0: दोस्तों अब इसी के साथ वक्त है अपने शो को यहाँ पर कंक्लूड करने का। आशा करता हूँ आज के शो से कुछ भूल लिया हम आप लोगों तक पहुंचा पाए। तो इसी नोट पर चलते हैं अपने शो को यहाँ पर साइन ऑफ करते हैं, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। लेकिन कहीं जाइएगा मत, जुड़ रही हमारे साथ, मैं हूँ आरजे सागर, शो है ये वॉइस ऑफ यूथ, यहाँ पर खत्म होता है, इसके बाद और शोज हैं, जरूर सुनिएगा रेडियो 107.8 FM पर। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

महावीर का जो जीवन है वो ऐतिहासिक नहीं है और बुद्ध का जो जीवन है वो भी ऐतिहासिक नहीं है। इतिहास दो कौड़ी का है क्योंकि हमारी पकड़ बहुत गहरी है। हम ये कहते हैं कि जब भी जितने बुद्ध हुए उन सबका जो सार निचोड़ है वो हमने फिर गौतम बुद्ध में पढ़ लिया, फिर हमने गौतम बुद्ध के नाम से लिख दिया। फिर आगे कोई बुद्ध होगा, गौतम बुद्ध तब तक भूल जा चुके होंगे, बिछड़ गए होंगे इतिहास की पुरानी रास्तों पर, भूल चुके होंगे। फिर नया बुद्ध सारे बुद्धों में जो होता है उसको फिर से पुनर्जीवित कर देगा। लेकिन कथा वही है, नाम बदल जाते, रंधन बदल जाते, लेकिन कथा वही है, गीत वही है, धुन वही है, टेक वही है। इसलिए सारी बातें बुद्ध के जीवन में जो लिखी है तुम ऐसा मत सोचना कि वो सच सच ऐतिहासिक अर्थों में नहीं है। कई बातें ऐसी हैं जो दूसरे बुद्धों के जीवन में घटी होंगी और कई बातें ऐसी हैं जो आने वाले बुद्धों के जीवन में घटेंगी। बुद्ध के जीवन में हमने सबका सार रख दिया है, निचोड़ है। गुलाब का एक फूल है ये इतिहास, और हमने बहुत से फूलों का इत्र निकाल लिया ये पुराण। उस इत्र में सभी गुलाबों की गंध आ गई, मगर तुम ये न कह सकोगे किस गुलाब से बना ये इत्र। अब मुश्किल है, अब बताना बिल्कुल मुश्किल है। जो तुम्हारी बगिया में खिला था उस गुलाब से, या जो पड़ोसी की बगिया में खिला था उस गुलाब से, कि पीले गुलाब से, कि लाल गुलाब से, कि सफेद गुलाब से, अब ये बताना बहुत मुश्किल है। अब तो ये इत्र सबका सार निचोड़, हमने इत्र लिखा, पश्चिम गुलाबों की रूपरेखा लिखता है, एक एक गुलाब का हिसाब रखता है। हम कहते हैं एक एक गुलाब का हिसाब रखने से सार भी क्या है, सब गुलाब अपनी मूलभूत सत्ता में समान होते हैं। इसलिए हमारे सत्य सार्वलौकिक, सार्वभौम है, शाश्वत है। पूछा है तुमने मनुष्यों में जो प्रथम बुद्ध हुए होंगे, नहीं कोई प्रथम नहीं हुआ, प्रथम के भी पहले बहुत हुए, तो प्रथम कहने का कोई अर्थ नहीं, और अंतिम भी कोई नहीं होगा, अंतिम के बाद भी होते रहेंगे। प्रश्न है कि किस मार्ग से गए होंगे वे, उनका गुरु कौन था, उनके पहले इतना ही समय हो चुका था जितना हमारे पहले हुआ है, क्योंकि समय अनंत है, इसमें हिसाब नहीं लगाया जा सकता। मैंने सुना है एक म्यूजियम में, म्यूजियम का गाइड एक यात्रियों के दल को चीजें दिखा रहा था, फिर उसने एक अस्थि पंजर बताया और कहा कि ये 1,03,007 पुराना है। यात्री भी थोड़े चौंके, 1,03,007 पुराना, उनका 1 करोड़ तो ठीक, मगर ये 3 साल और 7 दिन इतना ही।

अतीत की दृष्टि से तो कुछ भी नहीं बीता, 25 साल कुछ भी नहीं बीते, बीता ही नहीं कुछ। अनंत में कुछ जोड़ो तो बढ़ता नहीं और घटाओ तो घटता नहीं। उपनिषद का वचन तुम्हें याद है ना, पूर्ण में पूर्ण को जोड़ दो तो पूर्ण बड़ा नहीं होता, और पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दो तो पूर्ण छोटा नहीं होता। पूर्ण का अर्थ ही ये होता है, उसमें जोड़ा नहीं जा सकता और घटाया नहीं जा सकता। कितना ही जोड़ते चले जाओ, अनंत का ख्याल करो, हमसे पहले अनंत काल बीत चुका है। अनंत का अर्थ ही होता है कि जिसका कभी कोई प्रारंभ नहीं था, अब उसमें 2500 साल जोड़ने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जितना काल हमसे पहले बीता है उतना ही काल बुद्ध के समय में भी बीत चुका था, उतना ही, और हमारे बाद भी 2500 साल बाद जब कोई आएगा और चर्चा करेगा तब भी उतना ही काल बीता है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए किस मार्ग से गए होंगे उनके पहले जो बुद्ध गए थे, अनंत अनंत बुद्ध स्वभावतः उसी मार्ग में से उन्होंने अपना मार्ग चुना होगा। उनके पहले जो अनंत दीप स्तंभ हुए थे उन्हीं की रोशनी में उन्होंने अपनी खोज की होगी। यहाँ कोई पहला नहीं और यहाँ कोई अंत नहीं, हम सब संयुक्त। तुम ऐसा सोचो, तुम अपने पिता से पैदा हुए, तुम्हारे पिता अपने पिता से पैदा हुए होंगे, पिता के पिता और किसी से पैदा हुए होंगे। तुमने कभी ऐसा सोचा कि पहला आदमी किससे पैदा हुआ? वैसे ये भी प्रश्न है, पहला आदमी किससे पैदा हुआ? पहला आदमी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी कोई आदमी पैदा होगा पिता की जरूरत पड़ेगी, माँ की जरूरत पड़ेगी, किसी से पैदा होगा। पहला आदमी हो ही नहीं सकता और न अंतिम आदमी हो सकता है, क्योंकि जो है वो रहेगा, मिटता नहीं, जो है था और रहेगा। इसका तुम्हें बोध आ जाए, ये विस्तार का तुम्हें थोड़ा स्मरण आ जाए। ये कठिन है स्मरण करना, क्योंकि हमारी बुद्धि की बड़ी सीमा है। कितने खींचो तानो हम कहते कोई तो हुआ होगा पहले, हमारा मन पूछ ही चला जाता है, कोई तो हुआ होगा पहले, कभी तो अंत होगा। इसे और तरह से देखो, हम कहते हैं जगत असीम है। सोचो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, प्रकाश की गति से चलो। प्रकाश बड़ी तीव्र से तीव्र गति है, 186,000 मील प्रति सेकंड प्रकाश की गति से तुम्हारा हवाई जहाज चला जा रहा है। या और भी बड़ी गति खोज लो, क्या तुम कभी ऐसी घड़ी में आओगे जहां तुम जगत की सीमा पर पहुंच जाओ? समझना, इस पर दार्शनिक बहुत चिंतन करते रहे कि ऐसी कोई जगह आएगी जहां तख्ती लगी हो कि यहां समाप्त हो गया संसार, अब आगे मत जाना नहीं तो गिर पड़ोगे। मगर अगर आगे गिर पड़ने को भी जगह है तो अभी संसार बाकी। अगर सीमा भी खींची जा सकती है कि यहाँ संसार समाप्त हो गया, तो सीमा तो बनती ही दो से, तो यहाँ से कोई और चीज शुरू हो गई। हर अंत शुरुआत, हर द्वार कहीं खुलता है कहीं बंद होता है। अगर तुम एक ऐसी जगह पहुंच गए, ठीक यहाँ होता है ऐसा कि तुम पहुंच गए महाराष्ट्र खत्म गुजरात शुरू, ये यहाँ हो जाता है, लेकिन गुजरात तो होना चाहिए ना, तो महाराष्ट्र खत्म कैसे होगा? महाराष्ट्र खत्म हो जाता है गुजरात शुरू हो जाता है, हिंदुस्तान खत्म हो जाता है पाकिस्तान शुरू हो जाता है। जहाँ कुछ खत्म होता है वहाँ तत्क्षण कुछ शुरू हो जाता है। अगर ये विश्व कहीं खत्म होता हो और एक रेखा आ जाती है, यहाँ तख्ती लगी चुंडी चौकी बनी, बस आगे मत बढ़ना यहाँ संसार खत्म, उसका मतलब है आगे कुछ तो होगा। नहीं, ऐसी चुंडी चौकी पर तुम कभी ना पहुंचोगे, ऐसी कोई चुंडी चौकी है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, होना ही असंभव है। क्योंकि जहां भी रेखा खींचनी हो रेखा दो के बीच खींचती, और अगर दूसरा मौजूद है तो अभी अंत नहीं आया, तो रेखा खींची नहीं सकती, रेखा असंभव है। जब हम कहते हैं जगत असीम है तो हम कहते हैं आकाश असीम, और जब हम कहते हैं जगत अनंत है तो हम कहते हैं समय काल की धारा अनंत। समय और आकाश दोनों अनंत है, यहाँ न कभी कोई प्रथम हुआ और न कोई अंतिम होगा। चौथा प्रश्न, आपके चरणों में सिर रखकर अपना प्रेम प्रकट करना मेरा ध्येय था, जिसके कारण मुझे संन्यास लेने में अड़चन नहीं हुई, कृपया बताएं कि गुरु की क्या जिम्मेदारी है, मुझे कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया, मैं आपसे चकित हूँ। पहली तो बात, क्या मुझ पर कोई मुकदमा चलाने का इरादा है? गुरु की जिम्मेदारी, गुरु जाने,

0: तुम जान के क्या करोगे? अगर जिम्मेदारी पूरी न की गई तो अपनी झंझट बखेड़ा खड़ा करोगे। गुरु की जिम्मेदारी गुरु जाने। तुम अगर पूछना ही हो तो शिष्य की जिम्मेदारी पूछो, क्योंकि वो तुम्हें करनी है। अपनी बात पूछो, अपनी बात तो तुमने नहीं पूछी। तुम फिक्र कर रहे हो कि गुरु की क्या जिम्मेदारी, जैसे तुम्हारा काम तो अब पूरा हो गया क्योंकि चरणों में सिर रख दिया, बात खत्म हो गई। हालांकि चरणों में सिर अभी रखा नहीं, नहीं तो जिम्मेदारी पूछते नहीं। जब चरणों में सिर रख ही दिया तो बचा क्या? अब बात खत्म हो गई, अब जो मर्जी उसको करो, अब जैसा लगे करो। ये गर्दन काटनी हो तो काट दो, अब कोई बात न रही पूछने की। लेकिन तुमने चरणों में सिर रख के जैसे गुरु पे अनुकंपा की कि अब बोलो, हम तो कर दिए जो करना था, अब आपकी तरफ से क्या होगा? जो कि हमने तो सिर रख दिया, सिर में है क्या? सिर काट के बेचने जाओगे कितने में बिकेगा? ऐसा हुआ कि अकबर के पास फरीद कभी कभी आता था, अकबर फरीद के पास भी कभी कभी जाता था। फरीद अनूठा फकीर था। जब अकबर फरीद के पास जाता या फरीद अकबर के पास आता तो अकबर सिर झुका के उसके चरणों में प्रणाम करता था। अकबर के वजीरों को बात न जचती थी, उनको बड़ा आखरता था कि बादशाह और किसी फकीर के चरणों में सिर झुका है। आखिर उनसे न रहा गया और उन्होंने कहा, ये शोभा नहीं देता, आप अपना सिर झुकाएं फकीर के कदमों, इसकी कोई जरूरत नहीं। साधारण आदमी जैसा आदमी आपने समझा क्या है? आप क्यों इतना अपने को विनम्र कर लेते? तो अकबर ने कहा, तुम एक काम करो, इसका उत्तर तुम्हें शीघ्र दूंगा, अभी रुको। कोई महीने 15 दिन बाद एक आदमी को फांसी हुई, अकबर ने उसका गर्दन कटवा ली और अपने वजीरों को कहा कि इसको बाजार में जाके बेचो। सुंदर आदमी था, सुंदर चेहरा था, आंखें बड़ी प्यारी थी, साफ सुथरा करके सोने की थाली में रख के वजीर उसको बाजार में बेच लेगा। जिसकी दुकान पे गया उसी ने कहा, हटोड़ बाहर निकलो, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ, इसको करेंगे क्या लेके? आदमी का सिर किस काम आता है? अगर हाथी का सिर होता तो कुछ काम भी आ जाए, हरिन का सिर हो तो कुछ सजावट के काम आ जाए, इसको हम रखेंगे क्या? ये बदबू आएगी और गंदगी होगी, हटो। कोई आदमी दो पैसा देने को तैयार नहीं हुआ। वजीर बड़े हैरान हुए, लौट के आया अकबर से, कहा कि दुखी है हम, लेकिन कोई आदमी दो पैसा देने को तैयार नहीं। उल्टे लोग नाराज होते, जिसके पास हम गए उन्होंने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसको करेंगे क्या? तो अकबर ने कहा, ये तुम्हारे लिए मेरा उत्तर था, आदमी के सिर की कीमत क्या है? दो पैसे में भी कोई लेने को तैयार नहीं। तुम सोचते हो मेरा सिर काट के किसी दिन तुम बेचने जाओगे तो कोई खरीदे? तो जिसकी दो कौड़ी कीमत नहीं है, उसको अगर मैंने किसी फकीर के चरण में झुका दिया, तुम्हें अड़चन क्या है? जिसका कोई मूल्य नहीं, इसका नाम झुकाना है। सिर में मूल्य नहीं है, इसको जानना ही सिर का झुकाना है। तुमने झुकाया होगा सिर, लेकिन यही सोच के कि बड़ा गजब कर रहे, बड़ी अनूठी घटना तुम कर रहे हो। देखो सिर झुका रहे हो, तुम्हारे मन में ये ख्याल है कि सिर का कोई बड़ा मूल्य है। मैं जानता हूँ कि तुमने बड़ी अड़चन से झुकाया होगा, बहुत दिन सोचा होगा, विचारा होगा, लेकिन तुम्हारे सोच विचार से कुछ सिर में मूल्य नहीं आ जाता। सिर झुकाने का अर्थ यह है कि तुमने ये कहा कि सिर में तो कुछ भी नहीं है, अब सिर के आगे कुछ यात्रा हो जाए। सिर में तो कुछ नहीं पाया, अब सिर के पार जाने की अभी प्रगट की, इसलिए पूरब में हम सिर झुकाते हैं गुरु के चरणों में जाके। हम ये कहते हैं कि सिर से तो कुछ मिला नहीं, सिर की तो दौड़ धूप खूब कर लिए, सिर को तो मारा धापी खूब कर ली, इससे कुछ मिला नहीं। पीड़ा पाई, असंतोष पाया, अतृप्ति पाई, ज्वर ग्रस्त रहे, दुख स्वप्न देखे, सिर से तो कुछ मिला नहीं। ये तो हम आपके सिर में रख, ये तो आपके पैरों में रख देते हैं ये सिर। अब कुछ ऐसा बताएं कि सिर के ऊपर कैसे जाएं? सिर का कोई मूल्य नहीं है, यही घोषणा सिर झुकाने में। तुम पूछते हो कि मैंने तो अपना सिर आपके चरणों में रख दिया, अब बताएं कि गुरु की जिम्मेवारी क्या है? तुम सोचते हो तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम शुरू हुआ, सिर में तो कुछ था नहीं, कचरा तुमने चढ़ा दिया पैरों से, अब भूल जाओ सिर को। अगर नहीं भूले और याद रखा तो चढ़ाया ही नहीं। और अब पूछो कि शिष्य की जिम्मेवारी क्या है, अब मैं क्या करूं? ये तो कोई करने जैसी बात न थी, ये तो सिर्फ शुरुआत है करने की, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो गया, इससे कुछ क्रांति नहीं हो जाएगी। अब क्या करूं? व्यर्थ तो छोड़ दिया, अब सार्थक को कैसे तलाशूं? ये पूछो। लेकिन तुम पूछते हो गुरु की जिम्मेवारी क्या है। तुम्हारा मतलब यह है कि हमारे तरफ का काम तो हमने कर दिया, अब आप बताएं आपकी जिम्मेवारी क्या है। ये बात ही शिष्य न होने का लक्षण। मेरी जिम्मेवारी मैं समझता हूं, तुम उसे समझ भी ना सकोगे। अभी तुम शिष्य भी नहीं हुए तो तुम गुरु की जिम्मेवारी तो कैसे समझ सकोगे। गुरु की जिम्मेवारी तो तभी समझ में आएगी जब तुम शिष्यत्व की गहराई में इतने उतर जाओगे कि तुम्हारे भीतर ही गुरु का जन्म होने लगेगा, तब तुम गुरु की जिम्मेवारी समझ सको। अभी तो तुम्हें आंख चाहिए, अभी तो तुम्हें विनम्रता चाहिए, सरलता चाहिए, ध्यान चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है। ये तो सिर्फ घोषणा हुई तुम्हारी, तुमने शपथ ली कि हम झुक गए, अब हम करने को तैयार, अब जो कहेंगे हम करेंगे। लेकिन प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिक लोगों का यही भाव होता है कि हम तो कर दिए जो करने योग्य था, अब जो करना हो आप करें। मैं करूंगा लेकिन मेरे अकेले किए कुछ भी ना होगा, क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता परम, तुम अगर सांस दोगे तो ही होगा। मैं तो करूंगा लेकिन अगर तुमने विरोध किया तो कुछ भी ना हो सकेगा। तुमने अगर द्वार दरवाजे बंद रखे तो ये सूरज की किरण बाहर ही खड़ी रहेगी और भीतर ना आ सकेगी। सूरज की किरण जोर जबरदस्ती से भीतर आ भी नहीं सकती। तुम्हें सहयोग देना होगा, द्वार दरवाजे खोलना होगा। अब तुम पूछते हो मुझे कैसे भरोसा आया कि मुझे गुरु प्राप्त हो गए, ये तुम्हें भरोसे का सवाल ही नहीं। तुम्हें तो इतना ही भरोसा लाना है कि तुम शिष्य हो गए, बस इतना ही भरोसा आ जाए तो बात समाप्त हो गई। तुम्हारा काम तुम पूरा कर दो, इतनी बात तुम्हारी तुम पूरी कर दो कि तुम शिष्य हो गए, तुम्हारे शिष्य होने में ही भरोसा आ जाएगा कि गुरु मिल गए। और कोई उपाय नहीं, मैं और कोई प्रमाण नहीं जुटा सकता। जो भी प्रमाण जुटाऊंगा वो व्यर्थ होंगे, उनसे कैसे भरोसा आएगा। मैं लाख कहूं कि तुम्हें मिल गया, इससे कैसे भरोसा आएगा। तुम शिष्य बनोगे, उसी शिष्य बनने में कुछ रस धार बहेगी, कुछ प्राणों में गुनगुनाहट उठेगी, कुछ मस्ती जगेगी। उसी मस्ती में प्रमाण मिलेगा कि गुरु मिल गए, अब अकेला नहीं हो। तुम अपने अकेलेपन में भी एकांत में जब मौन बैठोगे तब तुम पाओगे कि कोई मौजूद है। तुम अपने भीतर भी झांकोगे तो पाओगे कोई मौजूद है। तुम्हारा हाथ किसी के हाथ में, चलते उठते बैठते जैसे जैसे तुम शिष्य बनते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें लगता जाएगा कि गुरु साथ। एक घड़ी ऐसी आती है कि तुम तो विसर्जित ही हो जाते हो, तुम्हारे भीतर गुरु ही विराजमान हो जाते। अभी तो सिर झुकाया है, अभी हृदय में विराजमान करना होगा और उसी के साथ प्रमाण मिलेगा। शिष्य का ऐसा भाव होता है। स्वामी योग प्रीतम ने एक गीत लिखा है, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते, तेरी स्वर लहरी का आलिंगन पाते ही हृदय वीणा हौले से झंकृत हो जाती है, तेरी मस्ती की धुन बजने लगती मुझ में, मेरे तन मन की पंखुड़ियां खुल जाती हैं, छिड़ जाता कैसा राग तुम्हारे कंठों से, अंतस आंगन में कोटि दीप जल जाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। जाने कैसा जादू है तेरी चितवन में, मन के सब खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं, मन का सारा काठिन्य पिघल जाता पल में, जन्मों जन्मों के पाप साफ धुल जाते हैं, जब तुम निज करुणा जल बरसाते हो मुझ पर, मेरे भीतर सत झरने बह जाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। तेरे भीतर से बरस रहा है प्रेमामृत, जो प्यासे चातक की जाते हैं महाभाग, तू एक छबीला फूल जगत की बगिया का, वे धन्य भ्रमर जो लूट रहे तेरा पराग, जब तुम अपना आशीष लुटाते हो मुझ पर, मेरे नभ में सौ सौ सूरज उगाते हैं, जब तुम अपना माधुरी लुटाते हो मुझ पर, मेरे प्राणों के नील कमल खिल जाते। शिष्य का भाव ऐसा है, वो तो आंखें खोल कर जैसे चातक चंद्रमा को निहारे, ऐसा गुरु को निहारता है। प्रमाण नहीं पूछता, तुम्हारी आंख ही धीरे धीरे प्रमाण देने लगेगी। जैसे जैसे तुम्हारी आंख खुलेगी और रोशनी तुम्हारे भीतर उतरेगी, वैसे वैसे प्रमाण मिलेगा। वो तो अपने हृदय को खोल के बैठ जाता है। वो तो अपनी सब साज सुरक्षा छोड़ देता, वो तो अपने हृदय पर से सब द्वारपाल हटा देता। वो तो कहता आओ, जब भी आओ, दिन रात सोते जागते मेरा हृदय खुला था। धीरे धीरे गुरु की प्रभुध्वनि हृदय के पास सुनाई पड़ने लगती। पूछा है मैं आपसे चकित हूँ, सुंदर है, चकित हो ये शुभ है, लेकिन इतने से ही काम नहीं होगा। चकित होना अच्छी शुरुआत है, तुम आश्चर्य से भर गए हो, लेकिन ये आश्चर्य भाव जल्दी ही खो जाएगा अगर आगे न बढ़े। आश्चर्य भाव तो ऐसा ही है जैसे हम कार को चलाना शुरू करते तो बैटरी से कार शुरू होती, मगर बैटरी से चलती नहीं, शुरू हो गई फिर तो इंजन से चलती, फिर तो पेट्रोल से चलती। चकित भाव तो कार में बैटरी की भांति है, यात्रा शुरू हो जाती है, लेकिन तुम इसी के सहारे रहे तो ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। आश्चर्य से जो भर गया ये शुभ लक्षण है, इस घड़ी में वो झुक जाता है, लेकिन बस इस पर ही मत रुक जाना, बहुत आगे जाना है। ये तो पहला कदम हुआ। बहुत अभागे हैं जिनको आश्चर्य भी नहीं होता, जो चकित भी नहीं होता। तुम सौभाग्यशाली हो कि चकित तो हुए, चौके तो, विस्मय तो आया, रहस्य की थाप तो पड़ी, थोड़ा धक्का तो लगा, मगर इस धक्के को ही लेके मत बैठना, नहीं तो धीरे धीरे ये धक्का भी खो जाए और तुम वैसे के वैसे रह जाओ। ये जो थोड़ा सा धक्का लगा है, इस धक्के का उपयोग कर लो और चल पड़ो। यात्रा बड़ी और बहुत करने को पड़ा है, शायद उसी चकित भाव ने तुमने आके सिर भी झुका दिया है। तुम्हारे सिर झुकाने में समर्पण मालूम नहीं होता, चकित भाव मालूम होता है। कभी कभी आदमी भौचक्केपन में कुछ कर जाता है, लेकिन वो कुछ बहुत दूरगामी पाठे नहीं बन सकता, कुछ और गहराई में झुकना पड़ेगा। नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर, झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में, न पाया कहीं तृप्ति का एक कण भी, यहाँ जल कहाँ आपका हर कुआं है, तने इंद्र धनुष है मगर वायवी सब, यहाँ आद्र बादल कहाँ सब धुआं है, चखे फल यहाँ के सभी तिक्त कटु है, मिला शांति मधुरस तुम्हारे स्मरण में, जहाँ से चखो छार में जग समंदर, यहाँ खूब निर्झर मगर सब जहर के, किरण जाल मोहक मगर सब छलावा, यहाँ विष बुझे दंश है हर लहर के, नहीं छाओ शीतल जगत यह मरुस्थल, गिरा हार थक कर तुम्हारे चरण में, नहीं जो झुका कर किसी दहरी पर, झुका द्वार तेरे तुम्हारी शरण में। चलो झुका कहीं झुका, इतने पर ही मत रुके, रुके रह जाना। झुकना तो शुरुआत है मिटने की, मिटे बिना ना चलेगा, और तुमने झुकते से ही मिटने के खिलाफ आयोजन शुरू कर दिए। तुम पूछते हो कैसे भरोसा आए कि मुझे गुरु प्राप्त हो गया है, तुम पूछते हो कि गुरु के कर्तव्य क्या है, गुरु की जिम्मेवारी क्या है, तुम गुरु का हिसाब रखने लगे, तुमने गलत बात पहले से ही उठा ली। फिर मेरे साथ ज्यादा देर न चल सकोगे, ये मैं तुम्हें कह दूं, मेरा हिसाब जिसने रखा वो ज्यादा देर मेरे साथ चला नहीं, वो ज्यादा देर चल ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत होशियार है, चालाक है, वो रत्ती रत्ती हिसाब लगा के चलता है। मेरे साथ जुआरियों की दोस्ती, जो हिसाब किताब रखते नहीं, जिन्होंने एक दफा दांव पर लगा दिया तो फिर लौट कर देखा नहीं, फिर उन्होंने कहा कि अब ठीक, अब तुम जो करो सो ठीक, अब तुम जो कहो सो ठीक, तुमने अगर अपनी बुद्धि बचाई तो सिर उठ उठ जाएगा, बार बार चरण चूक चूक जाएंगे, तो ये तो बात ही भूल जाओ। मेरे कर्तव्य का मुझे पता है, मेरी जिम्मेवारी मुझे मालूम, तुम्हें मालूम होने से कुछ लाभ भी ना होगा। तुम अपना कर्तव्य पूछो, तुम अपनी जिम्मेवारी पूछो। तुम्हारी जिम्मेवारी अब ये है कि जो सिर झुका है उसे काट ही डालना है। तुम्हारी जिम्मेवारी ये है कि अभी झुके हो, अब बिल्कुल मिट जाना, मिट कर ही तुम हो सकोगे, खोकर ही तुम पा सकोगे, तुम जाओ तो ही परमात्मा। आखिरी प्रश्न, यद्यपि मैं सिख परिवार से आया हूँ तो भी 25 वर्षों तक मेरा विश्वास ईसाइयत में रहा, लेकिन आपकी पुस्तकें पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यह तो बड़ी जीवंत बात है और मेरे लिए ईसाइयत का प्रभाव समाप्त हो गया। आप पर पूरा ईमान आ गया है लेकिन मन अभी भी अशांत। देर रात तक आपका साहित्य पढ़ता हूँ तो ही कहीं नींद आती है, कृपा कर मेरा मार्गदर्शन कर। देखो 25 साल की श्रद्धा इतनी जल्दी टूट गई तो श्रद्धा न रही होगी। फिर 25 साल की श्रद्धा इतनी जल्दी टूट गई तो मुझको जो श्रद्धा आ गई उसको टूटने में कितनी देर लगेगी। श्रद्धा तो तुम्हारी 25 साल वाली भी न टिकी और ये श्रद्धा भी तुम्हारी ये कितनी देर टिकेगी। तुम्हारा तर्क में समझा, तुम्हारा तर्क शायद ये है कि वो श्रद्धा ईसाइयत पर थी, ये श्रद्धा आप पर, ये तो फर्क हुआ। लेकिन तुम तो वही के वही हो। ईसा पर श्रद्धा हो कि बुद्ध पर कि महावीर पर, इसका अंतर नहीं पड़ता। असली अंतर तो श्रद्धा किसकी है उसमें रूपांतरण हो तो ही पड़ता है। अब तुम सिख परिवार में पैदा हुए तो नानक पर श्रद्धा रही होगी बचपन, ईसा पे आ गई। मुझे पढ़ा वो भी चली गई, कल कुछ और पढ़ लोगे, कल किसी और को सुन लोगे, ये भी। तुम्हारी श्रद्धा को परखो, तुम्हारी श्रद्धा श्रद्धा नहीं। अब फर्क समझना, जिसने सच में ही नानक पर श्रद्धा की है वो मुझे सुन के नानक पर श्रद्धा नहीं छोड़ता है, मुझ पर श्रद्धा आ जाती और नानक पर श्रद्धा बढ़ जाती। जिसको सच में ही ईसा पर श्रद्धा रही वो मुझे सुन के ईसा पर श्रद्धा नहीं छोड़ता है, मुझ पर श्रद्धा आ जाती, ईसा पर श्रद्धा और गहरी हो जाती। क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ कुछ ईसा और नानक के विपरीत तो नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो वही है जो उन्होंने कहा है। और निश्चित ही जीसस ने जो कहा वो 2000 साल पुरानी भाषा में कहा, उससे तुम्हारा तालमेल उतना नहीं बैठ सकता जितना मेरा बैठ सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूँ। नानक ने कहा वो 500 साल पुरानी भाषा, 500 साल लंबा फासला है, नानक में और मुझ में ठीक 500 साल का फासला है, 500 साल छोटा फासला नहीं। सब भाषा बदल गई, सत्य को कहने का ढंग बदल गया, सत्य को समझने की प्रक्रिया बदल गई, लोग बदले, लोगों का मन बदला, वातावरण बदला। इस सारी बदलाहट में मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे मन के ज्यादा अनुकूल पड़ेगा, ये स्वाभाविक है, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा बोल रहा हूँ। नानक उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे, जीसस उनकी भाषा में बोले जिनसे बोलते थे। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मैं 20वीं सदी से बोल रहा हूँ, मैं अत्याधुनिक मन से बोल रहा हूँ। स्वभावतः तुम्हें मेरी बात ज्यादा ठीक से पकड़ में आ जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात पकड़ में आ गई तो तुम्हें नानक की बात भी पकड़, तुम अहोभाव से भर जाओगे कि नानक पर श्रद्धा तो थी लेकिन अभी तक ठीक ठीक साफ साफ नहीं हुआ था, अब साफ हो गई बात। महावीर की बात तुम्हें ठीक से पकड़ में आ जाएगी, बुद्ध की बात ठीक से पकड़, इसलिए तो बुद्ध नानक महावीर कृष्ण क्राइस्ट पर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा खंडित करने नहीं हूँ, तुम्हारी श्रद्धा को मजबूत करने को। अगर मैं कभी किसी के विपरीत बोलता हूँ तो सिर्फ इसीलिए कि वे धार्मिक व्यक्ति नहीं है, लोगों ने भ्रांति से उन्हें धार्मिक समझा है। तो ही अगर मैं जानता हूँ कि कोई व्यक्ति धार्मिक है तो मैं एक शब्द भी उसके विपरीत नहीं बोलता। हाँ, अगर किसी अधार्मिक व्यक्ति को किन्हीं भूल भ्रांतियों के कारण धार्मिक समझ लिया गया तो मैं जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, जरूर कठोरता से खंडन करता हूँ, क्योंकि वो खतरनाक बात है। जिससे कभी पीछे किसी ने पूछा महर्षि दयानंद के संबंध में, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं महर्षि दयानंद के पक्ष में एक शब्द नहीं बोल सकता, मेरे लिए वे वैसे ही महात्मा है जैसे महात्मा गांधी, दोनों सामाजिक राजनीतिक आंदोलनकारी, धर्म बहाना। लेकिन नानक या कबीर या कृष्ण या जरथुस या मोहम्मद या ईसा, उन्होंने जो कहा है वही मैं कह रहा हूँ, उससे अन्यथा कहने को कुछ है नहीं। सत्य एक है, जिन्होंने जाना है उस एक सत्य को कहा है, भिन्न भिन्न ढंग से कहा होगा लेकिन एक ही सत्य को कहा है। वेद कहते हैं उस एक सत्य को ही ज्ञानियों ने अलग अलग ढंग से कहा। तो पहली तो बात यह है कि तुम अपनी श्रद्धा परखो, तुम्हारी श्रद्धा में कहीं भूल चूक है। नानक टूट गई, ईसा पे जम गई, मुझ पे जम गई, मैं तुम्हारी श्रद्धा से खुश नहीं। साधारणता तुम यही सोच रहे होगे कि तुम्हारा प्रश्न सुनकर मैं प्रसन्न होऊंगा कि चलो कितना अच्छा हुआ कि एक आदमी जीसस से टूटा और मेरा हुआ। इतने जल्दी कोई मेरा नहीं हो सकता, जो जीसस का न हुआ वो मेरा कैसे हो सकेगा। और अगर तुम मेरे हो गए हो तो तुम्हारे पास आंख आएगी जिससे तुम जीसस को पहचान पाओगे और पहली दफा जीसस को हो पाओगे, और वही आंख तुम्हें नानक का भी बना देगी। लेकिन तुमने श्रद्धा का अर्थ मालूम होता है कुछ तार्किक निष्पत्तियां मान रखा है, जो बात तुम्हारे तर्क को जच जाती फिर तुम चूकोगे, क्योंकि धर्म तर्क की बात ही नहीं। मैं जरूर तर्क का उपयोग करता हूँ, मैं तर्क पे सवारी करता हूँ, इसलिए कभी कभी तार्किकों को मेरी बात बहुत जच जाती, लेकिन वो भ्रांति में न रहे, जल्दी ही उनको चौंका दूंगा। देर अबेर नहीं लगेगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी कि मैं कोई ऐसी बात कहूंगा जो कि तर्क के बिल्कुल बाहर होगी, विपरीत होगी। तो तुम्हें मेरी बातें ठीक लग गई होंगी क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो तर्कयुक्त है, लेकिन तर्क का मैं उपयोग कर रहा हूँ साधन की तरह, ले जाना है तर्क के पास। जीसस ने तर्क का उपयोग नहीं किया, जीसस तो कह दिए जो कहना है। मैं तर्क का भी उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये सदी बिना तर्क की भाषा से और कोई भाषा समझ नहीं सकती, लेकिन ले जाना तो तर्क के पास। तो जल्दी ही तुम अड़चन में पड़ जाओगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपनी श्रद्धा पर फिर पुनर्विचार करो। तुम्हारी श्रद्धा भ्रांत रही, गड़बड़ रही, तुम्हारी श्रद्धा तर्क पर आधारित रही, इसलिए ईसाइयत तुम प्रभावित हो गए हो, क्योंकि ईसाइयत काफी तर्क जुटाती। इंसानों को कुछ तर्क नहीं दिए, लेकिन ईसाइयत काफी तर्क जुटाती, क्योंकि ईसाइयत तो पश्चिम से आती, पश्चिम तो तर्क की दुनिया है। तो ईसाइयत को अगर अपने पैर पर खड़े रहना है तो उसे तर्क जुटाने पड़ते, तो ईसाइयत जच भी होगी। लेकिन मेरे बस में पश्चिम का तर्क ही नहीं है, पूरब का तर्क भी है, और मेरे बस में तर्कातीत भी है, इसलिए फिर मेरा तर्क तुम्हें जच गया होगा, क्योंकि मेरे तर्क में पश्चिम के सारे तर्क में जो कुशलता है वो तो है ही, पूरब के तर्क जो मधुरिमा है वो भी, और तर्कातीत जो अनुभव है उसका रंग भी है, इसलिए तुम्हें जच गई होगी बात। लेकिन अब मौका आ गया है कि तुम अपनी श्रद्धा को ठीक पहचान लो, और ये अब तक की खड़ी वाली श्रद्धा को तुम फेंको, इसलिए अड़चन भी आ रही है। तुम कहते हो आप पर पूरा ईमान आ गया है, क्या ईसाइयत पर पूरा ईमान नहीं था? 25 साल था तो पूरे ईमान का क्या भरोसा, अभी पूरा है, अभी खिसक जाएगा। ये तुम्हारी आदत है, तुम जिस पे भी ईमान ले आते हो मान लेते हो पूरा हो गया, फिर उतर जाएगा तो पूरे ही उतर जाएगा, और तब तुम्हारी अड़चन साफ है। तुम कहते हो मन अभी भी आसान है, अब ईमान आने से थोड़ी मन शांत होता, नहीं तो मन कभी का शांत हो गया होता। सिख घर में पैदा हुए थे, सिख धर्म पर ईमान रहा होगा, उससे मन शांत न हुआ, फिर ईसाइयत 25 साल लंबा वक्त है, उससे मन शांत न हुआ। मेरे साथ तो शायद 2-4 महीने की दोस्ती होगी, इससे कैसे मन शांत हो जाएगा? एक बात तो समझो कि भरोसा कर लेने से मन शांत नहीं हो जाता, मन शांत करने के लिए मन की अशांति के कारण तोड़ डालने पड़ेंगे। तुम्हें एक डॉक्टर पर भरोसा आ गया, इससे थोड़ी इलाज हो जाए। डॉक्टर तो भरोसा आ गया, ये सहयोगी बात है। अब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके भी तो काम शुरू करोगे ना, कि तुमने इतना कह दिया कि आ गया डॉक्टर का भरोसा, लेकिन अभी भी बीमारी दूर नहीं हो रही, बात क्या है? और ईमान पूरा आ गया, ईमान आ गया, इसको लाभ होगा, लेकिन इतना काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। दवा भी लेनी होगी, औषधि भी लेनी होगी, और पथ्य भी स्वीकार करना होगा। कुछ बातें छोड़नी होंगी, कुछ बातें पकड़नी होंगी, रूपांतर करने होंगे। इसके पहले कि ये श्रद्धा भी खो जाए कुछ करो, इस श्रद्धा का उपयोग कर लो। जो हुआ अतीत में हुआ, जितने दिन बेकार गए गए, अब बेकार मत जाने दो। अब इस श्रद्धा के प्रभाव में कुछ कर गुजरो ताकि मन की व्यवस्था बदल जाए। तुम अशांत हो, उसका अर्थ है मन में अशांति के कारण होंगे। तुमने कभी ध्यान किया? बिना ध्यान के शांति ना आएगी। तुमने कभी पूजा की, भक्ति की? बिना पूजा भक्ति के शांति ना आएगी। तुमने कभी प्रेम किया? बिना प्रेम के शांति ना आएगी। और तुमने कभी विश्लेषण किया कि तुम्हारे मन की अशांति का मूल कारण क्या है? क्यों रात तुम सो नहीं पाते? तुम्हारा मन दौड़ता होगा, और धन कमा लूं, और बड़े पद तक पहुंच जाऊं, ये कर गुजरूं, वो कर गुजरूं।
1: तुम्हारा मन दौड़ता रहता होगा, इसलिए तुम सो नहीं पाते।
0: तो मन की दौड़ के जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको विदा करो।
1: धन पाके क्या होगा, पद पाके क्या होगा,
0: मौत आती, मौत की पगध्वनि सुनो, वो धन भी छीन लेगी, पद भी छीन लेगी। जागो और मन की व्यवस्था बदलो। अब अगर तुम मेरे प्रभाव में आ गए हो तो मेरी सुनो भी, उस अनुसार थोड़ा करो भी, ध्यान करो, नाचो, गाओ, गुनगुनाओ, थोड़ा मस्ती में डूबो, अचानक तुम पाओगे अशांति गई। और जब अशांति जा चुकी होगी तब तुम्हें जो श्रद्धा आएगी वो असली श्रद्धा होगी, क्योंकि जिसके द्वारा अशांति चली गई हो फिर उसको छोड़ना असंभव हो जाएगा, और जिसके द्वारा सुख का थोड़ा सा स्वाद आ जाएगा उसको फिर कैसे छोड़ सकोगे। तुम्हें ईसा से कुछ भी सुख का स्वाद नहीं आ पाया क्योंकि तुमने ईसा की मान के कभी कुछ किया नहीं, बाइबल पढ़ते रहे होगे। तो बाइबल पढ़ने से क्या होगा, ये तो ऐसे ही जैसे कोई पाकशास्त्र की किताब बैठे पढ़ रहा है, भूख लगी है और मरा जा रहा और चिल्लाता है कि क्या करूं, पाकशास्त्र की किताब पढ़ रहा हूं फिर भी भूख नहीं मिटती। तो बाइबल तुम पढ़ते रहे हो लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। अब तुम मेरी किताबें मत वैसा ही उपयोग करने लगना जैसा बाइबल का किया था। बिल्कुल तुम कह रहे हो कि जब रात नींद नहीं आती तो आप का साहित्य पढ़ता हूं तो कहीं नींद आती, तो तुम साहित्य का उपयोग इस तरह कर रहे हो नींद लाने की दवा की तरह। साहित्य का उपयोग करो जीवन को बदलने के लिए, जीवन को क्रांति देने के लिए। अच्छा हुआ क्योंकि नानक तो है नहीं, तुम अगर उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। ईसा तो अब है नहीं, तुम उन पर श्रद्धा भी रखते तो बहुत कुछ होने वाला नहीं था। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम किसी जीवित आदमी के करीब आ गए, संयोग है। इस सौभाग्य के क्षण का ठीक उपयोग कर लो तो फिर शायद श्रद्धा को और कहीं जाने की जरूरत न रहे, यही श्रद्धा तुम्हारा अंतिम पड़ाव बन जाए। जीवन अपने में न तो सुख है न दुख, देखने देखने की बात है, दृष्टि की बात है, कैसे देखते हैं इस पर सब निर्भर है। सुख और दुख हमारी व्याख्याएं, सुख और दुख तथ्य नहीं है, सुख और दुख हमसे बाहर नहीं है, सुख और दुख हमारे देखने के ढंग के परिणाम है, निष्पत्तियां हैं। वही बात एक व्यक्ति को सुख हो सकती, वही बात दूसरे को दुख हो सकती, और उसी बात में कोई निरपेक्ष भी रह सकता, न सुख हो न दुख हो। और कभी ऐसा भी होगा कि जो बात तुम्हें आज सुख थी कल दुख हो गई, और जो आज दुख थी कल सुख हो गई। और कभी ऐसा भी होगा, ऐसे क्षण भी आएंगे जब तुम भी सुख और दुख के बाहर हो जाते हो, तटस्थ हो जाते हो। अगर कोई अपने जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण करे, सम्यक निरीक्षण करे, तो इस सत्य को खोजने के लिए शास्त्रों में जाने की जरूरत नहीं। सुकरात का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं। ठीक ठीक सम्यक निरीक्षण करके ही कोई जीवन योग्य जीने को पाता है। सुकरात से किसी ने पूछा कि तुम एक संतुष्ट सुअर होनु पसंद करोगे या एक असंतुष्ट सुकरात। तो सुकरात ने कहा, मैं असंतुष्ट सुकरात होना पसंद करूंगा, संतुष्ट सुअर होना नहीं। क्यों, पूछा पूछने वाले ने, क्योंकि आदमी संतोष के लिए ही तो सब करता है। सुकरात ने कहा कि असंतुष्ट सुकरात एक दिन संतोष पा लेगा, और ऐसा संतोष फिर जिसे छीना नहीं जा सकता। संतुष्ट सुअर तो नाम मात्र को ही संतुष्ट है, अभी उसने असंतोष ही नहीं जाना, असंतोष के पार होना भी कैसे जानेगा। जीवन का ठीक ठीक निरीक्षण हो तो हम सुख और दुख दोनों के पार हो जाते, क्योंकि एक सत्य रोज रोज साफ होने लगता है, हमारी व्याख्या है। अगर हमारी ही व्याख्या है तो हम मुक्त हो गए। सारे धर्मों का अगर सार सूत्र पकड़ना हो तो इस बात में पकड़ लेना कि जीवन में जो भी हम अनुभव करते हैं वो हमारी व्याख्या है, इसलिए हम जब चाहें तब स्वतंत्र हो सकते हैं, क्योंकि अपनी व्याख्या बदलना अपने हाथ में है। अगर जीवन में सुख दुख हमसे बाहर होते तो बंधन हमसे बाहर होता। समझो, ऐसा नहीं है कि किसी ने तुम्हें कारागृह में डाल दिया है। अगर किसी ने कारागृह में डाला हो और जंजीरें पहनाई हो तो फिर तो तुम उसके हाथ में हो। मुक्त करेगा तो मुक्त होगे, मुक्त ना करेगा तो ना हो सकोगे। और किसी तरह मुक्त हो भी गए तो फिर भी पकड़े जा सकते हो, फिर दोबारा पकड़े जा सकते हो। तो तुम्हारी मुक्ति कोई बहुत गहरी मुक्ति नहीं हो सकती। जब अमुक्ति दूसरे पर निर्भर है तो मुक्ति भी दूसरे पर निर्भर रहेगी, और ये तो भारी परतंत्रता हो गई। मुक्ति में भी बंधे हैं तो ये तो भारी परतंत्रता हो गई। स्थिति ऐसी है कि तुमने मान रखा है कि तुम कारागृह में हो, ये तुम्हारी मान्यता है। जंजीरें असली नहीं है, सिर्फ मान्यता की है, सिर्फ धारणा की है। इसलिए जिस दिन तुम आंख खोलकर देखोगे जंजीरें पिघल जाएंगी, जंजीरें विसर्जित हो जाएंगी। ऐसा ही समझो कि जैसे रात सपने में तुमने पाया कि तुम कारागृह में पड़े हो और सुबह जाग के देखा कि अपने घर में हो। कारागृह तुम्हारी कल्पना का जाल था। बुद्ध के आज के सूत्र महत्वपूर्ण है। पहले तीन सूत्र, सुसुखम वत् जीवाम वैरिनेसु अवेरिनो वैरिनेसु मनुष्येसु विहराम अवेरिनो। वैरियों के बीच अवेरी होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, वैरी मनुष्यों के बीच अवैरी होकर हम विहार करते। सुसुखम वत् जीवाम आतुरेसु अनातुरा आतुरेसु मनुष्येसु विहराम अनातुरा। आतुरों के बीच अनातुर होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, आतुर मनुष्यों के बीच अनातुर होकर हम विहार करते। तीसरा सूत्र, सुसुखम वत् जीवाम उत्सुकेसु अनुत्सुका उत्सुकेसु मनुष्येसु विहराम अनुत्सुका। आसक्तों के बीच अनासक्त होकर अहो हम सुखपूर्वक जीवन बिता रहे, आसक्त मनुष्यों के बीच अनासक्त होकर हम विहार करते। इन सूत्रों के जन्म की कथा समझे। सांख्य और कोली राज्यों के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी साक्य और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए रोहिणी नदी पर आए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे, अतः दोनों में झगड़ा हो चला। यह समाचार उनके मालिक साक्य और कोलियों को मिला। छत्री तो छत्री, तलवारें निकल गई। वे सेना को साथ लेकर तैयार होकर युद्ध करने के लिए निकल पड़े। भगवान बुद्ध रोहिणी तट पर ही ध्यान करते थे। उन्हें यह खबर मिली, वे आकर युद्ध को तट पर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े हो गए। साक्य और कोलियों ने भगवान को देखकर हथियार फेंक वंदना की। भगवान ने कहा, महाराज यह कैसा झगड़ा है, किस बात के लिए झगड़ा है? दोनों राज्यों के राजाओं ने कहा, बनते कारण हम नहीं जानते। भगवान ने पूछा, फिर कारण कौन जानता है? अकारण तलवारें निकाल ली है, कारण भी न पूछा, कारण तो खोज लेते। उन्होंने कहा, शायद सेनापतियों को पता हो। सेनापतियों ने उप सेनापतियों की ओर इशारा किया, उप सेनापतियों ने सैनिकों की ओर, और अंततः बात नौकरों पर पहुंची। तब कहीं कारण का पता चला। नौकरों ने कहा, बनते पानी के कारण। बुद्ध ने कहा, पानी के कारण? पानी तो सदा से बहता है, लड़े तुम आज, झगड़ा पानी के कारण नहीं हो सकता। नौकरों ने कहा, समझे बनते, पहले कौन उपयोग करे? तो बुद्ध ने कहा, पहले के कारण, पानी के कारण नहीं। प्रथम कौन हो? पानी को दोष मत दो। बुद्ध हंसे और उन्होंने साखियों और कुलियों के प्रधानों से पूछा, महाराज पानी का क्या मूल्य है? राजा बहुत लज्जित हुए, शर्माते बोले, अल्प मात्र बनते ना कुछ, पानी का क्या मूल्य? और मनुष्यों का बुद्ध ने पूछा, राजा और भी सच्चा है और बोले, अमूल्य बनते, मनुष्य से ज्यादा मूल्यवान और क्या है? बुद्ध ने कहा, तो फिर सोचो, अल्प मात्र मूल्य के लिए अमूल्य को मिटाने चले हो, पानी के लिए खून बहाने चले हो, और नदी ऐसी ही बहती रहेगी, तुम गिरोगे कटोगे मरोगे और नदी ऐसी ही बहती रहेगी और नदी को पता भी ना चलेगा। असार के लिए सार को गंवाते हो, कंकड़ पत्थरों के लिए हीरे जवाहरात फेंकने चले हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में दुख है, चिंता है, अंधकार है। मुझे देखो, मेरे महासुख को देखो, क्या है इसका राज? यही कि मैं वैर रहित विहरता हूँ, यही कि सार को मैं सार और असार को असार देखता हूँ। और तब उन्होंने ये तीन गाथाएं कही। पहले तो इस कहानी के एक एक शब्द को समझिए। शास्त्रों में जो बोध कथाएं हैं, वो ऐसे ही पढ़ लेने के लिए नहीं है, उनके शब्द शब्द में अर्थ है और परत परत अर्थ है। एक परत उघाड़ोगे तो दूसरा परत अर्थ मिलेगा, और जितने गहरे जाओगे कथा में उतने ही चौंकोगे कि तू सीढ़ी दर सीढ़ी उतरते जा सकते हो। पहली बात, झगड़ा हुआ नदी के तट पर नौकरों में, झगड़ा हुआ नौकरों में और मालिक खींचे चले आए, तो नौकर मालिक मालूम होते हैं और मालिक नौकर मालूम होते हैं। ये पहली बात ख्याल में लेने जैसी है, और ये मनुष्य के संबंध में बड़ी गहरी बात है। कहानी में शायद तुम्हें सीधी साफ हो भी ना सके, क्योंकि ये कहानियां ध्यान के विषय हैं। इन कहानियों पर खूब ध्यान कोई करे तो इनकी परतें उखड़ती हैं। पहली परत, आंखें हाथ नाक कान नौकर है, और मालिक इनके पीछे खींचा हुआ चला आता है। आंख ने कह दिया सौंदर्य है और तुम चले दीवाने हुए, और तुम्हें पता भी नहीं है कि सौंदर्य है या नहीं। आंख ने कह दिया, आंख पे भरोसा कर लिया, कान ने कह दिया और कान पे भरोसा कर लिया, स्वाद ने कह दिया और स्वाद पे भरोसा कर लिया। ऐसे नौकर चाकरों के बस में मालिक घिसटता है, और जिस दिन तुमसे कोई पूछेगा गहरे में कि ऐसा तुमने क्यों किया, तुम कहोगे कारण पता नहीं, तुमने देखा नहीं। कोई आदमी किसी के प्रेम में पड़ जाए, पूछो उससे क्यों, वो कंधे पिचकाता है, वो कहता है क्यों का तो कुछ पता नहीं। एक आदमी धन के पीछे पागल होकर दौड़ रहा है, पूछो क्यों, शायद वो कह चुकी सब लोग दौड़ रहे, सारी दुनिया दौड़ रही इसलिए, और भी दौड़ रहे हैं इसलिए। एक आदमी पद के लिए पागल है, पूछो क्यों, शायद सास उसे हो ही ना, इंद्रियों ने कुछ खबरें दी, इंद्रियों की खबरों को मान के भीतर का मालिक चल पड़ा है। तो साथ और कोलियों के राज के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेतों की सिंचाई करते थे। दूसरी बात, यहां हम सब एक ही जीवन को भोग रहे हैं, इसलिए झगड़ा तो प्रतिपल हो सकता है, क्योंकि हर एक के बीच वही नदी बह रही है, उसी से जल मुझे लेना, उसी से जल तुम्हें लेना, जीवन एक है। तो हम सब पड़ोसी हैं। जीसस का बहुत प्रसिद्ध वचन है, अपने पड़ोसी को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को, और एक दूसरा वचन है कि अपने दुश्मन को ऐसा ही प्रेम करो जैसा अपने को। संत अगस्तीन से किसी ने पूछा कि दोनों वचन एक से लगते फिर भी बड़े भिन्न हैं। एक तरफ जीसस कहते हैं अपने पड़ोसी को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को, और एक तरफ जैसे कहते हैं दुश्मन को ऐसा प्रेम करो जैसा अपने को। तो अगस्तीन ने कहा, जहां तक मैं समझता हूँ, दुश्मन और पड़ोसी दोनों एक ही के नाम है, जो पड़ोसी है वही तो दुश्मन है। तुमने ख्याल किया, तुम्हारा दुश्मन है कौन? तुम्हारा पड़ोसी। जो दूर है उससे तो दुश्मनी नहीं होती, जो पड़ोस में उससे दुश्मनी होती, क्योंकि एक ही जीवन की

0: दावेदार, छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है।
1: बातें ही क्या है, झगड़े के लिए कारण भी कहां है, झगड़े योग्य कारण कहां है। तुम लड़े किन छोटी छोटी बातों पर हो,
0: कभी किसी ने आधा फुट जमीन दबा दी, झगड़ा हो गया। तुमने कभी सोचा भी नहीं है कि झगड़ के तुम क्या गमा रहे हो। और एक बात तो स्वीकार करने की ही है कि ये जीवन हमारा साझी का जीवन है, हम सब एक ही जीवन जी रहे हैं। तो नदी तो एक है, जल सबको पीना है, प्यासे सब हैं, और स्वभावतः छीना झपटी हो सकती है, लेकिन छीना झपटी करने में मूढ़ता है, मूर्छा है। दोनों जनपदवासी एक ही नदी के जल से अपने खेतों को सींचते हैं। एक बार ज्येष्ठ मास में फसल के सूखने को देखकर दोनों जनपदवासी साखियों और कोलियों के नौकर अपने अपने खेतों की सिंचाई के लिए नदी पर गए। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे। अब पहले से कुछ लेना देना नहीं है, खेत सींचना असली बात होगी। असली बात है कि खेत सूख रहा है, धूप घनी है, जेठ की दोपहरी है, पानी देना जरूरी है। असली बात पानी देना है, पहले और पीछे का कोई भी मूल्य नहीं है। लेकिन जीवन के सारे झगड़े पहले और पीछे के झगड़े, इतना हम भूल जाते हैं पहले पीछे में कि खेत में तो एक तरफ पड़े रह गए। जब झगड़े शुरू हो गया तो नदी से किसी ने भी पानी नहीं दिया, खेत प्यासे के प्यासे खड़े, खेत रोते के रोते खड़े, यहां दूसरी ही बात चल पड़ी। कई बार ऐसा होता है कि मूल कारण तो एक तरफ पड़ा रह जाता है, व्यर्थ की बातें बीच में आ जाती, फिर हम मूल को तो भूल ही जाते, फिर हम उन व्यर्थ पर ही जूझते रहते। पहले और पीछे का सारा झगड़ा है, सारी प्रतियोगिता इस बात की है कि कौन पहले। जीसस का दूसरा प्रसिद्ध वचन है कि जो अंतिम है, जो अंतिम होने में समर्थ है, वे ही मेरे प्रभु के राज्य के मालिक होंगे। जो अंतिम होने में समर्थ है, इस जगत में सबसे बड़ी सामर्थ है अंतिम होने की सामर्थ। प्रथम तो कोई भी पागल होना चाहता है, प्रथम होने में कुछ विशिष्टता नहीं है, सभी प्रथम होना चाहते। प्रथम होना तो बड़ी सार्वजनिक बीमारी है, प्रथम होने का पागलपन तो सभी पर चढ़ा है। और ये प्रथम होने के पागलपन को ही मैं राजनीति कहता हूं, इसलिए राजनीति सारे झगड़ों का मूल आधार है। जब तक दुनिया से प्रथम होने का रोग नहीं जाता, तब तक दुनिया से राजनीति नहीं जाएगी, और जब तक राजनीति नहीं जाती तब तक युद्ध नहीं जाएंगे, तब तक हिंसा नहीं जाएगी। लाख समझाओ अहिंसा, इससे कुछ भी ना होगा। तुम हिंसा का सूत्र पकड़ो, हिंसा का सूत्र है मैं पहले, अहिंसा का सूत्र है मैं अंतिम होने को राजी। क्योंकि असली सवाल होने का है, आखिर में खड़ा हो जाऊंगा, सबसे पीछे खड़ा हो जाऊंगा, वहां खड़ा हो जाऊंगा जिस जगह से कोई धक्का देने को आए ही नहीं। पहले का झगड़ा था, और जब पहले का झगड़ा हो तो पानी भी गौण हो गया, खेत भी गौण हो गए। खेत और पानी तो छोड़ो, जिनके लिए खेत की सिंचाई की जा रही थी वे मनुष्य भी गौण हो गए, जिनके लिए भोजन जुटाने के लिए खेत खड़े थे वे मनुष्य भी गौण हो गए। झगड़ा हो चला, क्या है झगड़ा सारी दुनिया में? रूस का अमेरिका का झगड़ा क्या होगा? भारत पाकिस्तान का झगड़ा क्या होगा? चीन तिब्बत का झगड़ा क्या होगा? इसराइल इजिप्त का झगड़ा क्या है? वही झगड़ा है, उसी झगड़े की ये कहानी। और जब इक्का दुक्का आदमी पागल होता है तब तो हम पहचान लेते हैं, जब भीड़ पागल होती तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, जब समूह के समूह पागल हो जाते हैं तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी।
4: आप एक्शन जो जुडिशरी एक्शन है वो तो लेंगे, लेकिन एक बार वो आपके पास आ गए फिर आपको उनके साथ क्या करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाए। रिफॉर्म करने के लिए एक्चुअली क्या चाहिए होता है? जैसे आपने कहा, एक तो मोटिवेशन कि हम अपने आप को ही नहीं आज रिफॉर्म कर पा रहे या हम अपने आप को ही नहीं हील कर पा रहे, तो हम औरों के लिए कहाँ से करेंगे? और दूसरा टाइम, टाइम फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
3: And then again, mindsets हैं कि criminals कभी नहीं होते, आप कुछ भी कर लीजिए। इनफैक्ट एक और बहुत बड़ा माइंडसेट हमारे साथ चलता है कि जो सपोजिटली लोअर वर्कर्स हैं, दे नेवर चेंज, यू नो, दे विल ऑलवेज बी लाइक दिस।
4: लेबलिंग, अगेन लेबलिंग। तो वो जितना लेबल हम करते जाएंगे तो वो जो स्टैम्पिंग है वो और ज्यादा होती जाती है। अगेन हम क्या कर रहे हैं, वही जो हमने कहा, उनको अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर फिट कर रहे हैं। अगर किसी ने कुछ भी ऐसा किया कर्म थोड़ा सा, हम कहेंगे लेबर, वो तो सारे ही ऐसे होते हैं, यू नो, बिलीफ सिस्टम, वो बिलीफ सिस्टम में उनको फिट कर लेते हैं। तो रिफॉर्मेशन करने के लिए टाइम चाहिए, पेशेंस, पेशेंस बहुत चाहिए, कंटिन्यूस दोनों तरफ से, जो जिसे रिफॉर्म होना है और जिसे वो करना है, दोनों के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए।
3: आई थिंक और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक बात है जो रिफॉर्म नहीं होने देती, वो समवेयर ये भी है जो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है उसको कंटिन्यूअसली अवेयरनेस है कि मैं रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा
4: हूं। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग। और वो पहली बात जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो ये है, अगर जो रिफॉर्म करने के निमित्त है, अगर उसके अंदर ये कॉन्शियसनेस होगी कि ये क्रिमिनल है तो वो उसे रिफॉर्म नहीं कर सकता। उसका हर एक शब्द और हर एक एक्शन एक पनिशमेंट ही है, क्योंकि वो क्रिमिनल को कर रहा है। तो वो, और फिर एक रिफॉर्मर के अंदर एक नेचुरल संस्कार ये क्या बन जाता है, गलतियां निकालने का, कमजोरियां देखने का और जजमेंटल बनने का। दैट इज नॉट रिफॉर्मेशन, क्योंकि फिर तो आप एक सटल तरह से पनिशमेंट ही दे रहे हैं। नॉर्मली अगर आप एक सीन ऑफ क्राइम को देखते हैं या एक गलती होते हुए देखते हैं, किसी ने किसी के साथ गलती की, एंड आई एम थर्ड पर्सन, लेकिन जब इन्होंने इनको दर्द दिया, सो कॉल्ड जैसे हम सोचते हैं, और मुझे भी वो दर्द महसूस होना शुरू हो गया, तो आई एम ऑल्सो अ विक्टिम, एंड अब आई एम इन द रोल ऑफ रिफॉर्मिंग। लेकिन बिकॉज आई एम अ विक्टिम तो मुझे लगता है इन्होंने अत्याचार किया,
3: because I empathized with that victim.
4: Yeah, but I could feel the pain, ना? मैंने पेन अपने साथ ले लिया, तो मुझे लगता है ये अपराधी है, ये क्रिमिनल है, इन्होंने गलत किया, तो मैं कभी उनकी हेल्प नहीं कर सकती। जैसे ही मुझे ये रियलाइजेशन आएगा कि ये जो पेन मैंने अभी अभी क्रिएट किया इस सीन को देखकर, ये मेरा अपना क्रिएशन था, उन्होंने जो करना था वो किया, लेकिन जो पेन मैंने क्रिएट किया ये मैंने अभी अभी अपना क्रिएट किया, लेट इट गो, लेट द पेन गो। जैसे ही पेन चला जाएगा, आई विल बी एबल टू सी दैट पर्सन एज द पर्सन इज, विदाउट जजमेंट, विदाउट दैट गुड बैड राइट रॉन्ग, वो जजमेंटल नहीं होना है। हम उसके साथ जिसने अटैक किया है या जिसने गलती की है उसके साथ एम्पथाइज करना अब शुरू कर सकते हैं, उनको समझना शुरू कर सकते हैं कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया। When I understand कि मेरे अंदर क्लैरिटी आई है कोई, मुझे जो चीजें जैसी हैं वैसे समझ में आने लग गई है, नाउ आई ओनली हैव टू एम्पावर, रिफॉर्म नहीं करना है मुझे, मुझे उनको सशक्त करना है। वो भी मेरी तरह ही आत्मा है लेकिन वो कुछ बातों को भूल चुकी है, तो मुझे सिर्फ उन बातों की स्मृति को लाना है, लेकिन मैं वो तब ला पाऊंगी जब मैं उनको वो रिस्पेक्ट से देख सकती हूँ। क्योंकि जैसे क्रिमिनल देखा, देयर यू गो,
3: जैसे ही हमने वो आत्मा देखा, आत्मस्वरूप अपना वाला, जैसे मैं हूँ वैसे ही देखा, बट आई थिंक
4: तब हम वो वाइब्रेशन भेज पाएंगे जो एम्पावरमेंट क्रिएट करेगी, और वो एम्पावरमेंट के लिए तभी हम कर पाएंगे जब हम उनको जज नहीं करेंगे कि ये क्रिमिनल है, वो भी मेरी तरह एक आत्मा है। जैसे वो थॉट क्रिएट कर लिया, यू सी व्हाट यू विल डू मैजिक विद देम। वो आप उनको रिफॉर्म नहीं करते हैं, बिकॉज द वर्क इज ऑल डन बाय मी माई सेल्फ, लेकिन वो खुद जो करने की उनको शक्ति चाहिए बस वो हमें देनी है, वो स्मृति वापस लानी है, और उसके लिए हम ये टैग हटा दें कि क्रिमिनल है, और गुड बैड ये जो जजमेंट

0: इंफीरियर फील करते हैं और सोल कॉन्शियसनेस में वी आर इक्वल. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हम तो सोल कॉन्शियस हैं, सामने वाला तो नहीं है, वो अपने अहंकार में है. लेकिन जब हम उसे वो दृष्टि से देखेंगे तो है तो आत्मा, वो सिर्फ भूली हुई है. तो जब हम उसको उस दृष्टि से देखेंगे उसके अंदर भी वो स्मृति जागृत होगी और आत्मा के जो गुण है वो ऑटोमेटिकली जागृत हो जाते हैं. ये सारे गुण कुछ बोलने से जागृत नहीं होंगे. आप कितना भी बोल दीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत प्यारे हैं, इट वोंट वर्क. इट हैज टू कम फ्रॉम डीप विदिन, बट इट्स वेरी डीप रूटेड. ये लगता है कि नहीं तो बहुत ईजी है, हम जाकर वहां सोचेंगे कि ये तो आत्मा है.
1: हम भूल जाते हैं ना उस वक्त, क्योंकि बाकी सारी चीजों ने फॉग किया होता है.
0: थॉट भी नहीं आना चाहिए कि सामने वाले ने गलती की है, सामने वाला एक अपराधी है, सामने वाला. ये थॉट ट्रेस में भी नहीं होगा तब वो प्योरिटी ऑफ वाइब्रेशन, इसको हम कहेंगे प्योरिटी ऑफ थॉट, जहाँ एक इम्प्योरिटी का ट्रेस भी नहीं है. दैट विल रीच टू द अदर सोल. And that will bring about empowerment.
1: That's wonderful. Actually, अगर हम पूरे aspect को देखें तो सारे क्राइम जो scenes हैं और इस वक्त जिस हालात में पूरा समाज है, मुझे लगता है कि आज हम में से हर कोई criminal है. थॉट में नहीं, मतलब एक्शन में नहीं तो कहीं ना कहीं थॉट में तो है ही, लेकिन एक्शन में भी हम में से हर तीसरा बंदा जो है, तीसरा व्यक्ति क्रिमिनल नजर आ रहा है. यहाँ अगर हम क्राइम के सीन से हटके अपने घर पे भी आ जाते हैं तो यही फिलॉसफी शायद हम अपने रिफॉर्मिंग ऑफ किड्स, यू नो, रिफॉर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन, हमारे कि हमारा बच्चा बात नहीं मान रहा है, यही सही रास्ता है, ये ऐसे करना चाहिए उसे, लेकिन वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, रिबेल हो रहा है, तो यहाँ शायद वो पनिशमेंट की वजह.
0: जितना हम पनिशमेंट को यूज करते हैं तो मेजोरिटी केसेस में ये देखा जाता कि जो रिबेल होने की नेचर है वो संस्कार और भी ज्यादा कड़क होता जाता है. जो हम यू नो कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं या बहुत ढीठ हो गए हैं, कि अब कितना भी बोलो वो नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा जो शिक्षा देने का तरीका था वो कहीं ना कहीं, यू नो, वी यूज अ शॉर्टकट मेथड बिकॉज अगेन लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ पेशेंस, एंड मोर देन दैट आई थिंक लैक ऑफ अवेयरनेस माई सेल्फ.
1: I don't know. See, that's the biggest thing. क्योंकि कभी भी कोई पेरेंट जानते बूझते नहीं करना चाह रहा होगा.
0: Absolutely.
1: लेकिन शायद वो जान ही नहीं पाते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है इस पूरे एटीट्यूड.
0: तो अपनी अवेकनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है इसलिए कि जब हम जागृत अवस्था में रहेंगे तो हम औरों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे. और अभी भी आपने देखा होगा कि अपनी इस पूरी यात्रा के दौरान जितना हम अपने आप को समझ लेते हैं और हमें अंदर का पूरा मैकेनिज्म समझ में आता है कि ये सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, हम औरों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं. यू नो, जब कोई सामने से गुस्सा करता है ना, फॉर एग्जांपल, हमें पता चलता है कि ये गुस्सा गुस्सा नहीं है, एक्चुअली ये अंदर कोई दर्द है, ये अंदर हर्ट है कोई, और ये दर्द एक गुस्से के रूप में बाहर आ रहा है. तो पहले हम कैसे रिएक्ट करते थे, गुस्सा कर दिया मुझे कैसे गुस्सा कर दिया, अब समझ में आता है ये गुस्सा थोड़ी है, ये तो अंदर कितना दर्द है. So now you cannot have hatred, you will have compassion. वो खुद इतने दर्द में है तो वो आपको भी सही perspective में नहीं देख पा रहे, तो उन्होंने वो कर्म किया, लेकिन उनको किस चीज की आवश्यकता है. अब वही बात होगी, एक दर्द में है, अब मैं उसकी बात को लेके मैं भी दर्द में चले जाऊं तो हम दोनों को हेल्प कौन करेगा, और फिर मैं उनको और दर्द दूं. बच्चे ने गलती की पेरेंट के साथ तो पेरेंट भी दर्द में चला गया, बच्चे को और दर्द दिया. It's become a cycle. And then it is, how do we come out of this cycle? And then we say we're all in pain. Who will heal who? Everyone is a patient now. So that's why let me take up the responsibility. And इसीलिए जो हम कहते हैं meditation के लिए time नहीं है या I don't have time for myself, what we don't realize is it's not just for myself, it's for my family also.
1: For my all loved ones, you know, जिनके लिए मैं जिंदगी देने को तैयार हूँ, सब कुछ करने को तैयार हूँ. Unawareness में मैं कहाँ तक कितना नुकसान. रिश्तों की बात करें, मतलब हम आपस वक्त ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको मैं जरूर थोड़ा सा छूना चाहूंगी कि आज जो रिश्तों में इतनी कड़वाहट, इतनी दूरियां, इतना कम्युनिकेशन गैप इधर इधर होते हुए नजर आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की बात करें या किसी भी तरह का रिश्ता, तो वहां पे भी शायद एक भी अगर जागरूक अवस्था में.
0: ओनली वन, यू नीड ओनली वन. कई बार घरों में लोग कहते हैं, ओ जी, मैंने अगर अपने ऊपर मेहनत की लेकिन बाकी सब लोग तो वैसे ही हैं. लेकिन कोई बात नहीं, बाकी सब वैसे ही रहेंगे. वन पर्सन हैज टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो एक करे उससे औरों को तो बेनिफिट होगा, औरों को प्रेरणा भी मिलेगी करने की.
1: और उस एक को ये नहीं समझना पड़ेगा कि मैं एहसान कर रहा हूँ. यू नो समवेयर ये इसके साथ भी कि मैं ही करता जा रहा हूँ, मैं ही कब तक करूंगा, मैं ही कर रहा हूँ।
0: जब अभी जब हम कुछ करते हैं इस तरह से तो हमें लगता है कि मैं एहसान कर रहा हूँ, लेकिन जब अवेयरनेस से करेंगे तो हमें

0: समझ में आएगा दिस इज द वे टू बी. इसके अलावा तो और कोई रास्ता ही
1: और ये मेरे लिए जरूरी है.
0: वे दिस इज द नेचुरल वे ऑफ लिविंग. अभी तक जो हमारा वे ऑफ लिविंग था बिटरनेस को पकड़ के हर्ट को पकड़ के दैट वाज नॉट अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग. और सफरिंग किसके लिए? बहुत प्राउडली हम कहते हैं उन्होंने ये कहा मैंने अभी तक वो बात नहीं भूली, इतने साल से मैंने वो बात पकड़ के रखी हुई है. नुकसान किसका है? उनका. वो भूल चुके अपना. सारा दिन अपनी सफरिंग सेल्फ क्रिएटेड है. इवन ये अगर हमें समझ में आ जाए बॉटम लाइन आई क्रिएट माई ओन सफरिंग टिल व्हेन?
1: टिल आई अंडरस्टैंड, टिल आई अवेक.
0: लेट मी स्टॉप नाउ. नोबडी क्रिएट सफरिंग फॉर मी. नोबडी कैन कॉज मी पेन. ओनली एंड ओनली मी. How much more do I want to cause pain for myself? When will I stop? That's it. And then मेरे को लगता है 10 minutes अपने लिए निकालना
1: मुश्किल नहीं होगा. बिल्कुल नहीं. In fact, that's it. ये तो हम understand कर ही चुके हैं और अब हर बार और clarity से आता जा रहा है कि meditation is empowering my own self. You know, healing की हम बात कर रहे थे. ना सिर्फ healing अपने लिए, पूरे परिवार के लिए और gradually पूरे समाज के लिए. जो अब बात ये करते हैं कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं तो ये दिस इज द वे एक्चुअली टू गो आउट एंड यू नो लाइक फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ. सिस्टर शिवानी आज की इस बातचीत ने कई परिपेक्ष तोड़े हैं, एक नया अंदाज दिया है जिंदगी को देखने का और किस तरह से क्राइम या क्रिमिनल्स को देखना है बड़े परिपेक्ष में देखें तो वो भी बदल रहा है. जिंदगी कितनी खूबसूरत है, हम में से हर कोई ऐसा ही चाहता है. लेकिन जिंदगी जीते जीते कई बार जब ऐसे मोड़ आते हैं, जब लगता है कि हम हर्ट हो गए या मुश्किलें बहुत ज़्यादा खड़ी हो जाती हैं, ऐसे में हमने इन दिनों की बातचीत में ये जाना कि जब हम हर्ट होते हैं तो या तो हम रिवेंज लेते हैं, वी वॉन्ट टू लैश आउट, या फिर हम पनिश करना चाहते हैं उसे जिसने हमें हर्ट किया है, या फिर हम ये सोचते हैं कि रिफॉर्म किया जाए. और इस पर हमने बहुत ही नए नज़रिए से बातचीत की कि इस ज्ञान को जानते हुए, खुद को पहचानते हुए और अध्यात्म या ध्यान का साथ देते हुए, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल, इस एस्पेक्ट को अपने साथ रखते हुए जब अब इन मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो एक नया अंदाज था. आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और क्षमा की बात करते हैं कि किस तरह से क्षमा हमारे जीवन में लाई जा सकती है, क्षमा का सही परिपेक्ष क्या है. और इसे बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
0: ओम शांति.
1: सिस्टर शिवानी, अब बहुत डिफरेंट हो गया है सब कुछ, देखने का तरीका बदला है और जिस तरह से हम एक सशक्त होके सुबह के ध्यान से जो एक शक्ति लेकर हम दिन भर उस बात को याद रखते हैं कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई कैन चेंज, नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, ये हर्ट भी मैं खुद ही अपने आप को दे रही हूँ, तो बाकी चीज़ें दिखने लगती हैं. इसी से जुड़ा एक और एस्पेक्ट होता है क्षमा का. उसको भी हम सही परिप्रेक्ष्य में अगर देखना चाहें, कहीं ना कहीं जब हम क्षमा करते हैं, हम कहते हैं कि वी फॉरगिव यू समवेयर, हम ऊपर उठ जाते हैं. वो ऊपर उठना आज मुझे थोड़ा डाउटफुल लगने लग गया है, हमारे बहुत से दर्शकों को भी, ये कहीं सही नहीं है. तो सही परिप्रेक्ष्य क्या हो?
0: जैसे हमने देखा कि आज दिन तक हम समझते हैं कि दूसरा हमें हर्ट कर रहा है, तो तब हमने जो रिस्पॉन्सेस क्रिएट किए वो थे बदला लेने का, पनिश करने का. उससे अच्छा हमने समझा कि दूसरों को परिवर्तन करने का प्रयास करें. और एक जो ऑप्शन हमारे पास है, यू नो बिकॉज दीज आर ऑल चॉइसेस दैट वी हैव, कि जब एक इमोशन हमारे अंदर क्रिएट होता है, व्हाट इज़ द चॉइस दैट आई हैव दैट टाइम? फॉरगिवनेस. फॉरगिव करना या क्षमा करना, जो आज दिन तक हम सुनते आए कि क्षमा बहुत, यू नो, क्षमा अगर हम कर देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा. इट्स द हाईएस्ट थिंग दैट समबडी कैन गिव इफ यू कैन टोटली फॉरगिव.
1: इनफैक्ट ये कहा भी जाता है कि आप बड़े बन जाओ ना, क्षमा कर दो.
0: क्षमा कर दो कि उसने तो गलती की, आप क्षमा कर दो. तो क्षमा करना, ये आज दिन तक हमने रियलाइज भी किया कि सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि यस, इफ आई फॉरगिव देन एवरीथिंग इज ओके. लेकिन जब उसको करने पर आते तो कहीं ना कहीं मुश्किल लगता, क्योंकि फिर वही बात पकड़ लेते, लेकिन उसने हमारे साथ ये किया तो अब मैं कैसे क्षमा करूँ, उसने तो मुझे इतना तकलीफ दिया, अब मैं इसको कैसे क्षमा करूँ. तो ये हमें समझना पड़ेगा कि क्षमा क्या है, और अगर मुझे फॉरगिव करना है किसी को तो मुझे क्या याद रखना पड़ेगा जिससे मेरे लिए फॉरगिव करना, और वो भी फॉरगिवनेस की राइट परसेप्शन से, और उसको जब राइट पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे कि एक्चुअली भी हम फॉरगिव किसको कर रहे हैं, लेकिन हमें फॉरगिव करना वो और इजी हो जाएगा. सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे आज भी हमारे पास बहुत फोन्स आते हैं, बहुत ईमेल्स आती हैं, या हम जब एक दूसरे से भी बात करते हैं, वी रियलाइज के ईच वन, जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम एक विक्टिम बन के बात करते हैं. आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ इतना धोखा हुआ, मेरे साथ इतना अत्याचार हुआ, मेरे इन लॉज मेरे साथ ये कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, यू नो देयर इज अ होल लिस्ट. सो वी आर ऑलवेज अ विक्टिम एंड तब हम उस विक्टिम की फीलिंग में हम अपनी पूरी लाइफ काट देते हैं. तो अगर हमें रियली फॉरगिव करना है, आई विल हैव टू कम आउट ऑफ दिस विक्टिम. यू नो आई एम द विक्टिम, यू नो मेरे पर अत्याचार किया जा रहा है. हमें इससे निकलना होगा और इससे फिर हम तभी निकल सकेंगे जब हम ये रियलाइज करेंगे कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, जो कुछ कर रहा है मैं कर रही हूँ. अभी तक समझते थे आई एम विक्टिम क्योंकि आप कर रहे हैं, लेकिन जब मैं खुद कर रही हूँ तो कौन विक्टिम और कौन विक्टिमाइजर. सबसे पहले क्योंकि फॉरगिवनेस के लिए एक बहुत एलिवेटेड स्टेज चाहिए, फॉरगिवनेस के लिए हमें प्यार चाहिए. आई कैन ओनली फॉरगिव इफ आई एम फिल्ड विद लव, इफ आई नो द ट्रूथ, इफ आई एम एट पीस, देन आई कैन फॉरगिव. अगर मैं डिस्टर्ब्ड हूँ, मुझे मेरे अंदर नफरत है और प्यार का बिल्कुल कोई ट्रेस ही नहीं, तो फॉरगिवनेस कहाँ, वो पॉसिबल नहीं. तो वो विक्टिम की फीलिंग से बाहर निकल आइए कि जो है वो मैंने क्रिएट किया है, फिनिश भी
1: मैं ही करूँ,
0: मुझे करना. अगर किसी ने मुझे फिजिकली हार्म कर दिया, यू नो कोई एक्सीडेंट है, कोई फिजिकल अब्यूज है या कुछ भी इस तरह से है, कोई मारपीट हो जाती है, चोट लग जाती है एक दूसरे की वजह से, तो आई हैव टू रिमेम्बर कि मैं शरीर नहीं हूँ जिसको चोट लगी. क्योंकि जब मुझे ये लगता है मुझे चोट लगी, यू नो जब मुझे चोट लगी, आई हेट यू फॉर इट, आपकी वजह से मुझे ये चोट लगी या मेरे शरीर के अंग को ये हो गया, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ तो चोट किसको लगी. तो शायद उनकी गलती की वजह से मेरे शरीर को तो चोट लगी, लेकिन मुझे चोट किसकी वजह से लग रही है, मुझे चोट तो अपनी वजह से लग रही है. तो देन व्हाट हैपेंस, दैट नेगेटिविटी जो हम दूसरे के प्रति फील कर रहे हैं, बिकॉज इसमें प्रोसेस क्या है अंदर, कि जो हम दूसरे के प्रति वो नेगेटिविटी फील कर रहे हैं उसको आई हैव टू, और ऑप्शन क्या है, और माफ हम किसके लिए कर रहे हैं. से एक तो या तो फिजिकल पेन है, अगर मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है वो फिजिकल पेन हो गया, लेकिन साथ साथ मैंने अपने को क्या हार्बर कर दिया, इमोशनल पेन भी कैरी किया. अब जो वो इंसिडेंट होता है वो तो एक बार होता है, बट मैं उसको अंदर ही अंदर अगेन रिलिव करते जाती हूँ, तो ज्यादा पेन कौन दे रहा. तो उस समय इफ मतलब इसमें बड़ा बनना या क्या कहे इसको, लेकिन ये अपने लिए ही और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे साथ. अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है एंड इफ आई होल्ड इट विद मी, द लॉस इज ओनली माइन, आई हैव नो अदर चॉइस. एक्चुअली मे बी इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ नॉलेज एंड एनलाइटनिंग, लेकिन आई हैव नो अदर चॉइस देन टू फॉरगिव इफ आई वॉन्ट टू लीड अ हेल्दी लाइफ आगे. नहीं तो मेरी जो बाकी जीवन है वो सिर्फ दर्द में बीतेगी, और ऐसी जीवन की फिर क्वालिटी का क्या.
1: बिल्कुल, और यहाँ पीयर प्रेशर, यहाँ सोसाइटी, समाज एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है. हम क्यों नहीं समझ पाते, और पूरा समाज जो है वो जिसके साथ ये घटा है उसे बार बार बार बार वो याद दिलाता जाता है कि आपके साथ क्या घटा है.
0: एब्सोल्युटली, और वो एक रबिन हो जाता है कि आपके साथ अत्याचार हुआ, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ. तो क्या होता है वो नेगेटिव, सी एवरी टाइम हम किसी के साथ इस तरह से कहते हैं वो ऑलरेडी दर्द में है, वी गिव मोर के और नेगेटिव. सारा खेल तो एनर्जी का है ना, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई उस विक्टिम फीलिंग में भी है तो वो नेगेटिव एनर्जी में है, हमें क्या देना है. और तभी हमने देखा कि इफ आई एम इन दैट पीसफुल स्टेट, तो मैं उस आत्मा को भी वो शांति की वाइब्रेशन, वो पावरफुल वाइब्रेशन देकर उसको उस दर्द से बाहर निकलने में मदद करूं.
1: पेन में हूँ,
0: अगेन अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं जो एक अगेन मैं विक्टिम हूँ, इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकलना पड़ेगा. मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है या मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया है, वो एक बार हो गया है, ठीक है, अब मुझे विक्टिम बनकर कितना समय चलना है, दिस आई विल हैव टू आस्क, बिकॉज अदरवाइज मैं पूरी जीवन चल सकती हूँ विद दिस थॉट कि मैं विक्टिम हूँ, यू नो, और वो जीवन फिर क्वालिटी बहुत दर्द वाली होगी. तो उससे बाहर निकलना होगा कि मैं विक्टिम हूँ, एक इंसिडेंट था, ओवर, आई हैव टू मूव अहेड. विक्टिम वाली फीलिंग से बाहर निकलना होगा. और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जीवन है, जीवन की यात्रा में चीज़ें आएंगी, ये होता है, ऐसी चीज़ें होंगी, अगर कोई ऊपर नीचे बात हो जाती है, आई हैव टू मूव ऑन टेकिंग इट कि इट्स अ लेसन विच हैज कम फॉर मी, आई हैव टू लर्न फ्रॉम इट, मूव ऑन, आई हैव अ चॉइस. जैसे कई लोगों की आदत सी हो जाती है कि जो उनको मिलता, जहां वो बैठते, जिसके साथ बात करते, वो वापस वही बात दोहराना शुरू कर देते हैं. आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? You know, even not, we're not talking of really, you know, victims on some big...
1: I can talk about myself. Yeah. At times we start sharing, actually, itna zyada.
0: Aapko pata hai mere saath kya hua. And wo ek record ki tarah play hota jata hai. Ke jahan jahan baithe logon ke saath, apna, jaise bolte na, apna rona rona shuru kar dete hai. Ke mere saath kya hua, mere saath kya hua. We are not able to move ahead. To mere saath jo hua... वो हुआ, लेकिन मैं जितनी बार उसको रिपीट करती हूँ और जितनी बार वो एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करती हूँ, तो वो कितनी बार हो जाता है. सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इवन पहली बार जो किसी ने मेरे साथ कुछ किया गलत, लेकिन उसकी जो फीलिंग थी वो तो मैंने ही क्रिएट की, लेकिन ये जो बार बार मैं क्रिएट करती हूँ, ये किसने क्रिएट की? मैंने की. तो आई हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स हैपन, I have to move on. वो एक रिकॉर्ड प्लेयर जैसे अटक जाता है ना नीडल, वहां पे उसी लाइफ के उस सीन पर आकर हम अटक जाते हैं और उसी सीन को बार बार दोहराते रहते हैं.
1: लेकिन बहुत मुश्किल होता है उसे बाहर निकला, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ विशियस सर्कल. अगेन शायद एक बार हमने पेन की बात की थी, तो एडिक्शन हो जाता है या वट एवर इट इज. It is, you know, at times I have seen people actually getting into it और वो निकलते ही नहीं, निकलना ही नहीं चाहते. और वो उस victimized जो खासकर जो ज़्यादा trauma से गुजरे होते हैं, वो तो वो कौन सी विल पावर है, कौन सी ऐसी बात है जो हम एक कोशिश कर सकते?
0: मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ और जो हुआ that is now over. अब मुझे focus सिर्फ किस पर करना है कि आगे क्या, क्योंकि पास्ट ठीक है वॉज नॉट वेरी नाइस, लेकिन मुझे फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए अंदर की स्थिति को ठीक करना ही पड़ेगा. क्योंकि अगर मेरी स्थिति ठीक नहीं होगी तो आगे की परिस्थिति भी ठीक नहीं होगी, एंड आई कंटिन्यू टू लिव इन दैट पेन. जैसे कई बार हमारे पास कई ऐसे पेरेंट्स आते हैं या फैमिलीज आती जिनके घर में कुछ बात चल रही है, लाइक लेट्स से बच्चा डिप्रेशन में है या किसी बच्चे का डिवोर्स का कुछ चल रहा है, कुछ भी इस तरह का एक बहुत बड़ी बात होती है उस परिवार के लिए. तो सबसे पहली चीज जो हम उनके साथ शेयर करते हैं, स्टॉप डिस्कसिंग दिस इन द हाउस. स्टॉप इट, टोटली स्टॉप इट. क्योंकि जब तक आप उसको डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि एंडलेस है वो जो डिस्कशन होती है. लेट्स से कई पेरेंट्स हैं जिनकी बेटी घर आई है, यू नो, अपने हस्बैंड से अलग होकर आ गई है या वो प्रोसेस में चल रहे हैं. अब उस बेटी को उससे बाहर निकलना है, लेकिन सारा दिन घर में डिस्कशन क्या होती है?
1: वही हो रही होती है,
0: वही डिस्कशन हो रही है. तो हम उससे बाहर निकल रहे हैं या उसके अंदर और भी घुस रहे हैं? तो हमें इतना स्टॉप करना है कि हमारे थॉट में भी ना वो बात आए. लेकिन हम तो पूरा टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं, या वो ऐसा है, वो ऐसी है, यू नो, दैट होल डिस्कशन. और जब भी फैमिली आती है, रिलेटिव्स आते हैं, क्लोज फ्रेंड्स आते हैं, अगेन दैट्स द ओनली टॉपिक.
1: और बार बार उससे क्या है, वो रिजेंटमेंट. कहीं वो मेरे ख्याल से थॉट खत्म भी होने वाला हो, क्योंकि वायुमंडल में इतना ज्यादा वो फैला हुआ हो. नाउ आई कैन क्लियरली सी इट, यू नो, कि हम विजुलाइज कर सकते हैं कि व्हाट रियली हैपेंड.
0: एब्सोल्युटली. तो वो पूरे घर का और उस फैमिली का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? तो वो बेटी या वो बच्चा अगर निकलना भी चाहे उससे, हम ही निकलने नहीं दे रहे, यू नो, हम भी बार बार. और बहुत हम उनको यही कहते हैं कि सिंपथी नहीं चाहिए, नॉर्मल. Just treat the person as normal. क्योंकि जितनी बार आप सिंपथी देंगे, आप फिर उनको वही याद दिला रहे हैं कि आप विक्टिम हैं. You know? तो एक तो मैं खुद फील कर रही हूँ कि मैं विक्टिम हूँ, और दूसरा सब मुझे फील करा रहे हैं कि मैं विक्टिम हूँ बाय बार बार सेइंग बेचारे आप.
1: आई थिंक समवेयर, यू नो, वाई बाकी सब लोग भी हम क्यों फील करवाते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो लाइक द सेंस ऑफ पावर दैट, यू नो, वी आर एबल टू हेल्प समबडी.
0: ट्रू.
1: बिकॉज वी डोंट, वी वुड लाइक to help somebody,
0: right? But we're not really helping.
1: Yes,
0: you know, a help at that time would mean empowerment. Lekin baar baar keh kar ke hai aapke saath aisa hua, bichare aap, ab aapka kya hoga, ya even ye kehna koi baat nahi sab theek ho jayega, matlab it's not to hurt anyone, lekin koi baat nahi sab theek ho jayega, wo theek hai, but by saying that we are saying ki abhi sab galat hai. You know, to jitna hum normalcy ko create kar sake, सब ठीक हो जाएगा ये बोलने की बात नहीं है, सब ठीक क्रिएट करना है घर के वायुमंडल में. और बिल्कुल वायुमंडल ऐसा हो जाना चाहिए, बातचीत करने का तरीका ऐसा हो जाना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, देन वी आर एबल टू फिनिश इट.
1: बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपके कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और हम सबके कल्याण के लिए हम शिव पुराण सुनवा रहे हैं, क्योंकि भगवान शिव कल्याणकारी हैं, मंगलकारी हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि हर मानस का मंगल हो, कल्याण हो, सबके दुखों का विनाश हो सके। इसीलिए इसी उद्देश्य को लेकर हमने यह ग्रंथ आरंभ किया है और इसको सुनवाने के लिए हम अपने स्टूडियो में हमेशा ही लीना जी को आमंत्रित करते हैं। आज भी हमारे स्टूडियो में लीना जी उपस्थित हैं। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, बड़ी अच्छी प्रसंग आप सुनाती हैं हमारे दोस्तों को, इसमें से पढ़ पढ़ के सरल भाषा में ताकि उनको समझ भी आ जाए और वो प्रेरित भी हो सके। आपने पिछले एपिसोड में बताया कि नारद जी बता रहे हैं कथा कि हिमालय ने सबकी सुनकर क्या किया, क्या निर्णय लिया। तब हिमालय ने गर्गाचार्य से लगन पत्रिका लिखवा कर शिव जी के पास भेज दिया। फिर सप्त मुनि सब कुछ देकर अपने निवास स्थान पर लौट आए और हिमालय ने विवाह से संबंधित सामान का संग्रह कर किया। पर्वतों की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार भी करने लगी। वेद व्यास ने नारद जी के कहने पर ही यह ग्रंथ लिखा था। अब विभिन्न प्रकार के पर्वत, देवालय पर्वत दिव्य रत्नों के साथ आए, मंदराचल पर्वत विभिन्न रत्नों के और मणियों सहित वहां पहुंचे। इसी प्रकार से सभी पर्वत अपने अपने परिवारों के साथ रत्न मंडित होकर वहां पर पहुंचे, शोभा बढ़ाने के लिए हिमालय के घर में। अब लीना जी, और विवाह की क्या तैयारियां वहाँ चल रही थी? यह तो अद्भुत अलौकिक विवाह था जिसे देखकर देवता तो प्रसन्न होते हैं, हम तो सुनकर ही ऐसा लग रहा है कि हमारा तो जीवन ही सफल हो गया सुनने मात्र से। और लग रहा है कि कैसा दृश्य रहा होगा, कितना अलौकिक दिव्य दृश्य रहा होगा वो जिन्होंने इसका दृश्य में शामिल हुए, जो विवाह में शामिल हुए। अब आगे किस प्रकार से यह विवाह चला और क्या तैयारियां और हुई, वह सब हमारे श्रोताओं को भी सुनाइए, हमें भी।
1: बिल्कुल सही बात है, जैसा कि आपने कहा कि हमारा जीवन ही सफल हो गया
0: जी।
1: तो शिव पुराण ऐसी कथा ही है, ऐसी अद्भुत कथा है जो रामायण की तरह परम पवित्र, और हर घर में जिस तरह से घर घर में रामायण बांची जाती है, ठीक उसी तरह शिव पुराण पुराणों में महा शिव पुराण है, जिसकी कथा को पंडितगण, जो विज्ञ जन है, विद्वान जन है, वो इसकी कथा को बताते, और जो भी इस कथा को सुनता है या पढ़ता है उसके कर्ण में कुछ ना कुछ तो जाता है, अमृत तो घुलता ही है। अगर हम अमृत की बातें सुनेंगे, अमृत रस पिएंगे, तो हमारा जीवन अमृतमय क्यों नहीं बने। और यह अमृत की ही कथा है, क्योंकि भगवान शिव ने क्या किया था, सारे विष को पी लिया था। अमृत पीने के पहले का प्रकरण जो है, उस प्रकरण में यही हुआ था कि पहले समुद्र मंथन में विष निकला था और उस हलाहल को पीने के लिए कोई तैयार नहीं थे, कोई उसके योग्य नहीं थे, कोई उसके पात्र नहीं थे
0: जी।
1: और शिव जी ने उसे पी करके पूरे संसार को बता दिया कि वे हम मनुष्यों के भी मन रूपी विष को पी सकते हैं। और मन के अंदर जो विष पलता है, ईर्ष्या का, द्वेष का, घृणा का, नफरत का, उन सारे विषों को अगर हम निकालना चाहें तो हमारे अकेले से संभव नहीं होगा। शिव की शरणागति से यह सब संभव है कि हमारे अंदर जो मन है, वह मन एक छोटा सा बच्चा है, वह उत्पाती भी है, वह बंदर की तरह प्रतिक्रिया क्रिया भी करता है। तो हमें अगर अपने मन को सुंदर बनाना है, समस्त दुर्गुणों से दूर करना है अपने मन को, तो भगवान शिव की शरणागति कर ले तो हमारा मन भी सुंदर हो जाएगा। तो सुंदर शिव, अमृत शिव, अमृतोपम शिव, दिव्योपम शिव, दिव्यादि दिव्य शिव, तो शिव ऐसे हैं, तो उनकी कहानी तो दिव्य होगी ही, और दिव्य कहानी से हमें दिव्यता की अनुभूति होगी ही। अगर हम देवत्व को धारण करेंगे तो हम और अधिक दिव्य होते चले जाएंगे। इस शिव पुराण की महिमा यही है, इस शिव पुराण का महागुणगान यही है कि हम इसे न केवल सुने, न केवल पढ़ें, अपितु इसे आचरण में भी उतारें। और आचरण में जैसे जैसे शिव पुराण उतरेगा, वैसे वैसे हम शिवत्व की ओर बढ़ते चले जाएंगे, और जीवो केवल शिव की अनुभूति भी हमें होगी कि हाँ, जन्म जन्मांतर का परिश्रम हमारा सार्थक हो जाएगा जब शिवत्व की हमें अनुभूति होगी।
0: लीना जी, मैं ये भी देख रही हूँ कि जब से हम लोग ये शिव पुराण की व्याख्या हमने आपने शुरू की है और हमने शुरू की है सुननी और अपने श्रोताओं को भी सुनानी। तो मैं ये देख रही हूँ कि जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान शिव पुराण में ना हो, तो हम क्यों फिर इधर उधर भटकते रहते हैं, यहाँ खोज वहाँ खोज, यहाँ पूछ वहाँ पूछ, सीधे शिव की शरण में ही क्यों नहीं आ जाते जहाँ सारी ही समस्याओं का समाधान है? फिर हम परेशान क्यों होते हैं? फिर समाज में लोग इतने दुखी क्यों रहते हैं? तो अब आप ये इसके विषय में कुछ कहना चाहेंगी?
1: बिल्कुल, अगर मन में कीचड़ होगा तो हम शिव तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि शिव कीचड़ रहित है। कीचड़ से लिपायमान हमारा मन है तो हम शिव जैसे दुधिया चंद्रमा को कैसे देख पाएंगे? शिव को अगर देखना है, शिव को अगर समझना है, तो शिवत्व को उतारना ही पड़ेगा। कहते हैं कि मित्र की मित्रता कब होती है? जब दोनों के गुण समान होते हैं। तो भक्त भगवान की ओर जब अग्रसर होगा, भक्ति उसमें उतरेगी, तो शिव अपने आप उसके मन रूपी दर्पण में दिख जाएंगे। लेकिन मन रूपी दर्पण अभी मैला है, इसलिए वो दिख नहीं रहे।
0: बोलिए, आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं कि मन में जो बैठे हुए हैं हमारे शत्रु, तो उसको तो पशुपतिनाथ ही निकाल सकते हैं, क्योंकि वही जो पशु बैठे हुए हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष, तो ये जो इतने सारे पशु बैठे हुए हैं, इनको अगर हमें निकालना है तो हमें भगवान की शिव की शरण ही लेनी होगी, और कोई उपाय नहीं है।
1: क्योंकि शिव को पशुपति नाथ भी कहा गया।
0: हाँ जी,
1: आपने कहा कि काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार आदि जो है, ये क्या है? ये पशु है,
0: पशु
1: है। हमारे मन के पशु है। हाँ, अब इन सारे पशुओं को नाथने के लिए पशुपति नाथ को तो आना ही पड़ेगा।
0: हाँ,
1: तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए हमारे अंतर की आर्त पुकार, करुण पुकार होनी चाहिए कि हे शिव, आप मुझे अपनी शरण में ले लें और हमें अपने जैसा भोला बना दें, अपने जैसा निर्मल बना दें, निष्कलंक बना दें। तो देखिए, भक्ति, भक्त और भगवान से सजी हुई ये दुनिया कितनी खूबसूरत लगेगी।
0: लीना जी, एक बड़ी प्रचंड जो समस्या आजकल समाज में देखने को मिल रही है, देख उसको सुनकर भी और देखकर भी मन बहुत दुखी होता है कि उसका समाधान क्यों नहीं ढूंढ पाते। हमारे पास इतने, जिसको कहना चाहिए कि अमूल्य धरोहर ये ग्रंथ हैं, इनमें सब कुछ है, क्यों नहीं इधर की तरफ बढ़ता है हमारा समाज कि आज भाई भाई की हत्या कर रहा है द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण। बाप बेटे की हत्या कर रहा है, बेटा बाप की हत्या कर रहा है, माँ की हत्या कर रहा है। इतना तो कुंठित समाज हमारा कभी पहले था नहीं, अब क्या हो गया इस समाज को? कैसे हमारे यहाँ से ये हमारे जो विचारों की और जो संस्कारों की ये कहाँ खो गए हैं, हमने कहाँ खो दिया इनको?
1: आपके प्रश्नों में ही समाधान छुपा हुआ है
0: जी।
1: क्योंकि हम लोग भक्ति युक्त शिव पुराण कर रहे हैं, जिस दिन मानव मात्र में भक्ति का सूर्योदय जगेगा, उस दिन सारे अंधकार अपने आप पलायित हो जाएंगे, भाग जाएंगे, दुम दबा करके भाग खड़े होंगे। तो जैसे अंधेरे कमरे में बहुत सालों से कमरा अंधेरा पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें ट्यूबलाइट है, पर उसे जलाना कोई नहीं जानता। जैसे ही आप अंधेरे कमरे में प्रवेश करेंगे, सालों बाद मान लीजिए आप विदेश से आए हैं और उस अंधेरे कमरे में प्रवेश करेंगे, तो आपको लगेगा हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है, कौन सा सामान कहाँ रखा है ये आपको पता नहीं है। लेकिन ट्यूबलाइट जलाते के साथ आपका अंधेरा दूर हो जाएगा, कमरे का अंधेरा दूर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। ठीक उसी तरह हमारे मन के अंदर जो इतने प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों का समाधान भक्ति है। आज के युग में, कलयुग में कहा गया है कि सबसे उत्तम अगर कोई चीज है, विधि है, तो वो है भक्ति। भक्ति से मनुष्य झुकना सीख पाता है, भक्ति के कारण मनुष्य कामी नहीं रह पाता, क्रोधी नहीं रह पाता, भक्ति के कारण उसके अंदर लोभ नहीं हो पाता। अगर लोभ है तो सिर्फ भगवान का लोभ है, अगर काम है, रति है, तो सिर्फ भगवान के चरणों से रति है, अगर ये क्रोध है तो सिर्फ उस पर कि जो समाज में विकृतियां छाई हुई हैं उस पर क्रोध है। तो भक्त बनो तो ऐसे कि प्रहलाद बन जाओ।
0: अब लीना जी, जैसे हमारे ऋषि मुनि तो अपने व्याख्यान से, धर्म उपदेश से और अपने प्रवचनों से हमारे समाज को प्रेरित कर ही रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे ही रहे हैं, समाज को सही राह पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक जो आम आदमी का कर्तव्य है, एक आदमी, सामान्य आदमी, इस क्षेत्र में कुछ करना चाहता है अगर कि मैं कुछ ऐसा योगदान दूं, मैं भी लोगों के मन में बसी हुई वो ईर्ष्या द्वेष जो नाश कर रही है परिवारों का, उसको कैसे हटाऊं, तो अब इस विषय में एक आम इंसान अपना कैसे सहयोग दे।
1: मंजू जी, वास्तव में
0: जी
1: उस व्यक्ति को यह नहीं सोचना है कि मैं कैसे हटाऊं, वो हटाने वाला कोई नहीं होता। आप अपने चरित्र को इतना खूबसूरत बना लीजिए कि मुर्मुर करके ये दुनिया आपको देखने लगे और आपके अनुकूल आचरण करने लगे। बुद्ध किसी को बुलाने नहीं जाते हैं कि तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ, लेकिन बुद्ध के पास सारी दुनिया जाती है। महावीर किसी को बुलाने नहीं जाते, लेकिन महावीर के पास सारी दुनिया जाती है। तो आप बुद्ध और महावीर की तरह बन जाइए, आपको किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके आसपास का वातावरण इतना पवित्र हो जाएगा कि हर कोई कह उठेगा, देखो यह है महान आत्मा। तो क्षुद्रता से महानता की यात्रा हर मनुष्य को करनी होगी और इसके लिए ही शिव पुराण है। तो अब आगे चलते हैं इस कहानी की ओर। कहते हैं रुद्र संहिता के पार्वती खंड के 37वें अध्याय में कि अभी तक हम लोगों ने जो वर्णन किया था उस वर्णन में पर्वत राजों हिमालय के जो मित्र थे, पर्वत मित्र थे, वो सब आए थे, जिसमें कि उदयाचल, अस्ताचल, मंदराचल, विंध्यगिरी, सुमेरु पर्वत, मलयगिरी पर्वत, देवालय पर्वत आदि बहुत सारे पर्वत आए, त्रिकूट पर्वत, चित्रकूट पर्वत, ये सब आए। अब नदियों की चर्चा की जा रही है, जहाँ पर्वतों की चर्चा की गई है वहाँ नदियों की चर्चा नहीं करेंगे तो ये पर्वत की चर्चा अधूरी रहेगी, क्योंकि नदियाँ क्या है, पर्वत पुत्रियाँ हैं। नदियाँ क्या है, पर्वत से ही निकलती हैं जो सागर तक पहुँचती हैं। तो इन नदियों की चर्चा अब की जा रही है इस शिव पुराण में। अब देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हिमालय द्वारा निमंत्रित सभी पर्वत प्रसन्नता पूर्वक शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए वहां आए, लेकिन उस समय नदियां भी आई और उन नदियों का नाम लेते हुए वे कहते हैं, तदा सर्वे समायाता सोनभद्रादय खलु बहु शोभा महाप्रीत्या विवाह शिवयोरिति, नद्य सर्वा समायाता नाना अलंकार संयुता दिव्य रूप धरा प्रीत्या विवाह शिवयोरिति, गोदावरी च यमुना ब्रह्म स्त्री वेनिका तथा आययो हिमशैलम वै विवाह शिवयोरिति। कहते हैं कि उस समय सोनभद्र आदि सभी महानदियां प्रेम से शिव शिवा के विवाह में आई, और भी सभी नदियां दिव्य रूप तथा अनेक आभूषणों को धारण कर शिव शिवा का विवाह देखने के लिए वहां आई। गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, त्रिवेणी, ये सभी शिव शिवा का विवाह देखने के लिए हिमालय के घर आई। और आगे वो कहते हैं, गंगा तु सुमहाप्रीत्या नाना अलंकार संयुता दिव्य रूपाययो प्रीत्या विवाह शिवयोरिति, अनेक अलंकारों से अलंकृत गंगा नदी अत्यंत प्रेम से उत्तम रूप धारण कर शिव शिवा का विवाह देखने के लिए वहां आई। नर्मदा तु महामोदा रुद्र कन्या सरित द्वारा महाप्रीत्या आजगामासु विवाह शिवयोरिति। कहते हैं कि नर्मदा और महामोदा रुद्र कन्या सरित द्वारा ये सभी अलंकारों को धारण कर बड़े प्रेम से शीघ्र शिव शिवा के विवाह में आई। चारों ओर से इन निमंत्रित लोगों के आ जाने से सब प्रकार से सुशोभित हिमपुरी भर गई। चारों ओर से उत्साह युक्त वह नगरी जिसमें ध्वजा तोरण लगे हैं, तंबुओं के लग जाने से, सूर्य के प्रभाव के हट जाने से जिसकी शोभा बढ़ गई है, हिमालय ने भी घर में आए हुए उन आमंत्रित अतिथियों का आदर पूर्वक यथोचित सम्मान किया, उन सबके निवास की अलग अलग व्यवस्था की तथा अनेक प्रकार की आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराकर उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट किया। अब देखिए हिमालय क्या थे, पर्वतराज थे। अब पर्वतराज के पास सारे पर्वत, सारी नदियां आ रही हैं। मित्र, कोई मित्र के रूप में आ रहे हैं, कोई हिमपुत्री के रूप में आ रही है, तो बहुत सारी चीजें थी जो हिमालय को व्यवस्था करनी थी, और उन्होंने समुचित व्यवस्था की इन लोगों की जिससे कि कोई असंतुष्ट ना हो, क्योंकि वधू पक्ष क्या करता है, हमेशा यह कोशिश करता है कि जितने भी घराती बराती जो भी आए हैं सभी का यथोचित आदर हो, यथोचित सत्कार हो और उन्हें सम्मान मिल सके, जिससे कि वे निंदा के पात्र न बने। और दूसरी बात कि जो इतनी दूर से कष्ट उठा करके उनके घर आए हैं उन्हें कोई भी जो है असम्मानित न करे, अनादर न करे, वे खुश हों, प्रसन्न हों और प्रसन्न होकर के यहाँ से विदाई लें। तो अभी तक पर्वत और नदी की बात की गई है।
0: हाँ।
1: तो अब रुद्र संहिता के पार्वती खंड के अध्याय 38वें में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं।
0: हाँ।
1: अब इस 38वें अध्याय में क्या कहा जा रहा है हम देखते हैं और सुनते हैं। कहते हैं ब्रह्मोवाच अथ शैलेश्वर प्रीतो हिमवान मुनि सप्तम स्वपुरम रचयामास विचित्रम परमोत्सवम सिक्त मार्गम संस्कृतम च शोभितम परमर्धिवी द्वारी द्वारी च रंभादि मंगलम द्रव्य संयुतम प्रांगणम रचयामास रंभा तंभसम समन्वितम पट्ट सूत्रय सन्निबद्धम रसाल पल्लवान्वितम मालती माल्य संयुक्तम तोरण सुप्रभम शोभितम मंगल द्रव्य चतुर्दिक्षु स्थित सुबह। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। कहते हैं कि हे मुनिवर, उसके बाद गिरिराज हिमालय ने प्रसन्न होकर अपने नगर में परम उत्सव करवाया। चारों ओर सड़कों पर पानी छिड़कवाया, दोनों ओर सड़कें सजा दी गई, प्रत्येक दरवाजों पर केले आदि के पेड़ों को लगवाकर उन्हें सुशोभित कर दिया गया। देखिए पहले क्या होता था, पहले सजावट होती थी केले के पेड़ से। आजकल केले के पेड़ बहुत कम दिखते हैं। केला क्या है, मंगलकारी है और केले का हर पूजन पाठ में केले का प्रयोग होता है। तो केले के थंब हर जगह लगाए जाते हैं। पहले भी मैंने देखा था दीपावली के समय में, आप अभी भी छोटे शहरों में जाएंगी, गांव में जाएंगी, तो वहां केले के थंब लगाए जाते हैं और उन पर दीपक लगाया जाता है। बड़ा खूबसूरत लगता है ये दृश्य देखने में। तो आजकल तो लाइट की परंपरा है, जगह जगह लाइट लगा
0: पहले सारा प्राकृतिक सज्जा होती थी।
1: पहले प्राकृतिक सज्जा होती थी, दीपक जलाए जाते थे, क्योंकि दीपक क्या है, वो तेल बाती उसमें जो जलता है वो बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। तो दीपकों से सजाते थे पहले। तो केले आदि के पेड़ लगाकर उन्हें सुशोभित किया गया मार्गों को, और आंगन में भी केले के खंभे लगाकर उन पर रेशमी वस्त्र लपेट दिए और चारों ओर आम के पत्ते लगा दिए। मालती की मालाओं के सुंदर तोरणों तथा अन्य मंगल द्रव्यों से चारों ओर सुशोभित कर दिया गया। इस प्रकार पर्वतराज ने सभी आयोजन अपनी कन्या की प्रसन्नता के लिए, मेरी कन्या प्रसन्न हो, क्योंकि वो कन्या साधारण थी नहीं, आदि शक्ति थी। और ऐसा हिमालय को आभास भी हुआ था, पता भी लगा था कि मेरी कन्या जो है साक्षात आदिशक्ति है, और साक्षात आदिशक्ति ने उनके घर में जन्म लिया था। यही तो परम हर्ष का विषय था। सभी जगह आदिशक्ति तो जन्म लेती नहीं है। हाँ, आदिशक्ति का अवतरण अगर कहा जाए तो ये पूरा संसार आदिशक्ति का अवतरण ही है। चाहे वह चींटी से लेकर के मनुष्य हो, कोई भी हो, ऋषि मुनि अवतारी पुरुष, सब में आदिशक्ति का ही अवतरण है। लेकिन हम ये बात समझ नहीं पाते, अपने शरीर को मंदिर मान नहीं पाते। जिस दिन हम अपने शरीर को मान लेंगे कि हमारा शरीर दिव्योपम मंदिर है, ऐसा मंदिर कहीं और मिलेगा ही नहीं, तो हम सच में अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए कार्य करेंगे, ना कि शरीर से गलत कार्य करेंगे, ना कि शरीर को मांस मदिरा प्रदान करेंगे। लेकिन हम मंदिर ऐसे मान नहीं
0: मानते
1: पाते
0: ही नहीं।
1: इस शरीर रूपी मंदिर में जो मूरत है वो है हमारी आत्मा, और उस आत्मा रूपी मूरत में जो हृदय है वो है परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा का संगम है हमारे शरीर में, ये मूर्ति रूप में हमारे अंदर स्थापित है। इनकी धड़कन हम सुन सकते हैं, इनका स्पंदन हम सुन सकते हैं, लेकिन तब जब हम इन्हें जीवंत माने, जब हम इन्हें यह माने कि हम यही है। कैसे, तत्त्वमसि जो वह है वही हम है, सो अहम जो वह है वही हम है।
0: लीना जी, वही कि यहाँ से बात सिद्ध होती है कि हमारा शरीर ही माध्यम है उस तक पहुँचने का, क्योंकि शरीर से मन में उतरने के लिए

0: तो शरीर को भी स्वस्थ रखना होगा
1: जी।
0: तो जब शरीर को स्वस्थ रखना है तो फिर ऐसे तामसिक भोजन को तो दूर ही रखना चाहिए, उसका क्यों ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उसका तो असर फिर तामसिक ही होगा, प्रभाव भी शरीर पर तामसिक होगा, स्वास्थ्य पर भी प्रभाव तामसिक ही होगा।
1: एक बात यहाँ मैं कहना चाहूंगी मंजू जी कि ये संसार जो रचा बसा है, जो रचाया है आदिशक्ति ने, वो तीनों गुणों के सन्निवेश से रचाया है। अगर तम गुण नहीं रहेगा तब भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि वातावरण में अगर कार्बन डाइऑक्साइड 0.009 ना रहे तो सारा वातावरण ही जल जाएगा, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन से। तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा है, महत्वपूर्ण है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड से नियंत्रित रहता है, जो ज्वलनशील गैस हैं वो सब नियंत्रित रहते हैं। तो तमोगुण भी आवश्यक है, निद्रा आवश्यक है। अगर निद्रा नहीं हो तो हम सब परेशान हो जाएंगे। तो निद्रा तमोगुण में आता है, लेकिन आवश्यक है, लेकिन उतना ही आवश्यक है जितना हमें चाहिए। लेकिन हम उसी में रचे बसे रहेंगे तो हम तमोगुण ही हो जाएंगे। आते हैं रजोगुण पर। रजोगुण है महत्वाकांक्षा, रजोगुण है क्रिया करने की शक्ति। अगर रजोगुण नहीं रहे तो हम क्रिया ही नहीं कर पाएंगे, हम सोचेंगे ही नहीं उस विषय पर काम करने के लिए। तो इसलिए रजोगुण भी आवश्यक है। अब आते हैं सतोगुण पर। सतोगुण क्यों आवश्यक है? क्योंकि सत्य, सत्य की पूछो, सच्चिदानंद ब्रह्म, पर ब्रह्म परमेश्वर को अगर हम पाना चाहते हैं और तो हमारी गति सतोगुण की ओर होनी चाहिए। यानी कि ये सारी सीढ़ियां हैं, हम सब में ये तीनों गुण है। ऐसा नहीं है कि राम में तमोगुण नहीं है, राम में रजोगुण नहीं है, राम में सतोगुण नहीं है, ये नहीं है। लेकिन नियंत्रित अवस्था में है और वृद्धि है सतोगुण, और वो तो परमेश्वर है, तो इन तीनों गुणों से परे भी हैं वो लोग। तो अब सोचना ये है हर मनुष्य को कि अगर हमने जन्म लिया है तो तीनों गुण भले हैं, लेकिन हमें, हर व्यक्ति परीक्षा पास करता है, पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, फिर MA BA सब करता है। तो जब ये है तो उसी तरह तमोगुण से रजोगुण की ओर बढ़ना है उसे, और रजोगुण की ओर बढ़ने के लिए उसे सब कुछ देखना होगा कि कैसे निद्रा कम करें, आलस्य कम करें, प्रमाद कम करें। और उसके बाद महत्वाकांक्षा तो रहती है रजोगुण में, लेकिन क्रिया करने की शक्ति होती है तो वो सब करें। उसके बाद रजोगुण से सतोगुण की ओर हमको बढ़ना है। जब सतोगुण की ओर बढ़ेंगे तो वो प्रकाश का गुण है। प्रकाश के गुण की ओर बढ़ने के लिए ये शिव पुराण है। प्रकाश के गुण की ओर बढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम कर सकते हैं। जैसे परीक्षा पास करने, BA की परीक्षा पास करने के लिए आप इंटर के सिलेबस पढ़ करके जाएंगे तो क्या BA की परीक्षा पास करेंगे? नहीं करेंगे। उसी तरह सतोगुण की भी परीक्षा है, रजोगुण की भी परीक्षा है। तो इन सारी परीक्षाओं को पास करने के लिए हमें उसी तरह की योग्यता चाहिए। तो योग्यता हासिल करते चलिए और पर पग रखते चलिए, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण। कोई भी गुण खत्म नहीं होगा, लेकिन उनकी संतुलन बना रहेगा। और जिस दिन संतुलन बन जाएगा, इन तीनों गुणों से हम परे भी हो जाएंगे। तो यही हमें शिव पुराण सिखाता है
0: जी।
1: तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि किस तरह से पूरे नगर को हिमालय ने सजाया, केले के थंब से भी सजाया। और उसके बाद कहता है कि उसके बाद महाप्रभावशाली गर्ग जी के सामने पूजा आदि की सामग्री प्रस्तुत की। फिर उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर विस्तृत एवं सुंदर मंडप और उसके बीच में वेदी का निर्माण कराया। वेदी का निर्माण भी बहुत आवश्यक है, है? और कहते हैं, हे देवर्षि नारद, वह वितान 10,000 योजन विस्तृत अनेक शुभ लक्षणों तथा आश्चर्यकारक दृश्यों से युक्त था। वह मंडप स्थावर जंगम सबके लिए समान रूप से मनोहर था, चारों ओर से वह सुंदर था। जो मंडप बनाया गया वो चारों ओर से सुंदर था। फिर आगे आगे कह रहे हैं व्यास जी कि जंगमम विजितम तत्र स्थावरेण विशेषत जंगमेन च तत्रासीत जीतम स्थावरम एव ही पैसा च जिता तत्र स्थल भूमि न चान्य था जलम किम ही स्थलम किम ही न विदु के अपि को विदा क्वचित सिंहा कृत्रिमाश्च क्वचित सारस पंक्तय क्वचित शिखंडिना तत्र कृत्रिमाश्च मनोहरा। देखिए अब ये आगे बता रहे हैं प्रकृति किस तरह हास विलास से युक्त हो जाती है। जब प्रकृति और परमेश्वर की ही शादी हो रही है तो प्रकृति तो अपने ढेरों रंग दिखाएगी, इंद्रधनुषी रंग दिखाएगी। कहते हैं कि वहाँ की स्थावर रचना ने जंगम सृष्टि को और जंगम रचना ने स्थावर सृष्टि के मन को जीत लिया था, जल ने स्थल को जीत लिया था, अर्थात कहाँ जल है कहाँ स्थल है इसका निर्णय भी कोई नहीं कर पा रहे थे। कहीं बनावटी सिंह, कहीं सारसों की कतारें, कहीं मोर दर्शकों के मन को आकर्षित कर रहे थे, कहीं पुरुषों के साथ नाचती हुई बनावटी स्त्रियां भी देखने वालों के मन को मोहित कर रही थीं। इसी प्रकार प्रत्येक दरवाजे के पास मनोहर द्वारपाल बने हुए थे। हाथों से धनुषों को उठाए हुए वे बनावटी द्वारपाल वास्तविक जैसे लग रहे थे। दरवाजे पर बनाई हुई महालक्ष्मी सभी लक्षणों से युक्त होने के कारण ऐसी लग रही थी मानो साक्षात क्षीर सागर से आई हुई लक्ष्मी ही। बनावटी हाथी सभी प्रकार के अलंकारों से सुशोभित ऐसे लग रहे थे मानो स्वाभाविक ही हो। इसी प्रकार घोड़े घुड़सवारों से तथा हाथी हाथी पर सवार होने वालों से सुशोभित हो रहे। सारथियों से चलाए जाते हुए बनावटी रथ आश्चर्य युक्त थे और भी वाहन पैदल सभी बनावटी बनाए गए थे। हे मुनि, देवताओं तथा मुनिजनों को चकित करने के लिए प्रसन्न चित्त विश्वकर्मा ने ये सब बनाए थे। अब बताइए,
2: स्वयं विश्वकर्मा ने ये सब बनाया तो क्यों नहीं होगा आश्चर्यचकित। तो आजकल तो देखिए मनुष्य भी जो बना रहे हैं बहुत ही आश्चर्य करने वाली बातें हैं। पूरे आप देखेंगे कि पूरे गांव के गांव बनाए हुए हैं और लगता है कि सच में अभी बोल पड़ेंगी मूर्तियां, हाँ। बोल पड़ेंगी। तो आज भी वो कलाएं हैं जीवित और विश्वकर्मा तो देवताओं के जो है शिल्पी ही हैं, शिल्पकार हैं। कहा जाता है जो देवघर है भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग जहाँ स्थित है बैजनाथ धाम, अच्छा। वहाँ वो जो है भगवान विश्वकर्मा जो है स्वयं बनाए उस चीज को। केवल देवघर ही नहीं बहुत सारे सारे मंदिरों के भी विषय में बताया जाता है कि उन्होंने ही बनाया। तो शिव का ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ नहीं, और केवल शिव ही क्यों, बहुत सारी सारे देवी देवता भी हैं जिनके मंदिर बड़े अद्भुत हैं। अब मीनाक्षी मंदिर को देख लीजिए कितना खूबसूरत है, जो
0: कलाकृति देख
2: कलाकृति है देख, चोल पल्लव आदि राजाओं ने जो बनाया था मंदिर वो सच में देखने लायक है। मैं तो मीनाक्षी मंदिर को देख करके हतप्रभ रह गई, क्या ऐसा भी बनाया जा सकता है,
0: इतनी कला उसमें है, इतना हाँ। बारीकियां
2: और जीवंत लगते हैं क्योंकि मूर्तियां उनमें स्थापित हैं, जीवंत मूर्तियां लगती हैं। अगर उन्हें देखने जाइए तो ऐसा लगेगा कि जीवंत है, अभी बोल पड़ेंगी। ऐसे ही अभी एक महालक्ष्मी मंदिर बनाया गया है, मैं तिरुपति गई थी, तिरुपति के पास
0: ही पहले ही पड़ता है
2: हाँ। तो वहाँ पूरे सोने की का मंदिर है और कमल के आकार में जो है चारों तरफ मैदान है, तो सारे को पार करके आप महालक्ष्मी मंदिर तक जाएंगे और लक्ष्मी मंदिर सच में लगता है कि महालक्ष्मी जो है पूर्ण वैभव और विलास के साथ वहाँ स्थित है। तो ये सब बहुत खूबसूरत लगता है। तो मनुष्य कृत भी बहुत सुंदर है और ईश्वर कृत तो सुंदर होंगे ही। तो अब देखिए यहाँ पर जो विश्वकर्मा की बात बताई गई है, तो विश्वकर्मा के लिए कहा जाता है कि इन्होंने कैसे बनावटी चित्र बनाए कि कहाँ जल है और कहाँ स्थल है इसका भी पता नहीं चल रहा, इसका निर्णय कोई नहीं कर पा रहे थे। और कहते हैं आगे कि सारथियों से चलाए जाते हुए बनावटी रथ आश्चर्य युक्त थे और भी वाहन पैदल सभी बनावटी बनाए गए थे। हे मुनि, देवताओं तथा मुनि जनों को चकित करने के लिए प्रसन्न चित्त विश्वकर्मा ने ये सब बनाए थे। हे मुनि, प्रमुख द्वार पर शुद्ध स्फटिक जैसा बनावटी बनाया हुआ नंदी वास्तविक नंदी जैसा ही लग रहा था। उसके ऊपर अलौकिक रत्न जटित पुष्पक विमान था जो शुभ्र पल्लव तथा चामरों से सुशोभित था। मतलब कि हर चीज इन्होंने जो लिखा है वेदव्यास जी ने, उन्होंने तो अपनी दूरदृष्टि से लिखा है और जो दूरदृष्टि उनकी थी वो कम नहीं थी,
0: कम नहीं थी।
2: जो महाभारत दिखा दिए संजय को, श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं गीता में वो दिखा दिया, तो उनके विषय में क्या
0: अलौकिकता थी, अलौकिकता थी, अलौकिक शक्ति थी
2: जी जी
0: जी। तो लीना जी, बहुत ही सुंदर ये वर्णन चल रहा है शिव पार्वती के विवाह का, लेकिन क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं बचा है तो मैं पुनः आपसे अनुरोध करती हूँ कि चार पंक्तियाँ सुनाएं और हमारे भक्तों को शिव में बनाएं।
2: कहते हैं परम मांगलिक परम कल्याणकारी, परम मांगलिक परम कल्याणकारी, परम योगी परम मनस्वी, परम योगी परम मनस्वी परम यशस्वी, परम शक्तिशाली और कौन है? केवल शिव, केवल शिव।
0: बहुत बहुत ही महिमा युक्त आपने ये शब्द जो है रचे हैं और सुनाए हैं जो हमारे श्रोताओं को, तो आप सब सोचते ही रहेंगे और शिव में ही बने रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद लीना जी।
2: धन्यवाद।
0: तो दोस्तों अब मुझे भी इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में पुनः हम यहीं पर मिलते हैं आपको रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
1: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।

0: गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा है। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
1: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन है और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हरन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। मन शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अजर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं आता। तो इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकती है, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते हैं
0: बिन बुलाए मेहमान
1: जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में, तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं, उसके मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण हैं। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में ले तो कहा जाता है K P square L H B P, अर्थात के फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, पी फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर पी फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, पी फॉर पीस, एल फॉर लव, एच फॉर हैप्पीनेस, बी फॉर ब्लिस और लास्ट पी पावर। तो ये सात

0: गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या? कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना माना वही संपूर्ण ज्ञान है। खुद के बारे में जानना, आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
1: खुद के मन में क्या है
0: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है? शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
1: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, ये होता है
0: जी, बिल्कुल। उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो फिर से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं? क्या वो नेचर वाला, या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
1: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला।
0: तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती है तब भी हम स्टेबल रहे, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है। जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का शांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
1: बिल्कुल, और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इनबिल्ड हमारे लिए
0: जी जी
1: है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
0: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मर करके स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहां मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया
1: जी।
0: कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
1: जी।
0: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग, अध्याय का नाम है, तो यहां पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूं तो भी मैं इनकम्प्लीट हूं। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है, और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है। जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा, तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
1: जी।
0: और जब एंड ऑफ द डे यानी जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा क्योंकि क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वही कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे, अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
1: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
0: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, माना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके, निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ ये है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से, माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहाँ कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं, तो वहाँ ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाए आइस फैक्ट्री, मुख में लगाए शुगर फैक्ट्री, अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री, अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो, और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका, किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति, देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है, तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देखो देख रही है चीजें उसमें आकर्षित है, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए। अगर शायद हम वहां हों, प्रैक्टिकली सोच के देखें, तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे। हम फटाफट किया, अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया, कहाँ खो गया। लेकिन जो

0: सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहाँ पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहाँ पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को, कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं, वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है, जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे, उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी, और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया? तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं, उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है, और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं, उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं। अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
0: जी,
1: आपको बदलना पड़ेगा
0: जी।
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो हैं वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली है, और अध्याय दूसरा है, ज्ञान योग है। इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
0: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम भस्सी माना। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है, अगर बहुत तेज वायु चल रही है तो, इसी प्रकार जब विचारशील मन व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है, वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो वो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है इसमें बहुत अच्छी, एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें, आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना है, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है, और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी, और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए रेडियो मानव वृक्ष 107.8 FM पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में बहुत सारे आध्यात्मिक प्रसंगों और कथाओं को हम आपके लिए लेकर आते हैं और स्टूडियो में होती हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी श्रोताओं, आजकल हम बात कर रहे हैं महाभारत ग्रंथ के अंदर समाहित बहुत सारी कथाओं के बारे में, और शायद इन कथाओं को आपने महाभारत जो सीरियल टीवी पर प्रसारित होता था उसमें देखा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन हम आपको रागलेखा दासी जी से पूरी व्याख्या, पूरी कथा सहित ये बता रहे हैं बहुत सारे प्रसंग। और पिछले एपिसोड में रागलेखा दासी जी हमें उस कथा के बारे में बता रही थी जहाँ पर भीम और हनुमान जी की भेंट हुई थी, और बहुत सुंदर ये वृतांत जो है रागलेखा दासी जी हमें बता रही थी। तो आगे इसमें आज इस कथा को आगे जारी करते हुए आगे की कहानी जानते हैं। जी रागलेखा दासी जी,
1: इस प्रकार जो भीम थे वो आगे बढ़कर कैलाश पर्वत के समीप कुबेर के राजभवन के पास एक सरोवर के निकट पहुँचे। भीमसेन ने वहाँ पहुँचकर उसका निर्मल जल जी भर कर किया। महात्मा कुबेर इस सरोवर में जल क्रीड़ा किया करते थे। उस सरोवर और सुगंधित वन को देखकर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए। महात्मा कुबेर की ओर से हजारों क्रोधवश नाम के राक्षस तरह तरह के शस्त्र पहनावे से सुसज्जित होकर इस स्थान की रक्षा करते थे। उन्होंने महाबाहु भीम के पास आकर उनसे पूछा, कृपया बताइए आप कौन हैं? आपका वेश तो मुनियों का सा है, परंतु आप हथियार भी लिए हुए हैं, कहिए आप किस उद्देश्य से आए हैं? राक्षसों, मेरा नाम भीमसेन है, मैं धर्मयाद युधिष्ठिर का छोटा भाई हूँ और महाराज पांडु का पुत्र हूँ। राक्षसों ने कहा, ये यक्षराज कुबेर का प्रिय क्रीड़ा स्थान है, यहाँ मरणाधर्म मनुष्य विहार नहीं कर सकता। आप महाराज की आज्ञा ले लीजिए, फिर जल भी पी सकेंगे और कमल भी ले जा सकेंगे, क्योंकि द्रौपदी के कहने पर भीमसेन यहाँ पे सुगंधित कमल लेने आए थे। द्रौपदी जी ने कहा कि मैं कमल महाराज युधिष्ठिर को भेंट करना चाहती हूँ और मैं इसको काम्य वन ले जाऊंगी। तो उसी को ढूंढते ढूंढते भीम यहाँ पर आए और यक्षों से उनका सामना हुआ, कुबेर के जो अनुचर थे।
0: जी जी,
1: और नहीं तो आप कमलों के तरफ झांक भी नहीं सकते। भीमसेन बोले, राक्षसों, राजा लोग मांगा नहीं करते, यही सनातन धर्म है। ऐसा कहकर भीमसेन उन राक्षसों की उपेक्षा कर स्नान करने के लिए उस सरोवर में उतर पड़े। जब वे राक्षसों ने उन्हें रोका, वे एक साथ ही शस्त्र उठाकर उन पर टूट पड़े। भीमसेन ने भी अपनी यमदंड के समान सुवर्ण मंडिता भारी गदा को उठाकर ठहरो ठहरो ऐसे चिल्लाते हुए उन पर आक्रमण किया। इससे राक्षसों का रोष भी बढ़ गया और वे चारों ओर से घेर कर उन पर तोमर कटी आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। उनके शस्त्रों के खंड खंड करके सरोवर के पास ही सैकड़ों वीरों को बिछा दिया भीम ने। उन्होंने यक्षराज कुबेर के पास जाकर बहुत डरते डरते युद्ध में भीमसेन के बल और पराक्रम का वर्णन किया। राक्षसों की बात सुनकर कुबेर बड़े हंसे और बोले, मुझे इन सब बातों का पता है, द्रौपदी के लिए भीमसेन को जितने कमल चाहिए उतने ले जाएं। राक्षसों का क्रोध ठंडा पड़ गया और वे भीमसेन के पास आए। पत्रिका आश्रम में भीमसेन के युद्ध की सूचना देने वाला बड़ा वेगवान तीखा और धूल बरसाने वाला वायु चलने लगा। अनेकों भयंकर उत्पात होने लगे। ऐसी विचित्र स्थिति देख के धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, पांचाली भीम कहाँ है? मालूम होता है वह कहीं कुछ भयंकर कर्म करना चाहता है अथवा कुछ भी कर बैठा है, क्योंकि अकस्मात होने वाले उत्पात किसी महान युद्ध की सूचना दे रहे हैं। युधिष्ठिर ने नकुल सहदेव से कहा कि जिस ओर भीम गया है उसी ओर हम सबको शीघ्र ही शीघ्र चलना चाहिए। राक्षस लोग तो ब्राह्मणों को ले चले और घटोत्कच तुम द्रौपदी को ले चलो। उन्होंने शीघ्र ही जाकर एक सुंदर वन में कमल की सुवासे से अत्यंत मनोहर सरोवर को देखा। उसी के तीर पर परम तेजस्वी भीमसेन दिखाई दिए, जिनके पास अनेकों मरे हुए यक्ष भी देखे। इस प्रकार भीमसेन को समझाकर उन्होंने सौगंधित कमल ले लिए और देवताओं के समान उस सरोवर में क्रीड़ा करने लगे। अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने कुछ समय वहाँ पर गंध मादन के शिखर पर ही निवास किया। फिर उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी, अब तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, ये मार्ग बहुत दुर्गम है, इसलिए कुबेर के आश्रम से आगे ना बढ़कर तुम जिस मार्ग से आए हो उसी से नर नारायण के स्थान बद्री का आश्रम को लौट जाए, क्योंकि ये सब देवताओं के स्थान है तो इसके आगे जाना उनके अनुमति नहीं थी।
0: जी जी।
1: अब हम जटासुर के वध की बात करते हैं। एक समय धर्मराज के पास एक राक्षस आया। वो बोला, मैं समस्त शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ और मंत्र विद्या में कुशल ब्राह्मण हूँ। ऐसा कहकर वे सर्वदा पांडवों के धनुष और तरकश और द्रौपदी को उड़ा ले जाने की ताक में उन्हीं के पास रहने लगा। उस दुष्ट का नाम जटासुर था। एक समय भीमसेन वन में गए हुए थे। वो मशादी महर्षि गण

0: स्नान करने चले गए। उसी समय जटासुर धारक रूप धारण करके तीनों पांडव द्रौपदी और सारे शस्त्रों को उठाकर ले चला। उनमें से सहदेव किसी प्रकार पराक्रम करके छूट गए और उस राक्षस ने अपनी की कौशिकी नामक तलवार छीन कर जिस पर भीमसेन गए थे उस पर आवाज लगाने लगे। युधिष्ठिर उसके लिए भारी हो गए और उनके भार से दबकर उसकी गति उतनी तेज नहीं रही। तब धर्मराज ने नकुल और द्रौपदी से कहा, तुम उस मूल राक्षस से डरो मत, मैंने उसकी गति को कुटिल कर दिया है। अकस्मात इंद्र के समान गदाधारी भीमसेन दिखाई दिए। उन्होंने कहा, राक्षस उनके भाइयों और द्रौपदी को लिए जाता है। भीमसेन ने ललकारा, हे रे पापी, मैंने तो तुझे पहले ही शस्त्रों की परीक्षा करते समय पहचान लिया था, किंतु तू हमारे यहाँ ब्राह्मण वेश में रहता था, इसीलिए मैं तुझे कैसे मारता। ये राक्षस ऐसा जान लिया जाए तो भी बिना अपराध के मारना उचित नहीं है, और जो बिना अपराध के मारता है नरक में जाता है। तू जहाँ जाना चाहता है वहाँ नहीं जा सकता, बट तुझे बक और हिडिन के रास्ते में जाना होगा। भीमसेन के ऐसा कहने पर काल की प्रेरणा से राक्षस डर गया और उन सबको छोड़कर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। फिर इन दोनों में बड़ा भयंकर बाहु युद्ध होने लगा। भीमसेन और जटासुर भी एक दूसरे को चोटें करने लगे। उन्होंने वज्र के समान वेग वाली शिलाओं से लड़ना आरंभ किया। अंत में वे आपस में एक दूसरे को घूसों की वर्षा करने लगे। जिस समय भीमसेन ने जटासुर की गर्दन पर बड़े वेग से मुक्का मारा, उससे वह राक्षस बहुत ढीला पड़ गया। उसे थका हुआ देखकर भीमसेन ने उसे पृथ्वी पर दे मारा और उसके सारे अंग चूर चूर कर दिए। कोहनी की चोट से उसका सिर धड़ अलग कर दिया।
1: जी श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग हम जान रहे हैं लागलिका दासी जी से। अभी किस तरह से जो भीमसेन हैं वो पहुंचे थे कमल पुष्प लाने के लिए, और अब हमने जटासुर के वध की भी कथा लागलिका दासी जी से जान ली है। अभी हमने जटासुर के वध की कथा को जाना और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लागलिका दासी जी से अगली कौन सी कथा वो सुनाने वाली है। जी
0: जी, जटासुर के वध के बाद महाराज युधिष्ठिर फिर नारायण के आश्रम में जाकर रहने लगे। इस समय उन्हें अपने भाई अर्जुन का स्मरण हो रहा है, क्योंकि अर्जुन तो 12 वर्ष के उसमें अज्ञातवास में गए थे, तो वो अभी अर्जुन को स्मरण कर रहे हैं। अर्जुन ने मुझसे कहा था कि मैं 5 वर्ष का स्वर्ग में अस्त्र विद्या सीखने के बाद यहाँ मृत्यु लोक में लौट आऊंगा। वे कहीं तो पैदल चलते थे और कहीं वो राक्षस लोग उन्हें कंधे पर बैठा कर ले जाते पांडवों को। 7वें दिन हिमालय की पवित्र पृष्ठ पर पहुंचे। वहां उन्हें राजऋषि विश्वकर्मा का पवित्र आश्रम देखा। पांडवों ने आश्रम में पहुंचकर परम धार्मिक राजऋषि विश्वकर्मा को प्रणाम किया। राजऋषि ने पुत्रों के समान उनका अभिनंदन किया। उनसे सत्कृत हो पांडवों ने वहाँ 7 दिन रात निवास किया। क्रमशः उन वीरों ने परम पवित्र गंधमादन के वन में प्रवेश किया। फिर उन्होंने फल फूल वाले वृक्ष से सुशोभित राजऋषि अरिष्टसेन का आश्रम देखा। राजऋषि यही तपस्वी थे। उनका शरीर अत्यंत हृष्ट था, शरीर की नसें दिखाई देने लगी थी। अरिष्टसेन ने कहा, पूर्णिमा और प्रतिपदा की संधि में इस पर्वत पर केवल जल या पवन का ही सेवन करने वाले मुनिगण आकाश मार्ग से आते हैं। उस समय यहाँ भेरी, पनव, शंख और मृदंगों का शब्द भी सुनाई देता है। आप लोगों को यहीं बैठ बैठ कर उसे सुनना चाहिए। यहाँ से आगे तुम्हारे लिए जाना संभव ही नहीं है, क्योंकि अब आगे देवताओं की विहार भूमि है और उसमें मनुष्यों की गति नहीं हो सकती। इस कैलाश के शिखर को लांग कर केवल परम सिद्ध देवऋषि ही जा सकते हैं। यदि कोई मनुष्य चपलतावश जाने का प्रयत्न करता है तो उससे समस्त पर्वतीय जीव द्वेष करने लगते हैं और राक्षस लोग उसे लोहे की पर्चियों से मारते हैं। अतः जब तक अर्जुन आए तब तक आप यही निवास कीजिए। इस प्रकार वहाँ रहते हुए उनके वनवास का 5वां वर्ष भी बीत गया। अब हम एक प्रसंग लेते हैं, भीम का सर्प के चंगुल में फंसना और युधिष्ठिर के द्वारा सर्प के प्रश्न का उत्तर। एक समय भीमसेन स्वेच्छा अनुसार वन की शोभा देखने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय उनकी कमर पर तलवार बंधी थी और हाथ में धनुष था। भीमसेन धीरे धीरे चले जा रहे थे, इतने में उनकी दृष्टि एक विशालकाय अजगर पर पड़ी जो एक पर्वत की कंदरा में पड़ा हुआ था। वह अजगर काल के समान विकराल और समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। भीमसेन को सहसा अपने निकट पास पर गए, वहां सर्प अत्यंत क्रोध में भर गया। और उसने बलपूर्वक दोनों भुजाओं के सहित उनके शरीर को लपेट लिया। अजगर को मिले हुए वर के प्रभाव से उसका स्पर्श होते ही भीमसेन की चेतना लुप्त हो गई। यद्यपि उनकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था, तो भी सर्प के चंगुल में फंस कर वे बेकाबू हो गए। इधर राजा युधिष्ठिर बड़े भयंकर अनिष्टकारी उत्पात देखकर घबरा उठे। उन्होंने द्रौपदी से पूछा, भीमसेन कहाँ है? द्रौपदी बोली, उन्हें तो वन में गए बहुत देर हो गई। भीमसेन के पैरों का चिन्ह देखते हुए वे उस वन में उनकी खोज करने लगे। ढूंढते ढूंढते पर्वत के दुर्गम प्रदेश में जाकर उन्होंने देखा कि एक महान अजगर ने उन्हें जकड़ लिया है और वे निश्चेष्ट हो गए हैं। युधिष्ठिर ने सर्प से कहा, आयुष्मान, तुम मेरे इस अनंत पराक्रमी भाई को छोड़ दो, तुम्हारी भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हें दूसरा आहार दूंगा। सर बोला, ये राजकुमार मेरे मुख में स्वयं आकर मुझे आहार रूप में प्राप्त हुआ है, तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ रुकने में कल्याण नहीं है, अगर रहोगे तो कल तुम भी मेरे आहार बन जाओगे। युधिष्ठिर ने कहा, सर तुम कोई देवता हो या दैत्य हो या वास्तव में सर्प ही हो, सच बताओ, तुमसे युधिष्ठिर प्रश्न कर रहा है। जंगम बोलो तो सही, कोई ऐसी वस्तु जिसे पाकर अथवा जानकर तुम्हें प्रसन्नता हो, तब भीमसेन को कैसे छोड़ सकते हो? सर बोला, राजन, मैं पहले जन्म में तुम्हारा पूर्वज नहुष नाम का राजा था। मैंने अनेकों यज्ञ की, तपस्या की, स्वाध्याय किया और अपने मन और इंद्रियों को विजय प्राप्त करी
1: जी।
0: उस समय सत्कर्मों से और अपने पराक्रम से मुझे तीनों लोगों का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था। उसी ऐश्वर्य को प्राप्त कर मेरा अहंकार बढ़ गया। मैंने मदोन्मत होकर ब्राह्मणों का अपमान किया। इससे कुपित होकर महर्षि अगस्त ने मुझे उस अवस्था में पहुंचा दिया। महाराज अगस्त की ही कृपा से आज तक मेरे पूरी जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। उसी के शाप के अनुसार दिन के छठे माह भाग में ये तुम्हारा भाई मुझे भोजन के रूप में प्राप्त हुआ, अतः मैं ना तो इसे छोड़ूंगा और ना ही उसके बदले दूसरा आहार लूंगा। किंतु एक बात है, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का उत्तर अभी दे दोगे तो इसके बाद तुम्हारे भाई भीमसेन को मैं अवश्य छोड़ दूंगा। सर्प ने पूछा, राजा युधिष्ठिर बताओ, ब्राह्मण कौन है और जानने योग्य तत्व क्या है? युधिष्ठिर बोले, नागराज, सुनो, इसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या, दया, ये सद्गुण दिखाई देते हैं, वही ब्राह्मण है। जानने योग्य तत्व हो तो पर भ्रमी है और सुख दुख से परे है, यहाँ पहुँच कर भी उसे जाना मनुष्य के शोक से पार हो जाता है। अहिंसा, दया आदि सद्गुण तो शूद्रों में भी पाए जाते हैं, किंतु अतः तुम्हारी मान्यता के अनुसार तो वे भी ब्राह्मण कहे जा सकते हैं। तुमने सुख दुख से रहित पद बतलाया है, इसमें भी मुझे आपत्ति है। मेरे विचार से तो सुख दुख दोनों से रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, यदि शूद्रों में सत्य उपयुक्त लक्षण है और ब्राह्मणों में नहीं है, तो वे शूद्र शूद्र नहीं है और ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। जिसमें ये सत्य आदि लक्षण हो उसे ब्राह्मण समझना चाहिए और जिसमें इसका अभाव हो उसे शूद्र कहना चाहिए। किंतु जिस प्रकार शीतल जल में उष्णता नहीं रहती और उष्ण स्वभाव वाले अग्नि में जल की शीतलता नहीं होती क्योंकि उसमें परस्पर विरोध है, इसी प्रकार जो वेद पद है उसे केवल अज्ञान का आवरण दूर करने के लिए अपने से अभिन्न समझना है, उसका कभी और कहीं भी वास्तविक सुख और दुख से संपर्क नहीं होता। सर बोला, राजन, यदि तुम आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा करते हो तब तो जब तक उसके अनुसार कर्म न हो जाति व्यर्थ ही है। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे विचार से तो मनुष्यों में जाति की परीक्षा करना बहुत कठिन है क्योंकि इस समय सभी वर्णों में सम्मिश्रण हो रहा है, सभी मनुष्य सभी जाति के स्नेह से संतान उत्पन्न कर रहे हैं, बोलचाल, मैथुन्य प्रवृत्ति, जन्म मरण ये सब मनुष्यों को एक से देखे जाते हैं। इसलिए जो तत्वदर्शी विद्वान है वे शील सदाचार को ही प्रधानता देते हैं। जब बालक जन्म लेता है तो नाल फेदन के पहले उसका जातकर्म संस्कार किया जाता है, उसमें माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य। जो तत्वदर्शी विद्वान है वे शील को ही प्रधानता देते हैं। जब बालक जन्म लेता है तो नाल छेदन के पहले उसका जातकर्म संस्कार किया जाता है, उसमें माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य। जब तक बालक का संस्कार करके उसके वेद का स्वाध्याय नहीं कराया जाता तब तक वे शूद्र के समान है। यदि वैदिक संस्कार करके वेद अध्ययन करने पर भी शील और सदाचार नहीं आया तो उसमें प्रबल वर्ण संकरता है, ऐसा विचार पूर्वक निश्चय किया गया है। जिसमें संस्कार के साथ शील और सदाचार का विकास हो उसे ही मैंने पहले ही ब्राह्मण बता दिया। सर बोला, युधिष्ठिर तुम जानने योग्य सभी कुछ जानते हो, तुमने जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया उसे मैंने भली भांति सुन लिया। अब तुम मैं तुम्हारे भाई भीमसेन को कैसे खा सकता हूँ? युधिष्ठिर ने कहा, सर्वराज तुम संपूर्ण वेद वेदांगों के ज्ञाता हो, बताओ किन कर्मों के आचरण से सर्वोत्तम गति प्राप्त होती है? अब युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं और सर्व उत्तर दे रहे हैं। युधिष्ठिर बोले, दान और सत्य में कौन बड़ा है? अहिंसा और प्रिय भाषण, इसमें किसका महत्व अधिक है किसका कम? सर बोला, प्रिय भाषण इनका गौरव लाघव कार्य की महत्ता के अनुसार देखा जाता है। किसी दान से तो सत्य का महत्व बढ़ जाता है और किसी सत्य भाषण से दाम बड़ा होता है। इस प्रकार कहीं तो प्रिय बोलने की अपेक्षा अहिंसा का अधिक गौरव है और कहीं अहिंसा से बढ़कर प्रिय भाषण का महत्व है। इस प्रकार इनके गौरव और लाघव का विचार कार्य की अपेक्षा से ही है। युधिष्ठिर ने कहा, मृत्यु काल में मनुष्य अपना शरीर तो यही त्याग देता है, बिना देह के वे स्वर्ग में कैसे जा सकता है और कर्मों के अवश्यम्भावी फल को कैसे भोगता है? सर्प ने कहा, राजन अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव की तीन प्रकार की गति देखी जाती है। स्वर्गलोक की प्राप्ति, मनुष्य योनि में जन्म और पशु पक्षी आदि योनियों में उत्पन्न होना। यदि आलस्य और प्रमाद को त्याग कर वह अहिंसा का पालन करते हुए दान आदि शुभ कर्म करता है तो उसे पुण्य की अधिकता के कारण स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और इसके विपरीत कारण उपस्थित होने पर मनुष्य योनि में और पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, हिंसा में तत्पर होकर जीव मानवता से भ्रष्ट हो जाता है और अपनी मनुष्य होने की योग्यता को भी खो बैठता है। वही फिर यह योनि में जन्म लेता है। फिर सत्कर्म का आचरण करने के निमित्त मनुष्य योनि में ही जन्म लेकर उसकी तिरियक योनि से उद्धार होता है। युधिष्ठिर बोले, सत शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इसका आधार क्या है? इसका यथार्थ रीति से वर्णन करो। तुम सब विषयों को एक साथ ग्रहण क्यों नहीं करते? विषयों के उपभोग के समय बुद्धि के द्वारा ये मन किसी एक ही विषय में लगाया जाता है, इसलिए एक साथ इसके द्वारा अनेकों विषयों का ग्रहण करना संभव नहीं है। जिसे हम बुद्धि, इंद्रिय और मन से युक्त होने को भोक्ता बताया है, वही माया अनात्मा के चिंतन में लगी हुई उत्तम अदम बुद्धि को रूप आदि विषयों या प्रेरित करता है। ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है और वही सबका आधार है। युधिष्ठिर ने कहा, हे सर, मुझे मन और बुद्धि का ठीक ठीक लक्षण बताओ। सर बोला, बुद्धि को आत्मा के आश्रित समझना चाहिए, इसलिए वे अपने अधिष्ठान भूत आत्मा की इच्छा करती है। बुद्धि को आत्मा के आश्रित समझना चाहिए, इसलिए वे अपने अधिष्ठान भूत आत्मा की इच्छा करती रहती है, अन्यथा वह आधार के बिना टिक नहीं सकती। विषय और इंद्रियों के संयोग से बुद्धि उत्पन्न होती है और मन तो पहले ही उत्पन्न है। बुद्धि स्वयं वासना वाली नहीं है, वासना वाला तो मन ही है। युधिष्ठिर बोले, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है, तुम तो जो कुछ जानना है जान चुके हो। तुम्हारी दुर्गति के विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। सर ने कहा, यह धन और संपत्ति बड़े बड़े बुद्धिमान और शूरवीर मनुष्यों को भी मोह में डाल देते हैं। मेरा तो ये अनुभव है कि सुख और विलास का जीवन व्यतीत करने वाले सभी मनुष्य मोहित हो जाते हैं। यही कारण है मैं भी ऐश्वर्य के मोह से मंदोन्मत्त हो गया था और मोह के कारण जब मेरा अधपतन हो गया तब श्वेत हुआ। अब तुम्हें सचेत कर रहा हूँ महाराज, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य किया। इस समय तुमसे वार्तालाप करने से मेरा वह कष्टदायक शाप निवृत्त हो गया। पूर्व काल में मैं जब स्वर्ग का राजा था, दिव्य विमान पर चढ़कर आकाश में विचरता रहता था। इसमें अहंकार के कारण मैं किसी को कुछ नहीं समझता था। जो भी इस त्रिलोकी में निवास करते थे सभी मुझे कर दिया करते थे। उस समय मेरी दृष्टि इतनी शक्ति थी कि जिसकी ओर आंख उठाकर देखता उसका तेज छीन देता था। मेरा अन्याय यहाँ तक बढ़ गया था कि 1000 महर्षियों ब्रह्म ऋषियों ने मेरी पालकी धोई। इस अत्याचार ने मुझे राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट कर दिया। मुनिवर अगस्त जब पालकी धो रहे थे मैंने उन्हें लात मारी और तब एक क्रोध में भर कर उन्होंने कहा, अरे ओ सर तू नीचे गिर। तब मेरे राज्य सिंह लुप्त हो गए और मैं उत्तम विमान से गिर पड़ा। मुझे मालूम हुआ मैं सर्प होकर नीचे मुख किए गिर रहा हूँ। अगर सुनने की से याचना की, भगवान मैं प्रमाद व शिवेक शून्य हो गया था, इससे आप

और बहुत ही खूबसूरत प्रसंग जाना कि किस तरह से युधिष्ठिर जी ने जो है एक अजगर को उनके श्राप से मुक्ति दिलाई। राजा नहुष थे, वो स्वर्ग में विचरण करते थे, लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण उनको ये योनि मिली और किस तरह से युधिष्ठिर ने उनको उनके श्राप से मुक्त किया, ये कथा हमने जानी आज रागलेखा दासी जी से। तो श्रोताओं, आगे और भी कथाएं हैं, प्रसंग हैं, जो हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप तक पहुँचाते रहेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए जी। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।

मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन, और होती हैं बहुत सारी बातें। जी हाँ, आज क्या कुछ खास लेकर के आई हूँ, क्योंकि सेगमेंट लेकर के आ जाती हूँ। और सेगमेंट जो है हमारा पहला, वो है दिल धड़कने दो, जिसपे हेल्थ और फिटनेस की करती हूँ ढेर सारी बातें। और इसके बाद लेकर के आती हूँ सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज, जिसमें बातें होती हैं योग से जुड़ी हुई। और उसके बाद आ जाता है हमारा अगला सेगमेंट, सेगमेंट का नाम है बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि ये है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसपे स्पोर्ट्स की बात होती है। जिसके बाद आ जाता है आपका फेवरेट फेवरेट फेवरेट सेगमेंट, जिसका नाम है कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें आपसे पहेलियां पूछती हूँ और जिसका जल्दी से झटपट से आपको जवाब देना होता है। तो चलिए, इस बार भी हम जुड़ जाते हैं और बहुत सारी करते हैं बातें। अगर आप कुछ खास कहना चाहते हैं, कोई दिल की बात मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं, या फिर हमारे थ्रू किसी से कुछ कहना चाहते हैं, कोई गाना सुनना चाहते हैं, कोई फरमाइश है, तो जल्दी से सुन सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। चलिए इसी के साथ लेती हूँ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के मैं आ जाती हूँ। सेगमेंट दिल धड़कने दो में एक बहुत ही खास टॉपिक के साथ आई हूँ। अच्छा, क्या आपके घर में भी जो है वो अगर कभी दूध फट जाता है तो आप देखते ही होंगे ना कि जब दूध फट जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं ना, उसका जो पानी होता है हम निकाल के फेंक देते हैं और उसके बाद पनीर जो है हम उससे बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। अब लेकिन ये जो पनीर है खाने में तो स्वादिष्ट होता है, इससे अलग अलग चीज़ें भी आप ज़रूर बना सकते हैं। कभी हम पनीर भुर्जी बना लेते हैं तो कभी हम कुछ सेट करके उसको कोई सब्जी पनीर की बना लेते हैं। लेकिन पानी का क्या? अब पानी जो उसका है, अब उसको तो हम ये सोच के फेंक देते हैं कि इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है, ये तो ख़राब है। अब अगर आप भी फेंक देते हैं ना तो आज से रुक जाइए। कभी भी अगर दूध फट जाए या फिर ना भी फटे तो जानबूझ के आप जो दूध है इसको आप फाड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको मिल जाएंगे इसके कई सारे गुण, क्योंकि अब भी आपको इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो है फ़ायदे बहुत सारे हैं। इस पानी के जो हम यूं ही फेंक देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और क्यों है ये बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, feel live।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। हफ्ते के सातों दिन 2 घंटे का हमारा सफ़र जो है ये रहता है और बहुत सारी होती हैं बातें। फिलहाल आपको बता दूं मैं कि बात अब मैं कर रही हूँ बहुत ही एक खास टॉपिक की। बात हम कर रहे हैं ये जो जब दूध जो है वो फट जाता है, चाहे गलती से या चाहे आपने पनीर बनाने के लिए उसे फाड़ा हो या कुछ भी आप बना रहे हैं, कोई रसमलाई बना रहे हैं, रसगुल्ले बना रहे हैं, होता है ना पनीर के लिए हम उसके जो छेने के लिए हम फाड़ते हैं दूध को, तभी छेना बनता है, तो हम क्या करते हैं जो पानी होता है उसे हम फेंक देते हैं। अब मैं आपको बता दूं कभी भी आपके साथ ऐसा होता है कि गलती से फट जाता है या फिर आपने कोई चीज़ बनाने के लिए यानी कि पनीर या छेना बनाने के लिए अगर आप उसको फाड़ा है आपने दूध को, तो अब पानी फेंकने की उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो पानी है ये प्रोटीन का पावर हाउस कहलाता है। जी हाँ, जब दूध फटता है तो आप उसे पनीर बनाते हैं, तो बचा हुआ पानी वो वे प्रोटीन से भरपूर होता है। वे प्रोटीन मांसपेशियों की ग्रोथ, मरम्मत और साथ ही रिकवरी के लिए बेहतरीन माना जाता है। और ये चाहे एथलीट्स हों या जिम जाने वाले जो भी लोग हों, उनके लिए तो वरदान से बिल्कुल भी कम नहीं है। आपने सुना होगा वे प्रोटीन जो है ये

लेते भी हैं, जो जिम जाते हैं वो प्रोटीन लेते हैं, जिसका नाम वे प्रोटीन जो है वो कहा जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, वो एकदम बहुत ही प्योर प्रोटीन जो है वो होता है। इसमें ये होता है कि देखिए, जैसे ये जो पानी है, ये यानी कि जो दूध फट के जो पानी निकलता है, इसके बाद इसको क्या किया जाता है, अच्छे से बहुत ज़्यादा इसको अच्छे से जो है प्रोसेस किया जाता है, इसको अच्छे से जो है पकाया जाता है, इसके बाद बिल्कुल सुखा दिया जाता है, इसका पाउडर बना दिया जाता है। तो बस वही पाउडर जो है, वही वे प्रोटीन जो है उसे खाया जाता है, इनटेक किया जाता है। तो ये चाहे जिम जा रहे हैं एथलीट्स हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल है, वरदान से कम नहीं है। इसका सेवन करने से अपनी डेली प्रोटीन की ज़रूरत को आप पूरा कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप प्रोटीन के अच्छे सोर्स ढूंढ रहे हैं, तो अब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है वे प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। जो फटा हुआ दूध होता है, उसका जो पानी होता है जिसे हम फेंक देते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है प्रोटीन का। चलिए इसी के साथ अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि आपके लिए लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन, और बहुत सारी होती हैं बातें. फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं और आपको अभी बता रही हूँ मैं बहुत ही खास एक वे प्रोटीन के बारे में, जो कि आपको मिलता है नेचुरली. जो दूध जब फटता है ना, तो उसका पानी जो निकलता है उसको हम यूं ही फेंक देते हैं, जिसका कोई यूज़ नहीं होता, वही है पावर हाउस प्रोटीन का. जी हाँ, फटे दूध में, पानी में जो है, इसका जो पानी होता है इसमें लैक्टिक एसिड और कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो पाचन में काफ़ी मदद करते हैं, और ये पेट को हल्का रखने में और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं को से राहत दिलाने में काफ़ी मदद करता है. इसमें मौजूद जो है प्रोबायोटिक्स, यानी कि हल्की कम मात्रा में जो है वो होती है आपके आंतों में, ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है. स्वास्थ्य आपका बनाए रखने में काफ़ी अच्छी है, आपकी गट हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका भी ये निभा सकता है अगर आप इसका सेवन करते हैं तो. डाइजेशन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इनफैक्ट हड्डियों को भी ये मजबूती देता है. कैल्शियम और फोस्फोरस जैसे मिनरल्स हड्डियों और ओरल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं. फटे दूध के पानी में अगर आप खनिजों की अच्छी मात्रा जो है ये पाई जाती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में काफ़ी काम करती है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों के जोखिम को भी कम करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है. गर्मियों में या किसी भी समय जब आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा डाइजेशन की ज़रूरत होती है या फिर हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, तो पानी एक शानदार ऑप्शन हो सकता है ये जो है. और ये जो है भाई, मैं आपको बता दूँ, इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे पोटेशियम हमारी बॉडी में तरल पदार्थों को संतुलित बनाए रखने में काफ़ी मदद करते हैं, जिससे आपकी हाइड्रेशन से भी आप जो है डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं, हाइड्रेटेड रहेंगे. और ये जो सादे पानी से भी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ पानी ही नहीं है बल्कि ये कुछ पोषक तत्वों का भी जो है वो भी प्रदान करता है. कुछ ऐसे पोषक तत्व इसमें मिलते हैं जो कि आपकी बॉडी को ज़रूरत है और काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

0: वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ. 2 घंटे का हमारा सफर है जिसमें होती हैं बहुत सारी बातें. फिलहाल हमारे सेगमेंट दिल रखने दो, मैं आपसे बातें मैं कर रही हूँ और बातें जो है वो हमारी चल रही हैं. ये जो दूध होता है जब फट जाता है तो पानी, इसका आप क्या करते हैं, फेंक देते हैं. लेकिन अब इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है. साथ ही साथ ये आपको जो है डाइजेशन के लिए आपके बहुत अच्छा है. साथ ही आपको डिहाइड्रेशन से भी ये पानी बचा सकता है. हड्डियों को मजबूती जरूर देगा. साथ ही त्वचा और बालों के लिए भी वरदान है. इसमें मौजूद पोषक तत्व जो है ये विशेषकर क्योंकि प्रोटीन है और साथ ही विटामिंस है तो आपकी त्वचा और बालों के लिए, उसकी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा एक बेहतरीन ऑप्शन है. तो आप प्रोटीन कोलेजन प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. त्वचा को जवां और चमकदार दिखाए रखने में भी काफ़ी काम करता है. जबकि विटामिन और मिनरल्स जो है बालों को मजबूती और हेल्दी रखने में मददगार हैं, जो कि आपको इसी में मिल जाएगा. कुछ लोग सीधे या त्वचा पे या बालों पर भी इसे लगाना ठीक समझते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं. तो आप इसको क्या कर सकते हैं, किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो पानी है या तो आप इसे सीधे पी सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है. अपने दाल सूप या ग्रेवी में भी इस पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. आटा गूंदने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं. और इसमें रोटियां जो है वो मुलायम और पौष्टिक बनेगी. अगर आप सोच रहे हैं कि रोटी अच्छी नहीं बनेगी, रोटी काफ़ी टेस्टी बनेगी और काफ़ी अच्छी बनेगी. इसी के साथ स्मूदी या शेक में मिला सकते हैं आप. सब्जियों को उबाल के उसके उसमें भी आप डाल सकते हैं. तो ये कई तरीकों से आप इसका जो है सेवन कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों के साथ इसका सेवन कर सकते हैं. तो ये आपको जो है प्रॉब्लम नहीं बल्कि आपकी गट हेल्थ को सुधार लेकर के आएगा. तो चलिए इसी के साथ यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मैन रेस्ट 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.
1: ज्वाला समुंदर की लहरों को देखो,

0: बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
1: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
0: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
1: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
0: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
1: तो फिर एक वादा करो,
0: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
1: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
0: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। जी हाँ, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना, मंडे टू फ्राइडे, और साथ ही सैटरडे संडे भी आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन अब आपके साथ रहती हूँ। और बहुत सारी होती हैं बातें। आपको बता दूँ मैं कि अभी फिलहाल एक बहुत ही खास बारे में बात मैं कर रही हूँ, और बात मैं कर रही हूँ मेंटल हेल्थ और योग की। जी हाँ, क्योंकि हमारा सेगमेंट जो है ये शुरू हो गया। सेगमेंट का नाम है स्ट्रेच प्लीज। और देखिए, स्ट्रेच प्लीज में हम बात करते हैं योग की, मेडिटेशन की। अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, अच्छा, अगर आपको जीवन जीना है, आपको लाइफस्टाइल अपनी बेहतर बनानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दें। अब मेंटल हेल्थ में सुधार लाने के लिए या शांति मन में रखने के लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ाना मैं कुछ 15 से 20 मिनट योग ज़रूर करें। अपने बॉडी के साथ साथ अपने माइंड को भी आप रिलैक्स और रिचार्ज कर सकते हैं, और वो कैसे, वो होता है योग से। जी हाँ, क्योंकि योगा जो है इससे ही होगा, यही हम सुनते हैं, यही कहते हैं। और आज कुछ ऐसी बातें लेकर के आई हूँ जो कि आपके मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड है, यानी कि कुछ ऐसे योगा आसन की बात करेंगे जो कि आपके मेंटल हेल्थ में सुधार लेकर के आती है और आपको जो है स्वस्थ रखती है मेंटल तौर पर भी। अब ये बातें क्या है बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, रोजाना मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ। हफ्तों के 7 दिन मैं आपके साथ रहती हूँ, बहुत सारी होती हैं बातें। फिलहाल आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे 5 योगा आसन जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को मजबूती देते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आता है भुजंगासन। जी हाँ, भुजंगासन बॉडी को कई तरीकों से फायदे पहुंचाता है और साथ ही ये जो आसन है ये पेट की चर्बी को कम करने से लेकर कमर दर्द और यहाँ तक कि मानसिक शांति दिलाने में भी ये आसन काफी कारगर है। भुजंग आसन करने से योगा आपको जो है, अगर आप ये भुजंग आसन करते हैं तो इससे आपको बेली फैट तो आपको घटता है, हटता है, साथ ही जो है आपके पेट में जो भी जो जमा फैट होता है ये तो हटेगा, साथ ही मेंटली भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। और भुजंगासन ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है और ये जो है ना सिर्फ आपकी गट हेल्थ, आपकी कमर दर्द, आपके जो है मेंटल पीस, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो ज़रूरी है कि आप कुछ आसनों पर ध्यान दें, अपनी बॉडी पर ध्यान दें, जिससे आपको ढेर सारे फायदे मिले। इसी के साथ साथ एक और आसन है जो कि बहुत ज़्यादा काम का है, वो है सेतु बंधना आसन। अब ये जो आसन है ये भी काफ़ी ज़्यादा कारगर है। ब्रिज पोज यानी कि सेतु बंधना आसन, इस आसन के अभ्यास से ही जो है, अगर आप इसका अभ्यास सिर्फ कि बॉडी और दिमाग को चुस्त दुरुस्त कर देता है, अगर आप आसन करते हैं सुबह थोड़ी देर, अगर आप ये आसन करते हैं तो इससे आपके पूरे दिन जो है आपकी जो रिचार्ज है आप हो जाएंगे, आपके पूरे दिन जो एनर्जी है वो बनी रहेगी। सेतु बंधना आसन जब आप करेंगे तो इससे फायदे तो आपको मिलेंगे ही साथ ही, और इसे आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको क्या करना है, आपको योगा मैट लेना है, पीठ के बल आपको लेट जाना है सबसे पहले, इसके बाद आपको पैरों को घुटनों से आपको जो है आपको मोड़ना है, और उसके बाद दोनों पैरों पर आपको वजन डालते हुए हिप्स को ऊपर की ओर उठाना है। हाँ, तो आप हाथ चाहे तो आप पैर से या पीछे से आप पैरों को पकड़ सकते हैं, और या फिर आप उंगली को आपस में फंसा सकते हैं, ये डिपेंड करता है। अब इस स्थिति में रहते हुए आपको 15 से 20 सेकंड तक आपको ये होल्ड करके रखनी है और सांस आपको लेते और छोड़ते रहने हैं। बस इसके बाद ये जो आसन हो जाएगा इसको कुछ देर आपको करना है और उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा तरोताज़ा महसूस होगा। तो चलिए, ये तो आसन है काफ़ी ज़्यादा आसान और आपको ये करना है आसन रोज़ सुबह जल्दी जल्दी से सुबह उठ के आसन आपको करना है। और अपने सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज में और भी होंगी बहुत सारी बातें, तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज में बातें मैं कर रही हूँ कुछ ऐसे आसनों के बारे में जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा शांति देंगे। जी हाँ, अब बात करते हैं उत्तनासन की। जी हाँ, उत्तनासन ये जो है, इसे करते टाइम ऊपर से आपको लेकर लोअर, मतलब आपकी पूरी जो बॉडी है वो अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग आपकी बॉडी की हो जाएगी, जो ना सिर्फ आपकी मसल्स की टेंशन को दूर करती है बल्कि दिमाग को भी, दिमाग की जो टेंशन है इसे भी दूर करेगी। तो दिमाग को अगर दुरुस्त रखना चाहते हैं तो ये आसन आप जरूर कीजिए, इससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, उतना आसन करने के लिए मैट पर आपको सीधे खड़े हो जाना है, लंबी गहरी सांसें भरते हुए दोनों हाथों को आपको ऊपर की ओर उठाना है और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आपको कमर से बॉडी को नीचे झुकाना है और हाथों से पैरों को, आपको जो पंजे हैं ये छूना है, इसको कोशिश करनी है। कुछ टाइम आपको जो है अपने घुटने के पीछे की ओर दर्द जरूर होगा, महसूस होगा, लेकिन हो सकता है कि शुरुआती दिन में ही ऐसा हो, क्योंकि ये आसन कम से कम अगर 50 सेकंड भी आप करते हैं तो ये काफी ज्यादा अच्छा है। 50 सेकंड काफी ज्यादा हो सकते हैं बिगनर्स के लिए, तो अगर आप जितना भी आपको लगे कि अगर ज्यादा नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा आपको कठिनाई आ रही है, तो आप रुक जाइए, छोड़ दीजिए। इतना ज्यादा फोर्सफुली आपको अपनी बॉडी के साथ जो है वो नहीं करना है, जितना हो सके शुरुआत में उतना करना है। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है जब भी आप योगा करते हैं। तो चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन. और बहुत सारी होती हैं बातें. फिलहाल आपको बता रही हूँ मैं उत्तना आसन के बारे में. मैंने आपको बताया ये जो कुछ ऐसे आसन है जो कि आपके ना सिर्फ बॉडी के लिए बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. अब बात करेंगे बालासन की, जिसे चाइल्ड पोज भी कहा जाता है. और ये आसन भी मन को शांत और स्थिर रखता है. इस आसन को करने के बहुत ही आसान सा तरीका है. तो जब कभी आपका दिमाग अशांत आपको महसूस हो रहा है तो आप थोड़ी देर ये आसन कर लीजिए, आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा. बालासन करने के लिए आपको योगा मैट लेना है, घुटनों का आपको टिकाना है और बैठ जाना है. लंबी गहरी सांसें लेते हुए दोनों हाथों को आपको ऊपर की ओर उठाना है और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लाना है और मैट पर टिका लेना है. और सिर को आपको मैट पर ही लगाकर रखना है. और इस आसन को आपको कम से कम 2 से 3 मिनट होल्ड करके रखना है. कोशिश करनी है कि आप होल्ड कर सके इस आसन को, तो आपके लिए ये मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. जिसके बाद आ जाता है जानू शीर्षासन. जी हाँ, जानू शीर्षासन करने से मन आपका शांत रहता है. और इसके अलावा ये आसन जो है डिप्रेशन, थकान, चिंता, सिर दर्द और साथ ही आपकी नींद की अगर कमी हो रही है, अनिद्रा की आपको समस्या हो रही है, कुछ भी ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो उसमें काफ़ी कारगर है. इसे करने के लिए आपको क्या करना है, योगा मैट लेना है और इस मैट पर दोनों पैरों को आपको सामने की ओर सीधा करते हुए बैठ जाना है. जब आपने दो अपने दाएं पैर

ऑप्शन जो है वो देखते रहिए, बढ़ाते रहिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा आपकी मेंटल हेल्थ को काम डाउन करने का। तो चलिए इसी के साथ अब यहाँ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, जिसके बाद होगी और भी बहुत सारी। अगला सेगमेंट लेकर के आपके पास आ गई हूँ, सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें आपके साथ कुछ कहानियां शेयर करने वाली हूँ। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें खूबसूरत

कहानी जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन और बहुत सारी होती हैं बातें। बात अब मैं कर रही हूँ हमारे अगले सेगमेंट की। सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें आज कुछ खास जानकारी लेकर के आई हूँ। जी हाँ, आपको बता रही हूँ कुछ ऐसी कहानियों के बारे में जो कि अनसंग हीरोज की है, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया। बात करते हैं अब कमलप्रीत कौर की। जी हाँ, फ्रॉम डस्ट टू डिस्कस ये है। और मैं आपको बता दूँ, कमलप्रीत की हम बात करें तो पंजाब की एक सिंपल किसान की बेटी, जिसके हाथ जो है वो घूमता नहीं बल्कि चक्रव्यूह तोड़ देता है। कमलप्रीत कौर एक छोटे से गांव की लड़की फ्रॉम पंजाब, और पंजाब के श्री मुख्तसर साहब डिस्ट्रिक्ट की ये लड़की है। और मैं आपको बता दूँ कि ये सिर्फ एक आम लड़की तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। बचपन से ही स्पोर्ट्स में इनकी रुचि थी, लेकिन स्कूल में बस एक ही फोकस होता था और वो है पढ़ाई। जी हाँ, देखिए पढ़ाई जो है इस पर ही सारा फोकस इनका होता था। लेकिन जब कमलप्रीत ने पहली बार डिस्कस थ्रो किया तो देखिए उसी थ्रो ने उनको सब कुछ जो है उनका बिल्कुल सब कुछ हिला दिया। कोच ने कहा इस लड़की में बात है, अगर इसी फोकस के साथ ये काम करे तो इंडिया का नाम रोशन करेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी डिस्कस का प्रैक्टिस ग्राउंड बिल्कुल नहीं था और इक्विपमेंट्स अफोर्ड करना मुश्किल था, पर फिर भी उन्होंने मिट्टी के मैदान पर प्रैक्टिस जारी रखी। कमलप्रीत बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ब्रीच द 65 मीटर मार्क इन डिस्कस थ्रो, और फिर टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इंडिया को फाइनल तक इन्होंने पहुंचा दिया। उनका थ्रो ओलंपिक मेडल में कन्वर्ट तो नहीं हो पाया, पर इंडिया की एक्सपेक्टेशंस जरूर उन पर टिक गई थी और आगे भी हो सकता है कि ये जरूर कोशिश करें और एक मुकाम जरूर हासिल करें, मेडल जरूर हासिल करें। जब मिट्टी से निकली बेटी चक्रे घुमाती है तो दुनिया के मेडल भी झुक जाते हैं, और ये जरूर होगा अगली बार। और ये जो कोशिश है बिल्कुल जारी है कमलप्रीत जी की। चलिए इसी के साथ यहाँ पर लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होगी और भी बहुत सारी बातें। तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: सुना दे।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे।
2: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: नौ बरस लंबी थी ना।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन. बातें हमारी चल रही हैं बहुत सारी. आपको बता दूं मैं कि अब बात मैं कर रही हूँ क्योंकि हमारा सेगमेंट चल रहा है पावर प्ले विद आर्टिस्ट. साक्षी में कुछ ऐसे अनसंग हीरोज की कहानियां लेकर के आ जाती हूँ जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे क्या बात है, लेकिन कहीं ना कहीं सितारे खो गए. लेकिन खोने हम ऐसे नहीं देंगे क्योंकि इनकी कहानी आपको बताऊंगी तो आप भी हैरान हो जाएंगे. बात अब मैं कर रही हूँ कबड्डी की छोटी शेरनी रितु नेगी की. जी हाँ, ये जो कबड्डी के मैदान में जब उतरी, मैदान छोटा हो या जिंदगी, रितु हर टैकल के बाद और स्ट्रांग होती रही. रितु नेगी एक हिमाचली लड़की जिसके कबड्डी का पहला जो टेस्ट है वो स्कूल में उनका मिला. और वो स्कूल की एक इकलौती लड़की थी जो भाई बॉयज के अगेंस्ट कबड्डी खेला करती थी. लोग कहते थे कि इसे शादी इससे कौन करेगा, और ये तो कबड्डी खेलती है तो इससे शादी तो कोई नहीं करेगा. पर रितु ने सोसाइटी के सब नॉर्म्स इग्नोर किए. उन्होंने हिमाचल वुमेन्स टीम ज्वाइन करी और उसके बाद नेशनल जो है वो नेशनल चैंपियनशिप ये जीत गए और फिर इंडियन वुमेन्स नेशनल कबड्डी टीम की कप्तान भी बनी. एशियन गेम्स 2023 में रितु ने इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाने में मेजर रोल प्ले किया. जमीन से जुड़ी रितु आज भी अपने गांव के ट्रेनिंग ये जो है वो बच्चों को देती हैं, यानी कि लड़कियों को देती हैं, और नए प्लेयर्स को और ज्यादा मोटिवेट करती हैं. वो गिरती है, उठती है और फिर से वही खड़ी हो जाती हैं, और उसी जज्बे के साथ खड़ी होती हैं कि उनको अब अगला मेडल लेकर के आना है. रितु की कबड्डी जिंदगी का लेसन बन गई. और आप देखिए कि कितना कमाल कि गोल्ड मेडल लाने में भी, इंडिया को, भारत का नाम रोशन करने में भी रितु का काफी बड़ा हाथ है इसमें. तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर आपको बता दूं अगली आपको कहानी की भी आपको बताऊंगी किसकी आपको बताने जा रही हूँ. लेकिन उससे पहले अभी लेने वाली हूँ एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ और बहुत सारी होती हैं बातें हफ्ते के साथ और दिन। और देखिए, अभी फिलहाल हमारा सेगमेंट जो है वो चल रहा है, सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें कुछ ऐसे अनसंग हीरोज की आपको कहानी बता रही हूँ जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे कि सच में इन्होंने भारत का इतना नाम रोशन किया कि आज इस तरह खो तो नहीं गया। लेकिन बिल्कुल भी हम खोने नहीं देंगे, हम इन्हें याद करते रहेंगे कि इन्होंने देश के लिए कितनी मेहनत करी है। बात अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर द फेंसिंग फाइटर भवानी देवी की। जी हाँ, देखिए, जब जिंदगी ने तलवार बन के अटैक किया, भवानी ने मास्क पहनकर उसे फेस किया। भवानी देवी की मैं बात कर रही हूँ, भवानी देवी जब जिंदगी ने तलवार बनकर उन पर अटैक किया ना, तो उन्होंने मास्क तो पहन लिया। लेकिन देखिए, मैं बात यहाँ पर अब इनकी जर्नी की करती हूँ। पहली इंडियन फेंसर जिन्होंने ओलंपिक्स के में जो है फेंसिंग इवेंट में क्वालिफाई किया, चेन्नई की भवानी को जब फेंसिंग का नाम सुना तो उन्होंने पहली बार सोचा स्पोर्ट्स का इंडिया से क्या लेना देना। लेकिन उसी स्पोर्ट में करियर इन्होंने बनाया। ट्रेनिंग के लिए इटली और फ्रांस तक जाने का खर्चा उन्होंने लोन और क्राउड फंडिंग से मैनेज किया। 2014 एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता। 2020 में हिस्ट्री लिखी, इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक फेंसर की इन्होंने हिस्ट्री लिखी। भवानी ने एक ऐसे स्पोर्ट में नाम कमाया जहाँ लोगों का वो उसकी स्पेलिंग तक नहीं पता थी। जिंदगी के हर अटैक का सिर्फ एक जवाब था, भवानी की फेंसिंग स्क्वाड। और ये जो है, इन्होंने नाम तो रोशन कर दिया, इंडिया का नाम इन्होंने रोशन किया, भारत का नाम इन्होंने रोशन किया, जहां किसी को पता भी नहीं था कि ये फेंसिंग है क्या, वहां पर इन्होंने खेल के भाई सबका जो है दिल जीत लिया। चलिए, इसी के साथ यहाँ लेती हूँ अब एक छोटा सा ब्रेक, आपका ही मजा आइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और बहुत सारी होती हैं हमारी बातें, फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं और अभी आपको बता रही हूँ मैं अपने सेगमेंट्स लेकर के आती हूँ। लेकिन अगले सेगमेंट पर ज़रूर जाऊँ क्योंकि आपका फेवरेट सेगमेंट है कौन बनेगा सेहतमंद। लेकिन उससे पहले बता दूँ, अगर आप ये एपिसोड सुन रहे हैं और ये मिस कर जाते हैं, कोई भी बात दोबारा सुनना चाहते हैं, तो आप घबराने वाली कोई बात नहीं है। चाहे आप भाई फरीदाबाद में हो या दुनिया में कहीं पर भी, वर्ल्ड में कहीं पर भी, आप भाई जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और वो भी कुछ ही सेकंड में। आपको बस क्या करना है, अपना मोबाइल फ़ोन लेना है, चाहे एंड्रॉयड हो या iOS मोबाइल फ़ोन हो, वो लेना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जाना है, हमारी इंटरनेट ऐप को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आप सुन सकते हैं ये कमाल के पॉडकास्ट, सुन सकते हैं, जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से, बहुत सारे जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आपको। तो अब भाई आपको कुछ नहीं करना है, आप कभी भी कहीं से भी आप हमारे साथ यानी कि रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ जुड़ सकते हैं। बस अब यहाँ पर लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ और साथ ही अगला सेगमेंट भी ला रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा खास ये सेगमेंट होने वाला है, सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें पहेलियाँ आपसे पूछती हूँ। आज की क्या है खास पहेली पूछूंगी, लेकिन फिलहाल अभी कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और बहुत सारी हो रही है हमारी बातें। फिलहाल आपका फेवरेट सेगमेंट लेकर के आ गई हूँ, कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें आपसे पहेलियां पूछती हूँ। जो देता है सही सटीक रोजाना जवाब देता है, जब भी मैं पहेली पूछती हूँ पूरे महीने जो रहता है कंसिस्टेंट, उनको मिलता है मौका मुझसे मिलने का, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो आने का और सभी आरजे से मिलने का। बातें हमारी चल रही हैं और आपको बता दूं मैं अभी कि अभी बात मैं कर रही हूँ बहुत सारी और आपसे पहेली पूछ रही हूँ, तो जल्दी से झटपट से इसका जवाब देना है। नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। तो जो पहेली आज की है भाई ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको इसका बहुत जल्दी से जवाब देना है। पहेली है, मस्तिष्क का काम करूँ आसान, न्यूरा ट्रांसमिशन में मेरा योगदान, मेरी कमी से हो मूड खराब, मानसिक स्वास्थ्य पर पड़े असर बेहिसाब। बताओ कौन हूँ मैं? मैं बी विटामिन का हिस्सा हूँ, बीन्स और साबुत अनाज में हूँ समाया। बताओ कौन हूँ मैं? तो जल्दी से इसका झटपट से जवाब देना है। एक बार फिर से मैं पहेली को दोहरा देती हूँ। मस्तिष्क का काम करूँ आसान, न्यूरो ट्रांसमिशन में मेरा योगदान, मेरी कमी से हो मूड खराब, मानसिक स्वास्थ्य पर पड़े असर बेहिसाब। बताओ कौन हूँ मैं? मैं विटामिन बी में का हिस्सा हूँ, बीन्स और साबुत अनाज में हूँ समाया। बताओ कौन हूँ मैं? फटाफट से इसका जवाब आपको देना है। नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। चलिए अभी आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे, और साथ ही सैटरडे संडे भी आपके साथ रहती हूँ। यानी कि हफ्ते के 7 दिन अब आपके साथ रहती हूँ। 2 घंटे का हमारा सफर है। आपसे पहली मैंने पूछी क्योंकि हमारा सेगमेंट चल रहा है, सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें आपसे पहेलियां पूछती हूँ। तो आज की हमारी पहेली है, मस्तिष्क का काम करूं आसान, न्यूरो ट्रांसमिशन में मेरा योगदान, मेरी कमी से हो मूड खराब, मानसिक स्वास्थ्य पर पड़े असर बेहिसाब, बताओ कौन हूँ मैं। विटामिन बी का हिस्सा हूँ, बीन्स और साबुत अनाज में समाया हूँ। तो चलो आपको इसका जवाब जो है वो देना था, और फटाफट से हमारे पास सबसे पहले सटीक जवाब जो है यहाँ चला है हमारी आज के लिसनर जो है आंचल की ओर से। आंचल बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, और इसका जवाब है विटामिन B6 इसका जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, कंग्रेचुलेशंस। और इसी के साथ चलिए यहाँ पर अब पहला जवाब तो हमारे पास आ गया है। अगली एक और पहेली आपसे पूछने वाली हूँ, वो कौन सी है बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन, और बहुत सारी होती हैं बातें। फिलहाल आपको बता रही हूँ आज की हमारी पहेली, क्योंकि सेगमेंट चल रहा है, सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें आपसे पहेलियाँ पूछ रही हूँ। तो आज की हमारी बड़ी आसान सी पहेली, पहली पहेली तो मैंने पूछ ली है, सेकेंड यानी कि दूसरी पहेली का वक्त जो है ये हो चला है। और पहेली है, आंखों की रोशनी का हूँ पहरेदार, रात में दिखने में करता हूँ उद्धार, मेरी कमी से हो अंधेरा, रात की दुनिया लगे घनेरा, बताओ कौन हूँ मैं, गाजर और हरी सब्जियों में मेरी पहचान है, बताओ कौन सा विटामिन हूँ मेरी पहचान है। इसका फटाफट से आपको जवाब देना है, नंबर बहुत ही आसान है 8010781078, ये हमारा नंबर है। एक बार फिर से मैं पहेली जो है वो दोहरा देती हूँ, आंखों की रोशनी का हूँ पहरेदार, रात में दिखने में करता हूँ उद्धार, मेरी कमी से हो जाए अंधेरा, रात की दुनिया लगे घनेरा, गाजर और हरी सब्जियों में मेरी पहचान, बताओ कौन सा हूँ मैं विटामिन, क्या है मेरी पहचान। फटाफट से इसका जवाब आपको देना है, नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। चलिए अब कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक रेडियो मैंने वृष्णा 7.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, मंडे टू संडे, हफ्ते के 7 दिन हम आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें. फिलहाल एक पहेली आपसे पूछी मैंने, जिसका फटाफट से जवाब आ चुका है. हमारी लिसनर ने यह जवाब दिया है. लिसनर का नाम है प्रियंका. प्रियंका मिश्रा जो है इनका नाम है. उन्होंने जवाब दिया है सेक्टर 21 से, इन्होंने मैसेज करके मुझे जवाब दिया है. आपको बता दूं, एक बार पहेली मैं फिर से दोहरा देती हूं. आंखों की रोशनी का हूं पहरेदार, रात में दिखने में करता हूं उद्धार. मेरी कमी से हो अंधेरा, रात की दुनिया लगे घनेरा. गाजर और हरी सब्जियों में मेरी पहचान, बताओ क्या है मेरा वाइटमिन का नाम, क्या है मेरी पहचान. तो इस वाइटमिन का नाम है वाइटमिन ए. जी हाँ, और इसका सही भी अपने देखिए बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया है, सभी ने जवाब दिया है, लेकिन इसका सबसे सटीक और पहला जवाब जो है वो आया है हमारी लिसनर की ओर से. लिसनर का नाम जो है वो है प्रियंका मिश्रा. चलिए इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है आपसे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक की इजाज़त लेने का, तो आप कहीं मत जाइए, आगे और भी करती हूँ बातें. तो जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड फील लाइफ.
1: ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन.
2: गुरुदेव, यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए.
1: हाँ गुरुदेव. ना

में जटाजू संग है महाराज पधारे, चिमटा चरस चिलम और चेले साथ साथ हैं सारे। किट्टे लेकर भी गाड़ी में खड़े शरीफ बेचारे, और ये देखो भगवान के चमके पड़े हैं पांव।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और यहाँ पर आपको बता दूँ मैं कि एक पहेली आपसे पूछी है मैंने, दो पहेलियाँ आपसे पूछी। सबसे पहले सटीक जवाब दिया है हमारी लिसनर आंचल ने, और दूसरा जवाब जो है हमें दिया है हमारी आज की लिसनर ने, और जिनका नाम है प्रियंका मिश्रा। बिल्कुल सही, दोनों के ही जवाब रहे। अलग अलग मैंने आपसे जो है पहेलियाँ पूछी और आपने दोनों ही जवाब जो है दिए हैं आप दोनों ने ही। चलिए इसी के साथ कंग्रेचुलेशंस, और इसी के साथ अब वक्त जो है ये हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। जी हाँ, वक्त ये कहता है कि अब इजाज़त तो लेनी होगी, क्योंकि ये वादा आपसे करती जाती हूँ कि कल होगी मुलाकात, होंगी बहुत सारी बातें, लेकिन आपको ना तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है बहुत। देखिए यहाँ पर बातें जो है ये तो होती रहेंगी बहुत सारी, लेकिन अब मुझे चलने का जो है वो टाइम हो चला है, यानी कि मुझे इजाज़त का टाइम जो है ये हो चला है, तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप कहीं मत जाइए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।
1: नमस्कार,
2: नमस्कार।
1: कहिए

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ, और टाइम हुआ एक ऐसे प्रोग्राम का जो जुड़ा है आप ही से, आप ही की सुरक्षा से। प्रोग्राम का नाम है सुरक्षा संवाद, जो हम खास तौर पर से लेकर आते हैं फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर आपकी सुरक्षा के मद्देनजर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो भी ऑफ कोर्स आप ही की सुरक्षा से जुड़ा है, बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं, और साथ ही हम बात करेंगे करियर के बारे में भी। करियर के बारे में क्यों बात करेंगे, क्योंकि करियर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और करियर ऐसी फील्ड में बनाया जाए जो आम जनता की सुरक्षा के लिए हो तो फिर कहने ही क्या। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, मिस हिमाद्री कौशिक, आईपीएस बैच 2019 और फरीदाबाद की डीसीपी हेडक्वार्टर्स। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना।
1: थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, और मुझे बहुत ही इट्स अ प्रिविलेज टू बी एबल टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक विद एवरीवन। थैंक यू।
0: सो हिमाद्री जी से बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं, और बात करने वाले हैं आपकी सुरक्षा को लेकर। अब जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो आम जनता की सुरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, साइबर क्राइम का। साइबर

0: क्राइम इसलिए क्योंकि मैम डायरेक्टली उसको भी देख रही हैं और साइबर क्राइम के साथ साथ आम जनता की सुरक्षा की भी बात करेंगे। हिमाद्री जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि आम जनता को ये तो पता है कि डीसीपी क्राइम या डीसीपी साइबर क्राइम कौन होते हैं, लेकिन हेडक्वार्टर्स के बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो एक मैं थोड़ा सा चाहूँगी आप हमें ओवरव्यू दें कि आप अपने विभाग की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रही हैं।
1: जी, जैसे कि आप जानते होंगे, लोग भी जानते होंगे, फरीदाबाद में 3 जोन्स हैं, उनके रिस्पेक्टिव डीसीपीज हैं। उसके अलावा क्राइम टीम्स हैं जहां डीसीपी क्राइम है। डीसीपी हेडक्वार्टर्स एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें सब देखते हैं, जैसे हमारे व्हीकल मैनेजमेंट, हमारे पुलिस स्टेशन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका मैनेजमेंट, पोस्टिंग्स, इंटर जोन पोस्टिंग्स क्या हैं, उसके अलावा कंप्लेंट मैनेजमेंट, हमारी सिक्योरिटी ब्रांच होती है विच डज ऑल द पासपोर्ट वेरिफिकेशन। सो आई वर्क इन दिस, माई ऑफिस इज इन द सेम प्लेस एज द कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड आई वर्क डायरेक्टली अंडर हिम एंड टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं इकोनॉमिक ऑफेंसेज विंग आर्थिक अपराध शाखा और तीनों जोन्स के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को भी देखती हूँ।
0: जी,
1: तो आई एम श्योर मैं काफ़ी चीज़ें मिस आउट कर रही हूँ, बट ब्रॉडली दिस इज द वर्क।
0: एक ओवरऑल व्यू में हमें पता चल गया कि आप क्या क्या करिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन मुझे लगता है सबसे मुश्किल होता है। आप पुलिस में भी हैं और आप एडमिनिस्ट्रेशन भी देखनी है, तो एक तरफ तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन में आपको प्यार से भी बात करनी पड़ती है, ये भी एक चैलेंज होता है।
1: एब्सोल्युटली, जैसे एक तरह से, वैसे तो पुलिस के सभी, मतलब सभी पोस्ट्स एक तरह से सब बहुत बड़ी एचआर एक्सरसाइज है, बिकॉज वी आर मैनेजिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपार्टमेंट्स एंड वो भी ऐसा डिपार्टमेंट इन विच डिसिप्लिन इज द बिगेस्ट थिंग। सो यू नो इट हैज इट्स ओन चैलेंजेस, बट बहुत ज़्यादा अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस भी है ह्यूमन बींग्स को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं, स्पेशली एक यूनिफॉर्म्ड सर्विस में।
0: जी बिल्कुल, और ये मुझे लगता है कि हम पुलिस को बहुत स्ट्रिक्ट समझते हैं, पर बहुत मुश्किल होती है पुलिस की जॉब, आसान नहीं होती, क्योंकि 24 घंटे आपको कार्यरत रहना ही पड़ता है, आप अपनी ड्यूटी पर ही हैं। आप छुट्टी बहुत कम लेते हैं, क्योंकि अक्सर हम सुरक्षा संवाद में जब भी किसी पुलिस अधिकारी से बात करते हैं तो उनको अपना फोन आधे घंटे के लिए जब साइड पर रखना होता है, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि उसके बाद नॉनस्टॉप उनके फोन पर जितने फोन आते हैं, कॉल बैक करते हैं, फिर कॉल वेटिंग आती है, वो एक आपका जो दायरा है वो इतना बड़ा होता है, अपराधों से जुड़ा हुआ होता है कि आप 15 मिनट के लिए भी शांत नहीं बैठ सकते।
1: एब्सोल्युटली, जिस कारण जैसे हम काफी ट्राई करते हैं, रिसेंटली भी हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए अपने फोर्स के लिए। देखिए, फोर्स मतलब मैं आपको ऐसे एक उदाहरण दूं, तो आप जब कोई नेगेटिव चीज़ देखते हैं रोड पे, एक एक्सीडेंट देख लेते हैं या कुछ भी, मैं तो कहती हूँ अगर आप एक जानवर का भी एक्सीडेंट देख लेते हैं तो आपका मूड ख़राब हो जाता है, आप घर जाते हैं आपका थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है, आप किसी का कोई ब्लडी कोई चीज़ देख लेते हैं, तो आप सोचिए एक ऐसा व्यक्ति जो सुबह से रात तक यही देख रहा है।
0: बिल्कुल,
1: मतलब नॉट टू साउंड मोरोस, पर जैसे इतने वो वही लोग हैं जो सारे डेड बॉडी डिस्पोज कर रहे हैं, हर सीन ऑफ क्राइम पे जा रहे हैं, सो वी डोंट वैल्यू दिस इनफ दैट उनकी मेंटल हेल्थ भी इसी चीज़ से शेप हो रही है, उनको नेगेटिविटी के बीच में रह के भी खुद को पॉजिटिव रखना है। तो हम कई इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं सबके काउंसलिंग कराने के, सबको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहा है पीछे मेडिटेशन और योगा पे, बिकॉज डिस्प्रोपोर्शनेट डिजीजेज हैं। अभी रिसेंटली हमने आई हेल्थ कैंप लगाया था, फिर से हम हार्ट हेल्थ कैंप लगाएंगे, तो पुलिस फोर्स में आप देखेंगे थोड़ा ये डिस्प्रोपोर्शनल रहती हैं ये वाली इशूज़। तो आई अंडरस्टैंड वो पब्लिक के लिए हैं, बट उनके लिए भी होना कोई चाहिए टू टेक केयर ऑफ देयर वेलफेयर।
0: बिल्कुल, और वो आप बखूबी करेंगे मुझे लगता है।
2: सुरक्षा संवाद में बातों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। मैं हूं दीक्षा आपके साथ, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डीसीपी हेडक्वार्टर्स आईपीएस हिमाद्री कौशिक।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम है उदीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम का नाम है सुरक्षा संवाद इन एसोसिएशन विद फरीदाबाद पुलिस. और हमारे साथ आज स्टूडियो मौजूद हैं आईपीएस हिमाद्री कौशिक जी, डीसीपी हेडक्वार्टर्स फरीदाबाद पुलिस. बातों का सिलसिला जारी है और आगे जान रहे हैं देश की सुरक्षा से जुड़े कुछ सवाल. शहर को और ज्यादा सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है, क्राइम को कैसे खत्म किया जा सकता है, ऐसी कुछ बातें और इन बातों का कुछ सोल्यूशन. मैम, अब जानना चाहेंगे फरीदाबाद के बारे में. फरीदाबाद में अपराध का जो दायरा है वो थोड़ा बढ़ गया है. बहुत सारे लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि शहर में जो गुंडागर्दी है वो ज़्यादा हो गई है. ख़ास तौर पर से अगर मैं ये वेब सीरीज़ या क्राइम सीरीज़ जो चल गई हैं उनके बाद बहुत सारे युवाओं का जो बातचीत करने का तरीका है वो बदल गया है. लोग इंटरनेट से इतना कुछ सीख रहे हैं कि वो अपने तक नहीं रख पा रहे, वो चीज़ें दूसरों पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं. गुस्सा बढ़ गया है, एजिटेशन बढ़ गया है. और ये अक्सर हम अपने शोज़ में जागरूक भी लोगों को करते हैं कि आप इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस मत होइए. अगर आपको इन्फ्लुएंस होना ही है तो किसी अच्छे इन्फ्लुएंसर से होइए. तो आपको क्या लगता है, ये क्राइम बढ़ने की सबसे ज़्यादा वजह क्या इंटरनेट है या फिर वैसे ही लोगों का तनाव में रहना है?
1: देखिए, दो चीज़ें हैं. पहली बात तो क्राइम बढ़ना, तो एक और चीज़ है कि पुलिस की थोड़ी एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है. इन द सेंस कि अगर आप कहीं पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो आपका केस वहाँ पे रजिस्टर होगा, वहाँ पे कोई ग्रीवेंस है तो आपको उसको एस्केलेट करेंगे एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीजीपी, हर लेवल पे. तो अब हमारा एक्सेस टू ऑल ऑफिसेज लोगों का है, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स हैं, हमारे पास ऑनलाइन कंप्लेंट्स आती हैं, हमारे पास फ़ोन पे कंप्लेंट्स आती हैं. तो जो एक पहले होता था कि लोग थाने जाने से डरते थे, इकट्ठे होके 10 लोग साथ में जाते थे, अब ऐसा नहीं है. लार्जली हम भी देखते हैं थानों में काफ़ी लोग आते हैं, अपने इशूज़ रिपोर्ट करते हैं. तो ये जनरली काफ़ी लोग कहते हैं, बट आप देखेंगे एज अ प्रोपोर्शन ऑफ कंप्लेंट्स हम कितनी क्राइम रजिस्टर करते हैं, तो आप देखेंगे स्टेटिस्टिकली रजिस्ट्रेशन बढ़ा है. और स्टेटिस्टिकली देखा जाए तो पिछले 3 साल में फरीदाबाद का क्राइम नहीं बढ़ा है, कम हुआ है सक्सेसिवली. तो एक टू डाइग्रेस अ लिटिल, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोबेल लॉरेट हैं इन इकोनॉमिक्स, डैनियल कानमैन. सो ही टॉक्स अबाउट परसेप्शन बायस. तो प्रॉब्लम क्या है कि सोशल मीडिया चैनल्स इतने बढ़ गए हैं और एवेन्यूज ऑफ रिपोर्टिंग इतने हो गए हैं, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, इतने सारे फेसबुक हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, जो सेम न्यूज़ को 5 बार दिखाएंगे तो आप 5 बार वही देखेंगे. तो शायद हमारा आइडिया एंड परसेप्शन, जो एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पहले शायद रेडियो से आती थी और वो भी मतलब एक ही जगह से आती थी और या न्यूज़पेपर से आती थी, लिमिटेड होता था. अब नाउ वी आर बम्बार्डेड विद सो मच इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सेसिव क्राइम दैट देर इज़ अ परसेप्शन. बट ऑफकोर्स आई एड अग्री कि इन्फ्लुएंस तो है ही, इतने सारे टीवी सीरीज हैं जिसमें क्राइम इज़ मतलब क्राइम को हम बहुत ही ग्लैमरस बना रहे हैं, तो वो तो काफ़ी यूथ अट्रैक्ट हो रहे हैं उस चीज़ में. बट उसमें भी देर आर अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स. वी हैव बीन लॉजिंग एफआईआर्स अगेंस्ट म्यूजिक, अगेंस्ट म्यूजिशियंस जो मतलब इस तरह की चीज़ को बढ़ावा देते हैं. ऐसे म्यूजिशियंस को परफॉर्म करने की जब परमिशन मिलती है उसमें भी हम उनको लिमिटेड परमिशन देते हैं कि आप इस कंटेंट के ऊपर नहीं गाएंगे. और जो लोग ये क्रिमिनल पोस्ट्स करते हैं उनके लिए ये है कि देखिए, जैसे अनोनिमिटी उन्हें लगता है इंटरनेट पे है, बट आयरॉनिक ये बात है कि आप कुछ बोल दोगे रोड पे तो शायद नाम ना आए सामने, पर अगर आप इंटरनेट पे कुछ बोलते हैं तो वी कैन ऑलवेज ट्रेस इट बैक, इररिस्पेक्टिव ऑफ वीपीएन यूज्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर टॉर यूज्ड, हमें हमेशा पता कर सकते हैं कि ये कौन कर रहा है. और इस मैटर पे भी हम काफ़ी एक्शन ले रहे हैं. सो आई होप आई एम आंसरिंग द व्हाट यू आस्क्ड.
0: मैम, थोड़ा सा साइबर क्राइम की तरफ चलते हैं, क्योंकि साइबर क्राइम जब आप, एक समय था 2022 का आंकड़ा मैं जो इंटरनेट पर देख रही थी, 10 लाख के आसपास रिपोर्ट्स आती थी. 2025 में ये आंकड़ा 22.5 लाख के आसपास हो गया. इतनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, अरबों रुपए का फ्रॉड हो रहा है, सरकार अलग अलग कैंपेन्स चला रही है, पुलिस अपनी तरफ से अलग अलग तरीकों से लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रही है, कॉलेजेस में जा रहे हैं, RWAs के साथ मिलकर हम रेडियो के माध्यम से कोशिश करते हैं लोगों तक पहुंचने की कि साइबर क्राइम से बच के रहना है और डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है. लेकिन फिर भी आप सुबह अगर अखबार खोलते हैं 7:30 बजे तो आपको हर दूसरे पेज पर या पहले पेज पर कई बार ऐसी खबरें दिखाई देती हैं कि इस परिवार से 85 लाख लूट लिए, किसी ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई जो है वो डिजिटल अरेस्ट से डर कर दे दी. अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि ये डिजिटल अरेस्ट जब है ही नहीं कोई चीज, सो इतनी अवेयरनेस के बाद भी क्यों लोग फंस रहे हैं, कैसे फंस रहे हैं? क्योंकि हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, आप हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कि इनसे नहीं डरना है।
1: जी देखिए, अभी भी ये इंस्टेंसेस आ रहे हैं जैसे आप कह रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के स्पेसिफिकली, तो जो ये साइबर क्रिमिनल्स हैं दे आर यूजिंग सम बैकग्राउंड इंटेलिजेंस, मुझे ऐसा लगता है कि वो बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं लोगों का। क्योंकि आप देखेंगे ज्यादातर एक एज के से ज़्यादा लोग, थोड़े मतलब सीनियर सिटीजन, रिटायर्ड प्रोफेशनल्स, क्योंकि शायद हम भी उतना ही प्रयास कर रहे हैं अवेयरनेस जनरेशन का, हम भी हर बार न्यूज़पेपर में देते हैं, इतनी सारे साइबर राहगिरी हो रहे हैं जिसमें हम स्कूल्स कॉलेजेस जा रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, जिस भी माध्यम से ये मैसेज जा सकता है लोगों तक पहुँचा रहे हैं, फिर भी कुछ लोग अभी भी डर जाते हैं। देखिए मतलब वो आपके डर के ऊपर अटैक कर रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर दैट फियर कि हाँ लोग डरेंगे हम जब बोलेंगे कि आपका ये सामान पकड़ा गया। कई बार ऐसा होता है हमें लगता है कि उन्हें कैसे हमारी इन्फॉर्मेशन है कि मेरा ये कोरियर आ रहा है, बट एक्चुअली आप देखेंगे घर में ऑलमोस्ट आजकल इतना ज़्यादा ई कॉमर्स है कि रोज एक ना एक डिलीवरी तो आ ही रही है, एक की या किसी और की, जितने ज़्यादा सदस्य हैं समटाइम्स टू अ डे, तो आपको हमेशा लगता है कि एक तो मेरा पैकेज रस्ते में है ही, तो शायद उसी की बात हो रही हो। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपको लग रहा है ना कि नहीं इसको सही पता है क्योंकि सही में मेरा एक पैकेज आ रहा है, आजकल तो घर में रोज एक ना एक पैकेज आ रहा है, तो अगर वो कह भी रहे हैं कि आपका कुछ आ रहा सामान पकड़ा गया तो वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। जैसे आपने बताया डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है और ये लोगों को डरा के उनके पैसे लिए लेने का एक तरीका है। अपार्ट फ्रॉम डिजिटल अरेस्ट मैं ये भी कहूँगी कि जैसे डिजिटल अरेस्ट आपके डर के ऊपर प्रे करता है, इट प्रेज ऑन योर फियर, इसी तरह से एक दूसरा भी स्कैम है काफ़ी प्रोमिनेंट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, जिसमें स्टॉक मार्केट में निवेश करने के नाम पे या हाई रिटर्न्स के नाम पे लोग टेलीग्राम पे इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर रहे हैं, उनको 17-18% का रिटर्न प्रॉमिस किया जाता है मंथली, तो और लोग पैसे देते रहते हैं, और इसमें पुलिस के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि आप देखिए वो व्यक्ति 7-8 महीने से पैसे दे रहा है और 7-8 महीने बाद जब वो अपने पैसे वापस मांगते हैं तो उनको पता लगता है ये स्कैम है, तो वो फ्रॉड 7-8 महीने पहले शुरू हो गया, वो पैसे 7-8 महीने जाने पहले शुरू हो गए, तो हम भी जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है क्योंकि 7-8 महीने में तो ये पैसे बिल्कुल गायब हो जाते हैं,
0: कहीं जगह चले जाते हैं,
1: कहीं जगह एग्जैक्टली। तो आप, मैं ऐसा मानती हूँ कि हमें कई बार पूछना चाहिए खुद से कि क्या ये चीज टू गुड टू बी ट्रू है, क्या पॉसिबल है आज आप कोई लीगल तरीके से किसी को 17-18% प्रॉमिस करो, और मतलब ये किस तरह से बड़े इंटेलिजेंटली आपको बताएंगे कि हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से डील कर रहे हैं तो हमारा ब्रोकरेज नहीं है कि ये नहीं है, मतलब इस टाइप का आपको कुछ बताएंगे, तो ये जैसे जनरली लोगों को जानकारी होगी कि आपके जो डीमैट अकाउंट है उसमें स्टॉक्स हैं तो वो आपके पैन कार्ड से ही लिए जाएंगे, जाहिर सी बात है। ये चीज़ आप ऑनलाइन जाके ऑफिशियल साइट से, जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं तो कैम्स ऑनलाइन से या कहीं से भी चेक कर सकते हैं अपने पैन कार्ड की डिटेल्स जाके देख के। कोई और अगर अपने आईडी से ले रहा है तो वो पैसा हो सकता है आपको ना मिले, ये टेलीग्राम पे ज्वाइन किए हुए ग्रुप्स में की बातों में मत आइए, आप इन पे इनकी चीज़ की लालच में नहीं पड़ना है कि मुझे कोई इतना रिटर्न दे रहा है या स्टॉक मार्केट में निवेश करने को कह रहा है। अगर आपको करनी है इन्वेस्टमेंट तो प्लीज़ आप अपने बैंक को कॉन्टैक्ट कीजिए
0: जी,
1: या जो भी रजिस्टर्ड ऑपरेटर्स हैं उनको कॉन्टैक्ट कीजिए। तो ये भी एक अलग तरीके का साइबर फ्रॉड है जिसके बारे में लोगों को अवेयर होना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है दो चीज़ें बहुत बड़ा फ्रॉड का एक कारण बनती है, एक लालच, आप ग्रीडी हो जाते हैं कि आज मेरा 50 लाख 80 लाख बन के हमें एक साल में मिल जाएगा। दूसरा डर, आपको ये फंसा देते हैं कि आपका पैसा जो है वो टेररिज्म में कहीं इन्वॉल्व हो गया है या फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग में हो गया, तो वो डर जाते हैं और बुजुर्ग खास तौर पर से डर जाते हैं। और इनफैक्ट हमने ऐसे ऐसे केसेस भी सुने हैं जहां पर उन्होंने अपना घर तक बेच दिया, अपनी एफडीज तक तोड़वा के पैसा ट्रांसफर कर दिया। इनफैक्ट बैंक्स को भी आजकल ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर आपके पास कोई बुजुर्ग इस तरीके से आ रहा है, और लखनऊ में एक हाल ही में केस भी हुआ था जहां पर कोई बुजुर्ग गई थी लेडी जो डिजिटली अरेस्ट थी, 3 दिन से वो गई थी अपनी FDs तोड़वाने, तो एम्प्लॉयज ने उनको बात करने में कहीं ना कहीं उनको शक हुआ और उन्होंने उनको काउंसिल किया और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो वो डिजिटल अरेस्ट का केस जो था वो पकड़ा गया। तो ये बहुत जरूरी है अवेयरनेस, लोगों तक जानकारी पहुंचाना।
1: इसी रिलेशन में एक एक्चुअली बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हरियाणा पुलिस का
0: जी।
1: हमने एक HDFC बैंक के साथ फिलहाल DGP हरियाणा ने एक डुअल OTP सिस्टम शुरू किया है जिसमें आप चूज कर सकते हैं कि दूसरा OTP किस ट्रस्टेड इंसान के साथ जाएगा, स्पेशली जैसे सीनियर सिटीजन है वो अगर अपने बच्चों का या अपने स्पाउस का नंबर दे दें तो एक डबल चेक हो जाता है। तो कंसिडरिंग ये वल्नरेबल कुछ सेक्शंस, डुअल OTP बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है हमें। इसी की तरह अभेद्य जैसे ऐप है उसमें भी यही प्रोविजन है कि हमें जो इसे सस्पिशियस कॉल्स आ रहे हैं वो पता लग जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऐप है, सेंट्रल गवर्नमेंट की M-Kavach।
0: बिल्कुल
1: M-Kavach मेरे पास भी, मेरे भी फोन में है। ये जैसे हम ट्रू कॉलर ऑपरेट करते हैं है उसी तरह की, पर एक ऑफिशियल वेबसाइट, तो जो भी ब्लैकलिस्टेड नंबर M-Kavach पे हैं वो हमें बता देंगे, वो हमें जैसे नॉर्मल कॉल लगता है
0: फ्रॉड
1: नंबर्स है, VOIP कॉल उसमें बता देगा। तो अभेद्य, M-Kavach ये काफ़ी वो है। और जैसे ये लोग अपना मोडस ऑपरेंडी एडवांस कर रहे हैं ऐसा नहीं है, हम भी काफ़ी एडवांस हो चुके हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन में, एंड आई एम श्योर वी विल कम अप विद द सॉल्यूशंस दैट कैन मिनिमाइज दिस प्रॉब्लम फॉर पीपल।
0: बिल्कुल, क्योंकि इतने साइबर फ्रॉड के केसेस बढ़ चुके हैं कि अब मुझे लगता है कि लोगों को फिजिकल डकैती से कम डर लगता है और साइबर से ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि अब हर कोई एक छोटे से फ़ोन में पूरी दुनिया है उसके, जिसमें उसके सारे बैंक अकाउंट्स हैं, जिसमें उसके ईमेल में पासवर्ड्स हैं और डेटा कहाँ कहाँ पहुँच रहा है, कैसे हैक हो रहा है कोई नहीं जानता है।
2: तो बहुत सी बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन बहुत सीरियस बातें हो जाती हैं जब हम बात करते हैं सुरक्षा की, तो इन सब बातों के बीच में एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक तो बनता है। और अगर आपको ये बातें अच्छी लग रही हैं, ये जानकारी आपको पसंद आ रही है, तुम्हारे इंटरनेट रेडियो की ऐप रेडियो मानव रचना डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, और इस पूरी बातचीत को आप RJ दीक्षा के फोल्डर में जाकर सुन सकते हैं और शेयर कर सकते हैं जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें पूरी दुनिया में कभी भी किसी भी वक्त। अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन और इस पहले रेडियो स्टेशन पर चल रही है बहुत ही स्पेशल बातचीत। प्रोग्राम का नाम है सुरक्षा संवाद, आपकी सुरक्षा को लेकर खास इन्फॉर्मेशन जो हम फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर लेकर आते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारी मुख्य मेहमान है हिमाद्री कौशिक जी, जो की DCP हेडक्वार्टर्स है, साथ ही साइबर क्राइम से जुड़ी हुई जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको देख रही हैं और ऐसी कुछ जानकारी साइबर क्राइम से जुड़ी हुई आज हमारे साथ शेयर भी कर रही हैं, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बातचीत करना बेहद जरूरी है। तो बातचीत चल रही है हिमाद्री जी के साथ। मैम, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी बच्चों को, यंगस्टर्स को लेकर एक बहुत बड़ा चीज जो है गेमिंग की दुनिया से बहुत बच्चे जुड़ रहे हैं और गेमिंग में बहुत पैसा गवा भी रहे हैं और ब्लैकमेल भी हो रहे हैं, अपने पेरेंट्स का भी बहुत पैसा वो लगा देते हैं और उसके बाद जब पकड़ा जाता है तो हाल ही का केस है कि एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया सिर्फ इस बात से क्योंकि गेमिंग में पैसा बहुत लगा दिया था उसने और बाद में जब उसके घर वालों को पता चलता तो उससे वो डर गया था। और ये कुछ केसेस हैं जो दिल्ली NCR के हैं, ज्यादा दूर के नहीं हैं। कोई एक केस आता है जहां पर कोरियन कल्चर से इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बच्चे के, तीनों जो बहनें थी उन्होंने सुसाइड कर लिया। सो ये यंगस्टर्स को हम इंटरनेट की दुनिया से अलग भी नहीं कर सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें बचा के भी रखना है। सो कैसे पेरेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे या उन बच्चों को क्या एडवाइस करना चाहेंगे?
1: देखिए, मतलब एक तो इस बारे में एज अ पुलिस ऑफिसर एडवाइस है, तो एज अ पुलिस ऑफिशियल आई से कि आपको कुछ पेरेंटल कंट्रोल एप्स यूज करनी चाहिए टिल अ सर्टेन एज एटलीस्ट, कि आपको पता रहे कि फोन पे क्या है। मतलब अभी काफ़ी पॉपुलर पेरेंटल कंट्रोल एप्स हैं, वो कौन सी चीज़ें एक्सेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आप कुछ IPs भी ब्लॉक कर सकते हैं अपने घर के इंटरनेट से कि ये खुलेगा ही नहीं ये गेम। तो पेरेंट्स को तो कुछ ऐसे ऐप्स रखना अपने पास, एक आपको वॉच रखने की तो ज़रूरत है टिल अ सर्टेन लेवल, बिकॉज देखिए बच्चों का यही है कि जैसे पर्सपेक्टिव का प्रॉब्लम है, उनको अभी नहीं समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है, पर जब कुछ हो जाएगा तो फिर उसके बाद समझ में आएगा। और बच्चों के लिए भी, अगर ये कुछ बच्चे सुन रहे हैं और पेरेंट्स के लिए, एज नॉट अ पुलिस पर्सन, एज इन जनरल सेंस ये एडवाइस है कि आपको थोड़ा अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देना होगा ताकि वो आपसे इतना ना डरें कि कुछ हो जाए तो आपको बताएं ना। आपको उनको काउंसिल करके बस डराना नहीं है कि ये मत करो, क्योंकि देखिए काफी चांसेस हैं कि डराने से नहीं ये सिचुएशन सॉर्ट
2: आउट हो जाते हैं, शेयर करना बंद कर
1: दो। तो आपको उनको ये भी कॉन्फिडेंस दिलाने की जरूरत है कि बाय चांस कभी भी कुछ हो जाता है तो मुझे बताओ। हमारे लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो यही है कि वो बच्चे अपनी बात अपने पेरेंट्स से शेयर करें। सो बिकॉज वी आर इन द 21st century एंड काफ़ी पेरेंट्स ये समझते भी हैं मुझे लगता है आज के दिन, कि आपका रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ ऐसा होना पड़ेगा कि आपको वो कुछ इशू हो तो बताएं। एंड बिकॉज अ लॉट ऑफ मे बी टीनेजर्स और यूथ वुड बी लिसनिंग होपफुली, आई ऑल्सो वॉन्ट टू से कि देखो आपको अभी शायद नहीं समझ आए और हम जो बात कर रहे हैं आपको लगेगा कि ये न्यूज़पेपर में किसी के साथ हो रहा है या पता नहीं कहाँ हो रहा है दुनिया में, ये आपके साथ हो रहा है, आपके पड़ोसी के साथ हो रहा है। और मतलब ये ना हम कई बार इमेजिन नहीं कर सकते जो हम पढ़ते हैं दैट वी कुड बी देम, बट वी कुड एब्सोल्युटली बी देम अपार्ट फ्रॉम गेमिंग। मतलब कैजुअल कमेंट्स कई बार किसी की पिक्चर पे, कभी अपने प्राइवेट डेटा किसी से शेयर कर दिया फिर वो वायरल हो जाना, किसी का ब्लैकमेल करना, मतलब आप विक्टिम तो हो ही सकते हैं पर अगर आप ये किसी के साथ करते हैं जो एक कैजुअल बुलिंग आप जिसको समझ रहे हैं, पहले जो बुलिंग होती थी फिजिकल होती थी स्कूल्स में, उसमें फिर भी टीचर डांट देते थे एक बार को, अब जो साइबर बुलिंग है या साइबर क्राइम है, सेक्सुअल साइबर क्राइम है, उसमें आप एक ट्रेल छोड़ रहे हैं, अ ट्रेल दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, तो वो कंप्लेंट होगी तो उसके बाद एक्शन लिया जाएगा
2: जी।
1: तो यू हैव टू ऑल्सो बी अवेयर दैट दिस इज, हम जो करें इरिवर्सिबल है, वो क्लिक इरिवर्सिबल है। एक चीज आपने इंटरनेट पर डाल दी तो आप उसे डिलीट कर दो पर वो फॉरएवर इंटरनेट पे हो जाती है। सो वी हैव टू बी केयरफुल फ्रॉम बोथ हैंड्स, हमें विक्टिम भी नहीं बनना है और मतलब अनकॉन्शियसली विदाउट इंटेंशन हमें कल्प्रिट भी नहीं बन जाना है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रेन।
2: बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया उनमें एक बड़ा देश है जिसने बैन किया है। क्या आपको लगता है कि ये एक सॉल्यूशन है कि कुछ हद तक बच्चों के साथ होने वाले साइबर क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है?
1: देखिए, मतलब देर आर बोथ साइड्स टू इट, बट मुझे लगता है व्हेन वी बैन समथिंग तो हम थोड़ा सा उसका अट्रैक्शन भी कई बार बढ़ा देते हैं।
2: हाँ,
1: तो मतलब वो देखिए हमारे यहाँ अब फोन्स कितने रीजनेबली प्राइस्ड हैं, तो वो बच्चे एक फ़ोन खरीद के एक सिम कहीं से अरेंज करके स्कूल ले जाएं, एक दूसरे को दिखाएं और उसको हम मतलब डीमनाइज करें, तो ये तो आई थिंक एक पॉलिसी लेवल पे हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या हम बैन करके ये समझना पड़ेगा कि एक्सेस बंद कर सकते हैं. दूसरा ये भी पॉइंट है कि इंडिया जैसी कंट्री जिसमें इतने रिमोट एरियाज हैं, आज एजुकेशन गांव-गांव तक पहुंच रही है, लोगों के पास एक्सेस टू रीडिंग मटेरियल है, और जो चीज़ आप यहाँ फरीदाबाद में पढ़ रहे हैं इंडिया के सबसे रिमोट एरिया में भी बच्चे के पास वो है. दे कैन कम्पीट पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज और रिमोट एरियाज, पहाड़ पे बैठे बच्चे भी अब पहाड़ों पे आइलैंड्स पे कम्पीट कर सकते हैं. यू मस्ट बी सीइंग देयर इज सेक्युलराइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड एवरीबॉडी इज हियर. तो क्या वो एक्सेस बंद करना हमारे लिए ठीक है? क्योंकि इंटरनेट अगर आप लोगों के लिए बंद करेंगे तो उनके लिए भी करेंगे फॉर चिल्ड्रन. सो वी हैव टू असेस द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर इंटरनेट रहे भी तो उसे रेगुलेट करना जरूर एक पेरेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है. एन आइडियल तो वो वर्ल्ड होगा जहाँ हम बच्चों को समझा पाए कि आपको ये कैसे यूज करना है.
2: चैलेंज है पर कोशिश उसकी पहले करनी चाहिए.
0: सो दोस्तों, अगर आप भी अपने मन में कुछ सवाल रख के बैठे हैं अपने शहर की सुरक्षा को लेकर, साइबर क्राइम को लेकर अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं. नंबर बहुत आसान है 8010781078. अभी वक्त है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का. मैं हूँ दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम का नाम है सुरक्षा संवाद.

0: वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपके अपने शहर का पहला रेडियो स्टेशन सुन रहे हैं आप और मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है सुरक्षा संवाद। इस खास सीरीज को हम आपके लिए लेकर आते हैं फरीदाबाद पुलिस के साथ मिलकर, और आज हमारी खास मेहमान है DCP हेडक्वार्टर्स IPS 2019 बैच हिमाद्री कौशिक जी। जिनसे हम बहुत सारी बातें करें, लेकिन इन बातों के साथ साथ हम बात करें हैं करियर की भी, क्योंकि करियर के बारे में बात करना भी जरूरी है। जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या पुलिस सर्विसेज में होते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां अलग लेवल पर होती हैं, लेकिन चाहकर भी इस फील्ड में बहुत सारे बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि उन्हें सही रास्ता नहीं पता होता। तो स्वयं जानते हैं हिमाद्री जी से कि अगर कोई भी बच्चा या उनके माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा इन सिविल सर्विसेज की तैयारी करे तो कैसे शुरुआत होनी चाहिए और क्या खास तैयारी करनी चाहिए।
1: अब साइबर से हटकर थोड़ा सा चलते हैं एक आम इंसान की तरफ। लोगों को पुलिस से डर क्यों लगता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो अक्सर लोग कहते हैं ना कि पुलिस के चक्कर में नहीं फंसना है। अभी भी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बहुत रिपोर्ट्स रजिस्टर हो रही हैं, बहुत सारे जो क्राइम हैं वो रजिस्टर हो जाते हैं, पहले नहीं होते थे। पहले लोग 10-10 इकट्ठे होकर तब पुलिस स्टेशन जाते थे, जो हमने अक्सर देखा भी है, पहले ऐसा ही होता था। आज लोग ऑनलाइन फटाफट से रिपोर्ट रजिस्टर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक आम इंसान या फिर एक आम लड़की जो सड़क पर चल रही है, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो डरती है पुलिस के पास जाने से कि कहीं उसी पे कोई डाउट तो नहीं हो जाएगा, कहीं उसी को ही तो फंसा नहीं लिया जाएगा, या उसके घर वाले कहेंगे कि तुम पुलिस को क्यों इन्फॉर्म कर रही हो। सो ऐसे में पुलिस से लोग ना डरें और एक साथ देकर अपराध को रोकने में मदद करें, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कोई ऐसे नंबर्स या कोई ऐप जिसके थ्रू बिना पहचान के भी वो अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकें?
2: देखिए, इसमें दो साइड्स हैं। एक साइड तो पहली तो ये है कि डेफिनेटली आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप 112 पे कॉल कर सकते हैं। 112 पे आप जब कॉल करेंगे और अपना इशू बताएंगे, वहाँ कोई आएगा, एक्शन लेगा, और मतलब एनीबडी कैन कॉल एंड वी गेट अ लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम विमेन। एंड वेरी विद अ लॉट ऑफ प्राइड आई कैन से कि फरीदाबाद में एवरेज टाइम इज लेस देन 7 मिनट्स फॉर एन ERV टू रीच टू अ कंप्लेनेंट।
1: ओके,
2: तो वी आर रीचिंग इट, रीचिंग द प्लेस ऑल्सो इन टाइम। ऐसे भी आप कर सकते हैं, आप थाना जाके अपना इशू बता सकते हैं। देर आर विमेन पुलिस स्टेशन इन ईच जोन। एंड दूसरा साइड अगर मैं बताऊँ तो अनोनिमस कंप्लेंट्स का प्रॉब्लम ये है कि फिर वी आर अनेबल टू चेक कि ये मैलिशियस इंटेंशन से तो नहीं दी जा रही, क्योंकि देखिए विक्टिम तो वो भी होता है जिसके अगेंस्ट एक गलत कंप्लेंट आ जाए।
1: बिल्कुल।
2: तो ये वाला सिस्टम जब अनोनिमस कंप्लेंट से हम एक्शन लेते थे, तब हमें समझ में आया कि ये भी लोग मिसयूज कर रहे हैं अनोनिमिटी,
1: इस चीज का गलत
2: किसी पे एलिगेशन लगाने में उनके लिए भी हार्मफुल है। बट डेफिनेटली मैं हमारे इनिशिएटिव्स की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स अब हैं हमारे फोर्स में। देर आर अ लॉट ऑफ फीमेल ऑफिसर्स, फीमेल पोस्टेड इन महिला थाना, तो अगर वो जाना चाहें, अपनी समस्या बताना चाहें, जा सकते हैं। मैंने पर्सनली भी यहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स देखे हैं, कई उनके बाहर भी फीमेल्स और राइडर्स प्रेजेंट रहते हैं,
1: ताकि
2: PCRs खड़ी होती हैं, तो वो जाके उनको बता सकते हैं अगर उनके साथ ईव टीजिंग या इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है। प्लीज़ आप रिपोर्ट करो। और मैं पेरेंट्स को भी यही करूँगी कि आपको भी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चों को टू रिपोर्ट क्राइम, बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अ ड्यूटी टू आर ओन सेल्फ, टू आर सेल्फ एस्टीम, कि हमें अच्छा नहीं लगता हमारे साथ कुछ हो जाए, हम कुछ करें नहीं, एक इनजस्टिस लगता है। सो वी विल ट्राई आर बेस्ट टू एक्ट ऑन इट, एंड ऑल्सो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोसाइटी। हो सकता है आप नियरली मिस कर गए हो कोई क्रिमिनल, आपके साथ कोई चीज़ होते हुए, तो बाकी सबके सब भी उस चीज़ से बच सकते हैं। और रहा पुलिस से जो एक डर है उसकी बात, तो अब आई एम थिंकिंग इट्स अ लिटिल बेटर एंड आई होप इट विल गेट बेटर, कीप गेटिंग बेटर।
1: जी बिल्कुल। अब बहुत सारी बातें हमने आपसे क्राइम की कर ली हैं, शहर को ठीक करने की कर ली हैं, अब बच्चों के करियर के बारे में जैसे हमने शुरुआत में कहा था, हम बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं और सुन रहे हैं जो सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, UPSC या स्टेट सिविल सर्विसेज, उनका सपना होता है कि एटलीस्ट हम देश की सेवा इस तरीके से कर सकें। क्या तरीका होता है, क्योंकि आप एक अच्छी स्टूडेंट हैं स्कूल में, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए 10th और 12th में, उसके बाद आपने इंजीनियरिंग करी बिट्स पिलानी से, और उसके बाद साथ साथ सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करी, आप मास्टर्स भी करी आपने, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये एक ट्रैक आपका शुरू से ही था कि सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है, या फिर बाद में फील हुआ कि मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो ये भी जरूर ट्राई करना चाहिए या गाइडेंस मिली क्या?
2: देखिए मैं अपना पहले आपको अपना पर्सनल जर्नी बताती हूँ. मैंने ट्वेल्थ के बाद मैंने इंजीनियरिंग करी, मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया और मैं बिट्स पिलानी गोवा कैंपस में केमिकल इंजीनियरिंग करी. दैट पॉइंट इन टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं था कि सिविल सर्विसेज देना है
1: जी.
2: मैंने एक सिक्स मंथ्स आई ऑल्सो वर्कड फॉर सिक्स मंथ्स इन एन इन्वेस्टमेंट बैंक एंड वो मुझे बहुत अपील नहीं किया. एंड काफ़ी टाइम से मेरे को रीडिंग का काफ़ी शौक था, तो द मोर आई बुक्स आई वुड रीड अबाउट आर हिस्ट्री या इंडिया, मुझे लगता था कि ये भी एक फील्ड है जहाँ पे हम कुछ सब्सटैंटिव वर्क कर सकते हैं जिससे हमें एक्चुअली सेटिस्फैक्शन मिले. तो फिर उसके बाद मैंने अपना जॉब छोड़ के ये सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी. एंड फॉर्चुनेटली मेरा पहले इनकम टैक्स IRS इनकम टैक्स में हो गया 2017 में और 2019 में IPS में. ये तो मेरी पर्सनल जर्नी रही है, सबकी अपनी अलग जर्नी होती है. कुछ लोगों को बचपन से अपनी कॉलिंग पता होती है कि
1: यही
2: करना है, UPSC करना है. कुछ लोगों को बाद में पता लगता है, इट डज नॉट मैटर. जब भी अगर आपको ये करना है, बट स्टिल एक चीज़ पे मैं बहुत स्ट्रेस करूँगी कि आपको अपने ग्रेजुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. कि आप UPSC देने के लिए आप ऐसे नहीं कर रहे हो कि आप पढ़ाई कॉलेज में ना पढ़ाई करो. या मैं मुझे काफ़ी लोगों ने कई बार पूछा, हम ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लें जहाँ जाना ना पड़े, क्लासेस
1: साथ
2: तैयारी करते रहें. तो मुझे इन माई पर्सनल ओपिनियन ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है. कॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. एट द एंड ऑफ द डे आप वहाँ से जो चीज़ सीख के निकलेंगे, भले ही आप इंजीनियरिंग करें, मेडिकल करें, कॉमर्स करें, आर्ट्स करें, उससे भी आपकी एक मतलब उससे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बनती है, एक लर्निंग बनती है टू बी वेरी प्रैक्टिकल. सिविल सर्विसेज काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम है.
1: Absolutely.
2: और मैं तो ये भी कहती हूँ कि आई हैड अ लॉट ऑफ लक ऑन माई साइड. एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड. इतने सारे बच्चे हैं कंट्री में जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं. मेरे जितनी ही पढ़ाई काफ़ी लोगों ने भी की होगी, बट बहुत ज़्यादा एलिमेंट ऑफ लक इन्वॉल्व है
1: जी.
2: सो यू कैन नॉट जस्ट थ्रो ऑल ऑफ इट I feel a lot of people do not agree with me, but I feel that you should do your graduation properly. Give due respect to that degree, or aap usko, you should earn that degree.

0: और उसके बाद टाइम है, अब तो आप एक ग्रेजुएशन कर लें, आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लें, तो
1: भी
0: यू कैन गिव योर 5 अटेम्प्ट्स इफ यू वांट और हाउएवर मेनी यू वांट, तो उसमें कोई इशू नहीं है. फिर आप उसकी तैयारी करें. एंड फॉर प्रिपरेशन, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स आई कीप सेइंग एंड इट गोज बैक टू आवर अर्लियर डिस्कशन, कि आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं.
1: बिल्कुल,
0: बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं. तो पर्सनली मैंने 3 साल जो मेरा मतलब दोनों अटेम्प्ट्स और प्रिपरेशन मिला के 3 साल मैंने सारा सोशल मीडिया डिलीट कर दिया. आई वॉज नॉट ऑन फेसबुक, नॉट ऑन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे मैं थी एंड टू टॉक टू माई पेरेंट्स. आई रिमेंबर एक फ़ोन लॉक ऐप है, सो आई टू लॉक माई फ़ोन फॉर 12 आवर्स सो दैट आई डोंट लुक एट इट. मैं मतलब कहीं नहीं, मेरे सब फ्रेंड्स वर वर्किंग, कोई इंडिया में कोई इंडिया के बाहर, तो मुझे ये था कि अगर मैं सोशल मीडिया पे इतना टाइम स्पेंड करूँगी तो मैं यही सोचते रह जाऊँगी कि यू नो बाकी लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, मैं क्यों
1: सिर्फ पढ़ रही हूँ,
0: बैठ के एक रूम में पढ़ रही हूँ. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ समथिंग आई फाइंड इन कॉमन विद एवरी वन जो अब सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करें, कि उन्होंने अपने डिस्ट्रैक्शन लिमिट कर लिए. क्योंकि ना वो सोशल लाइफ के साथ साथ देने वाला तो थोड़ा ये एग्जाम नहीं है.
1: बिल्कुल,
0: इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क.
1: एब्सोल्युटली.
0: And मतलब I'm saying that more hard work than IQ in that sense, because the syllabus is so vast.
1: Absolutely.
0: That if you think you are smart enough to do it without hard work, it is going to be quite disappointing.
1: बिल्कुल.
0: आपको लगता है हम बहुत intelligent हैं, हमसे ऐसे हो जाएगा, तो वो
1: ऐसा नहीं होता.
0: मुझे मुश्किल लगता है.
1: मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपके 12th में या 10th में 95+ marks आए हैं, percentage आपकी अच्छी आई है, graduation भी आपने बहुत अच्छे marks से करी है, और फिर आपको लग रहा है अरे हम तो IAS बन ही जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है. IAS वो भी बन सकता है जो 67% लाया हो. Absolutely. क्योंकि वो फिर उसकी तैयारी अपने तरीके से करता है, मेहनत से करता है. और जैसा हिमाद्री जी ने कहा कि सोशल मीडिया 3 साल के लिए बंद किया था, तो एक्चुअली में सोशल मीडिया बंद करने से आपके डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं. दुनिया में क्या चल रहा है ये आपको अखबार के थ्रू पढ़ना होता है सुबह सुबह उठ के. द हिंदू काफ़ी फेमस है इसके लिए, जिसको आप सुबह उठते ही देखें, और देखने के बाद आपको पढ़ना होता है उसको अच्छे से, 1 घंटा लगाकर 1.5 घंटा लगाकर, उसके बाद आप बाकी चीज़ों का टाइम टेबल बना के चलते हैं, तो मुझे लगता है चीज़ें ज़्यादा बेटर होती हैं.
0: एब्सोल्युटली.
1: सो करियर से जुड़ी बातें भी चल रही हैं और सुरक्षा से जुड़ी बातें भी चल रही हैं. हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं IPS हिमाद्री कौशिक जी, DCP हेडक्वार्टर्स फरीदाबाद पुलिस. वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का.

0: गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम सुरक्षा संवाद, खास पहल हमारी आप तक आपकी सुरक्षा से जुड़े कुछ सवाल पूछने की एक्सपर्ट्स द्वारा यानी ऑफिसर्स द्वारा। और हमारे साथ आज स्टूडियो मौजूद हैं डीसीपी हेडक्वार्टर्स हिमाद्री कौशिक जी, आईपीएस 2019 बैच, और इनसे हम बातचीत करें हैं बहुत सारी आप ही की सुरक्षा को लेकर, आपके अपने शहर को लेकर, साइबर क्राइम को लेकर, लेकिन साथ ही सिविल सर्विसेज के बारे में भी बातचीत जान रहे हैं और इनके जीवन से जुड़ी हुई कैसे वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज किया जाए, ये भी कुछ सवाल हैं जो हम इनसे जरूर पूछ रहे हैं। हिमाद्री जी, जब आपने तैयारी करी सिविल सर्विसेज की तो कोचिंग लेने का कंसेप्ट, क्योंकि आजकल कोचिंग जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, दिल्ली फेमस है कोचिंग के लिए, और जैसा कि राजेंद्र नगर में बहुत सारे आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, बच्चे आते हैं पढ़ाई छोड़कर, यहाँ पर बहुत फीस देते हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े टीचर्स आज की तारीख में जो फ्री में ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, और जिसकी वजह से बहुत बदलाव भी आया है कि छोटे छोटे गाँव के बच्चे, छोटे छोटे शहरों के बच्चे बाहर निकल कर आ रहे हैं, सिविल सर्वेंट बन रहे हैं। सो आप क्या कहना चाहेंगे कि कोचिंग लेना ऐसे फिजिकली ज्यादा फायदेमंद है, अगर कोई दिल्ली एनसीआर का बच्चा है तो वो जरूर ले, या फिर सिर्फ आप ऐसी कोचिंग जो ऑनलाइन आपको मिल रही है उससे भी आप आगे बढ़ सकते हैं?
1: देखिए, मैं अपना पर्सनली बताऊं तो वैसे आई एम फ्रॉम देहरादून, बट आई डिड मूव टू दिल्ली फॉर सिविल सर्विसेज प्रेपरेशन, बट समहाउ मेरा टाइमिंग ऐसे हो गया दैट आई कुड नॉट जॉइन कोचिंग।
0: ओके,
1: आई जॉइंड अ कोचिंग, आई कुड नॉट अटेंड, क्योंकि मैं वो कोचिंग से पहले ही प्रीलिम्स दे दिया था इस तरह से, जो भी मतलब बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेज मैंने जीएस की कोचिंग नहीं कर पाई, एंड समहाउ डिस्पाइट बीइंग एन इंजीनियर आई डिसाइडेड टू टेक इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, तो उसमें भी मोस्टली सेल्फ स्टडी ही रहा। सो आई थिंक विदाउट कोचिंग इट्स डेफिनेटली पॉसिबल, अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट, और ऑनलाइन इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं
0: एब्सोल्युटली
1: कि आप 100%, अगर आपके पास उस चीज़ का एक्सेस नहीं है तो भी आप कर सकते हैं और बिल्कुल कर सकते हैं, और अगर वो अफोर्डेबल चॉइसेस नहीं है, देखिए ऐसा है कई लोगों का लाखों नहीं खर्च करके होता, कई लोगों का बिल्कुल अपने आप से घर पे बैठ के पढ़ के भी हो जाता है, बट वन थिंग थोड़ा सा ये था कि व्हाई वुड आई मूव अवे फ्रॉम होम, फिर वो एनवायरनमेंट थोड़ा सा हेल्प करता है,
0: पढ़ाई का एक माहौल
1: चाहिए होता है, घर पे मतलब थोड़ा कम्फर्ट होता है, देखिए कम्फर्टेबल एटमोसफियर में वो खुद को वो पिंच नहीं होता है, तो ना केवल वो डिफिकल्ट जगह है वो, मतलब घर इतने ऐसे हैं, एक एक रूम में सब रह रहे होते हैं, अपना कर रहे होते हैं, दैट प्लेस इज डिफिकल्ट, बट आप नीचे, आप वहाँ पे बाहर जाते हो तो आपको दिखता है कि सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कोई ना कोई बुक पे है, कोई बुक ले रहा है, कुछ कर रहा है, तो दैट हेल्प मी, इफ इट्स द काइंड ऑफ थिंग दैट हेल्प्स यू तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कितने लोग घर से कर रहे हैं। और कोचिंग, तो कोचिंग का फ़ायदा ये है कि बिकॉज जैसे मैंने कहा सिलेबस इतना वास्ट है, तो मुझे ऐसा लगा अगर कोचिंग लेते हैं तो आपको थोड़ा जल्दी पता लग जाता है कि क्या पढ़ना है, बट फॉर श्योर दैट कोचिंग इज़ नॉट गोइंग टू, मतलब दैट इज़ नॉट द थिंग जिससे आपका क्लियर होने वाला है, मैक्सिमम वो थोड़ा एड कर देगा, बट 95% आपका खुद का एफर्ट है।
0: बिल्कुल, आपको थोड़ा सा तरीका बता देगा कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बट पढ़ना आपको ही है तो उसके लिए फोकस आपको करना होगा। और मुझे लगता है आजकल YouTube पर इतनी वीडियोस हैं कि अगर आप एंशियंट हिस्ट्री को उठाते हैं और उसका एक टॉपिक अगर आप मौर्य डाल देते हैं तो मौर्य डायनेस्टी के लिए इतनी वीडियोस आ जाती हैं कि आप उसको इजीली समझ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, वीडियोस हैं, रिसोर्सेज हैं, रिटन रिसोर्सेज हैं, न्यूज, मतलब इवन, बट ये मैं कहूंगी न्यूज, जैसे आपने कहा न्यूज पेपर जरूर पढ़ना चाहिए, लोग न्यूज कंपाइलेशन पढ़ते हैं, बट न्यूज इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर न्यूज पेपर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और एनसीईआरटी की किताबें जो आप बचपन में मिस कर जाते थे, सिक्स क्लास ऑनवर्ड्स वाली, आपको लगता था सिर्फ एनुअल एग्जाम के लिए चाहिए, वो आपको पढ़नी पड़ेंगी दोबारा से, वो आपको समझनी पड़ेंगी, एक एक लाइन आप उसमें से मिस नहीं कर सकते, एक एक डायग्राम भी आप छोड़ नहीं सकते। सो बहुत सारी तैयारी चाहिए होती है, लेकिन तैयारी के बाद जो रिजल्ट आता है वो कमाल का होता है, बहुत खुशी देता है। अब हिमाद्री जी, जो आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वर्क लाइफ बैलेंस और फैमिली में अगर दो सिविल सर्वेंट्स एक साथ रह रहे हैं, मैं हमारे लिसनर्स को और व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगी कि हिमाद्री जी के जो बेटर हाफ हैं वो फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर हैं और वो भी एक आईएएस ऑफिसर हैं, सो ये घर में जो माहौल रहता है बहुत सीरियस रहता है, क्योंकि इतनी सारी, आप जो हैं वो आप पुलिस विभाग में हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है 24 घंटे कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता होगा, तो उसको कैसे बैलेंस करते हैं?
1: जी एक्चुअली फॉर्चुनेटली हम कॉलेज बैच में थे, मतलब कॉलेज सेम कॉलेज एक बैच आगे आयुष उस फिल्म में, तो आई फील दैट वैसे तो जोवियल ही रहता है घर पे, तो हम कोशिश करते हैं काम की बात ही नहीं करें, बट ऑब्वियसली दिन के इश्यूज होते हैं उसके बारे में एक दूसरे में जानते हैं, सो वी डिस्कस इट समटाइम्स, बट ऑल्सो फॉर्चुनेटली आई हैव टू चिल्ड्रेन, टू लवली चिल्ड्रेन, तो उनके साथ वेन एवर आई गो बैक होम तो बिल्कुल भूल जाता है आदमी दिन कहाँ गया कैसा गया, एंड दैट बिकम्स योर होल थिंग. वाइल्ड चैलेंजेस हैं, ऑफकोर्स चैलेंजेस हैं, टाइम लिमिटेड होता है दोनों सर्विस में है, बट पर्सनली बहुत अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाती है, आप दूसरे इंसान के इश्यूज समझ सकते हैं, दैट आई नो कि if he's not able to come somewhere, I completely understand because half the time I'm not able to go somewhere. Yeah. तो हमारे वो वाले hassles कम रहते हैं
2: कि दूसरे को समझते हैं
1: कि तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, जब we don't have that, we try to support each other. थोड़ी बहुत तैयारी भी साथ में की थी, सो वी अंडरस्टैंड दैट स्ट्रगल, सो ऑल इन ऑल इट इज़ गोज़ फाइन एंड नॉट एट ऑल सीरियस, बिल्कुल भी सीरियस माहौल नहीं रहता, वी ट्राई टू, आई हैव टू चिल्ड्रन एंड वन डॉग एंड ऑल ऑफ अस ट्राई टू स्पेंड द इवनिंग्स टुगेदर एंड हैव अ गुड टाइम.
2: बिल्कुल. अब मैं आपसे यही जानना चाहूँगी चलते चलते कि क्या टिप्स देना चाहेंगी उन लोगों को जो आपको भी देख रहे हैं सुन रहे हैं और अपने बच्चों को सिविल सर्विसेज की तरफ थोड़ा सा इंस्पायर करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो वाकई आप जब ब्यूरोक्रेसी में होते हैं तो आप कुछ बदलाव लाने की ताकत रखते हैं. हम कमियां बहुत निकालते हैं कि इस सोसाइटी में ये ठीक नहीं हो रहा है या ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए, लेकिन पॉलिसी मेकर एक्चुअली में आप तभी बनते हैं जब आप सिविल सर्विसेज की तरफ जाते हैं, या तो आप पॉलिटिशियन हो, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है. तो ये एक रास्ता है एक आम इंसान के लिए देश को बदलने का.
1: जी डेफिनेटली, मैं अगर पेरेंट्स या स्टूडेंट्स इस करियर की तरफ थोड़ा भी इंक्लाइंड हैं तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं आपको थ्री पर्सपेक्टिव से बताऊँगी. सबसे पहला, क्या आप एक्चुअली कुछ कर सकते हैं? मैं इतना ज़्यादा फारफिश तो नहीं कहूँगी कि आप कुछ बदल सकते हैं, क्योंकि वो तो आगे जाके होता है. क्या आप लोगों की मदद कर सकते हैं? आप रोज़ एक एक दिन इतने लोगों से मिलेंगे जो इतनी ज़्यादा, मतलब इतने परेशान होंगे, उनकी कुछ आवश्यकताएं होंगी, कई लोगों को शायद आप मदद ना कर पाओ, पर रोज़ आप जब ऑफिस जाओगे आप ऐसे 10-15 लोग होंगे जिनके लाइफ में आप कुछ बेटर कर सकते हो, जो आपके पास अपने सबसे दुखी और सबसे, स्पेशली पुलिस में मैं देखती हूँ, सबसे वल्नरेबल में आते हैं, एंड यू कैन हेल्प देम. सो देर इज़ डेफिनेटली अ सेटिस्फैक्शन ऑफ डूइंग समथिंग सब्सटेंटिव दैट हेल्प्स पीपल, अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर है. सेकेंडली, अगर आपके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर है जॉब सेटिस्फैक्शन, तो मतलब नॉट टू साउंड लाइक, बट वेरी ऑनेस्टली, आपको इस एज पे, जो जिस एज पे आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करोगे, जो एक्सपोजर मिलेगा इट इज़ ट्रिमेंडस. वो मतलब आपको इतनी ज़्यादा वर्किंग्स ऑफ द गवर्नमेंट और जिस लेवल पे आप ज्वाइन करोगे, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू नो यू विल नॉट फाइंड इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, तो वो भी काफ़ी अच्छा करियर पाथ रहता है. एंड द थर्ड थिंग आई वॉन्ट टू से इज़ दैट पेरेंट्स अपने बच्चों को मोटिवेट करें इस चीज़ के लिए, और फॉर द राइट रीजन्स टू, एंड आई एम श्योर ऑल रीजन्स आर राइट रीजन्स इन दैट सेंस, पर आप उनको बताएं कि ये एक करियर है वेर यू विल फाइंड जॉब सेटिस्फैक्शन, इट इज़ नॉट अ जॉब, इट इज़ अ करियर, एंड यू विल फाइंड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ डिफरेंस एट द राइट प्लेसेस. और ओवरऑल मुझे लगता है सेटिस्फैक्शन रेट सर्विसेज में काफ़ी रहता है, पीपल आर जनरली हैप्पी विद वेयर दे आर, सो बट आई वुड प्रेफर इफ पीपल डिड नॉट चेज इट फॉर द रॉन्ग रीजंस, लाइक दे वांट सम पावर और सम व्हाटएवर, वो होगा तो होता तो वो भी है, बट फिर भी मतलब दैट इफ दैट इज नॉट द मोटिवेशन आई थिंक इट्स बेटर.
2: जी बिल्कुल, यानी सेवा पहले पावर बाद में, अगर आप वो चीज लेके चलेंगे तो शायद सक्सेसफुल भी जल्दी होंगे और कुछ बदलाव ला पाएंगे आप सोसाइटी में. फुटबॉल बहुत अच्छा खेली है ये अपने कॉलेज में, और ये एक जवाब भी था जो इनके लिए इंटरव्यू में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ था. चलते चलते बस ये भी बता दीजिए कि ये फुटबॉल का जो प्यार था आपका, इसने वाकई आपको, क्योंकि जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो उसमें सिविल सर्विसेज का जो आपने इंटरव्यू दिया उसमें ये बहुत बड़ी एक चीज साबित हुई थी कि एक लड़की फुटबॉल इतना ज्यादा खेलती है और उसने अपने फॉर्म में भी फिल किया हुआ है.
1: जी बिल्कुल, एक्चुअली मेरा इंटरव्यू वाज वन ऑफ द रीजंस आई मेड इट. तो मुझे जो सर थे मेरे पैनलिस्ट वो ही वॉज वेरी एंड आई न्यू अबाउट हिम, वो काफ़ी मतलब ही वॉज अ वेरी रिनाउंड पर्सन, और थोड़ा सा मुझे लगता है मुझे इंस्टिगेट करने के लिए ही सेड कि लड़कियाँ थोड़ी फुटबॉल खेलती हैं, तो आई आंसर्ड इट फॉर हिम एंड वेरी प्लेजेंटली, बिकॉज एक्चुअली क्या होता है ना, आप थोड़े से फेमिनिस्ट टाइप के होते हो तो आप इस बात पे गुस्सा हो जाते हैं, तो बट आई न्यू टू नॉट रिएक्ट बिकॉज आई ऑल्सो न्यू अबाउट हिम एंड यू नो आपको इंटरव्यू में टेस्ट करेंगे, तो ही आस्क्ड मी हाउ कम, सो आई टोल्ड हिम ऑनेस्टली बचपन से काफ़ी कजिन्स वगैरह होते थे तो हम लोग साथ में फुटबॉल खेलते थे, नेचुरली आई वॉज बेटर एट फुटबॉल, तो आई वॉज प्रिपेयर्ड बिकॉज मैंने फुटबॉल लिखा था कि उसके बारे में टेक्निकल कुछ पूछ सकते हैं इंडियन टीम के बारे में, तो आई आंसर दोज थिंग्स एंड एंड अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स इट्स ऑलवेज बीन अ पैशन, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, अब अपॉर्चुनिटी कम मिलती है।

0: टॉपिक आपके साथ डिस्कस करके और मुझे भी खुद भी कुछ इनसाइट्स मिले वो आपसे बात करते हुए जी।
1: So, बहुत सारी बात हमने आज सुरक्षा संवाद में की है। ज्यादा अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमारी इंटरनेट रेडियो ऐप रेडियो मानव रचना iOS और प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और साथ ही किसी के साथ भी शेयर करना चाहें दुनिया भर में आप शेयर कर सकते हैं। हमारी YouTube वीडियो या Instagram पर अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत।

0: Ryan Narang and you're listening to Radio Manarachana 107.8. Feel good, feel light.
1: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आपको तो पता ही है मानवता की राह पर एक खास कार्यक्रम, जिसमें हर हफ्ते मैं आपको ऐसे शख्स से मिलवाती हूँ जो मानवता की राह पर चल रहे होते हैं, जिनमें आज भी इंसानियत जिंदा है। एक तरफ हम सब ये कहते हैं कि आज के जमाने में इंसानियत खत्म हो गई है और इंसान इंसान न होकर मशीन बन गया है, सेल्फिश हो गया है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंसानियत को जिंदा रखे हुए हैं और अपनी इस दुनिया से और साथ के साथ अपने इस खूबसूरत से जेस्चर से बहुत सारे लोगों का जीवन बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम जिनसे बात करने वाले हैं, उनका नाम है कविता वैद्य गुप्ता। कविता गुप्ता जी को-फाउंडर हैं विन ओवर कैंसर की। इसी के साथ साथ ये इन्वेंटर हैं इंडिजीनियस कॉटन फैब्रिक बेस्ड ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस की, और इसी के साथ साथ देखा जाए तो ये टेडेक स्पीकर भी हैं। ढेर सारे अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं। और महिलाओं की मैं बात करूं, वेमेन ऑफ इंडिया अवार्ड 2016 इन्हें मिला है, इंडियन वेमेन अचीवमेंट अवार्ड 2017, नारी चेतना अवार्ड 2018 और अवार्ड बाय वेमेन इकोनॉमिक फोरम 2019। जिस तरीके का काम ये कर रही हैं, मुझे पता है आने वाले समय में जो सवाल मैं पूछूंगी, जो कहानी आप सुनेंगे, आपकी आंखें नम जरूर होने वाली हैं। लेकिन ये कहानी इतनी ज़रूरी है कि आप तक ज़रूर पहुंचे, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जो शायद हम सबको पता होनी चाहिए। सो आज मानवता की राह पर मैं चलने वाली हूँ कविता वैद्य गुप्ता जी के साथ, और उसके लिए मैं करूंगी इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
2: थैंक यू भावना, थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन।
1: कविता जी, सबसे पहला सवाल, विन ओवर कैंसर, यानी डेफिनेटली आपका जो एनजीओ है ये कैंसर के लिए काम करता है, मुझे बताइए इसका ओरिजिन और इसके ओरिजिन के पीछे का कारण क्या रहा?
2: इसके ओरिजिन के पीछे मेरे हस्बैंड थे, सीए अरुण गुप्ता, और ये उनका ही इनिशिएटिव था। जब उन्हें खुद कैंसर डायग्नोज हुआ
1: जी,
2: तब उन्होंने और कैंसर पेशेंट से बात करनी शुरू करी, और उन्होंने देखा कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कॉमन है कैंसर पेशेंट्स में। तो उन्होंने एक जज्बा दिखाया कि नहीं, मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं काम करना है, मुझे और पेशेंट्स की भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और इस एनजीओ का जन्म मैं कहूँगी एक हॉस्पिटल रूम से हुआ, जहाँ पे उनको खुद कीमो लग रही थी, और वहीं से हमने ये काम करना स्टार्ट करा। सबसे पहले हमने देखा कि क्या कॉमन प्रॉब्लम्स आ रही हैं कैंसर पेशेंट्स को, हम उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं, हम किस तरह से कैंसर के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं। तो इस एनजीओ की जो शुरुआत है वो 2015 में हुई, और जिस समय मेरे हस्बैंड अपने, जिसे कह सकते हैं, वर्स्ट कीमोज ले रहे थे उस टाइम पर
1: जी।
2: जब लोग अपना जज्बा छोड़ देते हैं, उस टाइम पे ना सिर्फ हमने अपना जज्बा संभाला, हमने प्रेरणा दी और कैंसर पेशेंट्स को भी उससे लड़ने के लिए।
1: देखिए भाई, दिल को छूने वाली कहानी। जैसे अगर आप देखें, अक्सर लोगों को अगर किसी भी जटिल या फिर ऐसी बीमारी होती है जिसे हम जानलेवा कहते हैं, ऐसी बीमारी होने पर लोग ये नहीं सोचते हैं कि चलिए मैं औरों की जान बचा लूं, हर इंसान ये सोचता है चलिए अपनी पीड़ा कम कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर मानवता कूट कूट कर भरी होती है, और शायद कुछ ऐसे ही, मुझे ऐसा लगता है कि खास लेजेंडरी अरुण जी रहे जिन्होंने शुरुआत की विन ओवर कैंसर की। यानी खुद तो एक बहुत ही जटिल लड़ाई वो लड़ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाने की कोशिश की, और उनके इस सपने को आगे लेकर जा रही है ना सिर्फ उनकी पत्नी कविता गुप्ता जी, लेकिन साथ के साथ उनकी दो बड़ी प्यारी बच्चियां भी। कविता जी, ये तो मैंने लोगों को बताया कि आप अलग किस्म की ब्रेस्ट प्रोथेसिस और ब्रास बनाती हैं उन सभी महिलाओं के लिए जिन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हो चुकी होती है और उनके ब्रेस्ट का रिमूवल हो चुका होता है। अब मुझे बताइए कि आप कैंसर पेशेंट्स की मदद कैसे करती हैं?
2: सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो मैंने प्रोस्थेसिस इजाद किया, इसके पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है
1: जी।
2: जब मेरे हस्बैंड के कीमोस चल रहे थे 2016 में, उस टाइम पर उनका इलाज कर रहे थे डॉक्टर सुमन
1: जी।
2: एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि मैम, आप लोग एनजीओ चला रहे हो तो आप मेरे ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स जो हैं, जो गरीब तबके से हैं, उनको ये प्रोस्थेटिक ब्रा सर्जरी के बाद नहीं मिलता है पहनने के लिए, क्योंकि ये किसी भी पैनल में नहीं आता है, ये कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं करती है और वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आप प्लीज़ इनको कहीं से डोनेट करवाइए। तो वो मैंने उस टाइम पर मुझे खुद नहीं पता था कि प्रोस्थेटिक ब्रा क्या होती है। पहले मैंने इंटरनेट की मदद से खुद समझा कि ये क्या होती है, इसकी क्या ज़रूरत है। फिर मैंने उस समय, क्योंकि हमारा इसमें कोई भी नॉलेज नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने एक और एनजीओ से वो ब्रा एक पेशेंट को दिलवाई, जो कि डॉक्टर साहब ने उसको बहुत नकारा, मुझे गुस्सा किया कि मैम ये फोम की बनी हुई है और ये पेशेंट्स को और ज़्यादा नुकसान करेगा, हीट होएगी, बैक्टीरिया पनपेगा, स्वेट होगा, फ़ायदा करने की बजाय नुकसान देगा। साथ में उन्होंने मुझे समझाया कि ये सिर्फ हम सोचते हैं कि औरतों के लिए कॉस्मेटिक यूज़ है, कि सिर्फ उनको लगे ना कि हमारी एक ब्रेस्ट नहीं है दूसरी, एक कॉस्मेटिक बाहरी सुंदरता के लिए, जबकि इसका एक मेडिकल यूज भी है। इसके अंदर थोड़ा वेट होना चाहिए, जिससे कि जो बॉडी में हमारे दोनों तरफ भगवान ने वेट इक्वल दिया है, जब हम एक लेडी की ब्रेस्ट रिमूव कर देते हैं तो बॉडी की एक तरफ से उसका थोड़ा वेट भी हट जाता है।
1: yes.
2: तो इस वजह से लॉन्ग रन में जाके उसको लेडी को कंधे में दर्द रहने लग जाएगा, उसके कमर में दर्द रहने लगेगा धीरे धीरे, और बहुत केसेस में लॉन्ग टर्म में स्पाइन तक टेढ़ी होने लग जाती है।
1: oh my God.
2: तो इसके ये इसका मेडिकल यूज है और ये जरूरी है पेशेंट्स को पहननी। तब मैंने ये सब चीज समझ के मैंने उनसे प्रश्न किया कि सर फिर हम क्या कर सकते हैं इस चीज के। तो उन्होंने बोला आप खुद सोच लो, आप खाली बैठे रहते हो यहाँ हॉस्पिटल में सारा दिन। और वो चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं छू गई। और सबसे पहले मैंने जो ओपीडी में और ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स आते थे जो हॉस्पिटल में एडमिट, मैंने उनसे बात करनी शुरू करी, तो पता चला कि इस चीज़ की नीड इतनी ज़्यादा है कि एक लेडी के लिए अपनी ब्रेस्ट का खोना और ज़्यादा शॉकिंग होता है कैंसर से डायग्नोज होने के।
1: बाप रे,
2: कहते हैं कि कैंसर से तो मुझे पता है मैं ठीक हो जाऊंगी, डॉक्टर ठीक कर देंगे, पर मेरी ब्रेस्ट तो नहीं वापस आएगी, मैं कभी सुंदर तो नहीं लगूंगी।
1: ओह माय गॉड,
2: तो वो चीज मुझे कहीं ना कहीं छू गई। मैंने कहा क्या कर सकती हूँ, क्या सोच सकती हूँ। मुझे दिमाग में आया कि इंडिया में हम कॉटन फैब्रिक यूज करते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि कॉटन अपने आप में एंटी माइक्रोबल होता है, तो क्यों ना मैं उससे कुछ करूँ। और बस वहीं से वो शुरुआत हुई, और मैं कुछ प्रोटोटाइप बनाती थी घर पे कॉटन फैब्रिक्स को यूज़ करके, फिर डॉक्टर सुमंत को दिखाती, फिर वो मुझे फीडबैक देते थे कि इसमें अब आप सॉफ्टनेस लेकर आओ, इसमें इस तरह से यूज़ हो। तो 6-8 महीने में मेरा प्रोडक्ट तैयार हो गया, और दिसंबर 2016 से हमने ये प्रोस्थेटिक ब्रा जो है सबसे पहले एम्स में फ्री बांटनी स्टार्ट करी
1: जी।
2: और तब से आज तक हम 10,000 पेशेंट्स को ये बांट चुके हैं, कितनी सारी महिलाओं को। और हम हर साल एक फीडबैक लेते हैं जिसमें पता चलता है कि कितनी खुश हैं वो औरतें ये पाकर, कितनों ने घर से बाहर जाना शुरू कर दिया, कईयों ने अपनी नौकरी वापस ज्वाइन कर ली है
1: जी।
2: इसकी वजह से बहुत सारी लेडीज ऐसी थीं कि जिन्होंने मतलब उनको शर्म आती थी अपने बेटे अपने और रिलेटिव्स के सामने जाने में, वो अब बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही हैं सब तरह। तो ये देख के एक बहुत दिल को राहत मिलती है एक बहुत ज़्यादा, कि हाँ एक मैंने कुछ ऐसा इजाद किया जो आज हज़ारों हज़ारों महिलाओं को मदद कर रहा है।
1: वाकई देखिए, एक तरफ तो मेडिकल ट्रीटमेंट जो ढेर सारे ऑन्कोलॉजिस्ट करते ही हैं, लेकिन अगर हम इमोशनल सपोर्ट की बात करें या उस चीज़ की बात करें जो शायद एक महिला की पहचान होती है, उनके स्तन, और अगर वो स्तन ही रिमूव कर दिया जाए तो ना वो तरीके से कपड़े पहन सकती हैं, क्योंकि क्या सारी कैंसर की जितनी भी पेशेंट्स हैं उन महिलाओं के लिए अलग कपड़े डिज़ाइन किए जाएंगे। और ये एक बहुत चैलेंजिंग कंडीशन है जहाँ आप अपने जीवन के काफ़ी साल स्तन के साथ होते हैं और सडनली वो रिमूव कर दिया जाता है, तो आप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन उन्हें वो कॉन्फिडेंस वापस देने की कोशिश कर रही हैं कविता गुप्ता जी। सो अब बात करते हैं कविता जी आपकी इस पूरी टीम की। एक तरफ तो आपको ये ख्याल आया कि चलिए भाई महिलाओं के लिए स्तन बहुत जरूरी है और उनके लिए ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस लिया जाए, और उसी के साथ साथ उनके लिए इस प्रकार की ब्रास बनाई जाए जिससे कि वो उन्हें पहन सके। बट ये काम बिल्कुल आसान नहीं होगा। घर पर 6 महीने में आपने जब एक प्रोडक्ट डेवलप किया तो उसको इतने सारे लोगों के लिए डेवलप करना बड़ा मुश्किल हुआ होगा। सो कैसे शुरुआत की, कैसे है आपकी टीम और कैसे कर पाती हैं ये काम?
2: मेरी टीम में आज मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरी टीम में 99% लेडीज हैं
1: जी.
2: उसमें से मोस्टली अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से है. एक रूरल हरियाणा के गांव में हमने अपनी वर्कशॉप लगाई है जहाँ पर 5 से ज्यादा लेडीज आज की डेट में काम करती हैं. ये ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस बनाती हैं वहाँ पर
1: जी.
2: और उनके अंदर भी मैं चेंज देख रही हूँ. पिछले 5 साल में कितना सशक्त हुई है वो, अपने ही फैमिली में अपने बच्चों को और अच्छी एजुकेशन दे पा रही हैं, अपनी फैमिली को और अच्छे से सपोर्ट कर पा रही हैं. साथ में हमारी जो बैक ऑफिस टीम है उसके अंदर 2 ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स हैं जिन्होंने हमारे से ही ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस लिया और फिर उन्होंने रुचि दिखाई कि मैम हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आप हमें काम दीजिए. तो उनमें से 2 जो अब वो आज खुद उस स्थिति से ऊपर आकर और अब वो खुद और पेशेंट्स की काउंसलिंग करती हैं साथ में. तो ये सब चेंजेस देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है. मतलब रियल हैप्पीनेस जो है ना वो हैप्पीनेस इज इन गिविंग एंड एम्पावरिंग अदर वुमेन.
1: एक्चुअली भाई देखिए कहीं ना कहीं मैं ये डेफिनेटली मानती हूँ कि जब आप कोई भी अच्छा कदम उठाते हैं और कोई भी अच्छा या नेक काम करने की राह पर चलते हैं तो आपको बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स मिलते हैं, लेकिन वो जो डगर होती है ना वो डगर होती बड़ी मुश्किल भरी है और उन चैलेंजेस को फेस करना आसान नहीं होता है. लेकिन हिम्मत अगर आपके अंदर है तो आप उस हिम्मत के साथ उस डगर को पार कर जाते हैं. भाई कैंसर के लिए बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से कैंसर फैल रहा है मुझे ऐसा लगता है शायद जितनी संस्थाएं खुली हैं उतनी भी कम हैं. सबसे पहली परेशानी ये है कि आज भी लैक ऑफ अवेयरनेस है कैंसर को लेकर. लोगों को पता ही नहीं है जो रोजमर्रा की गलतियां वो कर रही हैं उन रोजमर्रा की गलती से वो एक दिन कैंसर का शिकार हो सकते हैं. सो एक तरफ तो ये जरूरी है कि ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे. तो आप लोग कैंसर पेशेंट्स को अवेयरनेस भी देते हैं और साथ के साथ उनके लिए बहुत तरीके की मदद भी करने की कोशिश करते हैं. कैसे करती हैं ये सब आप?
2: कैंसर अवेयरनेस देखिए कैंसर पेशेंट से ज्यादा पूरी सोसाइटी में होनी बहुत जरूरी है. सबसे पहले तो एक मिथ मिटाना जरूरी है कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है
1: जी.
2: उससे पहले एक मिथ ये है कि कैंसर एक बीमारी नहीं है
1: जी.
2: कैंसर 250 से ज्यादा तरीके की बीमारियां हैं जिसका डॉक्टर इलाज करता है एक तरीके से, और उसको हम एक ग्रुप ऑफ डिजीज बोल सकते हैं जो एक से तरीके की जो सेल की मेगलिनेंसी से
1: जी.
2: होती है वो कैंसर कहलाया जाता है ठीक. पर जब हम देखते हैं तो कैंसर के प्रकार बहुत होते हैं. जैसे अगर हम मोटा मोटी देखें तो ब्लड कैंसर हो गया
1: जी.
2: सॉलिड ट्यूमर्स वाला हो गया जिसे हम कार्सिनोमास बोलते हैं, और मसल वाला हो गया जिसको हम सार्कोमास बोलते हैं
1: जी.
2: तो ये तो जब अगर कोई भी किसी को मान लीजिए आज कैंसर होता है तो वो अपनी तुलना किसी और कैंसर पेशेंट से ना करे, क्योंकि आपका कैंसर उसके कैंसर से अलग हो सकता है.
1: yes.
2: जैसे मेरी स्पेशलिटी मैं कहूँगी ब्रेस्ट कैंसर में
1: जी.
2: तो मैं ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को भी यही समझाती हूँ कि आपकी और उनकी जर्नी सेम हो सकती है, पर सेम दवाई आपको क्या रिएक्ट करेगी और दूसरे को क्या रिएक्ट करेगी वो अलग हो सकता है, क्योंकि आपका जेनेटिक स्ट्रक्चर आपकी बॉडी अलग है और उनकी बॉडी अलग है
1: जी.
2: तो हमें ये अवेयरनेस फैलानी बहुत जरूरी है कि सारे कैंसर पेशेंट्स एक जैसे नहीं होते.
1: यस.
2: बहुत आज कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो बहुत नई नई तकनीकें ईजाद हो गई हैं और लाइलाज बीमारी ये नहीं रही है. तो कैंसर इज डेथ ये वाली मिथ सोसाइटी से निकालनी बहुत जरूरी है
1: जी.
2: साथ में एक कैंसर अवेयरनेस जो कि गवर्नमेंट भी कर रही है टोबैको सिगरेट के पैकेट्स पे दिखा के, वो तो है ही है. साथ में अपने लाइफस्टाइल को हम सुधार के भी कैंसर से बच सकते हैं
1: जी.
2: एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल आजकल हम जी रहे हैं, अपने खान पान को सुधार के हम कैंसर से जी सकते हैं. दूसरा मैं एक क्योंकि ये अक्टूबर है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो ये अवेयरनेस सिर्फ इस मंथ तक नहीं सीमित रहनी चाहिए. मैं बहुत सारे अवेयरनेस टॉक्स लेती हूँ, बहुत सारे वर्कशॉप्स लेती हूँ जहाँ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सिखाया जाता है
1: जी.
2: और मैं सबको यही बोलती हूँ कि ये अक्टूबर में ना कराएं, आप पूरे साल कराएं प्लीज.
1: बिल्कुल.
2: क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक इस तरीके का कैंसर है जो शुरुआती लक्षणों में हम पकड़ सकते हैं, और अगर शुरुआती लक्षणों में हमने इसे पकड़ लिया तो उससे जान बचाई जा सकती है, ब्रेस्ट बचाई जा सकती
1: yes.
2: है. उससे जो है आपका इलाज बहुत आसान हो सकता है
1: जी.
2: आज के अगर हम सिनेरियो देखें तो इंडिया में हर 8 में से 1 विमेन हाई रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर।
1: यस।
2: तो एक सिर्फ पूरे महीने में आपको एक मिनट देना है अपने आप को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने में, जिससे आप ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षणों को पकड़ सकते हैं और डॉक्टर के पास जाके एक बार कंफर्म कर सकते हैं कि मेरे को ये लक्षण आ रहा है, प्लीज आप चेक करो कहीं मुझे ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं हुआ।
1: Yes.
2: और 90% टाइम वो जो गांठ है या कोई लक्षण है वो आपके हार्मोनल चेंजेस से भी हो सकते हैं
1: जी।
2: पर वो जो 10% चांस है हमें वो नहीं छोड़ना है।
1: Yes.
2: क्योंकि इतने सारे आज मैं हजारों ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर चुकी हूँ और जो एक चीज कॉमनली निकल के आती है वो यही निकल के आती है कि ट्रॉमा ऑफ लूजिंग द ब्रेस्ट वॉज मोर देन ऑफ ट्रॉमा बींग डायग्नोस्ड विद कैंसर। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी लेडी इस ट्रॉमा से गुजरे, उसके लिए उसको अपने आप को पूरे महीने में सिर्फ एक मिनट देना है।
1: दोस्तों जब कभी भी हम अवेयरनेस की बात करते हैं ना, तो बीमारी को लेकर हमारी एक ही सोच होती है कि ये हमें नहीं होगी, ये तो किसी और को होगी। और जब कभी भी हम ये सोचते हैं ना, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बीमारी कभी भी दस्तक देकर तो नहीं आती है और ना ही वो पिक एंड चूज कर रही है। कहीं ना कहीं आपको भी देखना है कि जिस प्रकार से पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हम ऐसी लाइफस्टाइल्स जी रहे हैं जो शायद हेक्टिक जरूर कहलाती है, लेकिन डिजीज के मायने में ये लाइफस्टाइल जो है ये बहुत घातक है। और हम एक लंबे अरसे तक इस लाइफस्टाइल को तब तक अपनाए रखते हैं जब तक हमें किसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता है। सो जरूरी है कि वक्त रहते एक्शन जरूर लें। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा मेमोग्राफी कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, महिलाएं झिझक के कारण नहीं जाती हैं। सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपकी सोसाइटी में, आपकी मार्केट्स में, आपके घर के आसपास या आपके ऑफिशियल एरिया में कहीं पर भी अगर इस प्रकार के कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं तो मात्र 10 मिनट का टाइम लगेगा, आप जाइए और अपना चेकअप जरूर कराइए और निश्चिंत हो जाइए। कविता जी, अब एक अहम सवाल, जब कभी भी हम कैंसर पेशेंट की बात करते हैं, देखिए वो कैंसर पेशेंट तो एक अलग ही लड़ाई लड़ रहा होता है, लेकिन उसके साथ का जो परिवार होता है उसका जो शायद कहना चाहिए मेंटल हेल्थ का बैलेंस है वो बिगड़ चुका होता है। आप तो इस जंग को लड़ चुकी हैं और अब इतना धैर्य आप में है कि आप बहुतों को इस जंग से लड़ने की हिम्मत दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनके पेरेंट्स को कैंसर हो जाता है, या फिर कहना चाहिए ऐसी पत्नियां या पति जिनकी पत्नियों को कैंसर हो जाता है, उनके लिए लाइफ डगमगा सी जाती है। किस प्रकार से उन्हें इस प्रकार की अवेयरनेस दी जाए या उन्हें आप कैसे मैनेज करती हैं कि उन्हें यह समझाया जाए कि कैंसर के इलाज के दौरान एक पेशेंट को किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है?
2: देखिए बहुत अच्छा सवाल है। एक हम बहुत अच्छी लाइन कहते हैं कि कैंसर डजंट हैपन टू अ पर्सन, इट हैपन्स टू द फैमिली।
1: यस।
2: ये पूरी फैमिली को मिलके से लड़ना चाहिए। जब मेरे हस्बैंड को कैंसर हुआ तो एक शॉकिंग न्यूज़ थी,
1: बिल्कुल,
2: और दोनों बेटियां बहुत छोटी थी उस टाइम, उन तक इस न्यूज़ को पहुंचाना और ज़्यादा मुश्किल था।
1: यस।
2: बट हमने बैठ के उनसे बात करी, उन्हें सब कुछ बताया कि बेटा ऐसा ऐसा है, पर उसके साथ मेरे हस्बैंड ने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि बेटा जो हो गया वो हो गया, हम ये लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जो हमारी नॉर्मल लाइफ है वो वैसे ही जारी रहनी चाहिए
1: जी।
2: उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तुम जिस तरह से स्कूल कॉलेज जाते हो वैसे जाओ, जैसे फ्रेंड्स के साथ जाते हो वैसे जाओ, जिस तरह से तुमने उस दौरान, हम मेरे दो कजन्स की शादी थी, बच्चों ने वो अच्छे से इंजॉय करी, तो उस चीज का जो इम्पैक्ट था वो मेरे हस्बैंड पे भी बहुत अच्छे से आया। उनको कहीं भी इस गिल्ट में हमने आने नहीं दिया कि आपकी वजह से हमारी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई।
1: यस।
2: तो ये तो हो गया कि हम पेशेंट को किस तरह से, फिर केयर गिवर जो होता है, मैं कहती हूँ वो दोहरी लड़ाई लड़ता है
1: एक्चुअली।
2: पेशेंट फिजिकली कैंसर से लड़ रहा है तो जो केयर गिवर है वो भी उतना ही इमोशनली और मेंटली उस लड़ाई से लड़ रहा है। साथ में उसको अब और भी काम देखने हैं।
1: yes.
2: जो आपका पार्टनर या वो भी, और अगर मान लीजिए वो पेशेंट आपका बच्चा है तो माँ बाप के लिए वो और भी मुश्किल हो जाती है लड़ाई।
1: जी।
2: तो उस समय सिर्फ खाली, आजकल हम एक काम करते हैं, एक नए डॉक्टर्स उभर के आए, साइको ऑनकोलॉजिस्ट, तो वो ना सिर्फ पेशेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, वो केयर गिवर्स की भी काउंसलिंग करते हैं। हम जो अपने सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स करते हैं जहाँ पे हम पेशेंट्स को आपस में मिलवाते हैं, वहाँ हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने मेन जो आपका जो प्राइमरी केयर गिवर है उसको भी साथ में लेकर आइए, क्योंकि जब लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, एक जैसे लोग बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक उनको बहुत राहत मिलती है कि ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, कोई और भी है इसमें जो ऐसी लड़ाई लड़ रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी टिप्स शेयर होती हैं आपस में जो जिसे कहते हैं ना नॉलेज का आदान प्रदान होना, और वो नॉलेज आपकी एकेडमिक नॉलेज नहीं होती, वो एक इमोशनल नॉलेज होती है
3: एक्चुअली।
2: और तो इसलिए ये सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स बहुत जरूरी हैं फॉर द इमोशनल हेल्थ ऑफ केयर गिवर्स एंड द पेशेंट्स एज वेल बोथ।
1: दोस्तों, जब कभी भी मैं किसी भी ऐसी बीमारी की बात करती हूँ ना जिससे आपको जान गंवाने का डर बना रहता है, सो एक चीज हमेशा होती है कि आसपास के लोगों को ना जिस दिन वो बीमारी डायग्नोज की जाती है उस दिन से एक अजीब सा डर और खौफ मन में समा जाता है, और वो खौफ होता है न जाने कितना समय है। एंड बिलीव यू मी, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका कैंसर डिटेक्ट ही तब होता है जब वो थर्ड स्टेज पर होता है या फोर्थ स्टेज पर होता है, और तब उसके बाद जब डॉक्टर्स ये कहते हैं कि बहुत कम समय बचा है, काश आप पहले आते तो ये ठीक हो पाते, तो तब ऐसा लगता है कि काश हमने इसे जल्दी डायग्नोस करवा लिया होता। लेकिन अर्ली डायग्नोस तभी पॉसिबल है जब आप अपने रेगुलर चेकअप्स करवाएं, जो हमारे भारत में या मुझे कहना चाहिए कि हमारे समाज में बहुत ही अनकॉमन चीज़ है। हम बहुत बड़ी अमाउंट को बाकी सारी चीज़ों पर खर्च कर देते हैं, लेकिन अपने हेल्थ चेकअप्स पर हम उन पैसों को कभी खर्च नहीं करते हैं, ये सोचते हुए कि ये जो चेकअप्स हैं ये व्यर्थ का कॉस्ट है। सो कैंसर जैसी बीमारी से बहुत अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट होने से आप बड़ी आसानी से बड़ा ही नॉर्मल जीवन जी सकते हैं और आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, लेकिन आपके पास ये अवेयरनेस या ये नॉलेज होनी चाहिए। कविता जी, अब बात करते हैं फाइनेंसेस की। एनजीओ तो चलते हैं, काम भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है कि जब आप खुद स्ट्रगल कर रही हैं, अब तो आपकी लाइवलीहुड भी आपके ऊपर है, दो बेटियों की जिम्मेदारी आप पर है, और उसके बाद बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को आप सपोर्ट करवा रही हैं, चाहे फिर वो ब्लड कैंसर के पेशेंट्स हैं, और बहुत सारी महिलाओं को आप इस प्रकार की जो प्रोस्थेसिस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे पा रही हैं, सो कैसे मैनेज करती हैं आप ये?
2: देखिए, इसके अंदर सबसे जो कहूँगी कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा है वो CSR का है
3: जी।
2: बहुत सारी कंपनीज हमें अपने CSR इनिशिएटिव के अंडर सपोर्ट कर रही हैं, साथ में बहुत सारी फंडिंग, इंडिविजुअल फंडिंग जिसको हम बोलते हैं
3: जी।
2: बहुत सारी फैमिली मेंबर्स मेरे ऐसे हैं जो रेगुलर डोनेट करते हैं, फ्रेंड्स हैं ऐसे जो रेगुलर डोनेट करते हैं, और कुछ फंड रेजिंग प्रोग्राम्स हम किस तरह से चलाते हैं। पर हाँ, मैं ये कहूँगी कैंसर NGO होने के नाते हमेशा एक फंड क्रंच बना रहता है, क्योंकि फंडिंग आती है उसी समय चली जाती है, क्योंकि कैंसर का इलाज थोड़ा महंगा है
3: जी,
2: आप कह सकते हैं तो। पर हाँ, भगवान की दया से बना हुआ है, आज हमें 5 साल हो गए, और हर साल हम जितने पेशेंट्स को ये ब्रास बांट पाते हैं वो नंबर बढ़ता ही जा रहा है। पहले हम सिर्फ दिल्ली NCR में बांट रहे थे, आज हम टाटा मेमोरियल बॉम्बे में भी बांट रहे हैं, CMC वेल्लोर में भी बांट रहे हैं, तो इस तरह से वर्ड ऑफ माउथ से ये चीज़ें बढ़ रही हैं, और फंडिंग भी बस उतनी ही चाहिए ही भी होगी आगे। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगी, अगर कोई डोनेट करना चाहता है हमें तो हमारी वेबसाइट पे जाके डोनेट कर सकता है।
1: दोस्तों, वाकई मतलब देखिए, जब कभी भी मैं किसी भी NGO से पूछती हूँ कि आप नेकी का काम करने तो चले हैं, लेकिन नेकी आप अपने घर से ही कितने दिनों तक कर सकते हैं, जो अपने आप में एक चैलेंज है, लेकिन डेफिनेटली इसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, और वो लोग हम बन सकते हैं। कविता जी, आप मुझे बताइए, मान लीजिए कि कोई आपके साथ वॉलंटियर करना चाहता है, बहुत सारी महिलाएं आपको सुन रही हैं, कोई आपके साथ एसोसिएट होना चाहता है, और साथ के साथ मान लीजिए कि कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो क्या तीनों प्रोविजंस में वो आपके साथ जुड़ सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे?
2: हाँ, आप अगर किसी कैंसर पेशेंट्स की मदद करना चाहते हैं, और मदद सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होती
3: जी,
2: आप अपना समय भी देख के आप टाइम डोनेट कर सकते हैं अपना, उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.winovercancer.net, उस पे जाके एक वॉलंटियर फॉर्म है, आप वो भर सकते हैं, या फिर आप हमें डायरेक्टली मेल कर सकते हैं winovercancer.net@gmail.com पे, और अगर आप हमारे को कोई फाइनेंशियल डोनेशन देना चाहते हैं तो उसका लिंक भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के ऊपर www.winovercancer.net पे। तो जो डोनेशन होती है वो सिर्फ फाइनेंशियल डोनेशन नहीं होती, टाइम डोनेट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना फाइनेंशियल डोनेशन।
1: जिस प्रकार से हम महिलाओं की अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, साथ के साथ समाज के अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो क्या इस प्रकार के अवेयरनेस कैंपेन्स भी आप चलाती हैं और क्या इसमें भी लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं?
2: हाँ जी, मैं बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं हम, जिसमें कैंसर, जनरल कैंसर अवेयरनेस टॉक्स होती हैं, या फिर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस टॉक्स होती हैं, और वर्कशॉप्स होती हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए, जो आज के समय में हर महिला को आना चाहिए। वो चाहे तो अपने ग्रुप में, अपने कॉर्पोरेट में, अपनी सोसाइटी में इस तरीके की वर्कशॉप हेल्ड करवा के, इस तरीके की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवा के भी हम, मैं तो कहूँगी हमारी मदद कर सकते हैं, अपनी मदद के साथ साथ हमारी मदद कर सकते हैं कि हम अपने इस मिशन में आगे बढ़े कि हर महिला को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली लक्षण पता होने चाहिए।
1: जी, सो दोस्तों वाकई हम सब इनकी मदद कर सकते हैं, और मैं आप सभी से पर्सनल अपील करूंगी कि ये मदद का हाथ आगे बढ़ाइए। विन ओवर कैंसर एक बहुत ही खास फाउंडेशन है, एक बहुत ही खास संस्था है, जो न सिर्फ कैंसर पेशेंट्स की मदद कर रही है, लेकिन बहुत सारी ब्रेस्ट कैंसर की महिलाओं को इस प्रकार का जीवनदान दे रही है, जो जीवनदान उन्हें हमेशा चाहिए। दवाइयों से वो अपने कैंसर को तो जीत पाती हैं, लेकिन एक बार उनका ब्रेस्ट चला जाता है तो एक अजीब किस्म का जिंदगी में खालीपन आ जाता है, उनकी पर्सनालिटी में खालीपन आ जाता है, जिसको भरने की कोशिश कर रही हैं कविता गुप्ता जी। और देखिए भाई, मैं हमेशा ये कहती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने दुख से ऊपर उठकर लोगों के दुख को समझें, जो कविता जी ने बखूबी समझाए। कविता जी, आज इस प्लेटफॉर्म से मैं चाहती हूँ जिस चीज को शायद आप हर रोज अपने अवेयरनेस सेशन में या लोगों को बताने की कोशिश करती हैं, कुछ बेसिक मिथ्स जो महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर को लेकर रखती हैं, क्या आप उन्हें आज इस प्लेटफॉर्म से बस्ट करना चाहेंगी और उन्हें डूज और डोंट्स बताना चाहेंगी?
2: देखिए, सबसे पहले मैं तो आपको कहूंगी कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमें व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे मिल रही है, उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर करिए किसी भी ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ, ठीक है? तो एक बहुत बड़ा मिथ जो फैल रहा है वो है कि ब्लैक ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, जो बिल्कुल गलत है। अंडर वायर ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, जो बिल्कुल गलत है। आपको बहुत सारी लेडीज को गांठ पता चल जाती है, पर वो उसको चेक नहीं कराते हैं ये सोच के कि इसमें दर्द नहीं है। 90% टाइम्स जो कैंसर की गांठ होती है उसमें दर्द नहीं होता है। तो ये सोच के किसी भी लंप को, किसी गांठ को नजरअंदाज ना करें कि उसके अंदर दर्द तो हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं। फिर एक और जो बहुत बड़ा मिथ है वो ये है कि हम किसी प्रकार की बायोप्सी या FNAC जो एक टेस्ट होता है, नीडल वाला जो टेस्ट होता है, वो करवाएंगे तो हमारा कैंसर फैल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, कैंसर इस तरह से नहीं फैलता है। अगर वो फैला होगा तो वो पहले से ही फैल चुका होगा आपके। तो इस तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती हैं सोशल मीडिया के थ्रू, उसको प्लीज एक बार किसी डॉक्टर के साथ डिस्कस कर ले कि भाई हमने ये कहीं पे पढ़ा है या सुना है तो ये सही है कि नहीं है। डीओज लगाने से कैंसर हो जाता है। फिर एक बहुत बड़ा मिथ आजकल चल रहा है कि चीनी खाने से कैंसर हो जाता है। चीनी खाने से तो बहुत सारी बीमारी हो जाती है क्योंकि हम ओबीज हो जाते हैं। तो चीनी कोई कैंसर पेशेंट्स का खाना नहीं है, चीनी कि कैंसर सेल को उसके ऊपर ही फीड करना है, ऐसा नहीं है। कैंसर सेल तो अपने आप ही बढ़ते हैं। तो प्लीज ये ना सोचे कि चीनी बंद कर देंगे तो हमें कैंसर नहीं होगा। चीनी का और कैंसर का, चीनी और ओबेसिटी का डायरेक्ट है नाता, पर चीनी और कैंसर का डायरेक्ट कोई नाता नहीं है। तो इस तरीके के बहुत सारे मिथ्स हैं जो चल रहे हैं, तो उनको बस्ट एक डॉक्टर ही कर सकता है, मैं तो कहूंगी।
1: वाकई, और मुझे ऐसा लगता है कि कविता जी, जब आप इन सेशंस को लेने जाती होंगी अवेयरनेस, आपको बड़ा कई बार आश्चर्य होता होगा कि लोग न जाने किन चीजों पर विश्वास कर लेते हैं, और डॉक्टर्स बेचारे जो इतनी अच्छी सलाह आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनकी बात ही नहीं सुनते हैं। सो बहुत सारी मिथ्स हैं। देखिए वाकई महिलाओं को तो मैं जरूर कहूंगी, रात भर अगर आप ब्रा पहनकर सो रहे हैं तो आपको कैंसर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसी प्रकार अंडरवायर ब्रास अगर आप पहन रहे हैं या फिर काले रंग की ब्रा पहन रहे हैं, देखिए हर चीज का सिर्फ एक डायरेक्ट नाता नहीं है। हाँ, अगर आप हर रोज काला पहन रहे हैं, आप सन से एक्सपोज्ड हैं, सो उसके दूसरे कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैंसर से पीड़ित हो जाएंगे। सो जानकारी सही लीजिए, और जरूरी है कि डॉक्टरी सलाह लेते रहे। तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी कविता जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। जाते जाते क्या खास संदेश आप देकर जाना चाहेंगे इन सभी लिसनर्स को?
2: एक खास संदेश मैं देना चाहूंगी कि एक लाइन बहुत फेमस है कि जॉय ऑफ गिविंग
1: जी,
2: और मैं कहती हूँ कि इट्स द पावर ऑफ गिविंग। मैंने जब ये काम स्टार्ट करा वो शायद मेरी लाइफ का वर्स्ट पीरियड था
1: जी।
2: मेरे हस्बैंड कैंसर से जूझ रहे थे, उनका कैंसर का बहुत रिग्रेस ट्रीटमेंट चल रहा था जिससे कि वो काफ़ी बीमार रहते थे, और उस टाइम पे मैंने ये काम शुरू करा। और जब मैं एक एक पैकेट प्रोस्थेटिक ब्रा का, जिसको हम डिग्निटी पैक बोलते हैं
1: जी,
2: मैं खुद एम्स जाती थी उस टाइम पर और बांटती थी, और जब मैं एक एक पैकेट अपने हाथ से देती थी तो मुझे एक पावर महसूस होती थी। वो पावर क्यों महसूस होती थी कि मैं हर समय ये सोचती थी कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, मेरे पास फाइनेंसेस हैं हस्बैंड का इलाज कराने के लिए, मेरे पास नॉलेज है कि उनका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। जो यहाँ पर आ रही हैं ये लेडीज, इनको कोई नॉलेज नहीं है, इनके पास इस तरीके के कोई भी साधन नहीं है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आराम से इलाज करा। तो वो चीज़ें देख के मुझे खुद अपनी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए एक अलग शक्ति मिलती थी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आई ऑलवेज फाइंड द पावर इन गिविंग। तो हमारी अपनी प्रॉब्लम्स लाइफ, आज के में कोई ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो अपनी प्रॉब्लम से ऊपर होके अगर हम किसी एक जने की भी मदद करके आप देखिए कभी, तो आपको जो वो पावर महसूस होगी ना अपनी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, वो भगवान एक अलग ही शक्ति देता है।
1: डेफिनेटली मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको भगवान दुख दे रहा है ना, तो उसको बर्दाश्त करने की शक्ति और उस शक्ति से ऊपर उठकर कुछ नेकी का काम करने की राह जरूर दिखाता है। और आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे ट्रॉमेटिक टाइम से गुजरे हैं, लेकिन जब वो उस टाइम से बाहर निकल कर आए हैं तो वो इतिहास क्रिएट कर चुके होते हैं। और कुछ ऐसा ही खूबसूरत सा काम कविता वैद्य गुप्ता जी कर रही हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन को देंगे, और मैं तो इस पूरे समाज की तरफ से आपको धन्यवाद कहूंगी कि आप इतना बेहतरीन काम कर रही हैं। और मेरी पर्सनल अपील सभी से कि भाई इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप हाथ जोड़कर जरूर काम करें। तहे दिल से धन्यवाद कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए।
2: थैंक यू भावना जी, थैंक यू।
1: दोस्तों वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। मुझे यानी आरजे भावना को दीजिए इजाजत। फील गुड, फील लाइव।

जिन फकीरों में, जिन परंपरा में इस तरह के विचार चलते। हर शिष्य अपने ढंग से धन्यवाद देता है जब ज्ञान को उपलब्ध होता है। कभी कभी तो बड़ी अजीब घटनाएं घट जाती। एक युवक बोकोजू अपने गुरु के पास वर्षों रहा ध्यान की समाधि की तलाश, और जब भी वो कुछ खबर लेके जाता कि बड़ा अनुभव हुआ कि गुरु उसको चांटा रसीद कर देता। ये पहले तो बहुत चौंकता था, फिर समझने लगा, औरों से पूछा, बुजुर्गों से पूछा जो पहले से ऐसे गुरु के चांटे खाते रहे थे, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि उसकी बड़ी कृपा है, वो मारते ही तब जब उसकी कृपा होती, किसी पे तो वो मारते ही नहीं, फिजूल पे तो वो खर्चे क्यों करे, एक चांटा भी क्यों खर्च करे, तुम पे उसकी बड़ी कृपा है। और वो मारता इसलिए कि तुम जो भी ले जाते हो वो अभी सच नहीं है, काल्पनिक है। कभी वो पहुंच जाता कि बड़े प्रकाश का अनुभव हुआ गुरुदेव और एक चांटा, कि कुंडलनी जग गई गुरुदेव और एक चांटा, कि चक्र खुलने लगे और वो चांटा, वो जो भी अनुभव ले जाता और चांटा खाता, तब तो उसे भी समझ में आने लगा कि बात तो सब ये सब तो काल्पनिक जाल ही है। जहां तक किसी चीज का अनुभव हो रहा है वहां तक अनुभव हो ही नहीं रहा, क्योंकि जो भी अनुभव हो रहा है वो तुमसे अलग है। कुंडलनी जगी तो तुम तो देखने वाले हो, तुम तो कुंडलनी नहीं हो। वो जो देख रहा है भीतर की कुंडलनी जग रही वो तो कुंडली नहीं हो सकता ना, कुंडली तो विषय हो गई। जिसने देखा कि भीतर तीसरी आंख खुलने लगी वो तो तीसरी आंख से भी उतना ही दूर हो गया जितनी इन दो आंखों से दूर है, वो तीसरी आंख भी अलग हो गई। जिसने देखा कि भीतर कमल खिलने लगा वो देखने वाला तो कमल नहीं हो सकता ना, वो देखने वाला तो पार और पार और पार। उसका तो पता तब चलता है जब न कमल खुलते न प्रकाश होता न कुंडलनी जगती न चक्र घूमते, कुछ भी नहीं होता, सन्नाटा छा जाता, अनुभव में कुछ आता ही नहीं, सिर्फ वही बच जाता है साक्षी, उस शून्य का साक्षी रह जाता। ऐसा कहते हैं 20 साल तक बोकुजू ने चांटे खाए, और आखिरी बार जब वो आया तो पता है कैसे उसने धन्यवाद दिया, आके एक चांटा अपने गुरु को जड़ दिया। गुरु खूब हंसा, कहते हैं गुरु लोटा प्रसन्नता में लौटा, उसने कहा तो हो गया आज तो धन्यवाद कैसा होगा कहना मुश्किल। ये ठीक धन्यवाद था, 20 साल चांटे खाने के बाद आज कुछ कहने को था भी नहीं। जैन परंपरा अनूठी है, फकीरों की सारी परंपराएं अनूठी। मैं एक जैन फकीर के संस्मरण पढ़ रहा था। वो फकीर अमेरिका गया हुआ था और वहां एक हिंदू सन्यासी से निमंत्रण मिला कि मुझे मिलने आओ। पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि हिंदू सन्यासी और कोई नहीं, बाबा मुक्तानंद होने चाहिए। नाम उसने नहीं लिखा है लेकिन हुलिया और ढंग जो वर्णन किया है वो मुक्तानंद का है, और ये भी लिखा कि वो अंग्रेजी नहीं बोलते, मुक्तानंद ने बुलाया होगा, निमंत्रण दिया फकीर को आने को। फकीर आया तो मुक्तानंद बैठे एक ऊंचे सिंहासन पर और उसके नीचे एक आसनी बिछा दी फकीर के लिए। मुझे लगा कि मुक्तानंद ही होने चाहिए क्योंकि मेरे साथ भी उन्होंने यही किया, मुझे भी बहुत निमंत्रण दे दे के बुलाया। और जब मैं गया तो वो एक आसन पर बैठे और एक आसनी नीचे रख दी उन्होंने बैठने के लिए। फकीर बैठ गया, मुक्तानंद ने कुछ मिठाई फकीर को भेंट की, तो फकीर के साथ एक शिष्य आया था, उसने कहा कि नहीं वो मिठाई नहीं लेंगे, उन्हें डायबिटीज है। तो मुक्तानंद ने कहा कि डायबिटीज तो 3 मील सुबह पैदल चलो, आसन व्यायाम करो तो ठीक हो जाएगी। अब ये बिल्कुल अंधेपन का सबूत है क्योंकि आदमी जो सामने बैठा है वो परम दशा में, उसको ये बताना कि 3 मील पैदल चलो, आसन व्यायाम करो, योगासन सीख लो, मूढ़ता का लक्षण। वो फकीर हंसा, उसने कहा डायबिटीज बड़ी प्यारी है, भगवान की देन, ये सब अनुवाद किया जा रहा है, एक मुक्तानंद की शिष्य अनुवाद कर रही है, मुक्तानंद हिंदी में बोल रहे हैं, अंग्रेजी में अनुवाद किया जा रहा है।

0: हैं तो भी समाचार मारूंगा।
1: बोलो।
0: तो वो महिला तो थोड़ी घबराई कि इसका अनुवाद करना कि नहीं, और उसने भी चौंक के देखा कि ये बात क्या है। उस फकीर ने कहा अनुवाद कर, नहीं तो तू नाहक पिटेगी। तो घबरा के उसने अनुवाद कर दिया। जब ये अनुवाद मुक्तानंद ने सुना तो वो तो बहुत घबरा गया कि ये कौन सी तत्व चर्चा है। तो उन्होंने कहा आप कोई दार्शनिक नहीं मालूम होते, ये कौन सी तत्व चर्चा है। मगर ये तत्व चर्चा है, जिन फकीर ये कह रहा है कि हाँ कहो तो गलत, ना कहो तो गलत, क्योंकि हाँ कहो तो द्वैत आ गया, ना कहो तो द्वैत आ गया। दोनों हालत में चांटा मारूंगा, अगर हाँ कहा तो चांटा मारूंगा, ना कहा तो चांटा मारूंगा। वो ये कह रहा है कि दोनों हालत में तुमने गलती की, क्योंकि परमात्मा के संबंध ना तो हाँ कहा जा सकता है ना कहा जा सकता है। चुप्पी ही, मौन ही एकमात्र सही उत्तर है। लेकिन इससे तो बात बिगड़ गई, ये चांटा मारने की बात तो कुछ जची नहीं। तो जिन फकीर ने लिखा अपनी डायरी में कि बाबा ने जल्दी से घड़ी देखी और कहा कि मुझे दूसरी जगह जाना है, बस सत्संग समाप्त हो गया। हर परंपरा के अपने ढंग होते, लेकिन परंपरागत ढंग सीख लेने से कुछ सार नहीं है। तिब्बत में जब ज्ञान हो जाए तो एक ढंग होता है गुरु को धन्यवाद देने का, लेकिन अगर ढंग सीख रखा परंपरा से तो ढंग ही झूठा है, ये काम थोड़ी आएगा। तो तुम ये तो पूछो ही मत कि कैसे धन्यवाद दोगे, तुम तो इसकी ही फिक्र करो। धन्यवाद की क्या फिक्र है, ना भी दिया तो चलेगा। पूछा है स्वामी स्वरूप सरस्वती ने, और मैं तुमसे कह देता हूँ धन्यवाद दिया तो एक चांटा मारूंगा और नहीं दिया तो भी मारूंगा। धन्यवाद की तो फिक्र छोड़ो, परमात्मा को पा लेने का सवाल है। उसको पा लिया तो धन्यवाद हो गया। तुम आओगे और धन्यवाद हो जाएगा, तुम बैठोगे और धन्यवाद हो जाएगा, तुम ना आए तो भी धन्यवाद आ जाएगा। तुमने कहा कि नहीं कहा फिर अर्थहीन है, तुम्हारा होना कह देगा। जब गुरु देखता है कि किसी शिष्य को हो गया तो क्या तुम सोचते हो तुम बताओगे तब उसे पता चलेगा, तो गुरु ही नहीं है। तुम्हारे बताने से पता चला तो फिर क्या खाक गुरु। सच तो यह है कि जब तुम्हें होगा, तुम्हारे होने के पहले, तुम्हें पता चलने के पहले गुरु को पता चल जाएगा कि हो रहा। रिंझाई के संबंध में ऐसी कहानी है कि जब उसे ज्ञान हुआ तो रात के 2 बजे थे, बैठा था ध्यान में, अचानक सब द्वार दरवाजे खुल गए। कर रहा था मेहनत कोई 12 वर्षों से, जब द्वार दरवाजे खुल गए 2 बजे रात, तो उसके मन में ख्याल आया कि जाऊं और अपने गुरु के चरणों में सिर रखूं, लेकिन 2 बजे रात उनको जगाना नींद तो ठीक नहीं। जब उसने ऐसा सोचा तो हैरान हुआ, कोई दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। दरवाजा खोला तो गुरु सामने खड़े। गुरु ने कहा तो अरे ना समझ, तू क्या सोचता था कि तुझे ज्ञान होगा और हम सोए होंगे। इतनी बड़ी घटना घट रही हो, जब तेरे साथ साथ जोड़ दिया तो सब तरह जुड़ गए। तुझे इतनी बड़ी घटना घट रही हो और हम सो सकते, और क्या तू सोचता है तुझे पहले पता चलेगा फिर हमें पता चलेगा। तुम चकित होगे जान के कि पश्चिम में बहुत से प्रयोग चल रहे हैं, माँ और बेटों के बीच में कोई एक अज्ञात सूत्र रहता है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से तो जुड़ा रहता है, बच्चे की नाभि माँ के पेट से भौतिक रूप से जुड़ी रहती है, डॉक्टर उसे काटता है। लेकिन एक और कोई स्वर्ण सूत्र है जो जुड़ा ही रहता है, जिसको काटा नहीं जा सकता। इस पर बहुत प्रयोग चले, विशेषकर सोवियत रूस में बहुत प्रयोग हुए हैं और बड़ी हैरानी के परिणाम आए। वो प्रयोग ये है कि अगर बेटे और माँ में बहुत लगाव हो तो तुम हजारों मील दूर ले जाके बेटे को सताओ, माँ को अनुभव होने लगता है कि बेटा सताया जा रहा, उसे कुछ तकलीफ शुरू हो जाए, वो बेचैन होने लगती। फिर आदमी तो बहुत विकृत हो गया है, इसलिए पशुओं पर प्रयोग किए गए। एक बिल्ली को ऊपर छोड़ दिया गया घाट पर, और उसके छोटे बच्चे को एक पनडुब्बी में समुद्र की गहरी सतह में ले जाया गया मील भर नीचे, और ये जो ऊपर बिल्ली छोड़ी गई है इस पे सब यंत्र लगा के रखा गया है कि इसके मन की दशा का पता चलता रहे, कभी ये परेशान होती बेचैन होती छोटी सी भी बेचैनी। और जैसे ही उस बच्चे को नीचे सताया गया, उसकी गर्दन मरोड़ी गई कि वो एकदम परेशान होने लगी। 1 मील का फासला, पानी की अतल गहराई में बच्चा, जैसे ही उसकी गर्दन छोड़ी गई वो फिर ठीक हो गई, फिर गर्दन दबाई गई वो फिर परेशान हो गई।

0: फिर तो इसको बहुत प्रयोग किए गए और ये अनुभव में आया कि जहां प्रेम है वहां एक स्वर्ण सूत्र जोड़े रखता है। तो ये तो माँ और बेटे की बात है, तुम गुरु और शिष्य की बात तो पूछो ही मत, क्योंकि ये प्रेम तो कुछ भी नहीं है उस प्रेम के मुकाबले। ये तो शरीर का ही प्रेम है। गुरु और शिष्य के बीच तो एक आत्मिक नाता है, आत्मा का एक संबंध है। जिस दिन तुम्हें ज्ञान होगा, तुम सोचते हो, तुम्हें पहले पता चलेगा तो तुमने गलत ही सोचा। तुम्हारे गुरु को तुमसे पहले पता चल जाएगा, और ये भी हो सकता है कि तुम्हें धन्यवाद देने का गुरु मौका न दे, तुम्हें तुम्हारे धन्यवाद देने के पहले धन्यवाद दे दे। इस चिंता में पड़ो मत। असली चिंता दूसरी ही है कि कैसे उसे पालो। धन्यवाद गैर धन्यवाद तो शिष्टाचार उपचार की बातें। पांचवा प्रश्न, कभी आप कहते हैं अकेलापन स्वभाव है, कभी आप कहते हैं स्वतंत्रता स्वभाव है, कभी आप कहते हैं प्रेम स्वभाव है, कभी आप कहते हैं आनंद स्वभाव है, कृपा करके समझाएं। मैं जो भी कहता हूं वह एक ही है, बहुत ढंग से कहता हूं। समझो, जब मैं कहता हूं अकेलापन स्वभाव है तो मैं कह रहा हूं ये मार्ग ध्यान का, अकेलापन यानी ध्यान, अकेले रह गए, असंबंधित, असंग, कोई दूसरे की धारणा ना रखी, पर को भूल गए, परमात्मा को भी भूल गए, क्योंकि वो भी पर, वो भी दूसरा, अकेले रह गए, बिल्कुल एकांत में रह गए। जैन बौद्ध इस तरह चलते, अकेले रह गए, इसलिए उनके मोक्ष का नाम कैवल्य, बिल्कुल अकेले रह गए, केवल चेतना मात्र बची। अकेलापन स्वभाव है। जो अकेला हो गया तो दूसरी बात उसमें से निकलेगी, स्वतंत्रता स्वभाव है। जब तुम अकेले रह गए तो तुम स्वतंत्र हो गए, अब तुम्हें कोई परतंत्रता ना रही, क्योंकि कोई पर ही ना रहा, दूसरे पर निर्भरता ना रही, तुम मुक्त हो गए, तुम स्वतंत्र हो गए, तुम्हारा अपना स्वच्छंद तुम्हें उपलब्ध हो गया, तुम अपना गीत गुनगुनाने लगे, अब तुम उधार गीत नहीं गाते, अब तुम दूसरे की छाया की तरह नहीं डोलते, अब तुम किसी के पीछे नहीं चलते, अब तुम अपने भीतर से, अपने केंद्र से अपने जीवन का रस बहाने लगे, तो स्वतंत्र हुए। फिर तीसरी बात मैं कहता हूं प्रेम स्वभाव है। जो स्वतंत्र हो गया और अकेला हो गया वही प्रेम देने में सफल हो पाता है, क्योंकि उसी के पास प्रेम देने को होता है। तुम तो प्रेम दोगे कैसे, तुम तो मांग रहे हो, दोगे कैसे, तुम तो चाहते हो कोई तुम्हें दे दे, तुम्हारे पास ही होता तो तुम मांगते क्यों, तुम्हारे पास नहीं है इसलिए तो मांगते हो। हम वही तो मांगते हैं जो हमारे पास नहीं है। और जो स्वतंत्र हो गया, एकांत में डूब गया, अपनी मस्ती में खो गया, उसके पास प्रेम होगा, वो प्रेम बांटेगा, लेकिन उसका प्रेम तुम्हारे जैसा प्रेम नहीं होगा, वो देगा बेशर्त, वो किसी को भी देगा, वो ये भी नहीं कहेगा किसको दूं किसको ना दूं, उसकी कोई सीमा ना होगी, वो बांटेगा, वो उलीचेगा, जैसे एकांत में खिला हुआ फूल अपनी सुगंध को हवाओं में बिखेर देता, किसी को मिल जाए ठीक, न मिले ठीक, किसी के प्रयोजन से नहीं बिखेरता। सुगंध में किसी का पता नहीं लिखा होता कि फलाने के घर जाना, कि मेरी प्रेसी वहां रहती है सुगंध वहां जाना, कि मेरा प्रिय वहां रहता है वहां जाना, बिखेर देता जिसको मिल जाए। फूल खिल गया अब उसको क्या प्रयोजन। जो व्यक्ति स्वतंत्र हो गया उसका प्रेम खिल जाता है, उसका फूल खिल जाता है, और जिसका फूल खिल जाता है, चौथी बात आनंद स्वभाव है। जिसका फूल खिल गया वो आनंदित है, बिना भीतर के फूल के खिले कब कोई आनंदित हुआ है। तो जब मैं कहता हूं अकेलापन स्वभाव है, स्वतंत्रता स्वभाव है, प्रेम स्वभाव है, आनंद स्वभाव है, तो मैं एक मार्ग की बात कर रहा हूँ, वो मार्ग है ध्यान का मार्ग। उसमें अकेलापन पहले आता, फिर स्वतंत्रता आती, फिर प्रेम आता, फिर आनंद आता। दूसरा मार्ग है भक्ति का मार्ग। भक्ति के मार्ग में प्रेम पहले आता, प्रेम स्वभाव है, परमात्मा के प्रति इतने अनन्य प्रेम से भर जाना है कि तुम्हारा मैं भाव समाप्त हो जाए, तुम्हारा मैं समर्पित हो जाए। और जिसके जीवन में प्रेम आ गया, परमात्मा के प्रति ऐसा समर्पण आ गया, ऐसी प्रार्थना आ गई कि अपने अहंकार को उसने सब भांति समर्पित कर दिया, उसके जीवन में अनिवार्य रूपेण आनंद आ जाएगा। जो रहा ही नहीं, मैं ही ना बचा, वहां दुख कहां। अहंकार दुख है, अहंकार दुख की तरह सालता है, सूल है, जहर है। जहां अहंकार गिर गया भक्त का, वही आनंद आ गया, और जहां आनंद आ जाता है वहां दूसरे की कोई जरूरत नहीं रही। दूसरे की जरूरत तो दुख में रहती, तुम जब दुखी होते तब तुम दूसरे को तलाशते हो, कोई मिल जाए तो दुख बटा ले। दूसरे की जरूरत ही दुख में पड़ती है, जब तुम आनंदित हो तब क्या दूसरे की जरूरत है। तो जो व्यक्ति प्रेम को उपलब्ध हुआ, आनंद को उपलब्ध हुआ, वो अकेलेपन को उपलब्ध हो जाता है, उसको कोई जरूरत नहीं दूसरे की। और जो अकेला है वही स्वतंत्र है, वही स्वच्छंद है। तो ये दूसरा सूत्र भक्ति का प्रेम स्वभाव है, प्रेम से पैदा होता आनंद, आनंद स्वभाव है, आनंद से पैदा होता एकाकीपन, अकेलापन, एकांत। तो अकेलापन स्वभाव है, और अकेलापन यानी स्वतंत्रता, स्वच्छंदता। किसी भी मार्ग से चलो, दो ही मार्ग है, या तो शुद्ध रूप से अकेले बचो तो तुम पहुंच जाओगे, या अपने को बिल्कुल गमा दो, खो दो तो तुम पहुंच जाओगे, या तो मिट जाओ तो पहुंच जाओगे, शून्य हो जाओ तो पहुंच जाओगे, या पूर्ण हो जाओ तो पहुंच जाओगे। जैन और बौद्ध चलते हैं ध्यान से, अकेले हो गए, मैं को शुद्ध करते हैं, शुद्ध करते हैं, परिपूर्णता पर लाते हैं। हिंदू मुसलमान ईसाई चलते हैं प्रेम से, अपने को समर्पित करते हैं। समर्पण में अहंकार धीरे धीरे खो जाता है, रेखा भी नहीं बचती। जिस दिन अहंकार खो जाता है उसी दिन परमात्मा प्रकट हो जाता है। छठवां प्रश्न, लाओसु जब अपना देश छोड़कर जा रहे थे तब देश के राजा ने उन्हें कहलाया कि आपने जो कुछ प्राप्त किया है उसकी चुंगी चुकाए बिना आप नहीं जा सकते, उसी प्रकार परमात्मा ने आपको भी मोक्ष के द्वार पर रोक कर रखा है कि जब तक आप संबोधि का दान औरों को नहीं देते तब तक आप भी मोक्ष महल में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यह संदेह रहित बात है प्रभु, पूछा है बोधि धर्म ने। संदेह तो थोड़ा रहा होगा, नहीं तो पूछते नहीं। संदेह रहित बात में पूछना क्या, थोड़ा संदेह होगा। उसी संदेह के कारण ये भी कहा है कि संदेह रहित बात है, नहीं तो ये भी ना कहते। बात प्यारी है, बात महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। लाओसु को रोका था देश के राजा ने क्योंकि वो बिना एक पंक्ति लिखे अपने अनुभव की भागा जा रहा था, हिमालय में जा रहा था। उसने चुन रखा था कि जाके हिमालय में ही कब्र बने, इससे सुंदर जगह मरने को और हो भी क्या सकती। तो चीन छोड़ के जा रहा था, दक्षिण की तरफ भाग रहा था। उसको राजा ने रुकवा लिया। राजा भी बड़ा समझदार रहा होगा, इतने समझदार राजा मुश्किल से होते। राजा और समझदार, जरा ये बात सांस सांस घटती नहीं। समझदार राजा होगा, उसने खबर भेजी, पुलिस के आदमी दौड़ाए, घोड़े दौड़ाए और उसको ठीक सीमा पर रुकवा लिया, चुंगी चौकी पर, जहां से बाहर जाने के लिए आखिरी दरवाजा था। और रुकवा तो उसने कहा कि जब तक तुम लिख न जाओगे जो तुमने जाना, उसने जिंदगी भर लिखा नहीं, और जब भी लोगों ने पूछा टाल दिया, और जब भी बहुत लोगों ने कहा तो इतने ही कहा कि सत्य कहा नहीं जा सकता। लेकिन राजा ने कहा तुम छोड़ के ही जा रहे हो देश, तो अब बिना कहे ना जा सकोगे, लिख दो जो भी जाना है फिर जा सकते हो, अगर नहीं लिखा तो बाहर ना निकलने दूंगा। उसे जाना तो जरूर था, मजबूरी में वो चुंगी चौकी पर ही 3 दिन रुका और उसने अपनी अद्भुत किताब ताओ ते किंग लिखी। 3 दिन में लिखी थी, छोटे से सूत्र, जल्दी से उसने लिख लिखा के दे दिया। पहला ही सूत्र उसने लिखा कि सत्य कहा नहीं जा सकता और जो कहा जा सकता है वह सत्य नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखकर आगे कहता हूं। तो उसने पहले ही साफ कर दिया मामला, उसने चुंगी चुका दी, मजबूरी थी इसलिए चुकानी पड़ी, वो भाग गया, फिर निकल गया। तुम कहते हो कि जैसा लाओसु को उस देश के राजा ने चुंगी चुकाए बिना नहीं जाने दिया, उसी प्रकार परमात्मा ने आपको भी मोक्ष के द्वार पर रोक कर रखा। यहाँ जरा बात उल्टी, परमात्मा ने मुझे रोक के नहीं रखा है, परमात्मा को मैं रोक के रखा हूँ कि जरा दरवाजा भी मत खोलना। जहाँ तक चुकाने का सवाल है, मैंने मूलधन भी चुका दिया है, ब्याज भी, चक्रवृत्ति ब्याज भी चुका दिया है, जितना लिया था उससे बहुत ज्यादा चुका दिया है, इसलिए परमात्मा मुझे रोके ये तो सवाल ही नहीं। मैं ही रोक के बैठा हूँ कि जरा और थोड़ा बांट दू। मेरे जाने की नाव तो आके किनारे लगी खड़ी, मैं ही समझा बुझा के रोक रहा हूँ माझी को, गिजरा और ये थोड़े लोग और आ गए हैं, इनको थोड़ा और समझा। आखिरी प्रश्न, भगवान आपने चमचे और चमचागिरी जैसे साधारण शब्दों का उपयोग किया, इससे मेरा मन बहुत दुखी हुआ, ऐसा आपने क्यों किया? पहली तो बात, तुम शब्दों में भी शूद्र और ब्राह्मण बनाए बैठे, आदमियों में भी वर्ण बनाए, शब्दों में भी बना लिए। तो चमचागिरी या चमचा तुम्हें लगता होगा शूद्र शब्द है, इनका उपयोग नहीं होना चाहिए। मेरे लिए कोई शूद्र नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं। रही बात शब्दों की, तो शब्द का अर्थ ही होता है जो अभिव्यंजक हो, जितना अभिव्यंजक हो। अब चमचे से ज्यादा अभिव्यंजक शब्द खोज सकते हो, इस बात को किसी और शब्द से कह सकते हो, इससे ज्यादा ठीक मौजूद शब्द इस बात को कहने के लिए दूसरा नहीं है। इसलिए शब्द सार्थक है। और तुम सोचते हो नया है, तो तुम गलती करते हो। आदमी जितना पुराना है उतना ही पुराना है। कभी कुछ और कहा होगा, कभी कुछ और कहा होगा, लेकिन चमचागिरी पुराना शास्त्र है, वेद से भी ज्यादा पुराना। अगर तुम वेद में भी खोजोगे तो तुम्हें चमचागिरी मिलेगी। इंद्र की प्रशंसा चल रही है, स्तुति चल रही, वो भी भय के कारण, घबराहट के कारण, लोभ के कारण कि करोगे प्रशंसा तो तुम्हें कुछ मिल जाएगा। स्तुति चल रही है, स्तुति पुराना शब्द है, अब उसने अर्थ खो दिया। जब शब्द कोई प्रचलित होता है, लोक व्यवहार में होता, तब उसमें प्राण होते। अब चमचागिरी शब्द के लिए बस दूसरे एक शब्द है जो उसके करीब आता, हालांकि उतने करीब नहीं आता है, वह है मक्खन बाजी, लगा रहे हैं मक्खन। तो पहली तो बात यह कि मेरे लिए साधारण असाधारण कुछ भी नहीं है। शब्दों में क्या साधारण असाधारण, या तो सभी शब्द साधारण है, क्योंकि उसको तो किसी शब्द में कहा नहीं जा सकता। सत्य तो किसी शब्द में नहीं आता, इसलिए सभी शब्द साधारण है। या फिर सभी शब्द असाधारण है, क्योंकि जो भी कहा जा सकता है वो सभी शब्दों में कहा जा सकता है। जो शब्द भी बोलते हैं, जिन शब्दों में भी वाणी है, वो सभी असाधारण है। मगर वर्गीकरण नहीं करूंगा, अच्छे और बुरे ऐसे शब्द नहीं है। अच्छे और बुरे तुम्हारी धारणा में, तुम्हें तकलीफ हुई होगी ये मैं मानता हूं। तुम्हें लगा होगा कि जिस व्यक्ति को तुम भगवान कहो उसने चमचे जैसे शब्द का उपयोग कर लिया, तो तुम अपने भगवान की धारणा को थोड़ा बदलो। तुम्हारे भगवान की धारणा रक्तहीन है, मुर्दा है। तुम अपने भगवान की धारणा में थोड़ा रक्त डालो, थोड़ा जीवन डालो। तुम्हारे भगवान की धारणा शाब्दिक है, कोरी है, प्रज्वलित नहीं है, उसे प्रज्वलित करो। बुझी बुझी आग नहीं है उसमें, तो तुम घबरा जाते हो, जरा सी एक छोटा सा शब्द और तुम घबरा गए। और फिर तुम्हारे भीतर एक गहरी आकांक्षा छिपी रहती है कि अगर मौका मिल जाए तो तुम मुझसे बदला ले लो, बदला इस बात का कि मैं तुम्हें रोज सलाह देता हूं। तुम्हें मौका मिल जाए तो तुम मुझे सलाह देने का मौका नहीं चूकते। कोई मौका मिल जाए जिसमें तुम्हें मेरी भूल चूक मिल जाए तो तुम जल्दी से बताना चाहो। इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है कि शिष्य को भी शिष्य होने में बड़ी अड़चन रहती है। बनता है शिष्य मजबूरी में, बनना तो गुरु चाहता। सुना है एक सूफी फकीर के पास एक आदमी आया और उस आदमी ने कहा कि परमात्मा को पाना है तो सूफी फकीर ने कहा शिष्य बनना पड़ेगा। तो उसने कहा शिष्य बनने में क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या करना होगा? तो फकीर ने कहा कि 3 साल तक तो पूछने ही मत, झाड़ू लगाना, बुहारी लगाना, गायें चरा लाना, घोड़ों की देखभाल करना, भोजन बनाना, कपड़े धोना, इस तरह के काम। फिर 3 साल के बाद जो ठीक होगा हम बताएंगे। उसने कहा तो मामला जरा लंबा दिखाई पड़ता है, 3 साल यही करना है तो, और गुरु का क्या कर्तव्य? शिष्य का तो ये कर्तव्य, गुरु का क्या कर्तव्य? तो गुरु ने कहा गुरु का कर्तव्य बैठे रहना मस्ती से, लोगों से कहना ये करो, वो करो, ऐसा करो, इसको वहां भेजो, इसको वहां भेजो। तो उसने कहा फिर ऐसा करे मुझे गुरु ही बना दे, ये काम ज्यादा रुचता है। तो मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं कि तुम्हारे मन में भी गुरु बनने का भाव तो छिपा बैठा है। और कभी कभी मैं ऐसी बातें कहता हूं, मैं जानना चाहता हूं किस किस के भीतर गुरु भाव छिपा बैठा। मन को दुख हुआ, मन को दुख होने का कारण यह है कि तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी ना हो तो मन को दुख हो जाता, तुम जैसी अपेक्षा रखते हो। और एक बात तुम खूब समझ लो कि मैं तुम्हारी कोई अपेक्षा कभी पूरी नहीं करूंगा, क्योंकि यहां मैं तुम्हारी अपेक्षा पूरी करने में उत्सुक ही नहीं हूं। तुम्हें पूरा कर सकता हूं लेकिन तुम्हारी अपेक्षा पूरी नहीं कर सकता, और तुम्हें पूरा कर सकता हूं इसीलिए कि तुम्हारी अपेक्षा पूरी नहीं करूंगा। अगर तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी करने लगूं तो तुम अधूरे रह जाओगे। अब तुम चुन लो, तुम्हारी अपेक्षाएं तो मुझे तोड़नी होंगी, जगह जगह से तोड़नी होंगी। तुम्हारी धारणाएं तो सब तरफ से उखाड़ देनी होंगी। तुम्हें तो मुझे धीरे धीरे उस जगह ले आना है जब तुम्हारे भीतर कोई धारणा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, निर्धारणा। उस घड़ी में क्रांति घटेगी, दिया जलेगा। लेकिन तुम छोटी मोटी बातों पर हिसाब लगा के बैठे हो। मैंने सुना एक साधु आटा मांगने घर के सामने रुका। सास मंदिर गई थी, घर में बहू थी। उसने कहा महाराज आगे जाओ। बड़ी तेज तर्रार औरत मालूम होती थी साधु, फिर कुछ और बोला नहीं, और ज्यादा फजीहत कराना ठीक भी ना थी। वो वापस लौट गया। जब वो वापस लौट रहा था तो मंदिर से लौटती हुई सास रास्ते में मिली। सास ने पूछा क्यों बाबा, मेरे घर गए थे क्या? साधु के हाँ कहने पर उसने पूछा तो फिर बहू ने क्या कहा? सास ने कहा कि बहू ने कहा कि बाबा महाराज आगे जाओ, कहीं और जाओ। बड़ी तेज तर्रार औरत है। सास एकदम गुस्से में आ गई। उसने कहा वह कौन होती है मना करने वाली? मेरे रहते वो है कौन मना करने वाली? घर का मालिक कौन है? तुम चलो मेरे साथ, मैं अभी उसे ठीक करती हूँ। साधु बड़ा प्रसन्न हुआ, सोचा कि जब बुला के ले जा रही तो कुछ देगी भी। दोनों जब घर पहुंच गए तो सास ने गुस्से में बहू से पूछा, बहू तुमने महाराज को आटा देने से मना किया था, मेरे रहते तू कौन है मना करने वाली? माफी मांग साधु महाराज से। बहू ने माफी मांगी। साधु तो बड़ा खुश हुआ। और जब बहू माफी मांग चुकी तो सास ने कहा महाराज जाओ, अब मैं कहती हूँ कहीं आगे जाओ। औपचारिकता पूरी कर दी। अब मैं कहती हूँ कहीं और आगे जाओ। बहू कौन है कहने वाली? औपचारिकता तो उलझे हो तुम अगर मेरे पास तो तुम्हारी दशा दयनीय है। औपचारिकताएं छोड़ो। यहाँ कोई शिष्टाचारों के नियम पूरे नहीं किए जा रहे। यहाँ किसी क्रांति की तैयारी हो रही है। बड़ा झंझावात है, उसमें बहुत कुछ उखड़ जाना है, तुम्हारे सब नियम धर्म उखड़ जाने। फिर अगर देखने की क्षमता हो तो हर चीज में कुछ अर्थ दिखाई पड़ेगा, और देखने की क्षमता ना हो तो बड़े बड़े शब्दों में भी कुछ नहीं। तुम्हारे विचार के लिए ये बटरिंग व्रत कथा तुमसे कहता हूं। मंगलम इमीजिएट वासे मंगलम बटरिंग गिरता है, मंगलम चमचाए चम्पी, मंगलम फल प्राप्ता है, अथ चमचाए उवाचा। जीव के श्रव नहीं मात्र से कटहि कलेश विकार, तेहि बटरिंग व्रत की कथा सुनहु क्लर्क नर नारी। हंसा भूखे मर रहे कौओं के हैं ठाट, हरिश्चंद्र की हो गई आज खड़ी फिर खाट। एक पंक्ति में दे रहा बटरिंग व्रत का सार, मक्खन मालिश के बिना है ये व्रत बेकार। जो भी तेरा है ऑफिसर उसके पांव पकड़ ले प्यारे, उसकी पत्नी के चरणों को उनके साथ जकड़ ले प्यारे। आते हुए सलाम मार दे, जाते हुए सलाम मार दे, बिछा पलंग पर चद्दर दरिया, पहुंचा सब्जी की टोकरियां, त्योहारों पर भेज मिठाई, उपहारों की कर सप्लाई। कुछ दिन ऐसा करने से तुझे तरक्की मिल जाएगी, तेरी किस्मत की ये खिड़की खुलते खुलते खुल जाएगी। बटरिंग की महिमा अनंत मौसो लिखी न जाए, सुख भोगई ये लोक नर अंत बात पद पाए। बटरिंग व्रत की कथा को विरचित कभी बेचैन, पढ़े सुने जे क्लर्क जन चैन करें दिन रैन। इति श्री क्लर्को खंडे बटरिंग व्रत कथायाम अंतिमो अध्याय श्री हरे नमः।
1: एक बार भगवान कपिल वस्तु गए। उनके शिष्यों में एक स्थिर अनुरुद्ध की बहन रोहिणी वहां रहती थी। उसके परिवार के सभी लोग स्थिर अनुरुद्ध को मिलने आए लेकिन रोहिणी नहीं आई। अनुरुद्ध चिंतित हुए। उन्होंने अपनी बहन को बुलवाया। वह आई भी तो मुंह ढक कर आई। स्थविर अनिरुद्ध तो बड़े चिंतित हुए। उन्होंने उससे पूछा कि पहले तो तू आई नहीं, अब आई भी है तो मुंह ढक कर आई है, इसका कारण क्या है? रोहिणी ने कहा, मेरा चेहरा अनायास विकृत हो गया है, सारे चेहरे पर फफोले हो गए, मैं छवि रोग से पीड़ित हूं, इसलिए पहले आई नहीं, लज्जावश। आपने बुलाया तो आई हूं, लेकिन मुंह ढक कर आई हूं, ये मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा। स्थविर अनिरुद्ध ने उससे कहा, छोड़ इसकी फिक्र, भगवान का आगमन हुआ है, उनके 10,000 भिक्षु गांव में हैं, उनके ठहरने के लिए एक विशाल भवन बनवाना है, तू उस भवन को बनाने में लग जा। रोहिणी के पास इतने रुपए थे भी नहीं, लेकिन उसने अपने सारे जवाहरात, अपने सब गहने बेच दिए और भिक्षुओं के निवास के लिए भवन बनवाने में लग गई। भवन बनाने का काम ऐसा था कि भूल ही गई अपने रोग को, और आश्चर्य की घटना घटी कि निवास बनवाते बनवाते ही 99% रोग अनायास ठीक हो गए। लेकिन वह अभी भी भगवान के दर्शन को नहीं आई थी, तब भगवान ने उसे बुलवाया और पूछा, क्यों नहीं आई? उसने कहा, बनते मेरे शरीर में छवि रोग उत्पन्न हो गया था, उसी से लज्जित होकर नहीं आई। अब स्थिर अनुरुद्ध की दवा से 99% तो ठीक हो गया है, लेकिन 1% अभी भी बाकी है। ये कुरूप चेहरा आपको कैसे दिखाऊं, इसलिए बचती थी। आपने बुलाया तो आई हूं, क्षमा करें। भगवान ने पुनः पूछा, जानती हो ये किस कारण हुआ? नहीं बनते, वह बोली। भगवान ने कहा, रोहिणी तेरे क्रोध के कारण, यह अत्यंत क्रोध का फल है, और इसीलिए देख कि करुणा से अपने आप दूर हो चला है, और क्रोध तो अहंकार का परिणाम है। तुझे अपने रूप का बड़ा अभिमान था, उस अहंकार पर पड़ी चोट के कारण ही क्रोध होता था। भिक्षुओं के लिए भवन बनाने में तू भूल गई अपने को, तेरा अहम भाव विस्मृत हो गया, तू ऐसी संलग्न हो गई इस करुणा के कृत्य में कि अहंकार को खड़े होने की बचने की जगह ना रही, इसलिए देख रोग अपने आप दूर हो चला है। लेकिन पूरा दूर नहीं हुआ, क्योंकि अहंकार तेरा छूटा तो, लेकिन बोधपूर्वक नहीं छूटा है, इसलिए 1% रोग बचा है। करुणा तो तूने की, लेकिन करुणा जानबूझकर नहीं की है, मूर्छा ने की है, भाई ने कहा है इसलिए की है, तेरे भीतर से सहज स्फूर्त नहीं है, इसलिए 1% बच रहा है। जाग, जो अभी तू करुणा कर रही है होश से कर, और जो अहंकार अभी तूने ऐसा काम में भूल के भुला दिया है उसे जान के ही त्याग दे। और कहते हैं इस बात को सुनते सुनते ही रोहिणी का सारा रोग चला गया। तब भगवान ने ये गाथाएं कही। आज की पहली 4 गाथाएं रोहिणी को कही गई थी। पहले तो इस कहानी को ठीक से समझ लें, ये अपूर्व है, इसमें पड़ा हुआ मनोविज्ञान गहरा है। मनस्विद जो अब खोज पा रहे हैं वे सारे सूत्र इसमें मौजूद है। पहली बात, आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य का मन उसकी बीमारियों का 90% कारण है। 90% बीमारियों के आधार में मन है, इसलिए इलाज से बीमारियां बदल जाती हैं, ठीक नहीं होती। एक बीमारी हुई, इलाज कर लिया, दवाओं ने उस बीमारी को रोक दिया, दूसरी तरफ से बीमारी बहने लगी, क्योंकि मन तो वही है, मन तो बदला नहीं, मन की तो कोई चिकित्सा हुई नहीं। समझो ये रोहिणी किसी डॉक्टर के हाथ में पड़ गई होगी, ये तो भला हुआ कि बुद्ध जैसे डॉक्टर के हाथ में पड़ गई। ये किसी डॉक्टर के हाथ में पड़ती तो डॉक्टर क्या करता, इसकी चमड़ी का इलाज करता। चमड़ी में रोग था नहीं, चमड़ी में केवल परिणाम था। रोग मन में था, मन का रोग चमड़ी पे फफोले होकर निकल रहा था। तो कोई चिकित्सक इसके चेहरे के फफोले ठीक कर देता, ये भी हो सकता था प्लास्टिक सर्जरी कर देता, इसके सारे चेहरे की चमड़ी बदल देता, तो ये रोग कहीं और से प्रकट होता। हाथों में छाजन हो जाती कि पैरों में लकवा लग जाता, कि आंखें अंधी हो जाती, कि कान बहरे हो जाते, ये रोग किसी और दरवाजे को खोज लेता। रोग तो मिटता नहीं तो दरवाजा तो खोजता। असल में जिसको हम रोग कहते हैं वो रोग नहीं है, रोग का लक्षण। साधारण चिकित्सक लक्षण से लड़ता है, महाचिकित्सक रोग के मूल से लड़ता है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि जब तक आदमी का मन न बदला जाए तब तक किसी बीमारी से वस्तुतः छुटकारा नहीं होता। इसलिए तुमने भी देखा होगा, एक दफे बीमारी के चक्कर में पड़ जाओ तो निकलने का रास्ता नहीं दिखता। किसी तरह एक बीमारी से निकल नहीं पाते कि दूसरी घर कर लेती है, कि दूसरे से निकल नहीं पाते कि तीसरा घर कर लेती है। ऐसा लगता है एक कतार है बीमारियों की, तुम एक से निपटे कि दूसरी बीमारी पकड़ती है। जब तक ठीक थे ठीक थे। इसलिए लोग कहते हैं बीमारी अकेली नहीं आती, कहावतें कहती हैं बीमारी अकेली नहीं आती, संग साथ में और बीमारियां लाती। दुख अकेला नहीं आता, साथ में भीड़ लाता है। इसका कारण न तो दुख है न बीमारी है, इसका कारण यह है कि मूल को हम छूते नहीं। समझो कि एक वृक्ष की जड़ों में रोग लग गया है और पत्ते विकृत होकर आने लगे, पूरे खिलते नहीं, पूरे खुलते नहीं, हरियाली खो गई है। तुम पत्ते काटते रहो या पत्तों पर मलहम लगाते रहो या पत्तों पर जल का छिड़काव करते रहो, गुलाब जल का छिड़काव करो, तो भी कुछ बहुत होगा नहीं। जड़ जब तक आमूल स्वस्थ ना हो तब तक कुछ भी ना होगा। मनुष्य की जड़ उसके मन में है। मनुष्य शब्द ही मन से बना है। मनुष्य यानी जो मन में रुपा है, मन में गड़ा है। उर्दू का शब्द है आदमी, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं, उसमें बहुत गहरा अर्थ नहीं है। उसमें जो अर्थ भी है वो छिछला है। आदम का अर्थ होता है मिट्टी, जो मिट्टी से बना है उसको कहते आदमी, क्योंकि भगवान ने पहले आदमी को मिट्टी से बनाया और फिर उसमें श्वास फूंक दी, इसलिए उसका नाम आदम। फिर आदम के जो बच्चे हुए उनका नाम आदमी। आदमी मिट्टी से बना है, मतलब आदमी देह है। हमारी पकड़ इससे गहरी, हम कहते मनुष्य। अंग्रेजी का मैन भी संस्कृत के मन का ही रूपांतर है, वो भी महत्वपूर्ण है। हम कहते मनुष्य, हम कहते मिट्टी नहीं है आदमी। आदमी है मन, आदमी है विचार, आदमी है उसका मनोविज्ञान। जैसे ईसाइयत, इस्लाम और यहूदी आदम को पहला आदमी मानते हैं, हम नहीं मानते, क्योंकि आदम होना तो आदमी का ऊपरी वेश है, वो असली बात नहीं। असली बात तो भीतर छिपा हुआ सूक्ष्म रूप है। मनुष्य का अर्थ ही होता जिसकी जड़ें मन में गड़ी। लेकिन आधुनिक खोजें इस सत्य के करीब आ रही है। आधुनिक खोजें ये बात स्वीकार करने लगी कि आदमी शरीर पर समाप्त नहीं है। ना तो शरीर पर शुरू होता है ना शरीर पर समाप्त होता है। शरीर तो घर है जिसमें कोई बसा है। फिर हम ये भी नहीं कहते कि आदमी मन पर समाप्त हो जाता, हम कहते हैं मन में गड़ा है, है तो मन से भी पार। इसलिए आदमी है तो आत्मा। अब इन तीन शब्दों को ठीक से लेना, आत्मा मन देह। मन दोनों के बीच में, मन को तुम शरीर से जोड़ दो तो संसारी हो जाते हो और मन को तुम आत्मा से जोड़ दो तो सन्यासी हो जाते हो। मन के जोड़ का सारा खेल है। आत्मा भी तुम्हारे भीतर है, शरीर भी तुम्हारे पास है, बीच में डोलता हुआ मन है। इसलिए मन सदा डोलता है, डमाडोल रहता है, मध्य में लहरें लेता रहता है। अगर तुम्हारा मन शरीर की छाया होकर चलने लगे तो तुम संसारी, अगर तुम्हारा मन आत्मा की छाया होकर चलने लगे तुम सन्यासी। कुछ और फर्क नहीं है। मन अगर अपने से नीचे की बात मानने लगे तो संसारी, मन अगर अपने ऊपर देखने लगे तो सन्यासी। सन्यास की धारणा इस देश में पैदा हुई क्योंकि हमें ये बात समझ में आ गई कि मन दो ढंग से काम कर सकता है। मन तटस्थ है, मन की अपनी कोई धारणा नहीं है। मन ये नहीं कहता ऐसा करो, तुम पर निर्भर है। तुम चाहो तो मन को शरीर के पीछे लगा दो तो शरीर की गुलामी करता रहेगा। मन तो बड़ा अद्भुत गुलाम है, उस जैसा आज्ञाकारी कोई भी नहीं। तुम उसे आत्मा की सेवा में लगा दो, वो आत्मा की सेवा में लग जाएगा। तुम उसे लोभ में लगा दो, वो लोभ बन जाएगा। तुम उसे करुणा में लगा दो, वो करुणा बन जाएगा। सारे धर्म की कला इतनी ही है कि हम मन को नीचे जाने से हटाकर ऊपर जाने में कैसे लगाते हैं। और ख्याल रखना, जो सीढ़ियां नीचे ले जाती हैं वही सीढ़ियां ऊपर ले जाती हैं। सीढ़ियां तो वही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दो आदमी बिल्कुल एक जैसे हों, एक जगह हों, और फिर भी एक सन्यासी हो और एक संसारी हो। ऐसा समझो कि किसी मकान की सीढ़ियां तुम चढ़ रहे हो, एक आदमी ऊपर से नीचे उतर रहा है, तुम ऊपर चढ़ रहे हो। 30 सीढ़ियां हैं, 15वीं सीढ़ी पर तुम दोनों का मिलना हो गया। तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो, कोई नीचे की तरफ आ रहा है। 15वीं सीढ़ी पर तुम खड़े हो, दोनों एक ही जगह खड़े हो, लेकिन फिर भी एक जैसे नहीं हो, क्योंकि एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है। दोनों बिल्कुल एक जैसे लगोगे, कोई तो फर्क नहीं होगा, क्योंकि सीढ़ी तो 15वीं होगी, स्थान तो वही होगा, लेकिन फिर भी गहरे में फर्क, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, दिशा में फर्क, उन्मुखता भिन्न भिन्न है। जब मन देहोन्मुख होता है तो संसार, और जब मन आत्मानुमुख हो जाता है, रामोन्मुख हो जाता है, तो सन्यास। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि संसारी और सन्यासी बिल्कुल एक जैसा लगे, एक ही सीढ़ी पर खड़ा हुआ मालूम पड़े, फिर भी अगर उनकी दिशाएं अलग हैं, उनकी आंखें अगर अलग दिशाओं में देख रही तो वे भिन्न है, मौलिक रूप से भिन्न है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि जब तक हम मन को स्वस्थ न कर लें, तब तक शरीर की बहुत सी बीमारियां ठीक हो ही नहीं सकती। इसलिए पश्चिम में एक नए तरह की चिकित्सा पैदा हो रही, साइकोसोमेटिक। शरीर और मन दोनों का इलाज साथ साथ होना चाहिए, और शरीर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मन का इलाज। बीमारी अगर मन में हो और शरीर पर केवल उसकी छाया पड़ती हो तो तुम छाया को पोंछते रहो, मिटाते रहो, इससे कुछ भी ना होगा। मन से हट जाए तो शरीर तत्क्षण स्वस्थ हो जाएगा। तो इस कहानी का पहला तो यही अद्भुत अर्थ कि यह जो रोहिणी है ये अत्यंत अहंकारी रही होगी। अहंकार स्त्री को होता है तो रूप का होता है, आदमी को अहंकार होता है तो नाम का होता है। दो ही अहंकार है, नाम रूप। इसलिए माया के सारे संसार का हमने एक ही अर्थ किया है, नाम रूप। रूप का अर्थ होता है देह, नाम का अर्थ होता है सूक्ष्म मन। मनुष्य का अगर वो पुरुष है तो बहुत लगाव होता है नाम से, प्रतिष्ठा, पद, पदवी, यश, धन, ज्ञान, त्याग, कहीं नाम। स्त्री का आग्रह होता है रूप पर, सौंदर्य। मुल्ला नसुद्दीन मुझसे बोला कि मुझे नौकरी मिल गई एक ब्यूटी पार्लर, एक सौंदर्य प्रसाधन की दुकान में नौकरी मिल गई। मैंने उसे उस दुकान के सामने खड़ा कई बार देखा तो पूछा कि तू वहां खड़े तो रहता, नौकरी क्या मिली, बाहर खड़ा रहता। उसने कहा यही मेरी नौकरी। मैंने कहा तेरा काम क्या? उसने कहा काम भी बड़ा सरल है, ऐसे बड़ा सूक्ष्म। फिर भी मैंने कहा मुझे कहो काम तेरा क्या है, मैं जब देखता हूँ वहीं तू खड़ा है बाहर। तो उसने कहा काम मेरा ये है कि जो स्त्रियां सौंदर्य प्रसाधन के लिए आती हैं, जब वो भीतर जाती हैं तो मेरा काम है उपेक्षा दिखलाना, नजर भी नहीं डालना, देखना ही नहीं कि कौन जा रहा कौन आ रहा। और जब वो सज धज के बाल ठीक करवा के बाहर निकलती हैं तो सीटी बजाना, ये मेरा काम है, ये मेरी नौकरी। इससे दुकान खूब चल रही है, क्योंकि स्त्रियों को समझ में एक बात आ जाती है, अभी गई थी और ये आदमी देखा तक नहीं, और अब बालवाल समार के बाहर आ रही, तो सीटी बजा रहा वही आदमी, तो जरूर सुंदर होकर लौटी। स्त्री का सारा आकर्षण रूप में, इसलिए स्त्री को बहुत फिक्र नहीं होती नाम की। इसलिए स्त्रियां कोई ऐसे बहुत काम नहीं करती जिनसे नाम मिले, कि कोई बड़ी किताब लिखनी, कि मूर्ति बनानी, कि पेंटिंग बनानी, कि महाकाव्य लिखना, कि दुनिया की कोई ख्याति मिल जाए, कुछ लेना देना नहीं। स्त्री को सारा प्रयोजन है सौंदर्य से। रोहिणी सुंदर स्त्री रही होगी, स्त्री थी, सौंदर्य पर उसकी पकड़ रही होगी। और ये जो अहंकार हो, जैसा भी हो अहंकार, चाहे रूप का चाहे नाम का, जहां अहंकार है वहां क्रोध है, क्योंकि क्रोध का अर्थ ही होता है अहंकार को लगी चोट। तुम सोचते हो कि तुम बड़े ज्ञानी हो, किसी ने कह दिया कि क्या तुमने रखा ज्ञान, ज्ञान चोट लग गई। तुम सोचते हो कि तुम बड़े सज्जन हो, और किसी ने कह दिया कि काहे के सज्जन, चोर बेईमान। तुम सोचते हो साधु हो, किसी ने कह दिया असाधु। तुमने सोचा कि सुंदर हो, और किसी ने कह दिया असुंदर, तो चोट लग गई। तुम्हारी मान्यता को चोट लग जाए तो क्रोध पैदा होता है। तुम्हारी मान्यता को जो साथ दे दे उस पर बड़ा लगाव आता है। यही तो प्रशंसा से तुम इतने प्रशंसित होते हो। कोई कह दे कि हाँ तुम जैसा सुंदर और कौन, तुम बाग बाग हो जाते, तुम्हारी सब पखड़ियां खिल जाती, तुम खुश हो जाते। किसी ने तुम्हारे अहंकार को फुसलाया, राजी कर लिया। कुरूप से कुरूप स्त्री को भी कह दो कि तुम सुंदर हो, तो वो भी इनकार नहीं करेगी। वस्तुतः वो कहेगी कि तुम ही पहली दफा पारखी मिले, अब तो कोई पहचान ही ना पाया। मैं तो जानती ही थी, लेकिन पारखी चाहिए ना, हीरे तो पारखी होते तो पहचानते। तुम बुद्धू से बुद्धू आदमी से कह दो कि तुम बुद्धिमान हो, बड़े बुद्धिमान हो, तो वो भी नहीं कहता कि देखो नाहक चापलूसी मत करो, मैं तो बुद्धू, वो भी नहीं कहेगा। पागल से पागल को कह दो कि तुम जैसा जागरूक शांतचित्त आदमी और कहां, वो भी अंगीकार करता है। अहंकार के अनुकूल जो पड़ता है वो हम स्वीकार करते हैं, और अहंकार को जो भरता है उसको हम मित्र कहते हैं, यद्यपि वो है तो शत्रु, क्योंकि वो तुम्हें उस जगह ले जा रहा है जहां से तुम बुरी तरह गिरोगे, जहां से ऐसे गिरोगे कि फिर संभलना मुश्किल हो जाएगा। वो तुम्हें ऐसी जगह उठा रहा है जहां से गिरना सुनिश्चित है। अहंकार पर कोई भी ठिर होकर रह नहीं सकता, वो जगह बारीक है, तुम्हें संभाल ना पाएगी, वहां से तुम गिरोगे। और आज जितने अहंकार से तुम्हारी तृप्ति हुई, कल और तुम मांगोगे और ज्यादा और ज्यादा। आखिर कब तक ये होगा? एक घड़ी आएगी कि तुम अपने ही अतिशय से गिरोगे, बुरी चोट खाओगे। जो जितने ऊपर अहंकार की चोटी पे चढ़ेगा, उतनी ही बड़ी खाई में गिरने का खतरा मोल ले रहा है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, गिरती आने वाली है। और तुम चकित होगे कि जिन्होंने प्रशंसा की थी वही निंदा में मुखर हो जाते। वो बदला लेंगे, जब प्रशंसा की थी तब भी बेमन से की थी, तब भी करनी पड़ी थी, कोई प्रयोजन थी, कोई प्रयोजन था इसलिए की थी, तुमसे कुछ लाभ था, तुमसे कुछ निकालना था इसलिए की थी, बदला तो लेंगे। कोई भी प्रशंसा प्रशंसा की तरह थोड़ी करता है, उसका कोई प्रयोजन, उसे तुम्हारा शोषण करना है, उसका काम निपट जाएगा तो वही बदला लेगा जिसने तुम्हें आकर खूब आह्लादित किया था, वही तुम्हें गालियां देगा। तब दिल को और भी चोट लगेगी, अपने ही पराये हो गए ऐसा लगेगा, मित्र शत्रु हो गए ऐसा लगेगा। और कहावतें कहती दुनिया की कि जिसके साथ नेकी करो वही बदी करता है। नेकी इत्यादि तुमने की भी नहीं है, उसने तुम्हारी प्रशंसा की थी, तुमने कुछ उस प्रशंसा के कारण कर दिया था, वो नेकी नहीं थी, वो सिर्फ सौदा था। और उस आदमी को तुम्हारी प्रशंसा करनी पड़ी थी, तुम्हारे सामने झुकना पड़ा था, इसलिए वो तुम्हें कभी क्षमा तो कर नहीं सकेगा, वो इसका बदला तो लेगा। जब भी अवसर आ जाएगा, ठीक समय होगा, वो बदला लेगा। तो रोहिणी को रूप का दंभ था, रूप के दंभ के कारण बहुत चोटें लगी होंगी, क्रोधित होती थी। अगर तुम्हें चोटें लगती हो तो एक बात ख्याल में ले लेना, चोट लगने का लक्षण अर्थ यही कि तुम्हारे भीतर अहंकार का घाव बहुत गहरा है, जरा सी बात भी अखर जाती है। अगर तुम्हारे मन में सम्मान की इच्छा है और अपमान से बचने का भाव है तो तुम अहंकार का पोषण कर रहे हो। फिर इन क्रोध और

अहंकार के बीच में उसे छवि रोग हो गया, चेहरा विकृत हो गया। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि चमड़ी की रोग तो 99% मानसिक होते, सभी रोग 90% मानसिक होते हैं, लेकिन चमड़ी के रोग तो 99% मानसिक होते हैं, क्योंकि चमड़ी बड़ी संवेदनशील है और चमड़ी हमारी सबसे बड़ी इंद्री है। कान छोटा सा है, कान पर चोट करनी हो तो निशाना ठीक ठीक लगाना पड़े तो ही चोट होगी। आंख छोटी सी है, आंख पर चोट करनी हो तो निशाना ठीक लगना चाहिए। जीभ भी छोटी सी है, लेकिन चमड़ी तुम्हारे पूरे शरीर को घेरे हुए, ये तुम्हारी सबसे बड़ी इंद्री, स्पर्श की इंद्री सबसे बड़ी इंद्री है। इस पर चोट बड़ी आसानी से लग सकती, निशाना लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मन की चोटें आंख पर भी लगती हैं, कान पर भी लगती हैं, जीभ पर भी लगती हैं, लेकिन वो तो उनकी मात्रा बहुत छोटी छोटी है, लेकिन शरीर की चमड़ी का फैलाव बहुत है। उस फैलाव के कारण चमड़ी पर सर्वाधिक मन की चोटें पड़ती हैं, और चमड़ी का कोई भी रोग किसी इलाज से ठीक नहीं होता, लेकिन मानसिक इलाज से ठीक होता है। चमड़ी इस अर्थ में भी विचारणीय है कि तुम्हारी और जो इंद्रियां हैं वो चमड़ी के ही विशिष्ट रूप है। कान है क्या? चमड़ी का ही एक विशिष्ट रूप है। और आंख है क्या? आंख भी चमड़ी का ही एक विशिष्ट रूप है। चमड़ी ने ही अपने एक हिस्से को देखने में कुशल बना लिया है, वो आंख हो गई, और चमड़ी ने ही एक दूसरे हिस्से को स्वाद लेने में कुशल बना लिया है, वो तुम्हारी जीभ हो गई, और चमड़ी ने ही एक दूसरे हिस्से को विशेषज्ञ बना लिया है, नाक हो गई तुम्हारी सुगंध के लिए विशेषज्ञ। ये एक्सपर्ट है, ये चमड़ी की विशेषताएं, लेकिन है सब चमड़ी के ही खेल। बच्चा जब पहली दफा पैदा होता है, माँ के पेट में बढ़ता है, तो पहले तो चमड़ी आती, फिर चमड़ी में ही धीरे धीरे आंख उभरती, फिर चमड़ी में ही धीरे धीरे कान उभरता, फिर चमड़ी में ही जननेंद्रिय उभरती, फिर चमड़ी में ही जीभ नाक सब उभरते जाते, लेकिन सबसे पहले तो चमड़ी होती। तो चमड़ी बहुत मूल है, और इसलिए स्पर्श बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए जब हम किसी के प्रेम में पड़ते हैं तो तत्क्षण स्पर्श करना चाहते हैं, हाथ में हाथ लेना चाहते हैं, गले से गले लगाना चाहते हैं, आलिंगन करना चाहते हैं। जब हम किसी के प्रेम में पड़ते हैं तो हम स्पर्श करना चाहते हैं, और जिससे हमारा प्रेम नहीं है उसके स्पर्श से हम बचते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इस पर काफी शोध की है, और उन्होंने पाया है कि लोग जिनसे बचना चाहते हैं अपने बीच और उनके बीच एक खास तरह की दूरी रखते हैं। ट्रेन में ही चाहे लोग खड़े कितनी ही भीड़ है तो भी तुम पाओगे हर आदमी अपने में सिकुड़ा खड़ा है, दूसरे को छूना नहीं चाहता। और जिससे तुम्हारा प्रेम नहीं है अगर उसे तुम छू लो तो तुम तत्क्षण क्षमा मांगते हो। क्यों? छू लेने का अर्थ हुआ कि तुमने उसकी सीमा रेखा में प्रवेश कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए, ट्रेस पास हुआ, तुम दूसरे के घर में बिना आज्ञा मांगे घुस गए। जिससे तुम्हारा प्रेम नहीं है उसको छू ले तो तुम तत्क्षण क्षमा मांगते हो कि माफ करना, भूल हो गई, जान के नहीं किया है। और अगर कोई पुरुष या कोई स्त्री तुम ट्रेन में खड़े हो और तुमसे सट के खड़ा हो जाए और क्षमा भी न मांगे, और ऐसा भाव दिखलाए कि बड़ा प्रेम में तुमसे खड़ा है, तो तुम अत्यंत नाराज हो जाते हो, तुम अत्यंत क्रोधित हो जाते हो, तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए ट्रेन या बस में इकट्ठे खड़े हुए लोग भी इस तरह खड़े होते हैं कि अगर शरीर भी छू रहे हैं तो भी उनके मन नहीं छू पाते, वो अपने कुछ सिकोड़े खड़े होते हैं, कम से कम इतना प्रदर्शन तो करते हैं कि हम तुम्हें छू नहीं रहे, अगर छू रहा है शरीर तो मजबूरी, हम नहीं छू रहे, और हम एक सीमा बांध के रखते हैं। तुमने देखा कभी किसी के साथ तुम बात खड़े होकर बात कर रहे हो तो सदा तुम जांचोगे कि एक सीमा तक तुम उस आदमी को बर्दाश्त करते हो, अगर वो उससे ज्यादा करीब आ जाए तो तुम पीछे हट जाते हो, एक सीमा होगी, समझो कि 12 इंच, तो 12 इंच तक वो आदमी अगर तुम्हारे करीब आ जाए तुम्हें कोई चिंता नहीं पैदा होती, कोई बेचैनी पैदा नहीं होती। 12 इंच के भीतर आना शुरू हो जाए, तुम्हारा बेटा हो तो ठीक, तुम्हारी पत्नी हो तो ठीक, तुम्हारा पति हो तो ठीक, लेकिन जिससे तुम्हारा कोई गहरा नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं, वो अगर 12 इंच या 10 इंच के भीतर आने लगे तुम तत्क्षण पीछे हट जाओगे। वहां तुम्हारी एक अज्ञात सीमा है, चमड़ी का एक अज्ञात क्षेत्र है जहां तक उसकी तरंगें फैलती है,
उन तरंगों के भीतर कोई भी आ जाए तो हम पसंद नहीं करते, अशिष्ट मालूम होती है ये बात।

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।
1: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। जब से हमारी ये सीरीज शुरू हुई है, बहुत से हमें कॉल्स आते हैं, बहुत से ईमेल्स आते हैं और आप सबका एक बहुत लगातार रिस्पांस आता जा रहा है। ढेर सारा प्यार भी मिलता है, लेकिन साथ ही हमें बहुत बार दर्शकों ने लिखकर भेजा कि उनके अनुभव जो हो रहे हैं, जो आप लोगों को मिल रहा है, वो बहुत सुंदर है और जीवन में परिवर्तन आना शुरू हुआ है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हर बार हम आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करें जो हो सकता है आप ही के जीवन में हुआ हो। तो आज एक बार फिर हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, उनका स्वागत करते हैं। ओम शांति।
2: ओम शांति।
1: सिस्टर शिवानी, हम एक बात ये करना चाहेंगे कि जो लोगों का अनुभव हुआ है, जो परिवर्तन हुए हैं, वो जो उनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है पूरे जितने और नए दर्शक जुड़ते हैं उनके लिए।
2: आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि परमात्मा भी हमें हमेशा यही कहते कि ज्ञान तो है ही सर्वश्रेष्ठ, लेकिन ज्ञान तब मेरे लिए पर्सनल हो जाता है जब वो मेरा एक्सपीरियंस बनता है। तब तक वो किसी और का ज्ञान है, जैसे या कहें पहले वो परमात्मा का ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान, क्योंकि बाबा का ज्ञान मेरी प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि शिव बाबा ने कहा जो कुछ मेरा है वो आपका है, लेकिन वो मेरी प्रॉपर्टी कब बनता है, जब मैं उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करती हूँ और फिर यूज़ करके सक्सेस मिलती है, एंड देन आई से इट वर्क्स। सो टिल आई कम टू दैट लाइन व्हिच सेज दिस ज्ञान वर्क्स, दैट्स द डे व्हेन आई से ओके नाउ आई एम एट द राइट प्लेस, दिस इज एंड दिस इज गॉड। Even that, let's say the belief to the truth, वो जो journey है, because it starts with the belief कि ये ज्ञान जो है वो direct परमात्मा दे रहे हैं, लेकिन वो मेरे लिए truth कब बन जाता, when I see the transformation in myself, then I say कि you know जो देने वाला है वो जो doctor है, he is right because I'm getting cured,
1: right.
2: So it's a very big thing for any individual.
1: और शिवानी, ऐसा बहुत से लोग मुझे हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो कहते जा रहे हैं कि मेरे में परिवर्तन देख रहे हो, लेकिन मैं शो पर हूँ तो
2: आपके अंदर सब परिवर्तन देख रहे हैं। I must tell you कि wherever I have gone and whoever I have met, everyone talks about you and everyone says कनुप्रिया को हम देखते आ रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से, एंड वो तो बिल्कुल चेंज हो गई है, एंड यू मस्ट नो कि यू आर बिकमिंग अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। दे आर, बिकॉज दे सीइंग यू एंड दे से कि बहन के अंदर इतना चेंज आ गया है, उसको इतना समझ में आने लगा है, एंड दे ऑल्सो फील देर इज अ चेंज इन द वे यू आर प्रेजेंटिंग द होल ज्ञान। सो दे से कि बिकॉज दे आर सीइंग यू एज द एग्जाम्पल ऑन विच द ज्ञान हैज वर्कड। सी, इस साइड पर जो भी भाई बहने बैठते उनको तो वो देख ही तब रहे हैं आफ्टर दे हैव स्टार्टेड वर्किंग, लेकिन आपको उन्होंने उस जर्नी पर देख लिया है कि व्हेन यू बिगैन विद इट एब्सोल्युटली रॉ, ओम शांति यू वर सेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड टुडे व्हेन दे कैन सी दैट इट वर्क्स, तो आपको देखकर हर एक को बहुत प्रेरणा मिल रही है कि यस दिस कैन वर्क।
1: वेरी ट्रू, एंड इनफैक्ट ये हमें अनुभव तब होने लगता है जब हमारी सिचुएशंस जब आती हैं उनमें हमारा रिस्पॉन्स अलग होने लगता है, हम सिचुएशंस के ऊपर उतने उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तो ऐसा ही आप सबके साथ भी, बहुत लोगों के साथ होता जा रहा है, और आज सिस्टर शिवानी के साथ हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है जिन्होंने इस प्रोग्राम को देखा, आप ही में से एक थी, समझा और फिर वो स्टेप उठाया। हम बार बार ये बात करते हैं कि हमें अच्छा लगता है सुनना, बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ सुनते हैं, लेकिन क्या ये मेरे जीवन में हो पाएगा जब मेरे जीवन में सिचुएशन आएगी। वो एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिन्होंने उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया। हमारे साथ खास सिंगापुर से भारत आए हुए, इन दिनों भारत में है, समीना जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओम शांति। आप ही की तरह के गेस्ट हैं, मतलब हमारे साथ, लेकिन आप बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं समीना जी, और एक परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि कैसे हुआ ये सब, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे प्रोग्राम देखा?
3: आई डोंट नो एग्जैक्टली कि कैसे हुआ, लेकिन एक बार चैनल सर्फिंग करने के टाइम पे ये प्रोग्राम देखा और मुझे लगा दिस इज़ डिफरेंट, यू नो ये रिलीजियस टॉक नहीं है,

0: के टाइम पे वही उसी टाइम पे प्रोग्राम था. सो आई थॉट ओके दिस इज अ डेली शो, यू नो दिस इज नॉट अ वन टाइम शो, लेट मी सी. एंड एक फिर हैबिट बन गई. आप लोग अभी जो कहते हैं संस्कार, वो संस्कार बन गया कि नहीं मुझे देखना ही है, किसी भी तरह से मुझे ये टाइम निकाल के देखना है. एंड एवरी डे दैट आई सॉ मुझे लगा दिस इज डिफरेंट. ये जो कह रहे हैं ये शायद अगर ये कह रहे और वर्क करता है तो इट इज इट कैन बी सच अ ब्यूटिफुल लाइफ. एंड आई थॉट ओके नथिंग टू लूज, नहीं काम करेगा तो नहीं काम करेगा, काम करेगा तो अच्छा ही है. तो स्लोली वेरी ग्रेजुअली आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग. रोज जो आपके प्रोग्राम आते उसमें से एक बात पकड़ के मैंने बोला ट्राई करते हैं इसे, ये वर्क. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक ट्राई करना था कि कैन यू समहाउ conquer your anger.
1: I know. That's the biggest thing.
0: Because that is such a immediate reaction. जब कुछ गड़बड़ होता है तो first reaction is anger, stress. क्या you know whether we have some sort of control over that situation. And every time a situation came जहाँ हम volatile हो सकते हैं या गुस्सा हो सकते हैं या you know agitate हो जाते हैं, तो तब क्या हम वो सिचुएशन को संभाल सकते हैं, यू नो. एंड आई फेल्ट दैट एक बार किया, दो बार किया, जब बहुत बार किया तब लगा इट इज़ सो मच बेटर कि तब नहीं होना है गुस्सा, सोचना है करना क्या है. एंड अब गुस्सा अंदर ज़रूर आता है लेकिन बहुत धीमे आता है, यू नो लाइक ओके एक बात को जब हम भड़क जाते थे बहुत बात पे, अभी यू नो थोड़ा वक्त देते हैं. ओके इट्स चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग है ये टाइम, यू नो कि गर्मी ठंडी में सब काफ़ी काम रहते हैं लेकिन गर्मी में सबके टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. सो इट्स रियली अ चैलेंज बट इट्स वेरी नाइस क्योंकि यू नो जब हम थोड़ा शांत होते हैं तो सामने वाला भी शांत हो जाता है. आई डोंट नो आई फील इट दैट यू नो जब हम आराम से बात करते तो सामने वाला अगर गुस्से में भी होगा तो उसे बुरा लगेगा.
1: और जब जब वो
0: हमारे से गुस्से से बात कर फिर उस खुद को लगता है कि शी इज नॉट स्क्रीमिंग तो कोई ज़रूरत नहीं. और हमारे आदत है, एक्चुअली आदत ये भी है कि एवरीबडी नोज मी एज अ पर्सन हुज यू नो हु रिएक्ट्स वेरी क्विकली. सो दे फील के ये ड्रामा करिए यू नो क्या हो रहा है, रिएक्शन नॉट स्पॉन्टेनियस एनीमोर. लेकिन आई थिंक स्लोली आई थिंक दे विल गेट यूज्ड टू इट, आई एम श्योर. एट लीस्ट आई फील गुड.
1: नो बट इट्स सो ब्यूटीफुल समीना, सो यू कमिंग ओवर एंड शेयरिंग दिस व्हिच इज एक्चुअली सो रियल. लेकिन पहला कदम आपने उठाया, दैट वाज सो इंपॉर्टेंट. सो शिवानी,
2: आई थिंक इट वुड बी नाइस इफ यू शेयर हाउ डिड यू एक्चुअली गेट द ज्ञान टू वर्क. You know, because I'll tell you, a lot of us watching the program, but then one is ki humne program dekha, suna, like you, bahut sare bhai bane regular bhi dekh rahe hain, but somewhere that little gap is there between program ko dekhna, sunna, parmatma se jo gyan mil raha hai, samajhna bhi, lekin to take it back to my life tomorrow. So what is it that probably inspired you to do it? And what did you do to do that, you know, to get it to work? Because otherwise, गुस्सा नहीं करना तो अभी पहली बार थोड़ी सुना आपने. आई एम श्योर इफ यू वर अ हॉट टेम्पर्ड पर्सन तो आपको बचपन से राइट फ्रॉम योर पेरेंट्स टू एवरीवन मस्ट हैव बीन टेलिंग यू कि गुस्सा नहीं करना चाहिए. तो व्हाट इज इट दैट गॉट यू टू वर्क ऑन इट नाउ एंड यू नो हाउ डिड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ.
0: फर्स्ट ऑफ ऑल द फैक्ट दैट आई वांटेड टू एक्सपेरिमेंट ऑन दिस इज बिकॉज आई न्यू आई हैड नथिंग टू लूज. इफ इट वर्क्स इट वर्क्स, इट डजंट वर्क ठीक है, आई विल बी बैक टू माय नॉर्मल सेल्फ. A lot of people are watching this program, they agree with it, but they don't make an effort to bring it into their lives. You know, isme effort chahiye. You have
1: to. What was that effort?
0: The effort was that the time when I started, I wanted this so much in my life, is there were many things, factors going wrong in my life and I had no control over it. Mujhe laga ki jaise jin I'm holding, jaise rep pakdi hui haath mein sab phisalta ja raha hai. मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ, यू नो दैट आई वांटेड टू होल्ड ऑन टू थिंग्स.
1: चीजें सिचुएशंस हैं, वो
0: सिचुएशंस हैं.
2: एंड दैट्स व्हाट आई थिंक इन दिस होल सीरीज दैट वी बीन डूइंग, इट्स अ न्यू सीरीज, वी बीन टॉकिंग कि जब हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है तो जो फर्स्ट फीलिंग आती है दैट इज पावरलेसनेस, कि मेरे कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं है. बिकॉज वी वर ट्राइंग टू कंट्रोल अदर पीपल एंड सिचुएशंस they're not in our control anymore.

0: मोर तो सडनली यू फील कि मेरी पूरी जीवन ही मेरे हाथ से निकल. माय हस्बैंड इज नॉट इन माय कंट्रोल, माय चिल्ड्रन हैव ग्रोन अप नाउ, दे आर नॉट इन माय कंट्रोल. एंड सबसे बड़ी बात, आई एम नॉट इन माय ओन कंट्रोल. सो यू जस्ट फील देन व्हाट इज इन माय कंट्रोल, यू नो नथिंग सीम्स टू बी इन माय कंट्रोल. एंड उससे एक बहुत फीलिंग ऑफ कहीं डीमोटिवेशन, यू नो लाइफ इज नॉट एंजॉयबल एनी मोर व्हेन यू फील कि नथिंग इज इन योर कंट्रोल. So that's true, that's the time when it's really needed. So that when I come back into control, everything comes back into control.
1: I think that was the key thing, that if I felt, I, like Sister Shivani said many times, don't try to change everybody around you, try and change yourself. I said, okay, let me work, reverse direction abhi. Ki agar mere mein thoda, you know, if I can change a little bit and mere mein badlaav aa jayega, to shayad wo thoda reflect hoga jo mere aas paas hai. ये वैसे भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं लेट इट फ्लो. आई डोंट वॉन्ट टू ट्राई वेरी हार्ड टू चेंज समथिंग दैट्स गोइंग अगेंस्ट मी. इफ आई लेट इट गो, लेट मी सी वॉट हैपन्स. एंड वेन आई डिड दैट, वेन आई लेट गो ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी टू कंट्रोल थिंग्स, आई फेल्ट एंड आई जस्ट टॉक टू गॉड एंड आई सेड, नाउ यू हेल्प मी फ्रॉम हियर. मैंने आपका हाथ पकड़ा है, आप अब मेरा हाथ पकड़ो. एंड जब मैंने वो किया तो आई फेल्ट दैट ही एक्चुअली हेल्ड ऑन टू मी. And he said, okay, I'll show you the first step. Chalna tumhe hi hai, lekin steps main sikhaunga. And once I did that, I felt, now I know my path. And what happens is, religion, baki sare, I'm a Muslim, and it gets complicated. Jo religions cheeze hai, wo complicated. Mujhe kuch bilkul plain and simple, jo mere samajh mein aaye, aisa mujhe chahiye tha. Jisse meri zindagi, you know, hum jo bhi yahan, जो भी प्रोग्राम्स देख रहे, एवरीबडी वांट्स इन देयर न्यूक्लियर फैमिली टू बी हैप्पी. कोई ये सोचता नहीं है कि मुझे दुखी होना है. आई डोंट थिंक एनीबडी थिंक्स दैट. एवरीबडी वांट्स जस्ट टू बी हैप्पी.
2: वेरी ट्रू. हर कोई अपने एफर्ट्स जो है वो खुश रहने के लिए ही कर रहा है.
1: यस. सो आई जस्ट वांटेड टू बी हैप्पी. आई वांटेड माय फैमिली टू बी हैप्पी, कंटेंटेड. एंड आई फील आई एम ऑलरेडी ऑन दैट जर्नी. आई फील कि जो भी मेरे हाथ से फिसला जा रहा था, फिसल गया था, जो चला गया था, वो धीरे कैसे, आई डोंट नो, मैं समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन वो वापस वापस लौट के आ रहा है. इट्स अ टाइड, इट वेंट एंड इट्स रिटर्निंग.
0: बट व्हाट ऑल डू यू फील, यू वांट टू शेयर व्हाट यू फील हैड गॉन आउट दैट्स कम बैक.
1: अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर फेज, जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, बिजनेस में भी मेरे हस्बैंड्स को लॉसेस थे, फैमिली में भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट. एंड वी वर बोथ डिप्रेस्ड, वी बोथ वर फीलिंग दैट, you know, we are good people. हमें सब लगता है, हम सब लोगों को ऐसे लगता है कि we are good people.
0: हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है?
1: हमारे, you know, why should it happen? मैंने, हम लोग ने कभी किसी से कुछ नहीं लिया है, ना किसी को चीट किया है, ना कुछ भी. तो हमारे साथ ये ये ये इतनी पनिशमेंट्स हमें क्यों मिल रही है? लेकिन now I realize that these were lessons and this was, जैसे परमात्मा हमें, ईश्वर कहो, ऑलमाइटी कहो, अल्लाह करो, जो भी, you know, he was actually kind of tuning us, training us for better times to come. And as you start the journey, and now I am a long way into the journey, I feel that there is no other way to live. You know, we are peaceful souls, we are happy souls, we don't have to be sad. You know, ये रोना धोना is not our life.
2: Right, true. How beautiful. This is what I think.
0: This is what we've been saying every time.
2: We've been wanting people to come out and say.
0: Yeah.
2: Because
0: pain
2: this
0: is not a part of
2: thing, yes.
1: No. Don't give pain to anybody, but don't accept pain also.
2: Yeah, you know. And
0: this is, you know, she's not even realized what she said, yes. But this is what Shiv Baba says. Na dukh do, lekin na dukh lo. Majority लोग हम कहते हैं कि हमने दुख नहीं दिया, हम कुछ गलत नहीं कह रहे, लेकिन दुख लेना नहीं है. That part we didn't know. We knew this के दुख देना नहीं है. वो भी कभी कभी गलती से दे ही देते थे. लेकिन दुख ना लो. We didn't know that we had a choice there. We always thought कि अगर किसी ने कुछ कहा है तो दुखी तो.
1: But if you're in soul consciousness, if you're conscious all the time, मुझे 24 hours लगता है कि the divine forces with me. वो मेरे साथ ही है. He is with me, and therefore I will not do wrong. And I will not be wrong. वो है, he's protecting me. वो मेरे साथ ही है. अगर कुछ something goes wrong, I feel he's teaching me something now. I never see it negatively.
0: So it becomes a very personal relationship with God.
1: Yes, I mean now I have found के आई हैव मैकेनिज्म बाय विच आई कैन एक्चुअली टॉक टू हिम. मैं आई एम शेयरिंग माई लाइफ डेली बेसिस. जब आई एम इन मेडिटेशन दैट्स व्हेन आई एम वेरी क्वाइट. और उसके बाद आई टॉक टू हिम. आई टेल हिम अगर इफ आई हैव डन समथिंग बाय मिस्टेक, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, या मुझसे कुछ यू नो वो स्पॉन्टेनियस जो पहले के संस्कार थे वो गुस्सा कहीं किसी पे आ गया या कुछ भी, आई विल टेल हिम कि आई हैव दिस इज व्हाट आई डिड टुडे, बट आई विल मेक श्योर दैट आई विल बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम. सो द कॉन्शियस लाइक सोल कॉन्शियसनेस, आई एम इन दैट सोल कॉन्शियसनेस, एंड बिकॉज आई एम इन सोल कॉन्शियसनेस यू कैन नॉट डू रॉन्ग. दैट्स द थिंग.
2: सी दैट्स लाइक दृष्टि अगर हमारी ठीक रहती है या हमारा पूरा एहसास रहता है तो एक्चुअली नथिंग कैन गो रॉन्ग ऑल्सो. यू नो ये भी आपके ऊपर पूरा स्ट्रॉन्ग आपको एहसास रहता है कि कभी कुछ गलत हो भी नहीं
1: सकता.
2: बहुत सुंदर. अब तो मैं आपको समीना भी कह सकती
1: हूँ.
2: सो मच पार्ट ऑफ द फैमिली.
1: यस आई एम, दैट्स ट्रू, आई एम अ पार्ट ऑफ.
2: तो अपने सभी दर्शकों के साथ हम ये भी शेयर करना चाहेंगे कि समीना जी भारत जो इस बार आई हैं वो अपने परिवार के साथ आई और माउंट आबू गए ब्रह्मा कुमारीज के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स. वो एक्सपीरियंस कैसा रहा?
1: या इट वाज, आई डिडंट एक्चुअली, मुझे पता ही नहीं था कि मैंने सोचा मैं एक आश्रम में जा रही हूँ. पहले तो मुझे वही लगा जब मैं गई. और इट इज़ बिग, यानी इट्स ऑन अ बिग स्केल एंड इतने इतने लोग आते हैं वहाँ पे, इतने सारे भाई बहन हैं, यू नो, एंड इट्स इज़ ब्यूटिफुल एक्चुअली. जस्ट सीइंग एवरीबडी इन द वाइट, इट मेक्स यू फील वेरी, यू फील लाइक एंजल्स यू नो फ्लोटिंग अराउंड द प्लेस. यू फील सो ब्यूटिफुल. आई हैड अ चांस टू डू मेडिटेशन for many hours that way, you know, and it was jab sab milke meditation karte wo energy alag hoti hai. wo hum mujhe khud nahi laga ki main you know 40 45 minute baith sakti hu ek bar, you know, I'm very fidgety. to aisa laga ki main hat jaungi, log mujhe dekhenge ki kitni shift ho rahi hai yahan se wahan. nobody is bothered over there because even the you know senior dadis jisse main mili wo kehte hai ki ye apni personal journey hai, कोई आपको जज नहीं करने वाला है. आप जिस स्पीड से जाना चाहते जाओ, यू नो, एक बिल्कुल भी एक रिलीजियस फीलिंग नहीं था, सिर्फ स्पिरिचुअल फीलिंग थी दैट आई एम हियर एंड ही इज देयर एंड आई एम जस्ट कनेक्टिंग विद हिम. दैट्स ऑल. आई वाज जस्ट देयर फॉर दिस कनेक्शन.
2: वंडरफुल. एंड यू फेल्ट दैट कनेक्शन?
1: यस, ऑल द टाइम व्हेन इट मेडिटेशन, ऑल द टाइम.
2: अच्छा, हाउ अबाउट योर फैमिलीज रिस्पॉन्स? आई मीन नॉट ओनली योर इमीडिएट फैमिली, बट अब तो एक काफ़ी टाइम बाद आप अपने परिवार से मिलोगे जब मुंबई गए. दैट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट कि वो जब आप कह रहे हो कि वो कहते हैं एक्टिंग कर रही है या अभी बोलेगी या अभी ये शोर मचाने वाली है.
1: माई मदर डजंट से इट बट शी हरसेल्फ फील्स गुड, यू नो, एंड शी हरसेल्फ नाउ इज टोन डाउन. यानी क्या होता है कभी कभी हम जब शांत हो जाते सामने वाला खुद ब खुद शांत हो जाता है, यू नो. हम जब भड़कते तो वो ज्यादा भड़केगा. हम जब चिल्लाएंगे तो उससे ज्यादा वो चिल्लाएगा बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी हर्ड.
2: और दूसरी बात ये भी है, आपको शांत करने के लिए भी और चिल्ला रहे होते हैं.
1: राइट,
2: यू नो, कि आपको कहते हैं आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ, तो खुद भी बहुत हाइपर हो चुके.
1: आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एनी मोर क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा बोलना ही नहीं है, यू नो. व्हाटएवर आई वांट टू से आई विल जस्ट से. आई डोंट हैव टू रेज माय वॉल्यूम टू बी हर्ड. व्हेन यू हैव अराइव्ड एट वेयर आई वांट टू गो, आई डोंट केयर व्हाट समबडी थिंक्स ऑफ मी. आई नो व्हाट आई एम नाउ. मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ पहुँचना है, ये मेरी जर्नी है, मुझे पता है. आई डोंट नीड समबडी टू एंडोर्स इट. It's not important.
2: Yes, that's a beautiful. Actually, we are spellbound. I am really happy.
0: This is high self-esteem. Mm. You see, now I'm not dependent on other people's opinion about me because now I know who I am. This is what meditation does, and this is what the gyan does. It hits first on the self-esteem. Because low self-esteem is the cause of the whole list, yes, which comes after that, whether it's anger or pain. And low self-esteem means ego. And when we don't say finish ego. But what Baba's Gyan does is raises my self-esteem, what I feel about myself. And like you say, you know, now I don't care anymore. So it's not in the negative sense, yes, that now I don't care anymore, but it's actually that even if some people are still going to take their time, I'm okay. Yes. I don't need to prove anything to anybody. And that wo sirf wohi keh sakega jo andar se bhar gaya hai. You know, jab hum andar se khali hote hain, so we need to make noise. Yeah. Lekin jab andar se bhar jate hain, now you take your time, I'll wait for you till you come to
1: okay.
0: normal.
1: But also ego, that's another thing.
0: Yeah.
1: We all celebrate ego, actually. We feel agar ego nahi hai to kuch nahi hai. This is, but we confuse ego with self-respect. My self-respect is where it is, but I have no ego issues. The reason I can say this is because somebody tells me I'm an idiot. Earlier, I would immediately react. Today, it's not important because if he says I'm an idiot, doesn't make me an idiot. They may say many things about you. They may say, they may call you a failure. They may call you many things, you know. And that's the time, in the earlier times, it used to bother me. That, you know, it is, they're inflicting pain on me by saying this thing.
2: You know why it used to bother us, actually? Because somewhere deep within, we used to think we are.
0: Yeah. Somewhere deep within, we didn't even know, actually. Hame pata bhi to nahi tha. I don't know myself. So, aap jo mere bare mein bologe, I'm going to take that only as the truth. And agar aapne mujhe kaha, jaise usne kaha ki aapne kaha you're a failure, suddenly I feel like a failure. Agar aapne kaha bahut acche ho, suddenly I feel very good. So then I'm just waiting for people to say nice things about me. And if somebody is not going to say very nice things,
2: everything goes down. Sameena, bahut kuch hua jo aapne apne mein parivartan kiya. Ghar parivar mein bhi definitely hona shuru hua hoga. Raaste mein ab kuch baatein abhi bhi hain.
1: Now I feel that this is the way I want to go, and I want to work more because there is so much knowledge out there that I feel ke it's not enough time. I just hope that we don't run short of time. We have to you know, get that should be in a hurry, that hume jitna gyan mil sake, yes, about us, about the divine. कि क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो समझ में नहीं आता था कि वो है कहाँ. जब हम उनको बुला देते तो है नहीं. एंड नाउ वी फील नो ही इज देयर, सो नाउ वी वांट टू नो मोर अबाउट हिम. इट्स लाइक यू हैव डिस्कवर्ड अ फ्रेंड बट यू वांट टू नो मोर अबाउट.
0: दैट्स द जर्नी. That's what we try to do through this program, is introduce the two.
1: Yes.
0: You know, and then after that it's each one's own journey with him. Yeah. Absolutely. Yes. So aapne introduction stage bhi cross ki aur relationship bhi start ho gaya hai, and now this relationship will only grow.
1: Yes.
0: Jitna aap us relationship mein time or energy invest karte hain, it's like any other relationship, jitna time or energy aap us relationship mein invest karte hain, it will only take you further. How did this help in relationships?
1: My relationship with
0: anybody, with closest family.
1: Actually, my husband, let's talk about him. You know, the first realization that I got, from one of the shows, is that the fact that we are together as a couple is already predestined. कि हमें साथ में होना ही था, और हमें ये journey complete करनी है. You know, because divorces,
2: it is actually so important. But yeah. I'm, everything starts falling in place.
1: Yes.
2: First realization.
1: Because, you know, with divorces at the rate that they're going, and you know you have another alternative, if this doesn't work, something else will work. But on the other hand, when I feel if this is the journey that I have to complete with him, then I spoke to my husband also, and then he started watching, and we both got involved at the same time, me a little bit more than him. We both realized that if this is the journey that we have to complete, then why not make it a beautiful journey? Then why fight and end it, and fight and go on with it, and daily cribbings and all? Why can't he change a little and I change a little? We have to make it work in such a way that we as a family collectively can have this journey which is together, and have events, have experiences that are enriching our lives.
2: And somewhere, Sameena, aapko kabhi ye lagta hai ki why you want to make him happy? Because it makes you happy.
1: Yes, it does. Now it does. Now it used to not be that way. I used to just do it because, okay, just to keep the shanti in the house. Kar lo, because nahi karenge to bahut tata tata hogi. To kar lo. Abhi nahi lagta, nahi, you know. And also, if it is meant to be this way, if it is predestined.
0: Aapko ye nahi laga ki aapka focus ab shift ho gaya hai, and that's what's made all the difference.
1: Yeah.
0: See, it's the same husband, the same you. Married for how many years?
1: 24
0: years. So what is that one thought which changes, because of which so many changes take place? See, we've talked about so many things changed, and not that we didn't know about these changes before. Ye sari baatein ki hame agar kisi ke liye kuch karna hai to khushi se karna hai, bajaye ki theek hai kar lo, lekin andar hi andar hum dard create karte hain. Aaj din tak hum auron ke liye karte the, लेकिन इट वॉज मोर लाइक अ कॉम्प्रोमाइज इसीलिए अगर आप किसी से भी पूछो कि रिलेशनशिप्स क्या हैं तो वो कहेंगे एडजस्टमेंट सैक्रिफाइस यू नो द वर्ड्स आर आल्सो ऑल वेरी निगेटेड द सैक्रिफाइस आएगा सबसे पहले एडजस्टमेंट आएगा कॉम्प्रोमाइज आएगा क्योंकि मैंने आपकी खुशी के लिए तो कर लिया लेकिन मैंने अंदर खुद क्या एक्सपीरियंस किया दैट वॉज पेन or you know I'm not very happy with
2: resentment,
0: it resentment yeah. anger or hatred sometimes or whatever to usse kya hoga fir bhi wo ghar mein khushi nahi hogi bhale humne wo kiya bhi and that's what happened with majority of us ki humne bahut kuch ek dusre ke liye kiya it's not that we're not adjusting hum bahut karte hain ek dusre ke liye lekin bahar se karte hain
2: andar
0: se hum apne hi thought ko pakad ke baithe hain to kya hua bahar se humne kiya अंदर से हमें फील हो रहा है मैंने इतना किया तो इट्स मोर लाइक सहन किया एंड घर का वाइब्रेशन फिर भी कैसा बना एंड देन वी से मैंने आपके लिए इतना किया फिर भी खुश नहीं हुआ यू नो यू स्टिल डिडंट हैव द हैप्पीनेस इन द हाउस दैट वी वर लुकिंग फॉर इन स्पाइट ऑफ हैविंग एडजस्टेड सो मच एंड कॉम्प्रोमाइज सो मच बट हियर व्हाट हैपेंड वाज द फोकस शिफ्टेड एंड द फोकस वाज व्हाट आई फील इन व्हाट हैपेंड इन योर केस इज यू स्टॉप्ड वर्किंग ऑन हिम एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन योरसेल्फ
2: And I have to realize that. Thank you so much. Oh, I'm sharing.